ओम शांति। ज्ञानी आत्मा वही है जो अपने चित्त को शांत रखे, जो अपने मन को निगेटिव से पॉजिटिव करके जल्दी ही प्रसन्न कर ले। ज्ञानी आत्मा वो नहीं जो किसी निगेटिविटी के बहाव में, व्यर्थ संकल्पों के बहाव में तेजी से बहती चली जाए। बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, परिवारों में भी अनेक चीजें मनुष्य के साथ होती हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सब करें या वैसा ही सब कुछ होता रहे। ऐसा तो ड्रामा का विधान ही नहीं है। किसी के बच्चे निगेटिव हो गए हैं, गलत मार्ग पे चले गए हैं, किसी के बच्चे माँ बाप से गलत व्यवहार कर रहे हैं, जरा भी सुनते नहीं तो माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। तो हमें एक बात, सत्य बात जान लेनी चाहिए, अगर हम परेशान रहते हैं तो हमारे बोल में प्रभाव नहीं रहता है, तब हमारी कोई नहीं सुनता है, और जब कोई नहीं सुनता तो मनुष्य और इरिटेट होता है और उसकी स्थिति बिगड़ती जाती है। इसलिए कुछ समय के लिए अपने मन को शांत करें, साक्षी भाव अपना लें। सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, ठीक है, वो आपके बच्चे हैं, आपके प्रियजन हैं, उन्हें अच्छा होना ही चाहिए। उन्हें बिगड़ता देख, उनका पतन देख किसी को भी प्रिय नहीं लगेगा, लेकिन आप इस तरह कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखेंगे, चित्त शांत होते ही परिस्थितियां भी शांत होने लगेंगी। आपकी शुभ भावनाओं में बल तब रहेगा जब आपके विचार महान होंगे, जब आप स्वमान में स्थित होंगे। यदि परेशान होकर आप किसी को अच्छी शिक्षाएं भी देते हैं तो वो शिक्षाएं निरर्थक जाती हैं। सुनने वाला यही सोचता है इनका तो काम ही है बोलते रहना, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए स्वमान को बढ़ाते चलें, विशेष स्वमान, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। देखिए, जिन्हें विश्व का कल्याण करना है वो छोटे नहीं हो सकते, वो बहुत बड़े होंगे। विश्व कल्याण, मनुष्य अपना भी कल्याण करना नहीं कर पाता है, मनुष्य दूसरे एक व्यक्ति का भी कभी कभी कल्याण नहीं कर पाता है, और हम चले हैं विश्व का कल्याण करने, तो कितनी ऊंची स्थिति होनी चाहिए। हम अपने स्वमान को बढ़ाते चलें, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। दूसरा स्वमान, मैं वही हूं जिनके मंदिरों में पूजा हो रही है, मैं इष्ट देव देवी हूं। क्या इष्ट देव देवी को कभी आपने परेशान होते देखा है? इस देव देवी हूँ जिनके सामने आते ही, जिनके मंदिरों के कपाट खुलते ही लोगों में प्रसन्नता की लहर छा जाती है, जिनके दर्शन करने से लोगों के चित्त शांत और पवित्र हो जाते हैं, वो देवी मैं हूँ। इस स्वमान को बढ़ाएंगे तो आपका मन बहुत शांत रहेगा, और ये जो मन में उथल पुथल होती है, जो बेचैनी होती है, चिंताएं होती हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये चिंता समाप्त हो जाएगी। आप इस संकल्प को सदा के लिए हटा दें, पता नहीं क्या होगा। ज्ञानी आत्माओं का ये संकल्प नहीं होना चाहिए। होगा वही जो विधि में, ड्रामा में रचित है, पहले से नोंद है, जिसे लोग कहते हैं जो लिखा हुआ है। ऐसा अभ्यास करने से अपने चित्त को शांत रखेंगे, और आज सारा दिन एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे, और वो है बाप दादा का आह्वान। बाबा को निमंत्रण देंगे परम धाम में, और फिर देखेंगे बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं, ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं, और फिर दोनों नीचे आते हैं मेरे पास। बाबा मेरे सामने हैं, मुझे दृष्टि देते हैं, और मुख्य अभ्यास कि बाबा ने अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं।
बहुत सुंदर अभ्यास होगा, जैसे उनकी छत्र छाया, हाथों की छत्र छाया मेरे सिर पर है और बाबा की आवाज सुने, बच्चे तुम चिंता न करो, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूँ, मेरी शक्तियों में विश्वास रखो। ये अभ्यास हर घंटे में एक बार आज अवश्य करेंगे। ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। नई दुनिया में आप यह पाएंगे कि आपका मूल्यांकन इस बात से नहीं होगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, परंतु इस बात से होगा कि आप अपने आसपास की दुनिया में कितना मूल्य जोड़ सकते हैं। इस बारे में सोचिए कि अगर आपको फिलहाल 100 रुपये प्रति घंटा तनख्वाह मिलती है, तो यह पैसा आपको सिर्फ अपनी मेज पर 60 मिनट बैठने के लिए नहीं मिलते हैं, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि आपने उन 60 मिनटों में 100 रुपये के लायक दिखाई देने वाला मूल्य जोड़ा है। अतः धन संबंधी पुरस्कार इस बात से नहीं निर्धारित होता है कि हम कितनी देर काम करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हमने उतने समय में कितना मूल्य जोड़ा है। यही वजह है कि मस्तिष्क के शल्य चिकित्सक को एक मैकडोनाल्ड में काम करने वाले से ज्यादा पैसा मिलता है। क्या मस्तिष्क का शल्य चिकित्सक ज्यादा परिश्रमी है? शायद नहीं। क्या वह मानसिक शल्य चिकित्सक ज्यादा तेज तर्रार है? क्या पता। परंतु एक बात निश्चित है कि मानसिक शल्य चिकित्सक ने मैकडोनाल्ड के कर्मचारी की अपेक्षा अपने ज्ञान और पेशे के क्षेत्र में ज्यादा प्रवीणता हासिल की है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो वह कर सकते हैं जो एक मस्तिष्क का शल्य चिकित्सक कर सकता है। इसलिए एक मस्तिष्क शल्य चिकित्सक को व्यावसायिक क्षेत्र में दूसरों की तुलना में ज्यादा काबिल माना जाता है। यही कारण है कि एक मस्तिष्क शल्य चिकित्सक को एक बर्गर सेकने वाले से कम 10 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलती है। पैसे सिर्फ एक सांकेतिक चिन्ह है। यह मूल्यांकन करने का कि हर व्यक्ति ने इस दुनिया में अपनी विशिष्टता से क्या योगदान दिया है। और सबसे बढ़िया तरीका जिससे हम दुनिया के मूल्य जोड़ सकें, उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी काबिलियत बढ़ाएं, ऐसे गुणों को बढ़ाएं जो किसी के पास ना हो, ऐसे किताबें पढ़ें जो कोई ना पढ़ता हो, ऐसे विचारों पर मनन करें जो कोई ना सोचे। और इसको दूसरे तरह से कह सकते हैं कि आप जो चाहते हैं वह नहीं मिलेगा अगर आप वही व्यक्ति बने रहेंगे जो आप हैं। जीवन से ज्यादा हासिल करने के लिए हमें जीवन में ज्यादा सक्रिय होना पड़ता है।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर क्या पहुँचा दोगे हैं? ओए कहाँ पहुँचा दोगे? ओए मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। ओए सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ओए ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? ओए जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

रूसो ने कहा था, आप अपनी विचारधारा को रिवाजों के विरुद्ध ले जाइए और आप जीवन में जरूर अच्छा करेंगे। एप्पल कंप्यूटर का चमकीला विज्ञापन जो हमें प्रेरणा देता है कहता है, भिन्न सोचिए। अगर आप भीड़ के पीछे जाएंगे तो आखिर में शायद उसके बाद बाहर जाने के द्वार तक ही पहुंच पाएंगे। एक परिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप अपनी दौड़ खुद दौड़िए। अपनी विशिष्टता को छोड़कर सामाजिक दबावों की मांगों के सामने झुकिए मत। जब आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली और बुद्धिमान लोगों की जीवनी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन लोगों ने इस बात की कभी फिक्र नहीं की कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बजाय कि सार्वजनिक राय उनकी प्रतिभाओं पर असर डाले, उनमें यह हिम्मत थी कि वे अपने हृदय की बताई दिशा में चल सकें। और उस पथ पर चलने में जिसमें कम लोग चल पाते हैं, उन्होंने उस सफलता को अपने कदमों को चूमता हुआ पाया जो उनकी कल्पना से बाहर थी। सबसे अच्छी पंक्तियां जो आधुनिक होने के महत्व के बारे में लिखी हैं, वह है क्रिस्टोफर मॉर्ली के शब्द, हर रोज वह पढ़िए जो हर कोई नहीं पढ़ता है, हर दिन कुछ ऐसा सोचिए जो कोई और नहीं सोचता है। यह अच्छा वक्तव्य इमर्सन का है कि इस दुनिया की राय के साथ रहा जाए तो जीवन आसान है। एकांत में हमारे लिए अपनी खुद की देखभाल करना आसान है, परंतु महापुरुष वह है जो भीड़ के बीच भी संपूर्ण मधुरता के साथ चिंता से स्वतंत्र होता है। अगले कुछ महीने आप जो कुछ भी करेंगे उसके बारे में दोबारा सोचिए। चीजें सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि हर दूसरा इंसान वह कर रहा है, वही कीजिए जो आपके लिए सही है। अपने सही कारण के लिए अगर दूसरों से भिन्न हुआ जाए तो जीने का सही तरीका है। अगर आप चाहें तो आइंस्टाइन, पिकासो, गैलीलियो या बीथोवन से

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अत्यधिक प्रभावशालिता के साथ कार्य करने वाले पुरुष और स्त्रियां अपने साथ एक छोटा लक्ष्य का पत्र अपने पर्स में रखते हैं, जिसे वे अपने शांत समय में फिर से देख सकें। यह छोटा सा पत्र उनके जीवन के कुछ उच्च उद्देश्यों की एक सूची के रूप में होता है, जिसमें वे उनको पूरा करने के निर्धारित समय को भी लिखते हैं और अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं के साथ दोबारा व्यक्तिगत, व्यावसायिक या आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का प्रयत्न अपने आप में एक अच्छा कदम है। मॉन्टेग्न ने कहा है, इंसान का महानतम और गौरवपूर्ण रूप उसके केंद्रित तरीके से जीने में है। जीवन का यह ज्ञान कितने सुंदर और संक्षिप्त रूप में बखान किया गया है, फिर भी हम में से अनेक लोग अपना जीवन एक हवाई कवायद की तरह जीते हैं और ऐसी प्रक्रियाओं में पूरे दिन व्यस्त रहते हैं जो हमें उस क्षण महत्वपूर्ण लगती है, परंतु जीवन में उनका महत्व बहुत कम होता है। जो इंसान सब कुछ करने की कोशिश करता है, वह कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। एक लक्ष्य पत्र को रखना और उसे दिन में 3-4 बार पढ़ना आपका ध्यान उन विषयों पर केंद्रित रखेगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह आपके आत्मनियंत्रण का विकास करेगा और आपको सिर्फ उन क्रियाओं पर केंद्रित करेगा जिसकी आवश्यकता आपको अपने उद्देश्यों में आगे बढ़ने और अपने सारे आरामों के लिए नहीं बोलने का अनुशासन लाने में लगेगी। ऐसा करने से आप अपने ध्यान का नवीनीकरण

सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सिर्फ उन बातों पर ध्यान दें जो कि सही में योग्य हैं, तो यह निश्चित है कि आप अंत में सर्वोच्च आनंद की

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सामान्यतः हम जीवन में यह विश्वास करते हैं कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण के बाहर हैं। वे सिर्फ सहज तरीके से हमारे दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं और जो मन होता है वह करते हैं। उससे भी बुरी चीज है कि आप सोचें कि आप और आपके विचार एक ही हैं। आप यह समझें कि सच्चाई से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। हम अपने विचारों से अलग हैं। हम वास्तव में अपने विचारों को सोचने वाले माध्यम हैं। हम उन विचारों के रचयिता हैं जो हमारे मस्तिष्क में उमड़ रहे होते हैं। इस सच्चाई के साथ अगर हम चाहें तो अपने विचारों का चुनाव कर सकते हैं। इस बात को आप एक ईश्वरीय संदेश के समान भी मान सकते हैं। आप जल्द ही अपने उन विचारों के बारे में अधिक जागरूक बन जाइए जिन्हें आप अपने मन में प्रवेश करने देना चाहते हैं, और वह आत्मिक वार्तालाप जो हम सब के अंतर्मन में अपने सुबह उठने के बाद स्थान ले लेता है, उसके प्रति भी जागरूक बन जाइए। आप अपने विचारों के गुणात्मक रूप पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। यह जागरूकता उन्हें परिवर्तित करने की ओर पहला कदम है। कुछ महीनों के बाद आप अपने मन को सिर्फ सकारात्मक प्रेरक और ज्ञानवर्धक विचारों की ओर केंद्रित करना शुरू कर देंगे, और ऐसा करके आप पाएंगे कि आप अपनी बाध्य परिस्थितियों को भी बदल पाने में समर्थ हैं। जिस प्रकार से हम अगर विचार नहीं तो अपना चित्त भी नहीं है, हम अपनी स्थिति की संरचना अपने अनुभवों के आधार पर करते हैं। वे भाव जो आप एक क्षण में बदल सकते हैं, मगर आप स्वयं चुनाव करें तो आप तनाव के समय शांति, अवसाद के समय प्रसन्नता और थकान के बदले स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। बस जरूरत है अपने मन में उन्हें विचारों को लाने की जो हमारे लिए फायदेमंद है। जितना आप व्यर्थ से मुक्त बनेंगे, जितना आप व्यर्थ विचारों से मुक्त रहेंगे, उतना ही आपका जीवन समर्थ बनेगा। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सिंह चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को सहज बनाने की कोशिश रेडियो मधुबन की ये मुहिम है कि हम सभी अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। आखिर व्यक्ति स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है, और परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है। जब हम पूरे राष्ट्र के भी स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो उसकी शुरुआत भी एक एक व्यक्ति से होती है, और यही कदम हम सबको उठाने हैं कि हम स्वयं तो स्वस्थ रहें ही और दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। स्वास्थ्य की इसी जागृति को लेकर यह कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य हम सबको स्वस्थ रहने के सही तरीकों के बारे में समझाने देता है। आज की बातचीत में हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझ में आती है कि हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके अपने हाथ में है। आप प्राय ये चीज कहते हैं कि मैं जिम जाऊंगा तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, मैं योगासन करूंगा तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, मैं खाने पीने पे ध्यान रखूंगा तो बेहतर स्वास्थ्य मुझे देगा, कोई और मेहनत करे और वो मेरे स्वास्थ्य पे असर डाले, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति को अपने इंडिविजुअल स्वास्थ्य के बारे में सजग होने की, जागरूक होने की आवश्यकता है, या लोग ये समझते हैं कि भाई बीमार पड़ जाएंगे तो डॉक्टर तो है ही, ये समझ लेना सही?
1: मैं सबको एक बात और बोलता हूं कि आप अपने भोजन को अपनी दवा बनाइए, मेक व्हाट यू ईट एज फूड, मेक इट एज मेडिसिन। और अगर आप अपने भोजन को अपनी दवा नहीं बनाएंगे तो थोड़े दिनों में जो दवा है वो आपका भोजन बन जाएगी। तो आपको किसी भी रूप में ये कोशिश करनी है कि जो भोजन आप करें वो अच्छा हो, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। मैं स्वाद लाभ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वास्थ्य लाभ की बात कर रहा हूं। 5 दिन प्लीज स्वास्थ्य लाभ लीजिए और 2 दिन स्वाद लाभ लीजिए, आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मुझे हिप्पोक्रेटस की वो बात याद आती है जहां पर ये बात कही जाती है कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन, यानी भोजन ही आपके लिए औषध का काम करे। आजकल तो हम देखते हैं कि लोग इतनी इतनी दवाइयां खाते हैं, मुट्ठी भर भर के दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या हम सही मायनों में दवाइयां खाकर स्वस्थ होना चाहते हैं, या स्वास्थ्य का डेफिनेशन ये नहीं है कि हम दवाओं से मुक्त रहें तो वो सही स्वास्थ्य हो। और जैसे आपने ये बात कही कि आज इस बात के बारे में अगर जागरूकता है कि हम स्वास्थ्य के लिए खाएं, और स्वाद के लिए एक आध दिन हफ्ते में खा लेना ठीक है, मगर हफ्ते के 5 दिन तो हम स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाएं, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भोजन करें, यह आवश्यक है। भोजन की जब बात की जाती है डॉक्टर साहब, तो हम पिछले दिनों ये बातचीत कर रहे थे कि भोजन में एक संतुलित आहार आवश्यक है, एक बैलेंस डाइट जरूरी है, और उसमें हम फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की बात कर रहे थे और हम विटामिन्स के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। अब विटामिन्स में आपने ये बताया था कि 2 अलग अलग कैटेगरी के विटामिन्स हैं, एक फैट सॉल्यूबल है जो वसा में घुल जाते हैं और वाटर सॉल्यूबल। तो ये फैट में जो घुलने वाले विटामिन्स हैं इनके बारे में कुछ और चीजें समझे, कुछ और विटामिन्स के बारे में भी हम जानकारी हासिल करें।
1: हम लोग ने विटामिन ए के बारे में बात की जो हमारी आंखों के लिए और कैरेट में, विटामिन डी के बारे में बात की जो सूर्य के प्रकाश की वजह से, और आज हम महिलाओं का सबसे चहेता विटामिन जिसको विटामिन ई कहते हैं उसके बारे में बात करें।
0: जी,
1: इस विटामिन को डॉक्टर से ज्यादा महिलाएं, फूड इन्फ्लुएंसर्स, डाइटिशियंस और न जाने कौन कौन इसके बारे में परिचर्चा इसकी करता रहता है, और जो सबसे ज्यादा परिचर्चा इसकी होती है वो सिर्फ त्वचा के लिए होती है और त्वचा के साथ बाल, इसीलिए ये महिलाओं का सबसे फेवरेट विटामिन ई है। और मैं सबको बोलता हूं, प्लीज नेचुरल सोर्स से इस विटामिन को लेने की कोशिश करिए। ब्रह्म कुमारी की एक लेक्चर मुझे दीदी का याद है, जिन्होंने उससे बोला था कि हम बाहर से नहा धो के सुंदर हो सकते हैं, पर जब तक हम अंदर से सुंदर नहीं होंगे, हमारी बाहरी सुंदरता का कोई भी लाभ नहीं है। तो जो लोग जितना विटामिन ई का कैप्सूल गोली चेहरे पे लगा रहे हैं, इसमें किसी क्रीम में डाल रहे हैं, मैं उनको सबको बोलता हूं कि प्लीज इसको खा भी लीजिए और इसको नेचुरल सोर्स से खाने की कोशिश करिए। ये आपके सारे नट्स में मिलता है और व्हीट जर्म ऑयल में मिलता है, आपके आलमंड में मिलता है, पिस्ताशों में मिलता है, पालक में मिलता है। इसको प्लीज सिर्फ चेहरे पे लगाकर, अपने बाल में लगाकर प्रयोग कम करें, अंदर भी अपने शरीर के इसको डालें। क्योंकि अगर आप अपने शरीर के अंदर इसको नहीं डालेंगे तो आप पूरा फायदा इसका नहीं ले पाएंगे।
0: यानी जहां तक मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ, विटामिन ई के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाजार में बिक रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि इसमें विटामिन ई है, तो लोग उसे लगा ले रहे हैं ऊपर से मेकअप की तरह, मतलब क्रीम के रूप में हाथों पे, चमड़ी पे लेप तो कर ले रहे हैं, मगर वो शरीर के अंदर जा रहा है इस बात का ध्यान नहीं है, सिर्फ बाहर वो लेप तक ही सीमित रह रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सही फायदा अगर उसको अंदर ले आया जाएगा।

0: आता है, ये दोनों भी चीजें समझने की जरूरत है।
1: जो लोग लगा रहे हैं वो एक दवा की कंपनी के द्वारा बनाया हुआ कैप्सूल उसको काट लेते हैं या उसमें उसको पंचर कर लेते हैं, छेद कर लेते हैं, और जो लिक्विड उसको निकलता है उसको किसी क्रीम या तेल में मिलाकर, या कुछ लोग जो बहुत जल्दी गोरा होना चाहते हैं या बहुत जल्दी अपने रिंकल को खत्म करना है, वो डायरेक्ट लगाने लगते हैं इसको। और अगर हम इसको हम भोजन में लेते हैं, एक और बहुत बड़ी भ्रांति है कि ये सिर्फ हमारी त्वचा के लिए अच्छा है। ये हमारे शरीर में, हमारे हार्ट, हमारी लिवर, हमारे लंग, इन तीनों के लिए बहुत अच्छा है। कहना नहीं चाहिए, हमारी माताएं, बहनें और अब तो बहुत सारे पुरुष भी सिर्फ सुंदर दिखना चाहते हैं। वो सिर्फ इसकी त्वचा की जो इसकी खूबियां हैं उसी के पीछे भागे चले जा रहे हैं। वो ये शरीर को जो ये अच्छा बना पाता है उस पे ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं अपने सभी श्रोतागण को ये सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आपको ठीक लगे तो इसका सेवन भी करिए, और गोली के रूप में सेवन करने से ज्यादा अच्छा है कि इसको भोजन के रूप में इसका सेवन करें। बोलना चाहूंगा किसमें मिलता है, वीट जम ऑयल में, सनफ्लावर सीड, कोई भी सनफ्लावर, आलमंड, पीनट, मतलब मूंगफली, आपका बादाम, आपका पिस्ता, कोई भी भुना हुआ जो ये नट है, मतलब बीज है, उसमें आपको मिलेगा। पालक में, ब्रोकली में, हमको जो फल है कीवी, उसमें बहुत अच्छा है। आम में बहुत अच्छा है, तो टमाटर में बहुत अच्छा है। तो प्लीज इसका सेवन करिए। जो लगाना चाहता है मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं, बट प्लीज इसका सेवन करिए।
0: कभी कभार ये बड़ी मजेदार सी बात लगती है कि हम बाहरी आवरण पर इतना ध्यान देते हैं, ये भूल जाते हैं कि जो बाहर दिख रहा है वो अंदर का ही रिफ्लेक्शन है, कि वो अंदर का ही प्रतिबिंब है जो बाहर हो रहा है। प्रायः चिकित्सक चेहरे देख के ही पहचान लेते हैं कि भाई इसकी तबीयत में गड़बड़ है, स्किन का टोन देख के, आंखें देख के बोलते हैं कि भाई इसको ये है, जल्दी इसको ले आओ। ये अक्सर प्राय अस्पतालों में हम सुनते और देखते आए हैं, मगर लोग इस सिंपल सी बात को नहीं समझ पाते।
1: भैया वही बात है ना कि ये आपको बाहर से सुंदर बनाता है, और इसको एंटी एजिंग बोला जाता है। तो प्रकृति का नियम है कि जो चीज आई है वो जरूर जाएगी। रोज हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम रोज कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो अगर हम सीखते जाएंगे तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, ये जो चेहरे पे ये मेरी झुर्रियां नहीं है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो बट सबको यंग दिखना है, सबको, कहते नहीं, सबको वही 18 साल या 21 साल में अपनी उम्र को फ्रीज कर लेना, ये पॉसिबल नहीं है। सो सबको मैं बोलता हूं कि, और इसके प्रचार भी बड़े कभी कभी भ्रम पैदा करते हैं कि ये उम्र कम करने की ये चाबी है, हमेशा आपको जवान बना के रखती है, आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है, और पता नहीं क्या क्या लोग इसके बारे में बोलते हैं। फिर बोलूंगा, लगाने से ज्यादा बेटर है इसका खाना।
0: अक्सर ये चीज सुनने को मिलता है कि लोग बाहर से तो जवान होते हैं मगर अंदर उसके शरीर के अंग अंग जो है वो बूढ़े हो गए होते हैं, क्योंकि हमने बाहर पे फोकस कर लिया है और अंदर गाड़ी जो है वो एकदम खटारा हो चुकी है।
1: भैया आपकी दादी, उनकी स्किन आपसे बेटर अभी भी होगी। नेचुरल खाया है, उस जमाने में विटामिन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, खूब टमाटर खाया, खूब सारे नट खाए, उन्होंने ताजा भोजन खाया, वीट ग्रास, वीट जर्म ऑयल, सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया। आज देखिए उनकी त्वचा। और ये एंटी एजिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, एंटी स्ट्रेस का काम, और ये मतलब ऑक्सीजनेशन को प्रिवेंट करता है, जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस ऑक्सीजनेशन उसको बंद करता है। आजकल नया तीन चीजें हम लोग को बहुत नुकसान दे रही हैं, वो है पॉल्यूशन नंबर वन, दूसरा पैक्ड एंड एडल्टरेटेड फूड, तीसरे नंबर पे स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये तीन चीजें हमारे शरीर को अंदर से और बाहर से दोनों से खराब कर रही है। तो

0: ये कहा जाता है कि अगर आप विटामिन ई को ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो आप इन तीनों चीज के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें एक साइंस का टर्म है, फ्री रेडिकल पैदा करती, जो निकलता है और वो जितने भी कोशिकाएं हैं उनको मारना शुरू करता है। तो विटामिन ई सबसे पहले हमारे शरीर में जितनी भी जो ये स्ट्रेस है उसको, ऑक्सीजनेटेड स्ट्रेस को कम करता है। तो ये हमारी त्वचा या पूरे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनको ये ठीक रखता है और जीवित रखता है लंबे समय तक। इसीलिए हमारा जो शरीर है और जो त्वचा है सुंदर रहने लगती है।
1: ये बात समझ में आती है कि विटामिन ई सिर्फ बाहरी सौंदर्य को ही नहीं बढ़ा रहा, मगर साथ साथ शरीर के अंदर की जो उम्र है, यानी शरीर के अंदर के अंग अंगों की उम्र है, उनको भी वो ठीक रखता है, उसे जल्दी एज होने नहीं देता, उसका भी मेंटेनेंस का कार्य ये विटामिन ई करता है, ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे आपने ये बात कही कि विटामिन ई का ये महत्व है शरीर के अंदर के अंगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो विटामिन ई के क्या क्या काम है, ये बात समझ में आता है कि वो ये मेंटेनेंस का काम करता है, फ्री रेडिकल्स को जो है उसे फाइट करता है, साथ साथ जो पोल्यूशन और जो बाहर के ये अलग अलग प्रभाव हैं, पैक्ड फूड जो हम खाते हैं, पैकेट बंद भोजन और जो मिलावट वाला भोजन खाने से जो शरीर पर नकारात्मक असर होता है उससे लड़ने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा विटामिन है। तो अब प्रश्न उठता है कि इस विटामिन को कितना खाया जाए, हर दिन में इसकी क्या मात्रा हो, कैसे इसको हम अपने भोजन का, जीवन का एक हिस्सा बनाएं?
0: हम सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि ये त्वचा के साथ साथ और किन चीजों में फायदा देता है। एक वयस्क व्यक्ति को करीब 15 मिलीग्राम पर डे की हम लोग बात करते हैं। ये विभिन्न अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट्स में इसके बारे में लिखा जाएगा, मगर पहले बात करते हैं कि किस किस चीज में इसका फायदा होता है। सबसे पहले हम लोग ने जो बात की कि ये त्वचा को सुंदर रखता है, जवान रखता है, क्योंकि ये जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं उनको ये कम करता है, तो एंटी एजिंग हो जाता है। दूसरे नंबर पर ये हमारे हृदय को ताकत देता है, और ये कहा जाता है जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, जिनको हृदय संबंधी रोगों की समस्या हो सकती है, उसमें उनको विटामिन डी बहुत मदद करता है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ओवरऑल जो हार्ट हेल्थ मतलब हृदय का स्वास्थ्य है उसको ये बेटर करता है। पहले ये माना जाता था कि जो अल्कोहल या शराब पीते हैं उनकी ही लिवर खराब होती है, और अब किसी की भी लिवर खराब हो सकती है, तो उसको मेडिकल टर्म में नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज बोला जाता है। और ये बार बार इस्तेमाल किए हुए तेल से या खराब खाना खाने से, उन सब चीजों से ये होता है। और ये इसमें भी ये जो हमारा लिवर है उसको रीजनरेट करने में और उसको ठीक करने में इसका बहुत अच्छा रोल है विटामिन ई का। हमारे ब्रेन मतलब दिमाग में जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, भूलने की बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स हैं, उसमें विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है। एक चीज और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा कि जिनको भी भूलने की बीमारी है या वो चीजें याद नहीं रख पा रहे हैं, अगर वो राइट हैंड से लिखते हैं तो प्लीज लेफ्ट हैंड से भी कोई काम करना शुरू करिए। मेडिकली ये कहा जाता है कि अगर आप अपना दोनों हाथ ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो आपका दोनों ब्रेन काम करेगा। और विटामिन ई की खासियत कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, और इम्यून सिस्टम जब बेटर करता है तो ज्यादा हम स्वस्थ रह पाते हैं। कुछ ये इसके प्रयोग से जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को ये कम करता है तो कुछ कैंसर्स के प्रिवेंशन में भी इसका रोल है। और ये हमारे जो अस्थमा है, हमारे कोविड में या लंग्स फेफड़ों से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसमें ये बहुत अच्छा इसका रोल है। महिलाओं में पीरियड्स के समय जो दर्द होता है उसमें भी विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है, और कहते हैं कि इसको खाने से या इसका प्रयोग करने से महावारी के समय जो महिलाओं को दर्द होता है उसमें इसके प्रयोग से उस दर्द में कमी आती है। और हमने जैसे बात की कि ये एंटी एजिंग है, ऑक्सीजन स्ट्रेस कम करता है, पोल्यूशन में कम करता है, तो महिलाएं और पुरुष जिनमें इनफर्टिलिटी की समस्याएं हैं उसमें विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है। मेरी पत्नी एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, तो वो अपने मरीजों को विटामिन ई जरूर देती हैं जिनको इनफर्टिलिटी की परेशानी है। तो इसमें हमने देखा कि त्वचा के साथ साथ ये हमारे हृदय की, हमारे लिवर की, महिलाओं में दर्द की, इनफर्टिलिटी की, इन सब चीजों में इसका बहुत अच्छा रोल है। विटामिन ई एक जोड़ों के दर्द में भी अब थोड़ा बहुत इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि ये जब त्वचा में कोलेजन बनाता है तो ये माना जाता है कि अगर कोलेजन अच्छा होगा तो हमारे जो जोड़ हैं वो भी अच्छे होंगे। तो अब ये जॉइंट हेल्थ के लिए भी विटामिन ई का इस्तेमाल हो रहा है।
1: यानी ये बात समझ में आ रही है कि ये सिर्फ त्वचा से संबंधित चीज नहीं है, त्वचा, बाल, शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए भी, लीवर, फेफड़ों के लिए ये कितना काम करता है, यहाँ तक भी हमारे घुटने और शरीर के अलग अलग जो जोड़ हैं उन सब के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, ये बात समझ में आती है। दोस्तों, बातों बातों में वक्त कहता है कि यहाँ अलविदा कहना होगा, मगर आज विटामिन ई के बारे में जो जानकारी मिली है उसे एक सौंदर्य प्रसाधन वाला विटामिन न समझकर उसकी वास्तविक आवश्यकता क्या है और शरीर के लिए वो कितना फायदेमंद है उसकी उपयोगिता को समझकर उसको जीवन में महत्व देकर उसका सेवन करना शुरू करना है, इस पर भी ध्यान रखना है। तो आज की बातचीत में मैं समझता हूँ कि आज हम सब ने ये बात समझी है कि जो भी हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जो नट्स खाते हैं, बादाम, पिस्ता, मूंगफली या फिर सूरजमुखी के जो बीज हैं, उन सबको हम सब लोग रोस्ट करके खाने की आदत तो बहुत पहले से लोगों में रही है। आजकल अगर हम उन चीज़ों को ध्यान न देकर सिर्फ बाहरी लेप लगाने पर सौंदर्य के हिसाब से इस विटामिन को सोचेंगे तो शायद इतना फायदा नहीं होगा जितना इन सब चीज़ों के प्राकृतिक स्रोत से इस विटामिन ई का सेवन किया जाए। तो आज की बातचीत में बस इतना ही। आज हमारे प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार। ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की बातचीत में विटामिन के बारे में हमने चर्चा की और ये समझा कि विटामिन ई की प्रामुख्यता क्या है, इसका उपयोग कितना है, और हम अपने शरीर के अंदर के जो अंग हैं, जो दिखाई नहीं देते, जो बाहर दिखाई देने वाला चर्म है, जो स्किन है, उसके केयर के लिए तो ये काम आता ही है, मगर इसके साथ साथ शरीर के अंदरूनी अंगों को भी उसके उम्र को बढ़ने से रोकता है और ये रोग निरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और अनेक चीज़ों में फ़ायदा देता है। ये आज हमने डॉक्टर साहब से सुना। तो इस विटामिन का सही इस्तेमाल करें, इसको भोजन में शामिल करना शुरू करें। आज की चर्चा में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।
2: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ माया कालसी और आप सुन रही है रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने समझा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जी हाँ, हमारे पास बहुत सी जिम्मेवारियाँ हैं, लेकिन सेल्फ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब बात की तो सामने आई बात कि हमारी अपनी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही आती है। हमें अपनी जिम्मेवारी लेना आना चाहिए। और उसमें एक बात जो सामने आई थी वो कि जो कुछ भी फीलिंग या थॉट्स क्रिएट होते हैं वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ, ना कोई और मेरे अंदर आके क्रिएट कर सकता है, ना मुझे वो फील करवा सकता है। तो जहाँ मैं दुख के बारे में अगर सोचती हूँ कि जितनी भी परेशानी मेरे ज़िंदगी में आ रही है वो भी मैंने क्रिएट की है, तो दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि जहाँ पर भी खुशी की बात है, जहाँ पर भी प्यार की बात है, वो भी मैंने अपने आप ही क्रिएट की है। सो अगेन यू नो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक एम्पावरिंग फैक्टर आ जाता है कि मैं खुद क्रिएट कर सकती हूँ। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा मुझे, कैसे मैं हो सकती हूँ अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल। बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, अभी तक सारी जिम्मेवारियाँ उठा रही थी, अब मतलब एक और जिम्मेवारी उठा रही थी वो ये कि मुझे मेरी जिम्मेवारी भी उठानी है। नहीं तो अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि चलो मेरी माँ उठाएगी, मेरे बच्चे उठाएंगे, मेरे हस्बैंड उठाएंगे, कोई ना कोई तो होगा, या फिर अल्टीमेटली
2: जो वो जिम्मेवारियाँ जो आप बोल रहे हो, दोज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक वी से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कोई और उठाएगा, वो फिर हम आउटर ही बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बीइंग, जो मैं हूँ, जो कुछ मेरा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जैसे हम कहेंगे एक बच्चा है, आपने कहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स उठाएंगे, दैट इज बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का भोजन, बच्चे का रहना, तो आउटर, तो उसका जो कुछ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और उठा सकता है।
1: पत्नी तो कितनी बार कहती है कि मेरी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, स्पेशली वी ऑलवेज से दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ग्रीफ।
2: यस, फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स। तो इसलिए हमने देखा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल माई थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स। तो जब भी हम रिएक्ट करें, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि रिएक्शन मतलब हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो आई एम सेइंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। लेट्स से मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये मौसम ऐसा क्यों है, मौसम रिस्पॉन्सिबल है मेरी तकलीफ के लिए। मौसम जैसा है वैसा है, मेरी तकलीफ का जिम्मेवार मैं हूँ और मैं जितना ईजिली चाहूँ उसको मैं हल्का कर सकता हूँ। सो जब भी रिएक्ट करें तुरंत स्टॉप करें, अपना वो 1 मिनट ब्रेक वहीं पर ले लें और अपने आप को याद दिलाएं कि ये जो मैंने रिस्पॉन्स अभी अभी क्रिएट किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल। सो लेट मी बी केयरफुल विद व्हाट आई एम चूजिंग एज माय रिस्पॉन्स। अब दूसरी चीज़ हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इवन वो जो बिलीव्स, वो जो परसेप्शंस जो मेरे अंदर पहले से ही डीप रूटेड हैं, उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि which means that I cannot even blame the past.
1: ये subconscious. Oh, आजकल तो इतना ज़्यादा बार बात ही करती है कि how I my subconscious reacts. मैं उसके लिए responsible नहीं हो सकता, मुझे पता ही नहीं चलता how I react.
2: Yes, क्योंकि हमारा जो action और reaction है वो बहुत ज़्यादा उस पर based होता है कि जो मैंने पहले अपने अंदर भरा हुआ है, कल की information जो भरी है, 10 साल पहले जो हुआ था, बचपन में जो हुआ था, हमारी आज जो पर्सनालिटी है, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ जो यू नो इन माय चाइल्डहुड क्या मेरे अंदर फीड हुआ, कौन से मेरे बिलीव्स, मेरे परसेप्शंस बचपन से जो बने हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पर आज मेरी पर्सनालिटी पर वर्क करते हैं। तो फिर हम तुरंत कहते हैं कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। यू नो फॉर एग्जाम्पल, आपका चाइल्डहुड किस वातावरण में था, आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको ब्रिंग अप किया, तो वो सब चीज़ें आपके बिलीव्स और परसेप्शंस को बनाता है। लेकिन इसका मतलब भी हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो अपने ही पास्ट को ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही ये है कि टू बी अवेयर कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर पास्ट में अक्यूमुलेट हुई हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है। वो जो आपने कहा ना सबकॉन्शियस, मतलब जो अनकॉन्शियस लेवल पर भरा हुआ है उसको मुझे अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा बिलीफ है, और फिर उसको चैलेंज करके उसको चेंज भी करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर मेरी जो आज व्यवहार है इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, तो भी तो बाय ब्लेमिंग द पास्ट देन आई एम कंटिन्यूइंग टू लिव इन द पेन कि आज मैं दर्द में इसलिए जी रही हूँ क्योंकि बचपन से मेरे साथ ऐसा हुआ. आई मेट अ लेडी हु वॉज फिजिकली अब्यूज्ड इन हर चाइल्डहुड एंड लगभग आई थिंक 25 या 30 साल उसने वो बात को पकड़ कर रखा हुआ था. एंड व्हाटएवर शी इज टुडे शी फील्स इट्स बिकॉज ऑफ हर पास्ट एंड वो कहीं ना कहीं उसमें से निकलने का तो प्रयास ही नहीं किया क्योंकि सोचा कि इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है. तो जो बिटरनेस है अंदर, जो दर्द है, हर एक को किस पर ब्लेम कर दिया कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ. तो मेरे अंदर ये बिटरनेस है कि ये जो दुनिया है ये अच्छी नहीं, रिश्ते जो हैं ये अच्छे नहीं. सो नाउ माई प्रेजेंट एंड माई फ्यूचर वो भी तो दर्द में ही चल रहा है. लेकिन अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ भी है जिसने मेरा कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नाउ टू चेंज. एंड रियली वाइल वॉचिंग दिस प्रोग्राम रेगुलरली, बिकॉज वो अपने ऊपर बहुत अच्छा मेहनत कर रही है इस प्रोग्राम को देखकर, और जिस दिन उसको ये समझ में आया कि मेरा जो दर्द है वो मैं क्रिएट करता हूँ, नो वन एल्स कैन हर्ट मी, शी जस्ट लेट इट गो लाइक दैट. Just like that. And after the program, she got up and she said, after 25 years today, I'm free. अब जो वो पास्ट में इंसिडेंट हुआ था वो तो 25 साल पहले की बात है, लेकिन आज एक मिनट में आपने अपने आप को उस दर्द से मुक्त कर दिया जब आपने रियलाइज किया कि ये क्रिएट कौन कर रहा है.
1: मैंने किया क्रिएट. लेकिन हम छोड़ते क्यों नहीं है सिस्टर शिवानी? अगर ये इतना आसान है तो हम उसको पकड़े, और हम में से हर कोई पकड़े रहता है पास्ट का नहीं तो आने वाले का डर या पास्ट का कोई ना कोई चीज को, और अगर हम टटोले तो हमने अभी भी पकड़ी हुई होंगे वो. हम क्यों नहीं छोड़ते?
2: कहीं ना कहीं हमें ये भी तो नहीं पता कि हमने पकड़ा हुआ है. हाँ. हमने सोच रहे हैं कि ये जो मैं दर्द, दैट इज वाई हम वो बात, मतलब भले वो बहुत रेपिटेटिव हो रही है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट एंड फीलिंग, ये आप दिन में जितनी बार भी अपने आप को बोलोगे वो कम है क्योंकि बार बार बोलने के बावजूद भी हम रिएक्ट करते हैं. तो अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया है लेकिन आज जो मैं दर्द क्रिएट कर रही हूँ वो तो फिर भी मेरी क्रिएशन है. अभी क्या हो रहा है जो आपने कहा हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम सोच रहे हैं मैं नहीं क्रिएट कर रहे. आपने किया ही ऐसा
1: कि मेरे को तो दर्द हो ही रहा है, मैं छोड़ ही नहीं सकती.
2: इट्स जस्ट दैट इट हैज टू हिट कि ये दर्द कौन क्रिएट कर रहा है? मैं क्रिएट कर रही हूँ, नाउ लेट गो.
1: और मैं क्रिएट कैसे कर रही हूँ? उस थॉट को बार बार याद करके, उस इंसिडेंस को याद करके.
2: एब्सोल्युटली.
1: एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, अगर हम देखें अपने साथ तो बार बार बार बार उस एक्सपीरियंस से हम गुजरते हैं, फिर वो सब कुछ जो हुआ उस टाइम पे वो सब,
2: तो हम बार बार उस दर्द से गुजरते हैं एंड कहीं ना कहीं फिर हमारे वो यू नो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो दर्द का पैटर्न, और वो एक होता है ना जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे लाइन आपने बनाई और उसके ऊपर बनाते गए बनाते गए बनाते गए, तो फिर वो कितना डीप हो जाता है वो. तो फिर वो लगता है कि अब ये हील नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसी थॉट को फिर क्रिएट किया, फिर क्रिएट किया, फिर क्रिएट किया. अब वो जो एक मिनट हमें स्टॉप करके पॉजिटिव करना है तो हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है, और उसको तो आप कितनी बार भी क्रिएट करते रहो, इट इज़ हेल्दी फॉर यू. लेकिन वो बार बार पास्ट का इंसिडेंट जो हम पकड़ते हैं, तो इसलिए पास्ट को भी कि नहीं मेरा बचपन ही ऐसा था, या मुझे तो कई बार कहते हैं मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है ना. See, so whatever I am today, it is because मुझे बचपन में यही सिखाया गया है, self responsibility, कि जो भी वो beliefs हैं जो बचपन से बने हैं आज उनको check करें. अगर उनमें से कोई ऐसा belief है जो दर्द के लिए जिम्मेवार है, stop, check, change. Even as simple as tension तो normal ही है ना. Now we have understood कि वो normal नहीं है. भले मुझे बचपन से सिखाया गया था कि exam से पहले tension तो होती ही है, result से पहले, तो ये मैंने सोचा normal है, normal है, normal है, but actually no.
1: लेकिन self responsibility is things which people say that no pain no gain.
2: Yeah, many people say this, no pain, no gain, because they feel कि जब तक वो दर्द का अनुभव नहीं करेंगे तब तक उनको खुशी का महत्व नहीं पता चलेगा. But it's a choice. I always ask those people कि क्या आपको स्वास्थ्य का महत्व तब पता चलता है जब आप बीमार पड़ते हैं? So do you want to say कि मैं healthy भी रहूँ लेकिन मैं बीमार भी पड़ती रहूं बीच बीच में, तभी मुझे पता चले डज एनीबडी एवर से दैट, तो फिर तो आप अपने शरीर का मत ध्यान रखो उतना ताकि बीच बीच में बीमार पड़ते रहो. डू यू एवर वर्क इन लाइफ विद दिस फोकस कि नहीं कभी कभी तो बीमार पड़ना चाहिए? हु एवर वर्क्स लाइक दैट, वी ऑलवेज से कि नहीं हमेशा हेल्दी रहना चाहिए. तो अगर शरीर हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, ये भी तो हमेशा हेल्दी रहना चाहिए. हाउ कैन वी से कि जब तक दर्द नहीं होगा
1: तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो. अच्छा, अनदर थिंग वाज विद सम पीपल से, बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे दर्द में रहना अच्छा लगता है, बट आई डोंट माइंड पेन.
2: या दैट्स बिकॉज आई डोंट सी एनी अदर वे टू कम आउट ऑफ इट. से वही बात होती है ना, जब कोई चीज से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमने अपने आप को उसी के अंदर फिट कर लिया है और हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है और उस दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है. एंड इट्स नॉट सम, आई थिंक लॉट ऑफ अस, हम में से मेजॉरिटी ने दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है. और कहीं ना कहीं आई फील विद अ प्रोग्राम लाइक दिस, दिस कम्स एंड हिट्स कि रियली इज देयर अ वे कि हम दर्द से भी बाहर निकल सकते हैं. हमने तो सोचा था ये बीमारी हमारे साथ
1: एंड तक
2: चलने वाली है. यू नो, हमने उस बीमारी को स्वीकार कर लिया था. अब क्या होता है, जैसे हम ऐसे कोई ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है ओ यस, बट देन द अदर थिंग दैट हिट्स इज कि वो सारा काम मुझे करना पड़ेगा.
1: वो चेंज मुझे होना पड़ेगा. आई मेट समबडी एंड शी सेड मुझे पता है मैं बहुत दर्द में हूँ लेकिन मैं इस थॉट को भेज जाने नहीं दे सकती. So what we can do is maybe create a positive thought.
2: That's all that we have
1: Let
2: to do.
1: Let that thought also stay. जो thought आपके पास है जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो गई है उसको भी रहने दे. लेकिन एक हम positive thought create करें.
2: Absolutely. इसलिए negative को खत्म नहीं कर पा रहे. It's okay. आप positive create करो. It's like you know वो कहते हैं कि एक बर्तन गंदे पानी से भरा हुआ है. आप उस बर्तन को खाली नहीं कर पा रहे. आप ऊपर से अच्छा पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ. Finally निकल जाएगा. सो यस, वी और परमात्मा आकर यही तो करते हैं. परमात्मा शिव बाबा ज्ञान की बूंद बूंद बूंद डालते जाते हैं. थोड़े समय के बाद वो बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो जाता है. अगर हम पहले वेट करें कि बुद्धि से सारे जो वाइसेस हैं, सारी जो नेगेटिविटी है वो पहले खाली हो और फिर ज्ञान उसके अंदर भरे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ज्ञान जितना भरता जाता उतना ये जो नकारात्मक और व्यर्थ बातें हैं वो अपने आप खाली होती जाती. तो जैसे वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स, वी कैन नॉट ब्लेम पास्ट आल्सो. उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है. और तीसरा जो आपने पहले ही कहा कि नो पर्सन इवेंट और सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस. अपनी खुशी की जिम्मेवारी, नहीं तो कोई ना कोई कंडीशन हमेशा बनी हुई है जिस ये होगा तो मैं खुश रहूंगा. इवन इन यू नो व्हेन पीपल सी देयर पर्पस ऑफ लाइफ तो वो कहेंगे मुझे ये गोल अचीव करना है, ये मेरा अम्बिशन है, मुझे ये बनना है, जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा. व्हाट डज दैट मीन? मतलब आप इतना टाइम दर्द में रहेंगे और फिर एक साल के बाद या पांच साल के बाद जब आप उस एम्बिशन को अचीव कर लेंगे तब आप खुश होंगे? इट विल नॉट बी पॉसिबल. अगर आपने पूरा प्रोसेस ही दर्द में बिताया एंड फिर आप खुश होंगे? सो परमात्मा कहता है खुश होंगे नहीं, खुश रहकर आप उस गोल को अचीव करेंगे. दर्द में जाके सीढ़ी नहीं चढ़नी है. सीढ़ी के एंड पर पहुंच तो जाएंगे आप अपने लैडर में जो आपने अपने लिए सेट किया, लेकिन इमेजिन अगर आपको एक एक स्टेप दर्द में चढ़ना पड़े तो हाउ विल बी द क्लाइंब?
1: ओहो, इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट. इन फैक्ट इट्स जस्ट वन चेंज ऑफ थॉट. एक परसेप्शन है तो चेंज करना है.
2: That I have to be happy and do this. अब अगर ये जो हमारा ladder है of goals and ambitions, अगर हम एक एक step दर्द में चढ़ें तो शायद जब हम ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच भी जाएंगे, how will the feeling be?
1: We'll be too tired to enjoy that.
2: So we will not really enjoy. और फिर वहां पहुंचने के बाद तब तक हम अपना next goal set कर देंगे और फिर दर्द में चलेंगे. और इसीलिए हमने इस सीरीज की, इस प्रोग्राम की शुरुआत ही इस बात से की थी कि happiness is not the destination. Happiness is the जर्नी. तो खुशी को व्यक्तियों पर भी नहीं डिपेंडेंट करना है, इवेंट्स पर, सिचुएशंस पर. हम लोग आज अगर सारा दिन में चेक करें ना, हमने बहुत चीज़ों पर डिपेंड किया हुआ है. मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे तो खुशी होगी, प्रमोशन होगा तो खुशी होगी, या छोटी, इवन छोटी छोटी बात. अगर बहन ने सारा दिन में खाना बनाया, बहुत अच्छी तरह से मेहनत की, रात को मेरे हस्बैंड आएंगे वो आकर अप्रिशिएट करेंगे कि खाना बहुत अच्छा बना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी. तो द होल डे वाइल कुकिंग द फूड शी क्रिएट्स दैट सीन, यू नो दैट माई हस्बैंड विल कम इन द नाइट, ही विल अप्रिशिएट द फूड एंड शी इज़ वेटिंग कि जब ये सीन होगा शी विल बी वेरी हैप्पी. अब वो आए, वो अपने किसी मूड में है या अपनी किसी टेंशन में है, चुपचाप खाना खा लिया, कुछ बोला ही नहीं, खुशी कहाँ गई.
1: और वो वेट ही चलती रह गई फिर.
2: Then, और अब वो अब वो दर्द हो गया. तो आपने सारा कुछ तो किया.
1: अच्छा, और सबसे बड़ी बात है आप उनको ये तो कह नहीं पाते कि आपने अप्रिशिएट नहीं किया, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि खुद को ही नहीं पता चली ये बात.
2: वो भी कह देते हैं, हम तो कई बार आपने बोला भी नहीं, मैंने सारा दिन इतनी मेहनत की, आपने ये भी नहीं बोला कि खाना अच्छा है. तो आप देखो मेरी खुशी कितनी छोटी छोटी चीजों पर डिपेंडेंट है कि जब तक आप नहीं ये बोलोगे कि ये खाना अच्छा बना, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी. आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी, लेकिन जब तक चार लोगों ने ये नहीं बोला कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, तब तक वो खुशी का अनुभव नहीं हो रहा. सो आई कीप वेटिंग कि कौन अप्रिशिएट करेगा, कितने डिपेंडेंट. और फिर अगर चार लोगों ने बोल दिया बहुत सुंदर है, लेकिन किसी एक ने बोल दिया
1: कि नहीं सूट खराब है, ओफो, यस,
2: हाउ मच माई स्टेट ऑफ माइंड इज एवरी टाइम डिपेंडेंट.
1: और कितनी क्षण भंगुर है, मतलब कितनी देर के लिए है, इट्स जस्ट देयर एंड देन गॉन, टच एंड गो.
2: सो दिस इज नॉट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अगेन डिपेंडेंसी, कि हमेशा किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है. और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये कि जैसे हमारी मन की स्थिति का कोई भी जिम्मेवार नहीं है, औरों की मन की स्थिति के हम जिम्मेवार नहीं है. दिस इज वेरी वेरी very important.
1: When we get into so much of guilt,
2: yes,
1: कि मेरी वजह से उसको ऐसा हो रहा है, कि मैं ये कर देता हूँ या मैं कुछ ऐसे भी, उफ, yes, so many times even children, कितनी बार देखा गया है grown up children सिर्फ ये कि मेरी माँ को अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे act करूँ, वो act करते हैं. स्पेशली लड़के और मदर के जो रिलेशनशिप में देखा है, मतलब जो कितनी बार की उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने हमारे इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, तो मैं उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा ये करता.
2: सो मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज के अगर कोई हमारे सामने दर्द में है, परिवार का, फैमिली, कोई मेम्बर या ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं वो यू नो इमोशनल ब्लैकमेल जो वर्ड हम यूज़ करते कि वो अपने इमोशंस के साथ हमें थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं, आपकी वजह से मैं ये दर्द में हूँ, आपकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है. और जब मुझे कोई बार बार ये कहता है कि आपकी वजह से मैं दर्द में हूँ, आपकी वजह से मैं दर्द में हूँ, मैं दर्द में चले जाती हूँ.
1: अरे so मैं सोचने लग जाती हूँ, मैं yes. मान लेती हूँ, इवन इफ आई नो कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ, आई जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि शायद आई एम रिस्पॉन्सिबल.
2: सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन एल्सेस पेन और फॉर एनी वन एल्सेस हैप्पीनेस. Like no one else is responsible for my pain and my happiness, I am not responsible for anyone else's pain or anyone else's happiness. हाँ भले हम अपने संबंधों में जितनी हमारी कैपेसिटी हम सब कुछ करें, लेकिन इस बात से दर्द में चले जाएं कि दूसरा मेरी वजह से दर्द में है, क्योंकि सिर्फ वो ऐसा कह रहे हैं. वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद नहीं जानते,
1: उनको नहीं पता है, बिल्कुल यस,
2: वो खुद नहीं जानते. लेकिन उनको हेल्प करने की बजाय हम ही विक्टिमाइज हो जाते हैं कि वो दर्द में इसलिए हैं क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया. अगेन वी विल हैव टू रिमेम्बर, मैंने जो किया वो तो किया, लेकिन उनका दर्द किसने क्रिएट किया, वो उन्होंने किया. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इससे हमारी जो कहें ना स्टेट ऑफ माइंड बहुत हल्की हो जाती है. दिस डज नॉट मीन कि हम इनसेंसिटिव हो जाएं. अगेन देर इज ऑलवेज अ थिन लाइन. लेकिन हम दर्द में ना चले जाएं ये सोचकर कि औरों का दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम दर्द में चले गए ये सोचकर फिर हम उनको क्या ट्रांसमिट करेंगे.
1: जहां हम खुद दर्द में चले जाते हैं और वो दर्द में है, तो हम उनकी हेल्प ही नहीं कर पाते. बिल्कुल
2: एब्सोल्युटली,
1: क्योंकि हम तो गिल्ट में चले गए.
2: तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किस चीज के लिए नहीं है. अब आप देखो वी एक्चुअली वर्क द अदर वे अराउंड सारा दिन. हमें लगता है हम अपनी मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन औरों की मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल.
1: मैंने उसको दुख दे दिया, मैंने उसको खुशी दी, मैंने उसको हर्ट किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ.
2: तो द होल फ्लो ऑफ एनर्जी गोज द अदर वे अराउंड. हम समझते मेरी मन की स्थिति के जिम्मेवार और लोग हैं और औरों की मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं हूँ. वेयर इज द इक्वेशन इज टोटली द अदर वे अराउंड. अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं, आई हैव टू रिमेंबर दैट, एंड आई हैव टू रिमेंबर कि औरों की मन की स्थिति के जिम्मेवार वो है. तो अगर वो किसी टर्मोइल से गुजर रहे हैं, उनको उस पर वर्क करना पड़ेगा. दैट इज़ गोइंग टू बी देयर जर्नी. मैं उसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ उनके लिए, दैट इज़ ओके, बट फाइनली मैं किसी को दर्द से मुक्त नहीं कर सकती. दे विल हैव टू डू दैट. फॉरगेट एनीवन एल्स. माई पर्सनल एक्सपीरियंस वुड से कि इवन गॉड कैन नॉट फ्री मी फ्रॉम माई पेन जस्ट बाय मैजिक. आई कैन यूज़ हिज पावर, यूज़ हिज नॉलेज टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम माई पेन. बट इफ़ ही वॉन्ट्स कि ही शुड फ्री मी फ्रॉम माई पेन, नो ही कांट, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर मी.
1: ओ, अगर मैं पकड़ के बैठी हुई होंगी उस थॉट को, सिस्टर शिवानी, अगर मैंने छोड़ना ही नहीं है उस पूरे थॉट प्रोसेस को, तो कोई सचमुच में भगवान भी आके नहीं कर सकता.
2: एग्जैक्टली. तभी कहा जाता है कि भगवान भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो और मनुष्यात्मा क्या करेगी. भगवान भी ना हमें दर्द से मुक्त कर सकता है और ना परमात्मा हमें खुशी दे सकता है. परमात्मा हमें शक्ति दे सकता है उसको जेनरेट करने की. परमात्मा हमें नॉलेज दे सकता है कि मुझे कैसे क्रिएट करना है, लेकिन परमात्मा ऐसे ही दे दे, इट डजंट हैपन. व्हाई? बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग, नॉट गॉड एंड नॉट एनी अदर ह्यूमन बींग. जिस दिन ये लाइन पूरी यहाँ पर अच्छी तरह से फिट हो जाए, द वे ऑफ लुकिंग एट एवरीथिंग चेंजेस. एब्सोल्युटली. एंड फिर सारा कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाता है.
1: अच्छा, लेकिन एक अगर हम सिचुएशन लेते हैं, अगर हम देखें कि हमें खुशी जो हमारा क्रिएट, मैंने ही क्रिएट किया, अगर अब मैं देखती हूँ तो, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी थी और उसने मुझे खुशी दी या मुझे दुख देना शुरू हुआ, मेरा ये मन करता है कि सिचुएशन बदल जाए तो मैं जो है खुश हो जाऊंगी. तो यहाँ मैं परमात्मा से ये एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि वो सिचुएशन बदल देगा.
2: yeah. परमात्मा से भी जो मदद लेनी है वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए नहीं.
1: बेसिकली तो यही करते हैं.
2: तो सारा दिन भगवान के आगे अर्जी कौन सी डालते हैं, यही तो करते हैं. मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये, उनको ठीक कर दो, ये भी अर्जी डालते हैं. मुझे शक्ति लेनी है और मुझे अपने ऊपर काम करना है. तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है तो परमात्मा की मदद हमेशा साथ में है. सिर्फ अर्जी डालेंगे कि सिचुएशन चेंज कर दो, इट विल नॉट हैपन.
1: अच्छा, और इनफैक्ट मैं तो ये कभी समझ ही नहीं पाती थी कि अपनी मदद कैसे करनी है. मदद तो हमेशा दूसरों की करनी होती है. तो ये, यू नो, दिस इज लाइक, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल थिंक दिस वे कि अपनी मदद मैं कैसे करूं, मतलब अपनी मदद क्या करनी है.
2: True.
1: मदद तो हमेशा दूसरे के लिए करनी होती है, लेकिन यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले मदद तो अपनी करनी है.
2: अपनी ही, हर एक अपनी ही कर सकता है. क्यों आप कह रहे हैं कि दूसरों की करनी है? क्योंकि हमने सोचा कि हम दूसरों की थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करते हैं. यू नो, इवन सिंपल, लाइक सपोज मैं किसी बात से हर्ट हूँ तो मैं जाकर दो चार लोगों से बात करती हूँ, आपको पता है मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, एंड आई फील के वो जो मेरे से फॉर अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगी. लेकिन उन्होंने मुझे नहीं ठीक किया, उन्होंने जो शेयर करना है वो किया. अब मैंने क्या किया? इफ़ आई हैव द पावर, आई टेक दैट पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन एंड देन आई वर्क विद इट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इवन दिस प्रोग्राम या परमात्मा का हर एक महावाक्य जो हम इस पर शेयर कर रहे हैं, सुन तो सभी रहे हैं ना, लाखों की संख्या में सारे विश्व में आत्माएं इस ज्ञान को सुन रहे हैं, लेकिन हर एक के ऊपर मैजिक तो नहीं हो रहा ना कोई कि सुनने से ही वो काम हो जाएगा. अब हर एक उसको लेकर अपने साथ क्या करता है, क्रिएट तो उसी को करना है. तो ऐसे ही जब हम किसी के पास जाते हैं कि मुझे राय दो कि हाउ टू आई कम आउट ऑफ दिस, वो सिर्फ राय दे सकते हैं, बाकी काम वो तो मुझे करना होगा. हम काउंसलर के पास जाते हैं, हम साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम फ्रेंड्स के पास जाते हैं कि दे विल हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माई पेन. नो, नो वन कैन हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माई पेन. दे कैन से वट दे वॉन्ट, दे कैन शेयर वट दे वॉन्ट, दे कैन ट्रांसमिट पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो, बट फाइनली आई विल हैव टू कम आउट ऑफ माई पेन. तो अनलेस आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ माई पेन, the whole world put together cannot do anything. ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा, और ये काम बहुत ईजी हो जाएगा जब समझ में आ जाएगा आई एम द क्रिएटर. आई एम द क्रिएटर, सो आई एम द डिस्ट्रॉयर. ये दर्द मैंने क्रिएट किया था तो इसको खत्म भी
1: मैं ही मुझे कर सकता हूं. मेरे अपने ही हाथ में है. तो आप में से जितने भी लोग दर्द से गुजर रहे हैं, कई बरसों से, कई सालों से या कुछ टाइम से, अभी वक्त है कि आप अपने आप से कहें कि मैंने क्रिएट किया है तो मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ. और आज ही प्रयास करें कि हम उसे ख़त्म कर देंगे. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. जो आज हमने बात की है, जिस तरह से बातें क्लियर होती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी अपनी है। कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उस जिम्मेवारी को उठाना है, मदद जो लेनी है मुझे वो अपनी लेनी है। और जो एक बहुत आपने आज जो बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है हमारे सभी दर्शकों के साथ कि दूसरे के दर्द के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मुझे जिम्मेवारी अपने दर्द की उठानी है या अपनी खुशी की उठानी है। इसीलिए दूसरे की को ना मैं खुशी दे सकता हूँ ना मैं उसको दर्द दे सकता हूँ, उसका दर्द भी अपना क्रिएट किया हुआ है। तब हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे, इस पर हम आगे आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत अपने होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: आप सबसे भी बार बार हम यही आग्रह करते हैं, ये प्रोग्राम आपका अपना है। जहाँ कोई ऐसी बात लगती है कि जो नहीं समझ में आ रही, लगता है कि ये कैसे संभव हो सकती है, या फिर आपको लगता है नहीं बात तो अच्छी है, सही बात है, पर मैं इसको लागू कैसे करूँगा, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आप ही का जो रिस्पॉन्स आता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप ज़रूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और हमारे साथ शेयर करें कि आपको कहाँ लगता है कि बात समझ में नहीं आई है, या प्रैक्टिकल अनुभव में जब आप कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी साथ साथ कोशिश करती हूँ, जैसे हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ रुकते जाएंगे वहाँ हम उसको आगे लेते जाएंगे। बहुत सी बातें अभी और करनी है, लेकिन आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप अपना फीडबैक भेजें। आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और सेल्फ मैनेजमेंट की पहली जो सीढ़ी है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि मैं स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो जाता हूँ, जिम्मेवार हो जाता हूँ। ये जिम्मेवारी आप उठाना चाहते हैं, बिल्कुल आप उठाएंगे तभी वो परिवर्तन संभव हो पाएगा। आज आपसे हम विदा लेते हैं। शांति।

0: जीएसटी दिवस भी आज है। तो आज ही के दिन विशेष जीएसटी का आगाज हुआ था, तो जीएसटी दिवस भी आज के दिन मनाया जा रहा है। तो आइए कुछ त्योहारों का ये जी प्रोफेशनल त्यौहार से आज वैसे हम मनाते हैं वैसा नहीं है, लेकिन वन उत्सव हम सब के लिए ख़ास है। तो वन उत्सव के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा मैं। वन उत्सव ये भारत में हर वर्ष जुलाई माह के पहले हफ्ता में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। ये उत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ वन उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार। मैं जी नमस्कार
0: जी, बोलिए कैसे हैं
1: आप? गजानन जी का भजन है सर।
0: हाँ,
1: जो गजानन के दावे ये सब चुप है, वही पालन होगा, शंकर भगवान ही पालन हार है, ये सब भजन है सर। ये हो जाएगा, अच्छा रहेगा, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आइए वन उत्सव के बारे में बातें कर रहा था, और ये वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किए जाने वाला ये दिन है। और 1960 के दशक में ये पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन था। तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था, क्योंकि विनाश से बचने के लिए वृक्षारोपण योजना का विशेष रूप से सम्मान किया जाए और इसका अधिक से अधिक प्रचार हो और इसके ऊपर अधिक से अधिक काम किया जाए। तो वन महोत्सव का नाम देकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़कर भू आवरण को वनों से आच्छादित करना एक अच्छा नया प्रयास है। और यद्यपि ये कार्य एवं नाम देना ही नहीं नया नहीं है, हमारे पवित्र वेदों में भी इसका उल्लेख है। गुप्त वंश, मौर्य, मुगल वंश में भी दिशा में सार्थक प्रयास किए गए थे और इसका वर्णन इतिहास में उल्लेखनीय कार्य करता है और बताता है। 1947 में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद संयुक्त तो प्रयासों से देश की राजधानी दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया गया। और कार्य की विविधता नहीं रख सके ये पुनित कार्य 1950 में शुरू किया गया कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी द्वारा संपन्न हुआ। आज भी हर साल वन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वन उत्सव सामान्यतः जुलाई अगस्त महीने में मानकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाता है। वर्षा काल में ये चार महीने के पौधे थोड़े से प्रयास में अपने बड़े जड़े जमा लेते हैं और फिर धरती हरा भरा हो सकती है, इसी उद्देश्य से ये दिन मनाया जाने लगा। तो आइए आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ और उसके बाद फिर बात करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आपके लिए। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। साथियों, आज एक और नई कहानी आपके लिए। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। हर सुबह अर्जुन अपने पिता के साथ चाय बेचने जाता और फिर स्कूल जाता। कई बार उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। अरे चाय वाले, आज कितने कप बेचे? ये बातें अर्जुन के दिल को चोट पहुंचाती थी, लेकिन वो चुप रहता था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चों में से कुछ कुछ, किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर, और जब अर्जुन की बारी आई तो उसने कहा, मैं अपने गांव की गरीबी खत्म करना चाहता हूं। अब इस बात पर पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन शिक्षक ने उसकी आंखों में एक अलग चमक देखी थी। शिक्षक ने सभी बच्चों को शांत कराया। उन्होंने कहा, सपने बड़े होने चाहिए, लोग हंसेंगे तो समझ लेना कि सपना सही दिशा में है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। दिन में स्कूल, शाम को चाय की दुकान और रात में पढ़ाई, ये उसका क्रम बन गया। कई बार बिजली चली जाती तो वो सड़क के लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। सालों बीत गए और एक दिन उसने सरकारी परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव खुश था, लेकिन अर्जुन का सपना सिर्फ नौकरी पाना नहीं था। नौकरी मिलने के बाद उसने गांव लौटकर एक नई पहल शुरू की। छुट्टियों के समय गांव आता और गांव के लोगों से बात करता। उसने गांव के युवाओं के लिए फ्री कंप्यूटर क्लास शुरू की, गरीब बच्चों के लिए किताबों की व्यवस्था की, महिलाओं के लिए रोजगार परीक्षण शुरू करवाया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले बेरोजगारी थी, वहां छोटे छोटे व्यवसाय शुरू हो गए। जहां निराशा थी, वहां उम्मीद दिखाई देने लगी। एक दिन वही लोग जो कभी अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, उसके पास आए और बोले, अर्जुन हमें माफ कर दो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर आप लोगों ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया होता तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता। उसकी ये बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। साथियों, जीवन में परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं बनाती। आपका साहस, आपका संघर्ष और आपकी सोच आपकी पहचान बनाती है। अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो निराश मत होइए। हो सकता है वही लोग कल आपकी सफलता की कहानी सुनाएं। याद रखिए, किसी भी इंसान की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका अंत कितना बड़ा होगा ये उसके सपनों और मेहनत पर निर्भर करता है। तो आज से अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, क्योंकि एक चाय बेचने वाला लड़का भी पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। साथियों, आशा करूंगा आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर भेजिए हमें, और साथ ही साथ अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।

0: आत्मा को छू ले।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज विशेष वन उत्सव महोत्सव जो है शुरू हो गया है, तो वन महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ आइए, भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस भी आज है और 1 जुलाई को विशेष रूप से मनाया जाता है। भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आधुनिकरण नाम बदलकर इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया। अपने स्थापना काल में भारतीय स्टेट बैंक ने कुल 480 कार्यालय थे, जिसमें शाखाएं, उपशाखाएं तथा 3 स्थानीय मुख्य कार्यालय शामिल थे, जो इंपीरियल बैंकों के मुख्यालयों से बना गया था। तो इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक नाम से विशेष रूप से भारत सरकार ने इसे टेक ओवर किया। और भारतीय स्टेट बैंक भारत देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक और सबसे पुराना बैंक है। इसे एक अनुसूचित बैंक भी कहते हैं। 10,000 शाखाओं और 8,500 ATM के नेटवर्क वाला भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। तो ये थी कुछ खास बातें, आज विशेष स्टेट बैंक स्थापना दिवस है जिसकी आपको शुभकामनाएं। आइए, एक बहुत ही प्यारा सा गीत बुराराम जी ने याद किया है और सभी को याद भेजा है उन्होंने। रेडियो मधुबन को सुनते हुए उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और चलिए, बुराराम जी और आप सभी के लिए ये बहुत ही प्यारा सा भक्तिमय गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में, लोफर इस एल्बम का, अभी आपके लिए सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बड़ा ही प्यारा सा गीत आपने सुना। आशा करूँगा आप सभी को बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी आज है, तो पृथ्वी पर मानवों का भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों को समर्पित ये दिन है। अलग अलग देशों में ये दिवस विभिन्न तिथियों पर मनाया जाता है और भारत में चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस खास दिन पर पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बिदन चंद्र राय को भी याद किया जाता है। बिदन चंद्र राय देश के मुख्य आज़ादी सेनानी होते हुए भी साथ साथ एक डॉक्टर भी थे। आज़ादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों के लिए चिकित्सा सेवा को समर्पित कर दिया। बिदन चंद्र राय की स्मृति में ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। चिकित्सकों को समर्पित ये दिन महत्व रेखांकित करने की आवश्यकता है कि अमेरिका के जॉर्जिया निवासी डॉक्टर चार्ल्स बी आलमोद की पत्नी विशेष ब्राउन आमोद ने महसूस की थी कि उनके प्रयासों से ही पहली बार 30 मार्च 1930 को अमेरिका में डॉक्टर्स डे चिकित्सा दिवस मनाया गया। इस दिन को मनाने के पीछे चिकित्सकों का दैनिक जीवन में महत्व बताने की भावना मुख्य थी और इसके लिए 30 मार्च की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वह जॉर्जिया में इसी दिन डॉक्टर कैल्फोर्ड डब्ल्यू लेंग ने पहली बार ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया था, इसलिए तब से वहां पर 30 मार्च को चिकित्सा दिवस मनाने का चलन शुरू हो गया था। और फिर उसके बाद भारत में भी इसका प्रयोग किया गया और फिर आज उनके चिकित्सकों को समर्पित ये दिन मनाया जा रहा है। आप सुन रहे हैं रिमोट 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: करे करे
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए बात कर रहे थे हम लोग विशेष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के बारे में, और भारत में चिकित्सा दिवस को अलग अलग देशों में चिकित्सा दिवस अलग अलग तिथि को मनाया जाता है, और भारत में 1 जुलाई के दिन चिकित्सकों के लिए समर्पित यह दिन है। 1991 से भारत में इस दिन को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, और 1 जुलाई को देश के मुख्य चिकित्सा स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों ही 1 जुलाई 1882 को बिहार में जन्मे चंद्र राय भारतीय आज़ादी के संग्राम के एक ऐसे अहम सिपाही रहे हैं। आज़ादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन व्यावसायिक यानी चिकित्सा सेवा को समर्पित कर दिया। पश्चिम बंगाल में अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान उन्होंने कई अहम कार्यालय विकास कार्य किए, और अपने अथक प्रयास और समाज कल्याण के कार्यों के लिए उन्हें 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1 जुलाई 1962 को उनका निधन हुआ, और इन्हें भी विशेष रूप से याद रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनका जीवन पूरी तरह से बाद में चिकित्सा सेवा के लिए समर्पित हो गया था। और चिकित्सा धरती पर भगवान का दूसरा रूप चिकित्सक के रूप में याद किया जाता है। तो एक बार जीवन देता है, किंतु डॉक्टर हमारी अमूल्य जान को बार बार बचाता है। तो इसलिए दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां डॉक्टरों ने भगवान से भी बढ़कर काम किया है। बच्चे को जन्म देना हो या फिर किसी वृद्ध को बचाना हो, चिकित्सा की मदद से हमेशा मुसीबतों से मानव को बचाता रहा है। और यही एक ऐसा पेशा है जहां दवा और दुआ का अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो है ना कमाल की बात। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर जी आर नई किरण, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्ते,
1: गुड मॉर्निंग, ओम शांति जी, ओम शांति जी। बोलिए। नहीं, अभी तो आवाज आ रही थी उनका, गुड़ीलाल जी का तो लग गया था फोन।
2: नहीं, अभी नहीं आ रही, मेरे तो पता नहीं, मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन कुछ बोलते नहीं, आवाज ही नहीं आ रही।
1: ठीक है, ठीक है, बताइए कैसे हैं आप?
2: बस अच्छा, बिल्कुल बेटा है, काम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको।
1: जी जी जी जी।
2: और डॉक्टर दिन है आज।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: डॉक्टर की दिन की शुभकामनाएं। देखो आज सर डॉक्टर नहीं होता तो कई सारी बीमारियों से हम कैसे जुड़ पाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आज देखो, आज पता नहीं, आज जहाँ देखो वहाँ डॉक्टर का जो अस्पताल है पूरा भरा हुआ दिखता है। जहाँ देखो वहाँ
1: डॉक्टर ही डॉक्टर,
2: डॉक्टर ही डॉक्टर, और पेशेंट ही पेशेंट। और पेशेंट भी इतना है, डॉक्टर के जो अंदर कंपाउंड है बहुत भीड़ रहती है, और बीमारियां भी इतनी बढ़ गई हैं। जैसे परसों हमारे जो कमलेश जैन जी ने बताया था, कई सारी बीमारियों हम खुद निकाल सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कर बैठे, लेकिन आज वो कोई कर रही नहीं ना सर, किसी को ऐसे करने की आदत ही नहीं हुई है। और बस कुछ हुआ, सिर दुखा, तुरंत अस्पताल, कुछ पैर में चोट आई तो तुरंत अस्पताल, थोड़ा सा बुखार आया तो थोड़ा अस्पताल, ऐसा हाल हो गया है। क्योंकि आज दर्द को सहन करने को तैयार नहीं है, थोड़ा सा कुछ शायद कुछ हुआ तो चलो डॉक्टर के पास चले जाए, ऐसा हो रहा है। तो मैगी गोलियों खाते हैं, और क्या करे। मैं बताऊं सर कि हमारे परिवार में एक लोगों को 50 रुपये की गोली दी। अरे भाई, इतनी गोली मैगी, 50 रुपये की गोली के क्या होगा, इसलिए 6 गोली उतारी थी वो डॉक्टर ने। तो 50-50 रुपये की गोली दो टाइम देना, तो 100 रुपये से गोली हो गई रोज की। तो ये गोली कैसा दर्द मिटाएगी या और दर्द नया करेगी, ये तो
1: भगवान जाने।
2: नहीं, भगवान नहीं, अपन ही जानते हैं कि इतनी मैगी जो दवा खाएंगे तो एक दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरा दो दर्द सामने खड़े हो जाएगा। ऐसा हाल है सर। तो चलो कोई बात नहीं, सभी हमारे मित्रों को आपको आज के दिन की शुभकामनाएं। बुधवार है, सभी लोग गणपति जी की कृपा बनी रहे, और बस हो सके तो गणपति जी का गाना आप तक की तरफ से सुना देना हमको।
1: हाँ जी, हाँ जी,
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी याद करने के लिए, और रेडियो का फ़ोन शायद बंद आ रहा है ये आपने बताया, लेकिन गुड़ियालाल जी का, बुराराम जी का फ़ोन आया था, तो पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ एक बार हम लोग बात करके।
0: जाती है बातें मुलाकातें।
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM पर नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और 8:52 हो रहे हैं। तो चलिए, चिकित्सा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चिकित्सक एक ऐसे गरीबों की अगर सेवा करता है तो मान सम्मान सब कुछ मिल जाता है। और जीवन के चुनिंदा विशेष रूप से याद किया जाता है। तो मुझे लगता है घंटी अभी बज रही है, तो शायद हमारे सुरेश जी का वहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी आप एक बार फिर से ट्राई करके बताइए फ़ोन आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चिकित्सा दिवस की कुछ ख़ास बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा और एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ भी आपको ले चलता हूँ। अभी सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और किस्मत के भरोसे मत बैठो, ये उन्होंने कहा है। और धरती जो है हम सब की माँ है और हम धरती के लाल है। धरती के साथ जितना जुड़ाव रखेंगे उतना हम स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहेंगे। कई बार हम लोग अपनी धरती से ही अपना जुड़ाव कम कर रहे हैं। मिट्टी में जाने से हमें डर लगता है, मिट्टी से हम दूर रहने की कोशिश करते हैं, कपड़े गंदे हो जाएंगे, पैर मैले हो जाएंगे, इस तरह की बातों से हम जो है अपने आप को दूर कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारे जीवन को, हमारे मनोस्थिति को और हमारे सेहत को समृद्ध करती हैं। हेलो जी, नमस्कार
1: जी। सर नमस्ते,
0: जी बोलिए सर, कैसे हैं? बढ़िया। हाँ हाँ,
1: कॉल लग गया है।
0: हाँ, वो थोड़ा बहुत रहता है इसका आगे पीछे,
1: कहीं हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्ते
0: नमस्ते, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जी जी, तो आइए, ये थे सुरेश जी जोटाना से, जो फिर से एक बार फ़ोन करके चेक कर लिया उन्होंने कि क्या सचमुच स्टूडियो का फ़ोन चालू है या बंद है। तो चलिए, स्टूडियो का फ़ोन तो चालू हो गया है और आप लोगों को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। चिकित्सा दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो गरीबों का इलाज लेकर आज भी जो है कई देशों में, कई राज्यों में जो है फ्री इलाज हो गया। जैसे आयुष्मान भारत, ये एक कार्ड सिस्टम शुरू हो गया, जिसका कार्ड बन जाता है तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है सुविधाजनक हो जाती हैं और उनका इलाज तुरंत भी हो रहा है। तो ये चिकित्सा जगत में एक नया कदम जो है बड़ा सा लिया गया है। वर्तमान में भारत में गरीबों के इलाज की हालत बहुत ख़राब थी और अभी धीरे धीरे उसमें सुधार आते गया है और पढ़े लिखे चिकित्सा दर दराज के गांव तक जाना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से सरकारी नौकरी के लिए एक वक्त हिंदुस्तानी जनता पूजा पाठ करती थी। कैसे सरकारी चिकित्सकों की कुर्सियां छोटे से छत्तीसगढ़ में सैकड़ों की संख्या में खाली पड़ी हुई है। भारत में चिकित्सकों के संगठन और चिकित्सा शिक्षा के लिए बनाई गई सरकारी संस्थान, इन दोनों ने छत्तीसगढ़ में 3 साल की चिकित्सा शिक्षा का घोर विरोध किया था और अदालत तक दौड़ लगाकर कोर्स को खारिज करवाने की दम लिया था। लेकिन आज सरकारी चिकित्सा कॉलेजों की गिनी चुनी सीटों के अलावा निजी मेडिकल कॉलेज में 10-10 20-20 लाख रुपए का कालाधन देकर एक बच्चे को दाखिला किया जाता है। लाखों रुपए साल की फीस के बाद 10 वर्षों बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन बनकर निकलता है। ऐसे चिकित्सक किस तरह गाँव में या गरीबों के बीच में जाकर काम कर सकते हैं? ना तो उनके वक्त की और ना ही लंबी उनकी पूंजी की लागत निकलेंगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में लगभग अशिक्षित और अल्प शिक्षित महिलाओं को मितानिन बनाकर कुल 1.5 दर्जन दवाओं से रोज़मर्रा की तकलीफ़ों का इलाज शुरू करवाया गया। इस राज्य ने गांव-गांव की तस्वीर बदल दी। यहां के गांव में शिशु मृत्यु दर इतनी गिर गई कि पूरी दुनिया में इस मॉडल की तरफ उम्मीद की नज़रों से देखना शुरू किया गया। ऐसे में चिकित्सा को सिर्फ MBBS चिकित्सकों का ही एक अधिकार बनाकर रखना ठीक नहीं है। लोकप्रिय हो गई एलोपैथिक पद्धति में 3 बरस का कोई कोर्स दोबारा शुरू करना चाहिए, जो कि गांव और गरीबों के काम आ सके। MBBS चिकित्सकों को अपनी शहरी संपन्न और कुलीन सोच को छोड़कर गरीब की हकीकत को देखना भी चाहिए। तो चिकित्सा जगत में ये भी एक बड़ी विडंबना है कि जो लोग चिकित्सा जगत में जाते हैं वो 5 से 6 साल 10 साल का पढ़ाई करते हैं। इतना लंबा पढ़ाई करने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद, तो निश्चित तौर पे वो गरीबों के देश में या गांव के दूर दराज गाँव में जाकर इलाज तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पैसे भी नहीं निकलेंगे, है ना। तो इस वजह से ये लोग शहर में बस जाते हैं और अपनी कमाई करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इस बात का छत्तीसगढ़ सरकार ने विरोध किया और बहुत सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ पर एक ऐसा मॉडल उन्होंने तैयार किया जिससे वहाँ का जो है बच्चों की मृत्यु दर बिल्कुल कम हो गया। और ये मितानिन बनाकर कुल 1.5 दर्जन दवाओं से रोज़मर्रा की तकलीफ़ों का इलाज वहाँ पर शुरुआ कर इस राज्य में गांव-गांव की तस्वीर जो है बदल दी और यही मॉडल पूरे वर्ल्ड में लोकप्रिय भी हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को ले चलते हैं एक और सुंदर गीत। अब वक्त हो गया है, गीत नहीं सुनाएंगे, गीत तो बाद में भी सुनाएंगे, लेकिन वक्त हो गया समाचारों का और समाचार डाउनलोड हो गया है, तो सीधे चलते हैं समाचारों की तरफ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
3: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
5: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
6: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
7: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
8: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली

0: पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
4: जैसा अन्न वैसा मन। तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे

0: मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अनसात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और 1 जुलाई 2026 आज का तारीख है। भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत है और डॉक्टर्स डे है आज। तो आइए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर्स डे के बारे में आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए एक और खूबसूरत भजन आपको सुनाते हैं अभी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, आज जीएसटी दिवस भी आज है और जीएसटी दिवस की बातें करते हैं। 1 जुलाई को मनाया जाता है पुरानी अप्रत्यक्ष पर कर व्यवस्था की जगह वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को देश में लागू हुआ था। नई व्यवस्था लागू होने की खुशी में हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो सबसे पहले 1 जुलाई 2018 को जीएसटी लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाई गई। तो आशा करूंगा आप सभी को जीएसटी पर हुई बहस और उसके बाद हुआ ये खास दिन, इसके लिए कितनी सारी मकसद हुई थी उसके बारे में आप सभी को पता है। तो मैं चाहूंगा कि आप ज़रूर बताइए हमें और देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें हुई थी। अगर आपको कुछ जीएसटी को लेकर याद है, कुछ ऐसी चीज़ें याद है तो ज़रूर बताइए। जीएसटी के बारे में आपके विचार क्या है, और आप फ़ोन कर सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर, अपनी भावनाएं अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं एक सुंदर गीत की तरफ, और ये गीत आपके दिल को छू जाएगा। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे गीत आप सुन रहे हैं। और चलिए बात करते हैं आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं। सुधाकर पांडे, इनका जन्मदिन है, इनसे बातें करते हैं। सुधाकर पांडे 1 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में हिंदी साहित्य की मुख्य विधाओं के उत्कृष्ट लेखक और समाज सुधारक थे। 1971 में विशेष रूप से उम्मीदवार और सांसद भी चुने गए और तत्कालीन वाराणसी में सुधाकर पांडे जी का जन्म हुआ था और साहित्यिक मुख्य विधाओं के उत्कृष्ट लेखक के रूप में नाम इनका हुआ। और पहली कहानी 1944 में आज में प्रकाशित हुई थी। सुधाकर पांडे की पहली काव्य कृति निहारिका वर्ष 1950 में आई थी। और 69 से लेकर 2003 तक सुधाकर पांडे नगरी प्रचारिणी सभा के अनावृत प्रधानमंत्री रहे। और 1971 में सुधाकर पांडे विशेष उम्मीदवार के रूप में सांसद में चुने गए। तो इस तरह से साहित्य और सांसद और समाज सुधार में इनका विशेष नाम हो गया। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सारे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: जी जी जी, मंगल कामनाएं आपको भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद याद किया आपने।
1: अभी क्या, मैं वो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ सुबह सुबह, तो अच्छा नहीं मिलता।
0: जी जी जी,
1: ऐसा है। और दूसरा के अभी आज जो ये अपना पर्यावरण दिन है, तो इसमें भी कई लोग याद झाड़ तो लगा देते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिलाते, खाली बस उधर दूसरी जगह से कचरा लाके उसके पास से पांच पिंजरे के पास से साथ में खड़े रह के फोटो गिरा देते हैं। फॉरेस्ट वाले हैं, कोई राजकारण है, कोई भी हो बड़ा, तो बस फोटो गिराने में मशगूल है। और उसको पौधे को बस एक बार लगा दिया फिर उसके उसके सामने देखने का नहीं। ये कोई रीत है, ये कोई रीत पर्यावरण वृक्ष लगाने की।
0: बिल्कुल,
1: अभी
0: बिल्कुल।
1: देखो आपने, अपन बोलते हैं कि छोड़ है, छोड़ के अंदर रणछोड़ है, तो हमारे इधर पालनपुर के अंदर नॉर्थ आपके लगाए हुए बड़े बड़े लिमड़े यहाँ तालुका पंचायत और ये जो एरोमा सर्कल रोड जाते वहाँ पर काट दिए सब। तो मैं तो कई लोग को बोलने लगा, आप बोलते हो छोड़ के अंदर रणछोड़ के अंदर, तो रणछोड़ काटने का वो तो कोई मतलब हुआ ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मेरा कहना ये है कि लगाओ, झाड़ लगाओ, छोड़ लगाओ, तो उसको बच्चे की तरह उसको बड़ा करो, और थोड़ा बड़ा हो गया उसके बाद में तो फिर बाद में आप अथवा आप एक हफ्ते में भी पानी डालोगे तो चलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो मेरा कहना ये है।
0: जी जी जी। फिरोज जी, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया कि वन महोत्सव के अंतर्गत आपने चीजें बताई, बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। ओम शांति। वैसा आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये थे फिरोज जी जो अपनी भावनाएं विचार साझा कर रहे थे, और उसके पहले सुभाष जी ने भी गाना चल रहा था, उस बीच उन्होंने फ़ोन करके वन महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, मंगल कामनाएं की, और साथ में आप सभी को भी बड़े प्यार से याद किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और सुधाकर पांडे जी की बातें चल रही थी जो उन्होंने देश सेवा के लिए, समाज सुधार के लिए और साहित्यिक जगत में उन्होंने काफ़ी काम किया, जिसकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो आइए एक और विशेष व्यक्तित्व के बारे में बातें करेंगे। जैसे आज डॉक्टर दिवस है, तो डॉक्टर तुलसी राम के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा मैं। 1 जुलाई 1849 को इनका जन्म हुआ था, और 13 फरवरी 2015 को इनका मृत्यु हुआ। दलित लेखन में अपना एक अलग स्थान रखने वाले साहित्यकार थे। इनके लेखन में शांति, अहिंसा और करुणा व्याप्त रहा। वे बहुत ही गहन अध्याय व विद्वान थे। तुलसीदास, डॉक्टर तुलसीदास, आज ही के दिन 1949 में इनका जन्म, उनकी पत्नी का नाम प्रभा चौधरी रही और एक पुत्री है अंगिरा। आजमगढ़ में तालुका रखने वाले डॉक्टर तुलसी राम बचपन में ही सामाजिक मान्यताओं और बंधनों से जूझ रहे थे। उनका बचपन सामाजिक और आर्थिक मुश्किलों में बीता। गरीबी का अभाव उनकी ज़िंदगी में साए की तरह रहा, लेकिन आरंभिक जीवन में उन्हें जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी, उसकी उनके जीवन में और साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति हुई। और शुरुआती तालीम आजमगढ़ में से लेने के बाद डॉक्टर तुलसीराम की ज़िंदगी के दूसरे अध्ययन की शुरुआत बनारस से हुई। और बचपन से किताबों के शौकीन डॉक्टर तुलसीराम जब मार्क्सवादी के संपर्क में आए, तो उन्हें इससे बहुत संबल और साहस मिला। बनारस आने के बाद डॉक्टर तुलसीराम की जन पहचान कुछ लेखकों से हुई, और अपनी ज़िंदगी की प्रेरणा रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाओं और अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। बनारस विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे दिल्ली आए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में काम किया। डॉक्टर तुलसीराम जी, उनकी अपने लेखन में विशेष रूप से तमाम कष्टों, यातनाओं, अपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को खुलकर लिखा और सामाजिक बंधनों पर जमकर हमला बोला। उनकी लेखनी की एक विशेषता जो हम बात करें तो वो ये थी कि वो खुलकर उन चीज़ों पर बात करते थे, और उन्हें तमाम दलित लेखकों से अलग करती थी उनकी अवचेतन पर बुद्ध का गहरा प्रभाव था और उनके जीवन के हर एक पल, खास करके निर्णायक क्षणों में बुद्ध हमेशा सामने आते हैं। उनका उदाहरण उनकी आत्मकथा और मणिकर्णिका में दिखता है। गीत एवं कविताएं डॉक्टर तुलसीराम के जीवन को अभिन्न अंग रहे हैं और इसलिए उनके विशेष मणिकर्णिका दोनों की ही लेखन शैली में इन दोनों के बहाव देखने को मिलते हैं। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार। जन्मदिन है
0: जी।
1: देवी माता के गाने से इसी में गाए थे।
0: क्या नाम है?
1: कोई ज्यादा आज जिसका वैसे गाना सुना देना गाइस। श्री अर्जुन का जन्मदिन आज।
0: ठीक है ठीक है। तो आइए इसके साथ ही मैं आपको ले चलता हूँ। अनूठी साहित्यिक कृति होने के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के दलितों की जीवन स्थिति पर 60 और 70 के दशक के क्षेत्र में वाम आंदोलन की सरगर्मियों के जीवन ताज खजाना है और बाला साहेब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक आत्मा को प्रोफेसर तुलसीराम ने अपनी स्मृतियों का सहारे अपनी आत्मा से जोड़ने की कोशिश की थी। तो आइए इसी भाव को लेकर मैं आपको ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ, जो ऐसा ही कुछ दिल का हाल, दर्द, पीड़ा सुनाती है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। 9:47 हो चुके हैं और आप हो मेरे साथ। चलिए बात करते हैं अब 1 जुलाई के महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। 1949 में आज जब स्वतंत्रता भारत में छोटी रियासतों का विलय हुआ, तब त्रावणकोर तथा कोचीन रियासतों को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर कोचीन राज्य बना दिया गया और किंतु मालाबार मद्रास प्रांत के अधीन रहा। 1852 में 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर द्वारा सिर्फ सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया। 1965 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम लागू हुआ और विवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष मध्य अवस्था के लिए प्रस्तुत किया गया। इस न्यायाधिकरण के फैसले में 1968 में प्रकाशित 9/10 हिस्सा भारत को और शेष 1/10 हिस्से का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। 1960 में आज के दिन घाना अफ्रीका का एक जलप्रांतीय राज्य है, जिसे 1 जुलाई को गणराज्य घोषित किया गया था। और 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच सीमा रेखा की समाप्ति एवं पश्चिमी जर्मनी की मुद्रा को पूर्वी जर्मनी में मान्यता प्राप्त हुई। और 1990 में पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच सीमा रेखा की समाप्ति और पश्चिमी जर्मनी की मुद्रा को पूर्वी जर्मनी में मान्यता। 1991 में आज के दिन बरसा संधि मांग की गई और 1995 में अमेरिका ने ताइवान के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। और इस तरह से 2000 में लुइस के 100वें ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराया था। 2003 में समुद्र में आई सबसे गहराई तक जाकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाली जापानी पनडुब्बी प्रशांत महासागर में लापता हो गया। 2006 में अमेरिकी संसद की समितियों ने भारत अमेरिकी परमाणु समझौतों को मंजूरी प्रदान की और 2006 में 1 जुलाई को परिमर्जन 1 के सबसे कम उम्र के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने। और 2007 में दलाई लामा के मुद्दे पर चीन के अधिकारियों के साथ तिब्बत के दूतों की वार्ता शुरू हो गई। और 2008 में गाजा पट्टी के फलस्तानी विद्रोही ने दक्षिणी इसराइल पर रॉकेट दाग दिया था। 2017 में आज के दिन भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया। तो ये थी कुछ खास बातें आज के दिन के इतिहास के पन्नों से आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, मैं किरण, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: चला गया।
1: हाँ जी
2: सुनते हैं और आपको बहुत बहुत नमस्कार आज के बुधवार के दिन
1: जी
2: दोस्तों को हमारी सभी बहनों को और हमारी दादियों को पूरी चलेटी में जो भी आए हैं सभी को हम नमन करते हैं ओम शांति। और बस यही गाना गाएंगे आपकी बात मेरे अंदर आ ही जाती है इसी समय के साथ सब चले गए तो बहुत
0: आप जाओ ना क्या
1: इधर आओ ठीक है।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई को जन्मे उन लोगों के बारे में बात करेंगे। 1882 में आज के दिन विधान चंद्र राय भारत रत्न सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सा निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिक। 1890 में आज के दिन बेनेगल रामाराव भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे गवर्नर थे। 1959 में आज के दिन मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के दूसरे राज्यपाल थे। तो इस तरह से आज के दिन जन्मे इन सारे लोगों को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा।

समय बनता है सुबह का जब खास, उषा आती है अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे, जरा सोचिए। और जी हाँ, तुलसी स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदा करती है, आप भी सोचिए। उपाय तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा आप भी सोचिए। अगर आपको भी आंसर मिलता है तो आप भी उपाय बता सकते हो। और आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ आइसक्रीम। कल आपने खाई कुल्फी, आज बनाएंगे आइसक्रीम, परंतु कौन सी वाली, वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो प्रश्न भी पूछने वाली हूँ बहुत ही सरल और सुंदर। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी

कभी नहीं करना चाहिए। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूंगी कि एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और भी अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, उनके अच्छी सेवा की, आदर सत्कार किया। सेवा से प्रसन्न होकर के नगर से प्रस्थान करने के पहले संत ने उस लोभी व्यक्ति को चार दीपक दिए। चारों दीपक देकर के संत ने उसे बताया, पुत्र जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर के पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वहां दिया बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में घड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी नहीं हो सकती है तो तीसरा दीपक भी जला करके दक्षिण दिशा में चले जाना। वहां पर दिया बुझेगा तो वहां पर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और है। एक दीपक है किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कह करके संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ और वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लूं, फिर यहाँ का धन भी ले जाऊंगा। वह कलश वही झाड़ियों में छिपा करके दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर दूसरा दीपक भी बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में रख दिया और सोचा कि बाद में ले जाऊंगा, इसलिए वही छोड़ करके तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जला करके उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने सख्त मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी ज्यादा धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता हो। मुझे तत्काल वहां जाकर उसे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, उसके बाद सारा जीवन में ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक भी जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वे एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला जिन्हें देख करके उसकी आंखें चौंधिया गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख करके उसका लालच और भी बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई दी, वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहां कैसे पहुंचे बाबा? क्या थोड़ी देर में तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूं कि मैं यहां कैसे पहुंचा और मुझे यहां क्या मिला, वृद्ध व्यक्ति बोला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसना लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने

पूछा ऐसे क्यों हंस रहे हो भाई? यह कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तो इसमें दब करके मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यही चक्की चला रहा हूं, मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कह करके वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा, लोभी व्यक्ति जोर से चिल्लाया पीछे से। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर के यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। देखा ना आपने लालची व्यक्ति के क्या हानि हुई, क्या इसके साथ घटित हुआ। इसलिए लोभ लालच बिल्कुल नहीं करना है। यही आज का सुंदर सा विचार है जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन।

छा, ओ झुक जा सांवरिया लूले जाए तुल छा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में जैसे कि ये गीत की चंद पंक्तियां मैंने गुनगुनाई है, इससे आप समझ गए होंगे कि आज मैं नुस्खे कौन से देने वाली हूँ। वैसे तो परिचय में आप सभी सुन चुके हो, फिर भी आइए आज आपको नुस्खे देते तुलसी के ऊपर, कि तुलसी के गीत तो बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं, भजन बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में जैसा नाम है वैसा तुलसी का काम भी है, बहुत ही फायदा करती है तुलसी। और तुलसी का पौधा तो लगभग हम अपने घरों में लगाते ही हैं, है ना, कोई घर में रखते कोई घर के बाहर रखते, लेकिन हर एक के घर में लगभग तुलसी का पौधा तो होता ही है। तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है तुलसी। तुलसी देखिए, इसको एक दिव्य पौधा माना जाता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को भी प्यारी है, तो बहुत सारे भजन बन गए हैं, है ना, और बीमारियों को भी ठीक करती है, इसलिए इसको दिव्य पौधा के रूप में माना जाता है। इसकी पूजा भी होती है और बहुत सारी बीमारियों को ये नाश करती है। तो जैसे कि कैंसर वाले लोगों के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि कैंसर में कैसे फ़ायदा करती है तुलसी। कैंसर जैसे गंभीर रोगों में 25 से 100 पत्तियाँ बड़ों के लिए, ठीक है ना, तुलसी के पत्ते कितने लेने हैं, 25 से 100 पत्तियाँ, और 5 से 25 पत्तियाँ बच्चों के लिए ले सकते हैं आप। फिर भी शुरुआत में आप 21 से 35 पत्तियों से शुरू करिएगा, ठीक है, ये पर्याप्त है, फिर आपको संख्या बढ़ानी है। तो अधिकतर रोगों में सामान्यतः 7 से लेकर 11 पत्तियां लेनी है। कैंसर की बीमारी में मैंने आपको बताया है कि शुरुआत में 21 से 35 तक शुरुआत करनी है और बाकी 25 से 100 तक पत्तियां लेनी है, धीरे धीरे संख्या बढ़ानी है, लेकिन ज़्यादा ही तकलीफ है तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरी अन्य कोई बीमारी हो तो आप 7 से लेकर के 11 पत्तियाँ, ठीक है, और बच्चों के लिए 6 से लेकर के 5 पत्तियाँ ज़रूर इनको खिलाइएगा, ठीक है। जैसे कोड जैसे 7 साल पुराना चर्म रोग, केवल 3 पत्तियाँ बारीक घोट करके आप दीजिएगा, तो कोड जैसी बीमारियों में भी फायदा पहुँचा सकते हैं तुलसी के पत्तियाँ। बस आपको ज़रूरी है थोड़ा सा लगातार इसका सेवन करना, ठीक है, और जलन या फिर कोई और छोटी मोटी तकलीफ है तो आप खाली पत्तियां भी दे सकते हैं, सुबह खाली पेट देना है, ठीक है। तुलसी की पत्ती खा करके आप सामान्य जो जल है उसको पी लीजिएगा, ठीक है, नहीं चबाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे उतार करके पानी पी लीजिए, चबा करके भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि 7 से 21 ताजे हरी तुलसी की पत्तियाँ लेकर के आप स्वच्छ खरल या सिल बट्टे पर, जिस पर मसाला नहीं पीसा जाता है, ठीक है, और मसाला पीस रहे हो तो उसको अच्छी तरह धुलाई करो, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछो, उसके बाद ही आपको तुलसी की पत्तियां घोटनी है, नहीं तो फिर आप लोगे तो छाती में जलन करेंगे, फिर कहेंगे कि अरे ये तुलसी जल रही है, लेकिन तुलसी की जलन नहीं है, आपके मसाले की जलन है। इसलिए अगर सिलबट्टे पर पीस रहे हैं आप और मसाले वाला है तो उसका अच्छी तरह धुलाई करिए, बाकी जिसमें आप मसाला नहीं पीसते हो वो सिलबट्टा भी आप ले सकते हो और चटनी की तरह इसको, मतलब चटनी बना देनी है इसकी 7 से 21 ताज़ा हरी पत्तियां लेकर के। फिर इसको 50 या फिर 125 ग्राम दही में मिला करके रोज खाली पेट 2-3 महीना तक लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, यदि दही खट्टा है माफिक नहीं आ रहा है तो आप 1-2 चम्मच शहद मिला सकते हैं इस चटनी में, ठीक है, तुलसी की चटनी में, और इसको लीजिए, तो इससे कफ और श्वसन संस्थान के रोगों तथा छोटे बच्चों को बारीक पीसी हुई तुलसी की पत्तियां शहद में मिलाकर दीजिए तो ये श्वसन और कफ में काफ़ी फायदा करेगा। बच्चों के आप खुराक की मात्रा घटा दीजिए, बड़ों के लिए मात्रा जो मैंने आपको बताया है वो लीजिएगा, इससे कफ है, श्वास की समस्या है, इन सब में राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 महीने तक लगातार लेना है, सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तियों के पेस्ट करके इसको या तो दही में घोलिए, दही अगर खट्टा है तो शहद में भी आप मिला सकते हैं, और इसको चाटिए, ठीक है, तो श्वास की समस्या ठीक होगी, कफ की समस्या ठीक होगी। और आप दूध में तुलसी को मत डालिएगा, चाय में डालिएगा,
चाय में जो जैसे आप अदरक डाल रहे हो, अन्य मसाला डाल रहे हो, उसके साथ आप तुलसी की पत्तियां डाल करके भी चाय बना सकते हो और इसको पीने से भी कफ में, सर्दी में, सब में राहत मिलेगी और बहुत सारे दर्द जो शरीर में होते होंगे ना, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अंदरूनी दर्द थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, तो इस तरह अगर आप तुलसी लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये दर्द आपका छोटा मोटा ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहो तो आजमा सकते हो। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है। प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए। प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आइए सुनेंगे बहुत ही सुंदर एक गीत और उसके बाद हम पुनः आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

कुछ ना आता नजर, सुखा सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले

इथमी दियतु नेहमे जुजनम तुई जेले गहम सबके गम नेकी पर चले और बदी से टले।

की पर चले और बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्मों

भावना बड़ उठी प्यारी का हर कदम और मिटे गिर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले ताकि

0: पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम।
1: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
2: हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। हेलो।
3: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहे हैं।
2: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
3: आज बहन जी प्रश्न कौन सा है, मेरे पास रेडियो है नहीं अभी।
2: हाँ जी, आज का प्रश्न है प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए।
3: अच्छा, तो ये पृथ्वी
2: जी, जी
3: और जल, अग्नि और ये हवा वायु।
2: अच्छा ठीक है, तो आभार आपका फिरोज भाई।
3: आप अभी सभी रेडियो मधुबन परिवार को सलाम
2: जी, आपको भी। चलिए आप सुनते रहिए आशियाना, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है
3: जी, जी जी जी।
2: तो आप सभी आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज जैसा कि मैंने आपको परिचय में कहा था कि आइसक्रीम सिखाएंगे, परंतु कौन सी वाली? जी हाँ, ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम। ठीक है, सादी सिंपल आइसक्रीम बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी पसंद करते हैं। तो ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम के लिए आप पेन और डायरी जरूर ले लीजिएगा, और सामग्री में लिखवा रही हूँ वो लिखिएगा। आप लीजिएगा 1 लीटर दूध, ठीक है, फिर आपको लेना है 2 ब्रेड की स्लाइस, फिर आप लीजिए 250 ग्राम चीनी, छोटी इलायची ले लीजिएगा 4, 10 ग्राम आप खरबूजे के बीज लीजिएगा, 10 ग्राम ही आपको चिरौंजी लेनी है, और थोड़े काजू, बादाम, पिस्ता आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, थोड़े कटे हुए। ठीक है, तो फिर से मैं दोहरा रही हूँ सामग्री, आप एक नज़र डालिएगा अपनी डायरी में, कहीं छूट गया हो तो लिख लीजिएगा। 1 लीटर दूध, फिर आप लीजिएगा ब्रेड की स्लाइस 2, 250 ग्राम आपको लेनी है चीनी, और 4 ले लीजिएगा छोटी इलायची, खरबूजे के बीज ले सकते हैं आप 10 ग्राम और चिरौंजी भी 10 ग्राम, और काजू, बादाम और पिस्ता ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा। ठीक है, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि दूध को आप गर्म करिए, गर्म करके आप उसको तो गर्म करते रहिए, बीच बीच में हिलाते रहिए, चिपके नहीं, नीचे चिपकेगा लगेगा तो आप समझ सकते हो कि उससे स्मेल आएगी, इसलिए आप हिलाते रहिए और दूध गर्म करिए। फिर जो ब्रेड की स्लाइस ली है इसका आप चूरा कर दीजिए, और लगातार हिलाते हुए दूध को आप थोड़ा गाढ़ा होने दीजिए। ठीक है, और पकाते रहिए, और इसमें ही ये जो चूरा है ये भी डाल दीजिए दूध में। ठीक है, और हिलाते रहिए, दूध गाढ़ा हो जाए तो फिर आप चीनी मिलाइए, फिर 5-10 मिनट और इसको पकाना है, फिर आप गैस बंद कर दीजिए या फिर गैस से नीचे उतार दीजिए, फिर पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा और कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स करके आप किसी भी बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, और जब ये जम जाए कम से कम 8-10 घंटे लगेंगे, 8-10 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हो कि आइसक्रीम आपकी जम चुकी है, फिर जब चाहे आप खा सकते हो। तो इस तरह ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम बनाई जाती है। फिर से विधि दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह सुनकर के बनाइएगा कि दूध को आप गर्म करिए, हिलाते रहिए और गर्म करते रहिए, फिर जो हमने ब्रेड की स्लाइस ली है उसका चूरा कर दीजिए, और इस चूरे को भी आप दूध में डालिए और अच्छी तरह हिलाइए, दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो शक्कर डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर से हिलाइए, उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए, और गैस बंद करने के बाद आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाल दीजिएगा, और अच्छी तरह हिलाकर जब यह ठंडा हो जाए तो आप आइसक्रीम के बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, 8-10 घंटे आपको फ्रीजर में रखना है। उसके बाद आप देखिएगा आपकी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम तैयार है। तो बस आइसक्रीम आपने सीखी है, और भी मैं आपको अन्य प्रकार के आइसक्रीम सिखाने वाली हूँ, लेकिन कौन सी वो आप की सुनने के बाद ही जान पाएंगे। तो आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151514 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब सुनेंगे गीत, उसके बाद हम पुनः आपसे मिलेंगे, आशा ना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधु।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम। आइए अब आपको कोकोनट वाली आइसक्रीम सिखा देते हैं। ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जब भी चाहो बना सकते हो आइसक्रीम कुल्फी और घर पर ही बना करके इसका आनंद ले सकते हो। पेन और डायरी तो तैयार है ना, तो लिखिएगा कोकोनट आइसक्रीम के लिए आप लीजिएगा वनीला आइसक्रीम 4 कप, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कप, सादी क्रीम लेनी है 1/2 कप और कैस्टर शुगर लेना है 1/2 कप। बस इसमें सामग्री ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, 4 कप ले लीजिएगा वनीला आइसक्रीम, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 4 कप लेना है वनीला आइसक्रीम, 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लेना है, सादी क्रीम भी आप 1 कप ले लीजिएगा या फिर थोड़ी कम होगी तो भी चलेगा, और कैस्टर शुगर लेना है आपको 1/2 कप। अब देखिए इसमें आपको मैं वनीला आइसक्रीम रेडी मतलब दिलवा रही हूँ आपको, लेकिन आप चाहो तो जैसे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम आपको सिखाई है ना, तो बस आप उसमें ड्राई फ्रूट्स मत डालिएगा तो सादी आइसक्रीम हो जाएगी। तो इस तरह अगर आप पूरी ही तरह से बनाना चाहते हैं आइसक्रीम तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कोकोनट आइसक्रीम के लिए फिर इसमें आपको खाली नारियल ऐड करना है, और वो वाली आइसक्रीम जिसमें ड्राई फ्रूट लिया है, वैसे ड्राई फ्रूट हर एक में आप डाल सकते हो, मात्रा को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, और नहीं भी डालोगे तो चलेगा, इस आइसक्रीम में लिया नहीं है वैसे ड्राई फ्रूट। तो आप अब क्या करेंगे, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, फिर क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके आप फेंट लीजिए। ठीक है, और नारियल के पेस्ट को इसमें मिला दीजिए। वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिला देना है, फिर इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकाल करके कांटे की मदद से फेंटिए, फिर से फेंटना है और वापस कंटेनर में भर करके ढक्कन लगा करके फ्रीजर में जमने के लिए रख दीजिए। तो बस 8-10 घंटे आपको फिर से रखना है फ्रीजर में, और उसके बाद आप निकालिए, जब चाहो तब आप खा सकते हो। ये बन गई हमारे नारियल वाली आइसक्रीम। थोड़ा सा स्वाद में चेंज आ गया है, लेकिन बहुत सारे फ्लेवर की बनती है आइसक्रीम, जिसमें थोड़े थोड़े से चीज़ें हम अलग तरीके से ऐड करते जाते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा चेंज होता जाता है, और हर कोई चाहता है कि टेस्ट चेंज होता रहे, चाहे कुल्फी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे भोजन हो, टेस्ट सभी चाहते हैं कि हमेशा थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का मिलता रहे, है ना। तो बहुत ही सरल तरीका है इस आइसक्रीम का भी, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके अच्छी तरह फेंटिएगा, और इसमें फिर फेंटने के बाद नारियल की पेस्ट को भी मिला दीजिएगा। अब आप वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिक्स करिए और इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में आप भर के रख दीजिए, किसी भी आप बर्तन में जो आइसक्रीम जमाने का है उसमें भर के रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकालिए और निकाल करके इसको फिर से फेंटिए, फेंट करके फिर से इस कंटेनर में इस पात्र में भरना है और ढक्कन लगा करके अच्छी तरह आप फ्रीजर में रख दीजिए। 8-10 घंटा इसको जमने दीजिए, उसके बाद बस आप जब चाहे आइसक्रीम का आनंद ले सकते हो। तो चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी उषा बहन जी।
2: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: बहुत ही अच्छा हूँ, और सभी मित्रों की कृपा है, बाबा की कृपा है और आपकी दुआ है, और कार्यक्रम भी बहुत सुंदर चल रहा है, और अभी अभी जो ऑन किया तो कार्यक्रम चल रहा
2: जी,
3: तो सोचा फोन कर लूं और बात कर लूं और जवाब क्या है वो प्रश्न भी।
2: अच्छा, प्रश्न नहीं सुना आपने?
3: जी मैं तो अभी ऑन किया था।
2: जी जी, तो आज का प्रश्न है प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइएगा।
3: जी जी जी बहन, प्रकृति अपने में जो समेट के 5 तत्व रखे है
2: जी,
3: तो उसका नाम मैं बताता हूँ बहना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब प्रकृति के नियम है। हम ये सब सृष्टि के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: ठीक है दयाराम जी, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। ठीक है
3: जी बहन
2: जी, आभार आपका जी, नमस्कार। तो देखिए दोनों ही प्रकार के आइसक्रीम तैयार है, चाहे हम आइसक्रीम बनाएं, कुल्फी बनाएं, चिवड़ा बनाएं या भोजन बनाएं, भोग तो लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप भोग लगाइएगा, परमात्मा की याद में भोग लगाइएगा, और कभी कभी क्या है प्रकृति को भी धन्यवाद दे दीजिएगा, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है और प्रकृति के द्वारा ही हम वस्तुओं को, चीज़ों को बनाते हैं। तो कभी क्या है, जो भी बना रहे हैं हम, चाहे भोजन हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कुल्फी हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, साथ ही साथ आप प्रकृति को धन्यवाद भी देते जाइएगा कि प्रकृति हमारा कितना साथ निभाती है। ये प्रकृति नहीं होती तो हमारा क्या होता। इसलिए है प्रकृति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा साथ हमारा निभाती हो। तो इस तरह कभी प्रकृति के 5 तत्व में से 1 तत्व को भी आप धन्यवाद दे सकते हो, कभी 5 को ही धन्यवाद दीजिए, और प्रभु की याद में आप भोग लगा करके आइसक्रीम को स्वीकार कीजिए। ठीक है, आइए फिर से आज का प्रश्न दोहरा रही हूँ कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15, और अब एक गीत सुनने के बाद पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। आग लगती है तो ये नहीं पूछते कैसे लगी, सिर्फ आग बुझाने में लग जाते हैं, बात छोटी हो या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कारण नहीं ढूंढना, निवारण ढूंढना है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, अब आप इसको स्पष्ट करने में मदद करेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम क्या है। तो दोनों में ही प्रश्न का भी आप जवाब दे सकते हो, और खुशनुमा जीवन में भी आप जुड़ सकते हो। नंबर है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आप खुशनुमा जीवन की बातें भी कर सकते हो कि कैसे आग लगती है तो पूछना नहीं है कैसे लगी, उस समय पूछते कैसे लगी, कैसे लगी, कैसे हम फटफट उसको पानी ला करके बुझाने की कोशिश करते हैं। तो बस ठीक इसी तरह बातें छोटी हो या बड़ी हो, समस्या छोटी हो या बड़ी हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं करना है, समस्या का समाधान करना है। क्या कहेंगे आप, हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा रेडियो मधुबन से और अपने विचार को जरूर रखिएगा। तो बहुत ही सुंदर विषय है खुशनुमा जीवन का कि जैसे आग लगती है, ये आपको बता चुकी हूँ कि मैं आग लगती है तो हम इंतजार नहीं करते, ठीक इसी तरह किसी के भी जीवन में समस्या आती है तो उसका क्या क्यों में मत घेरिए। हेलो हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
4: बस बिल्कुल अच्छे हैं, और बहुत अच्छा विषय भी दिया है दीदी। आजकल जो आपने बात बताई ऐसा ही हो रहा है
2: जी,
4: आज कोई भी बात है तो बात का बदंतर कर देते हैं और बात को छोटी करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज देखो कोई भी बात हो तो जैसे आपने बताया कि आग लगती है तो कहीं ना कहीं कितनी ही बातें हो सकती है, ऐसे करो बोले करता नहीं, वो करता नहीं, बात ही करता है
2: बिल्कुल,
4: और सब सुचन देते सलाह देते लेकिन खुद उसको खुद अच्छी करने की कोशिश नहीं करते
2: जी।
4: तो आज कई सारी बिजली बातें ऐसी है कि हमारे भी जो देखो आज परिवार में कोई बात हो जाती है तो बहुत बात बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है
2: जी,
4: लेकिन शॉर्टकट में बात पूरी नहीं होती है
2: जी।
4: कितने ही सवाल उठते हैं, शायद देखो आज मैं बताऊँ तो एक सैंपल बताऊँ तो ठीक है, हमारे घर में कोई भी झगड़ा हो गया शायद, ऐसा एक नमूना मैं देता हूँ
2: जी,
4: और झगड़े में बात झगड़े की और होती है और बात कहाँ कहाँ से चली जाती है,
2: पाया ही चेंज हो जाता है
4: शायद, अच्छा विषय चेंज हो जाता है
2: जी।
4: तो आज ऐसा है तो इसलिए आज ये बात बहुत बड़ी हो जाती है, शायद पहले कुछ साल भर में कोई आदमी कुछ हुआ तो ये बात भी आ जाती है
2: जी।
4: बात का वचन करते हैं, लेकिन बात छोटी करने की कोशिश नहीं करते कि चलो भी ये बात भी तो ये बात बस ये कर दो पूरा हो जाए, ऐसी बात नहीं आती
2: जी।
4: इसलिए तो आज देखो कई सारे झगड़े हो रहे हैं, कई सारे रिश्ते में दरार हो रही है
2: जी।
4: तो आज शादियाँ होती है किसी की, तो देखो कई परिवार ऐसे है कि आगे की बात लेके बैठ जाता है और हमको ऐसा हुआ था, आपने ऐसा किया था, ऐसा किया था, इसलिए आज रिश्ते टूट रहे हैं। इसका कारण ये है कि बात छोटी हो तो छोटी ही रहने, तो बड़ी नहीं करना, बस बड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं सब रिश्ता टूट जाएगा।
2: बिल्कुल, बहुत सुंदर।
4: तो यही कहूंगा आपकी दीदी, बस कोई भी बात हो तो शॉर्ट में इसको पूरी कर दो तो सही है।
2: जी जी जी,
4: वरना परिणाम तो अच्छा नहीं आता है।
2: जी जी, आभार आपका, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, बहुत ही अच्छी बात बताई है सुरेश भाई ने कि देखिए सभी फैलाने की कोशिश करते लेकिन समेटते कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? हमारे और भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
5: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज।
2: हाँ जी नमस्कार, नमस्कार फिरोज भाई।
5: आज का विषय बहुत बढ़िया है
2: जी, थैंक यू।
5: के पहले तो एक शेर बोल देता हूँ कि दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, और जरा सा मील का झोंका आया तो कयामत तक सुला दूंगी।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर।
5: अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक में, और हमारे जैसे ड्राइवरों की जिंदगी स्टेयरिंग और ब्रेक में।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
5: दूसरा क्या है, दूसरा क्या समझो कि दो गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ
2: जी,
5: तो सबसे पहले एक्सीडेंट के अंदर कितने अंदर बैठे हैं, किसको क्या इजा हुई है, क्या हुआ है, उससे सबसे पहले तो इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है
2: जी।
5: और फिर बाद में ये जो गाड़ी बीच में रोड के बीच में है तो उसको साइड में करवाना है
2: जी।
5: और
2: बिल्कुल
5: इसके और ये कई लोग तो क्या वो देखेंगे, वो भले मरता तो मरने दो या तो कुछ भी होने दो
2: जी,
5: वो
2: जी,
5: पहले
2: जी।
5: तो सेल्फी लेंगे और टेलीफोन लगाए और फिर इसका वो पूरी जगह पे उसको अनाउंस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने,
5: हाँ ये बात है
2: जी, बहुत अच्छी बात बताई फिरोज भाई, बहुत बहुत आभार आपका। स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में काफी कुछ आपने समझा दिया कि कैसे लोग जब एक्सीडेंट होते तो सेल्फी लेना शुरू कर देते, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो पेशेंट पड़ा हुआ है उसकी मदद नहीं करते। और भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से। हेलो,
6: हेलो नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से बोल रहा हूँ दीदी।
2: हाँ जी सुरेश भाई नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
6: बस अच्छे है, काम कर रहे तो अभी भी 58 पर मैंने रेडियो शुरू किया तो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, चलो मैं भी कॉल करके बात करता हूँ।
2: जी जी स्वागत आपका। तो आज के प्रश्न भी मैं दोहरा रही हूँ,
6: हाँ।
2: कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइएगा।
6: हाँ वो तो जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी।
2: अच्छा ठीक है
6: जी। और दीदी हमारे मित्र भी जैसा उनका चरित्र है वैसी बात कर रहे है, तो हम भी बस ऐसे ही बात करेंगे, कहीं भी कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है ना तो हमें बुलाते हैं और हम समाधान करते हैं। तो जैसे जो आपने बात की ना इस पर ही मैं बात कर रहा हूँ, तो घर में दो पति पत्नी को झगड़ा हुआ और पत्नी किस तरह वजह से झगड़ा कर रही थी कि पति का जो किसी गैर औरत के साथ ये ऐसा चरित्र खराब है, तो ऐसा करके झगड़ा कर रहे थे। और लोग जो कुछ अच्छे लोग वो समझाते कि चलो भाई ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा आदमी है, और ऐसे भी लोग हैं जो चढ़ावा देते हैं, हमारे गुजराती में बोलते हैं, तो कहके अरे तुम तो ये है, फिर आदमी को उस इंसान को भी पत्नी के बारे में तुम्हारी वाइफ इतनी ये है खराब है
2: जी,
6: तो
2: जी।
6: आग फैलाते हैं मतलब, और कुछ ऐसे भी है तो आग बुझाते हैं
2: जी,
6: तो
2: जी,
6: फिर
2: जी।
6: जैसे भी जैसे ही हम लोगों को बुलाया तो पहले तो दोनों की बात सुनी, चलो के पति तो निर्दोष साबित होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और पत्नी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी
2: जी,
6: तो अब करे क्या, तो बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ रहे, तो फिर आखिर में एक बात कही कि चलो अब जो भी हुआ चलो तुम्हारे पति ने ये किया चलो कर दिया, हम भी मानते हैं और आप सही है, लेकिन अब से नहीं करेगा इसकी गारंटी हम लेते हैं, और आप भी अगर पति का चरित्र जो भी खराब हो ना तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे, ये वादा करो कसम खाओ, मतलब ऐसा कुछ समझाया अब तक लगभग 3 साल हुए हैं ना उनके घर में झगड़ा या ना कोई ऐसी बात हो रही है, तो ये बात है आग बुझाने की।
2: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ऐसे सॉल्यूशन मिले तो ही सही मायने में कुछ लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है और किसी के जीवन में खुशियां आई है।
6: जी जी, सही बात है दीदी
2: जी। बहुत सुंदर आपने बातें बताई है सुरेश भाई, और बहुत अच्छी आपने मदद की है, बहुत बहुत आभार आपका।
6: थैंक यू
2: जी। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह पड़ोसी में झगड़ा हुआ और इन्होंने जा करके झगड़े को सुलझाया, और आज 3 साल होने को आए लेकिन उनके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कारण सारा आपने बताया है। तो इस तरह मदद करना अच्छी बात है, लेकिन वो कहते ना आग में घी का काम करना बहुत बुरा है, इसलिए आग को फैलाना नहीं है, आग को बुझाना है। ऐसे ही समस्याओं को भी बढ़ाना नहीं है, समस्या आ गई है तो उसको सुलझाना है। ठीक है, और भी आपसे बातचीत करेंगे, आप तैयार रहिएगा। एक गीत सुनने के बाद पुनः इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए गीत सुन लेते हैं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।
7: अरे थारी कंचन सी का यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी ला।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है और कारण नहीं ढूंढना, निवारण को ढूंढना है। क्या, क्यों, कैसे, इन सभी में जाएंगे तो परिस्थितियां बढ़ेगी और बड़ी होगी, घटेगी नहीं, ठीक है ना। जैसे आग लगती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम उसका निवारण ढूंढते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, पानी वाले को बुलाते हैं और पानी डलवाते हैं। हम स्वयं भी कोशिश करते हैं कि मिट्टी डाले, पानी डाले, कैसे भी करके आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें आती है। एक बात आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे सुरेश भाई ने भी बताया था कि छोटी छोटी बातों से भी कभी कभी इतनी बड़ी बातें फैल जाती है कि जो मेन बात होती है वो तो कहीं की कहीं रह जाती है और पूरा ही विषय चेंज हो जाता है। ऐसा ही होता है घर परिवार में, आजकल ऐसा ही हो रहा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और घर टूटते जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, एक परिवार में बहुत दूध गर्म कर रही थी, दूध उबल गया, आधा दूध बाहर निकल गया। उसको पता चला अरे ये दूध उबल रहा है, तो तुरंत ही उसने गैस बंद किया, लेकिन तब तक आधा दूध बाहर बह चुका था। इधर सास बोली कि इसका वैसे काम में ध्यान कहाँ है, ये कहाँ सही काम करती है, जब भी करती है ऐसा ही करती है, घर में नुकसान ही करती है। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे जरूर ये टीवी देख रही होगी, टीवी में इसका ध्यान होगा इसलिए दूध उबल गया। तीसरे व्यक्ति बोला कि अरे ये तो वैसे ही विचारों में खोई रहती है, कहाँ ये घर में रहती है, रहती यहाँ पर है हमारे सामने, लेकिन विचार कहीं के कहीं चले जाते हैं, इसके विचारों में खोई होगी ना इसलिए दूध उबल गया। और किसी ने कहा कि वैसे ही ये मन से काम क्या करती है, ये तो ऊपरी मन से करती है। मतलब कितनी सारी बातें सुनने को मिली जबकि कारण कुछ था ही नहीं, एक ही कारण था कि भाई दूध उबल गया। अब उबल गया सो उबल गया ना, समेटने वाला होता तो कह सकता था कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, हो जाता है तो वो जरूर ध्यान रखती। लेकिन जब इतनी सारी बातें सुना दी तो आप ही सोचिएगा कि कौन सुनेगा इतनी सारी बातें, वो भी तो शुरू हो गई।

अमानी होती है, बहुत सारी बातों को सहन करना होता है, बहुत सारी बातों को लेट को करना पड़ता है, तभी घर परिवार टिकता है। अगर हम फटफट फटफट कुछ भी बोल लेते हैं तो वो घर नहीं टिकेगा, क्योंकि सहन शक्ति सभी में खत्म होती जा रही है। अब बहू को आप चार सुनाओगे तो एक तो वो जरूर सुनाएगी, चार सुनाया उसका हमें दुख नहीं, लेकिन एक उसने जवाब दे दिया वो हमें दुख बैठ गया, फिर हमने चार सुनाई, आठ सुनाई, फिर इधर उधर बात की, फिर उसने भी हमारी जो रही सही इज्जत थी वो भी उतार दी, फलाने दिन ऐसे किया, ढिकड़े दिन ऐसे किया। अब क्या फायदा मिला भाई, दूध उबल गया कोई बात नहीं, दूसरी बार ध्यान रखना, हो जाता है, हमसे भी कभी उबला है, तुमसे भी गलती हो गई। अगर ये कह करके हम उस बात को शांत कर दे तो वो बात बढ़ेगी नहीं और खत्म हो जाएगी। अब एक तो दूध उबला उसका नुकसान हुआ, ऊपर से झगड़ा हुआ तो सभी का खून जला, क्या फायदा हुआ, और लोगों के सामने तमाशा हुआ, लोग इकट्ठे हुए और हंस हंस के गए, अरे देखो देखो छोटी छोटी बातों में इनके झगड़ा होता है, फिर कभी बड़ी बात पर भी झगड़ा होता है ना तो लोग हंसेंगे कि अरे इनके घर में चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं ये लोग, तो हमारी इमेज तो वहीं पर ख़त्म हो गई। वो कहते हैं ना प्यारे श्रोता बंधु कि इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन इज्जत का कचरा होने में एक सेकंड लगता है। इसलिए घर परिवार में बहुत ही सोच समझ करके रहिए, बहुत ही आप अगर दूसरों को कुछ सुना रहे हो तो बहुत ही सोच समझ करके बोलिएगा कि मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी है कि उसका पलट कर मुझे जवाब मिले। कुछ हमारे सामने हो रही होती है बातें, उनको समाना सीखिए। परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है, लेकिन परिस्थितियों को समेटने की ताकत हमारे में होनी चाहिए, तभी वो परिस्थितियां बड़ी नहीं वो छोटी दिखाई देगी और धीरे धीरे उस परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए विस्तार में नहीं जाना है, सार में रहना है, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
2: जुबान चलाती है,
0: एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
3: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
3: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू। बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम आपने सुना है, बहुत ही सुंदर विचार आपके समक्ष रखा है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे थे, तो रेसिपी भी आपको आइसक्रीम बनाना सिखाई है, दोनों ही प्रकार की, ड्राई फ्रूट्स वाली और नारियल वाली, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। प्रकृति के 5 तत्व, उनके नाम बताना है, और आप सभी ने सही जवाब दिया है। पहले तो मैं आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां बजवाना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी का पहली बार ऐसा हुआ है कि सही जवाब मिला है। तो अब मैं आपको नाम सुना रही हूँ, प्रकृति के 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल सही है, आप सभी ने सही जवाब दिया है। आज का मीठा मोती आपको सुनाना चाहूंगी, जो बहुत ही सुंदर है, कि जैसे हमारी रचना अगरबत्ती, जैसे हमारी रचना अगरबत्ती इतना सुगंध फैलाती है, तो हम रचिता जहां हो वहां का वातावरण कितना सुगंधित कर सकते हैं। अब मैं आपको हनुमान जी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रोम रोम में हनुमत के बसे हुए श्री राम, लांग गए सागर को पल में लेके राम का नाम। झूठा बंधन झूठी माया झूठा ये संसार है, सच्चा है एक राम नाम का

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे उषा। आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हम सब की जिंदगी में गहरे असर छोड़ सकता है, जेंडर आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा। ये एक विशेष महिला और पुरुषों के बीच हो रही आपसी असमानता, जिसमें विशेषकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में है, जिसे खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। आज ये विषय क्यों हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए सुनते हैं एक रेडियो नाटक जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास हो रही घटनाओं पर आधारित है।

0: घड़ी घड़ी चार पड़ोसन खड़ी खड़ी बाता बनावे घड़ी घड़ी।
1: अरे देख देख कांता, लक्ष्मी का मिजाज, चार चार बेटियां पर घमंड तो एड़ो करे, जाने बेटियां कोनी बेटाएं।
2: सही कह रही तू, मोट की छोरी ने तो अत्री बिगाड़ रखी कि आखा गांव में फटफटो लेन दौड़ती परे, वो छोरे की न्यान पेंट शूट पे रहे हैं।
3: छोरा की न्यान बॉयकट रखे, आदमी का सारा काम छोरी को करावे, पंचायत में जानो वे कि राशन पानी लाड़ो वे, दवा खाने जानो वे कि भले छोटी बेनिया के स्कूल को काम वे तो भी।
4: अरे एकदम देखने नाम कड़ाई माँ बापरो जदी था पड़ी।
5: अरे चुप चुप, वह देख लक्ष्मी आ रही है।
6: अरे कई बात है, आज तुम्हारी सारी सहेलियां एक साथ में।
3: लक्ष्मी आओ मारी सातन आओ, आज तो तू घनी खुश लाग रही है, अणी खुशी को राज।
6: खुशी की तो बात है, हमारी मोट

0: में नजरिया परी उतारूली, लूण मरच में वारूली। अरे मारा कुलदीप, मारा राजकुमार, कई छोरिया की न्यान रोवे रे, बोल तारे कई हुओ?
1: मारी माता दा छेड़नो, मारी मानी नहीं जलाली हो, नहीं जलाली हो।
0: अरे मारा लाडला, तू छोरो है, छोरा का साथ में खेल, छोरिया रो खेल कोनी खेलनो?
2: निम्मा आवो बेटा, गरम गरम खिचड़ी बन गई, इमे घी भी अच्छो डाल रखियो, तू खा ले।
0: बीनड़ी, तू यो कई कर रही? छोरी ने अत्री मत इतार, अत्रो अत्रो घी खिलावा की जरूरत कोनी, कतरो भी हाउ खिलाई तो भी खानदान रो नाम तो छोरो ही कर रही हूँ।
2: जी माँ जी, पर छोरी भी तो
0: कई बोल रही, पर वर कई कोनी, गणो छोरिया ने माता पे कोनी चढ़ानो, छोरिया तो रोड़ी को कचरो है और रोड़ी में ही अच्छी लगे, समझी? मारा पोतारो ध्यान पूरो राख, यो मारा वंश ने आगे बढ़ाई, मारा खानदान नो नाम रोशन करी।
3: माँ, मैं थारी सगली बात सुनी, पर मैं थारी बात तो सहमत कोनी, बल्कि मैं तो यूं कहूं कि बेटा करता बेटिया ज्यादा मेहनती होवे है। देख अपना पड़ोस माँ, लक्ष्मी आंटी की छोरिया कतरी होशियार है, घर को सारो काम कर लेवे, बालो भी, आज वह इंटरव्यू भी देवागी, काले नौकरी भी लाग जाए। मानू के वाके बेटो कोनी, पर देख माँ बाप रो कतरो ध्यान रखे, अतर तो बेटा भी कोनी ध्यान रखे।
0: मने तो लक्ष्मी पे गुस्सो भी आवे, दया भी, चार चार बेटिया ने जन्म दी दो, एक भी बेटा ने जन्म कोनी दी दो, छोरिया परणी ने हारे परी जाई, जदी ठा पड़ी ने।
3: माँ, छोरो के छोरी इंसान का हाथ में कोनी, और देख छोरिया भी तो माँ बाप की सेवा कर सके, अपनी मासी की सरिता ने देख, माँ बाप की कतरी सेवा कर रही, वाने ठाई कोनी पड़ रही के वाके बेटो कोनी, और अपना मामा का सोनू ने देख, परंतु इन माँ बाप से अलग हो गयो। अबे बता छोरिया की कहूँ कम है?
0: तू सही कह रही हो बेटा, पर आशा हमारे एक छोरो तो होनो ही चाहिए।
2: इंटरव्यू देवा जाऊं पछे नौकरी भी करूं, सखी चाला इंटरव्यू देवा आज तो, सपनों में पूरो करूं और आसमां में उड़ू, सखी चाला इंटरव्यू देवा आज तो।
4: दीपक, आपकी सैलरी रहेगी 35,000 और कविता आपकी सैलरी रहेगी 25,000, इज इट ओके?
5: सर ये अंतर क्यों है, जब हम दोनों का काम एक ही है, पढ़ाई भी एक है, इंटरव्यू भी एक ही रहा, फिर सैलरी में अंतर क्यों?
4: क्योंकि दीपक लड़का है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अक्सर पुरुष लोग छुट्टियां कम रखते हैं, महिलाएं ज्यादा छुट्टियां रखती हैं। जैसे कुछ दिनों बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह, कभी क्या कभी क्या, लेकिन पुरुष लोग ऐसा नहीं करते हैं इसीलिए।
5: पर सर मैं भी तो उतना ही काम करती हूँ, लॉजिकल टेस्ट में तो मुझे उनसे अधिक मार्क्स मिले हैं, रही बात शादी की, सर क्या गारंटी है कि मेरी शादी इसी साल होगी? अगर होगी भी तो हो सकता है मैं इसी शहर में शादी कर लूँ। सर जेंडर आधारित रूढ़िवादिता से आपका ये भेदभाव सही नहीं है सर?
4: कविता तुम सही कह रही हो, मुझे जेंडर के आधार पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेहनत और काबिलियत के अनुसार ही सैलरी देनी चाहिए। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करता हूँ।
5: थैंक यू सर।
6: स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा और आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नौ में, जहाँ पर हम लिंग आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के बारे में जानने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ नया भी सीखा होगा। दोस्तों, लक्ष्मी जैसे लोग हमारे जीवन के हर मोड़ पर मिलते हैं। अगर थोड़ा और गौर करेंगे तो हो सकता है हमारा घर, परिवार और दफ्तर के आसपास ही होंगे। इन लोगों को हमारी तरफ से एक हौसला की आवश्यकता है, क्योंकि वो कुछ अच्छा और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस विषय को बेहतर समझने के लिए स्वागत करते हैं हमारी एक्सपर्ट का और समझेंगे इनके द्वारा लिंग आधारित और घरेलू हिंसा में अंतर क्या है।
7: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंसा के नो इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नए मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा। दोस्तों, हमें मदद करने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सुलेखा जी। आप 1998 से फेमिनिस्ट लीडर के तौर पे महिला समाख्या, इंसाफ एंड एक्शन इंडिया ऐसी संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। वर्तमान में आप कैंपेन कोऑर्डिनेटर हैं बेटी जिंदाबाद कैंपेन का एक्शन इंडिया के संस्था में। तो स्वागत करते हैं सुलेखा जी को। नमस्ते मैम।
8: नमस्ते। लिंग आधारित हिंसा गर्भ में से ही महिलाओं के साथ शुरू हो जाता है। जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो सबसे पहले परिवार और समाज की उम्मीद उसके बेटा होने की चाहत को रखने लगता है और वहीं से हिंसा शुरू हो जाती है। देखा जाए तो गर्भ से ही कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव शुरू हो जाता है, लड़का की चाहत, लड़के की चाहत। उसके बाद जन्म के समय खुशी, फिर परवरिश में देखा जाता है, उसके दूध पिलाने से लेकर के और उसके देखभाल तक की गैप्स को हम देखते हैं। हर पल लड़की और लड़का में भेदभाव होता है, चाहे उसके खान पान को लेकर हो, चाहे उसकी परवरिश को लेकर के हो, चाहे उसकी खिलौने को लेकर हो। फिर आगे जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक बढ़ती है तो उसके पढ़ाई लिखाई पर भी, वो कौन सा साइड में पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगी और साइंस पढ़ेगी या कॉमर्स पढ़ेगी, ये परिवार तय करता है। जबकि लड़का लड़की को खुद से तय करना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। वही जब वो किशोरावस्था से ऊपर जाती है 16-17 साल से, वहां लड़की के प्रति शादी की चिंता परिवार वालों को सताने लगती है, और जबकि लड़के के प्रति उसके रोजगार को लेकर के। तो इस तरीके से हर जगह जन्म से लेकर के और मरते दम तक जेंडर बेस्ड वायलेंस होता रहता है। एक महिला की जिंदगी बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीन पाँव पे टिकी है, पिता, पति, पुत्र। एक इंसान होने के नाते, इससे एक महिला होने के नाते उसे हर जगह एक मर्द के अनुसार चलना पड़ता है, और कितने बच्चे पैदा करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो एक औरत के हाथ में नहीं होता है, उसके शरीर पर खुद का हक नहीं होता है। इस तरीके से एक औरत की जिंदगी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक तीन पापे गुजरती है, और ये बहुत बड़ा वायलेंस है। कहीं ना कहीं एक औरत वहीं पर खत्म हो जाती है एक दूसरे के हाथ में, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, श्रम विभाजन में भी होता है। कृषि में महिलाएं 80% काम करती, महिलाएं किसान कौन है आपके नजर में भी, अगर हम किसान सब कहेंगे तो एक किसान पुरुष ही नजर आएगा। तो काम हर जगह महिलाओं से लिया जाता है और उसका काम नहीं तय होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर जगह महिला पुरुष को डिवाइड किया गया है, और ऊंचा पद, पैसा, सम्मान वाली जगह पर पुरुष हावी हैं, और जहां पर उनका काम की वैल्यू का दाम कम से कम और कहीं तो मान्यता ही नहीं, जैसे महिला किसान मानते ही नहीं महिला किसान। तो ये बहुत बड़ा, खुद के काम की वैल्यू एक महिला ही नहीं समझ पाती क्योंकि समाज ने उसे स्थापित नहीं किया, पर बदलेगा। हम महिलाओं ने उस पर बोलना और समझना, अपने काम को गिनना, अपने काम को महत्व समझना शुरू किया है, परिवर्तन आएगा, एक धीरे धीरे आएगा। उसी तरीके से घरेलू हिंसा देखा जाए तो घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है
7: जी।
8: जेंडर भेदभाव, जेंडर आधारित हिंसा गर्भ में शुरू होता है कि लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, और घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है कि तुमने बेटा जन्म नहीं दिया, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल देखने से सुबह खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या नाम है, शादी का, दूसरी शादी का वो देना कि तू तो बेटा दे ही नहीं सकती, घर से निकाल देना, खर्चा ना देना, बच्ची होने पर उसको छोड़ देना, इस तरीके की चीजें। और साथ साथ घरेलू हिंसा कई तरीके का होता है, घरेलू हिंसा घर एक छत के नीचे रहने वाले, चाहे वो पति हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो प्रेमी हो, लिव इन में भी लोग रहते हैं। अगर एक प्रेमी भी घरेलू हिंसा करता है, एक तो मानसिक हिंसा, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां औरत ने लगातार बच्चे हुए, उसकी हालत बहुत खराब हुई, हम लोगों ने उसे कहा कि आप फिर फैमिली प्लानिंग टेक्निक अपनाओ, तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद हो रही। आशा वर्कर ने उसे दिया और उसने अपनाया, उसके पति को कहीं पता चल गया, इतनी बुरी तरीके से पीटा, मतलब 6 महीने हॉस्पिटल में थी। फैमिली प्लानिंग में सारी विधियां सरकार ने औरतों के लिए बनाई है, एक विधि केवल पुरुष के लिए बनाई, और उसको भी अपनाने के लिए सरकार पुरुषों को तैयार नहीं करा पा रही है। बात करने की हिम्मत नहीं है हेल्थ वर्करों का, एक पुरुष से जाएगा और बोले कि आप अपनी क्या नाम है फैमिली प्लानिंग के लिए ये सुविधा को अपना सकते हैं। इतना जबरदस्त कंट्रोल है सत्ता की।
6: तो सुना दोस्तों हमारी एक्सपर्ट को लिंग आधारित और घरेलू हिंसा पर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का हमारा ये मकसद था कि आप सभी को जागरूक कर सके और इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यदि आप या आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो इस समस्या का शिकार हो रहा है तो कृपया उनकी मदद करने का प्रयास जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम महत्वपूर्ण हो सकता है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हमारा लक्ष्य है समाज में जेंडर समानता की दिशा में कदम बढ़ाना और हर किसी को सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने का अधिकार दिलाना। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर। आप सुनिए ये गीत और मैं आरजे उषा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
9: सपनों पूरों कर

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी यानी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, आज एक बार फिर हाजिर हूं आप सबका जाना पहचाना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब आप सबके कॉल्स मिलते हैं हमको कि ये कार्यक्रम हमेशा चालू रहना चाहिए, ये कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप सब भी अपना अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? एक तो ये कि आप स्वयं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो उसके लिए आपका स्वागत है। और इसके अलावा अगर आप आपके किसी परिचित को सुनना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। बस शर्त केवल और केवल एक है कि जो भी हमारे मेहमान हों वो विवाहित हों और उनकी अपनी एक अच्छी सी प्रेरणादायक कहानी हो। तो चलिए, आज भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के, और आज के कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि हमारे जो मेहमान है आज के, देखिए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वयं इसमें अपना योगदान दिया। उन्होंने स्वयं हमें ये कहा कि वे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। मूल रूप से इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम कोशिश करते हैं कि दिव्यांग साथियों का जो संघर्ष है उसको आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, और खासकर विवाह के मामले में कि उनको जीवन साथी उनका मिला, कैसे मिला, कितनी आसानी से मिला, समाज परिवार और लोगों का उसमें किस तरह का योगदान रहा अथवा नहीं रहा, और हमारे मेहमानों ने किस तरह से अपने हमराही को पाया। बस आज भी यही कोशिश करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं श्रीमान कमल किशोर जी और ममता जी का, जो कि आज देश की राजधानी दिल वालों की दिल्ली से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। तो कमल भाई और ममता जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
1: जी नमस्कार सभी सुनने वाले श्रोताओं को, मेरा यानी कमल किशोर और मेरी मैडम ममता जी का की ओर से आप सबको नमस्कार।
0: जी ममता जी।
2: जी सर नमस्ते।
0: जी तो श्रोताओं, ममता जी की आवाज कुछ धीरे आ रही है, लेकिन कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मुझे उम्मीद है कि उनकी आवाज आप तक बहुत ही जोश और उत्साह के साथ पहुंचेगी। तो कमल भाई, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में कुछ बताएं।
1: जी सर, जैसा कि आपने अभी बताया श्रोताओं को कि मेरा नाम है कमल किशोर कुमार, मुझे लोग केके के नाम से जानते हैं। केके के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं यानी कि केके जब छोटा था, जब वो छोटे स्कूल में पढ़ता था, तो उसने केके के नाम पे एक छोटी सी कविता बनाई थी, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी के स्टूडेंट है जी, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि कविता ये बनाई थी कि स्कूल इज माय टेंपल, व्हिच मींस गुरु स्कूल इज माय टेंपल एंड टीचर इज माय गॉड, यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग एज अ टीचर, सो वी लाइक टू डू अप्रिशिएट द टीचर्स। तो स्कूल इज माय टेंपल एंड टीचर इज माय गॉड, स्टडिंग इज माय एम एंड केके इज माय नेम, दैट्स ऑल। तो मुझे केके के नाम से भी जाने जाते थे सर, और मैं बेसिकली हूँ झारखंड गिरिडीह जिला का, और बहुत ही बैकवर्ड एरिया गिरिडीह जिला से झारखंड खटपो गांव का हूँ मैं। और मैं जी और मैं फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ, हमारे मेरी श्रीमती ममता जी और मेरी दो बच्चियां हैं जी।
0: तो कमल भाई, थोड़ा सा अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, कहाँ कहाँ शिक्षा अर्जित की, और आपको जो दिव्यांगता है हमारे सुनने वालों को उसके बारे में भी बताएं।
1: जी दिव्यांगता जो है, जो मैं ब्लाइंड 100% हूँ और मैं बाय बर्थ हूँ जी। और रही बात मेरी शिक्षा दीक्षा की, तो चूंकि जैसा कि साथियों मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं झारखंड जिला का एक उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ आज भी लोग शिक्षित नहीं है, आज भी लोग जॉब में नहीं है। तो उस एरिया से, चूंकि मेरे पापा को मुझे ब्लाइंड स्कूल के बारे में पता नहीं था, और सच तो यह कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो गांव में लोग बोलते थे कि तुम अंधरा हो, अंधरा अंधरा मोटो बोटी, अंधरा क्या है, मैं तो अंग्रेजी पहले जानता नहीं था भाई। तो चूंकि हमारे पापा थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, हम लोग मोदी बनिए हैं तो पढ़े लिखे थे, तो हम लोगों ने जो है फिर किसी की मदद से पटना ब्लाइंड स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ 1 जुलाई 1992 को। पटना ब्लाइंड स्कूल के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा सुनने वाले श्रोताओं को भी और संदीप सर आपको भी
0: जी।
1: और जो अगर जी अगर और भी कोई पटना ब्लाइंड स्कूल यानी पटना कदम कुआं ब्लाइंड स्कूल के श्रोता हमें सुन रहे हो तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि पटना ब्लाइंड स्कूल 1922 को खुला था और 2022 को जो है पूरे 100 साल होने जा रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग जी और पटना ब्लाइंड स्कूल 2022 सेंचुरी सेलिब्रेशन जो है बड़े भव्य तरीके से मनाए जा रहे हैं और कई लाख रुपए से भी ज्यादा लागत से मनाए जाने वाले ये प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम का आप लोग भी हिस्सा बने।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सूचना दी आपने कमल भाई। हम भी जरूर प्रयास करेंगे कि अगर हमें भी इस कार्यक्रम में अवसर मिलता है या मौका मिलता है।
1: एब्सोल्युटली
0: जी जी जी।
1: तो उसके बाद पटना में मेरी एडमिशन हुई, मैं पहली क्लास में पटना ब्लाइंड स्कूल में आया और जो टीचरों ने जो मुझे देखा तो उनको लगा कि मुझे प्रमोट करना चाहिए। फिर मैं कक्षा 1 से 3 में चला गया और इस तरह से जो है मेरे प्रमोटेड होते चले गए और पटना का कुछ माहौल मुझे सूट नहीं किया और मुझे लगा कि आई शुड लीव पटना एंड आई वांटेड टू बी अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश। और सो पटना के चुक्की बनारस के कुछ टीचर्स थे जो हमारे पटना में जो टीचर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया था कि कमल किशोर आपको बनारस में होना चाहिए। तो मैं 1992 को दुर्गा कुंड बनारस जो हनुमान प्रसाद पोद्दारानंद विद्यालय।
0: और देखिए कमल भाई, एक विद्यालय जहाँ से आपकी शुरुआत हुई उसका आप शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं और उसके बाद जिस विद्यालय में आप गए हैं, संभवतः आप और हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो विद्यालय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और करीब करीब वो बंद हो ही चुका है।
1: निश्चित रूप से सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली यू नो वाराणसी इन सेम पीरियड वाराणसी इज वाज कॉल्ड वेडसी एंड नाउडेज आल्सो इन इंग्लिश वी से वेडसी एंड वाराणसी इज द सेंटर ऑफ म्यूजिक कल्चर एंड एजुकेशन। बनारस एक बड़ा ही शिक्षा संस्कृति म्यूजिक इनके जो है सेंटर संगीत शिक्षा और संस्कृति के केंद्र है और बनारस में BHU और बनारस में काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद जैसे 3-3 यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। तो उस एरिया में जब मैं बनारस गया 1999 में 9th क्लास में एडमिशन लिया था सर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे BHU से सब जितने लेडीज जेंट्स गर्ल्स बॉयज सभी लोग हम लोग फ्री सेवा देने आते थे रीडर के रूप में राइटर के रूप में, तो उनसे मुझे काफी प्रेरणा मिली। और उसके बाद फिर मैं बनारस में 12th पास करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया MA किया, अनफॉर्चुनेटली MA कम्प्लीट नहीं हो पाया, लास्ट सेमेस्टर का पेपर मैं दे नहीं पाया, मेरी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद फिर मैं मुझे लगा कि मेरे घर में पढ़े लिखे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, आई वाज इन अ फिक्स। तो फिर हुआ कि नहीं, मैं दिल्ली आ गया भक्ते और दिल्ली में मैं बीमार पड़ गया संस्थाओं में रह के। फिर मेरी बहन रहती है डेरा सच्चा सौदा हरियाणा में, आप लोग जानते होंगे डेरा सच्चा सौदा हरियाणा, संदीप सर आप जानते होंगे
0: बिल्कुल सिरसा
1: उम्मीद राम में
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सिरसा में
0: जी।
1: तो बचपन से मैं वही रहा हूँ, गर्मी छुट्टियों में मैं वही रहा हूँ, इसलिए मुझे हरियाणा भी बोलना पसंद भी है जी। तो उसके बाद मैं 12वीं पास करने के बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आया और वहां से मैंने BBA में जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद BRA से मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग की और फिर मुझे वहीं से रास्ता मिल गया, रास्ते मिलते चले गए, मैं NIBH देहरादून चला गया और वहां से मैंने शॉर्ट हैंड के लिए एडमिशन ली थी पर मैंने उसको अधूरे छोड़कर मैंने BEd में आ गया, स्पेशल BEd करा MEd करा और आज 2013 से तकरीबन आज तक जो है मैं दिल्ली मतलब गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए TGT इंग्लिश के रूप में वर्क कर रहा हूँ।
0: काफी घटनाओं से भरा आपका जो है वो समय रहा है कहीं पे कुछ पूरा किया और कहीं पे कुछ अधूरा छोड़ दिया। खैर
1: बड़ी कहानियां है सर, आप पूछेंगे तो जरूर इनके जवाब भी मिल जाएंगे।
0: नहीं नहीं वो ठीक है, जिंदगी भी इसी का नाम है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ममता जी भी हमारे सुनने वालों को विस्तार से
1: अपने ममता जी
0: जी।
2: सर मेरी नाम ममता कुमारी है और मेरा घर छपरा जिला बड़ा तेलपा ग्राम में है मेरा घर
0: जी,
2: और इनसे और शादी हो गया।

0: हम लोग दो बहन हैं।
1: तो ममता जी, हम जानना चाहेंगे कि कमल भाई से मिलना कैसे हुआ आपका?
0: इनसे मिलना हुआ जैसे मैरिज, जैसे हम लोग पढ़ाई खत्म हो गया, मतलब बीए पढ़ाई खत्म हो गया, उसके बाद जैसे घर का लोग सब लोग शादी का बात चलाते हैं, वैसे मेरी मम्मी पापा स्कूल, मतलब हम 8वीं क्लास तक पढ़े हैं ब्लाइंड स्कूल में
1: जी,
0: वो छपरा जिला में ही है मेरे घर के पास में
1: जी,
0: तो वहीं पर हम 8वीं क्लास तक पढ़े, उसके बाद मतलब छपरे में ही है वहीं पर कॉलेज, उसके बाद हाई स्कूल में पढ़े, उसके बाद कॉलेज में पढ़े, उसके बाद मतलब मेरे मम्मी पापा मैरिज के बाद चलाने लगे, उसके वो स्कूल का ही सर हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो उन्हीं से बात चलाने लगे लोग, तो इन्हीं मतलब बोले लोग कि एक कोई लड़का हो तो बताएं, तो यही मतलब अखिलेश सर हैं तो वही बताए, तो मतलब हम लोग का फोन नंबर से बात हुआ।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो फोन पर ही सारे बात हुआ।
1: तो पहली बार में ही पसंद आ गए थे आपको कमल भाई?
0: हाँ सर, मतलब बात किए, वो जो अंग्रेजी बोलते हैं
1: जी,
0: तो अंग्रेजी बोले, तो उसके बाद हम भी बोले, हमसे भी मतलब जो सारे पूछे कि तुम कितने पढ़ाई की है, क्या कैसे करती है, तुम कैसे काम कर लेती है, तो हम भी बताए, वो भी अपना बताए, तो हम बोले ठीक है, तो हम बोले कि ठीक है तो शादी कर लेंगे, आप ये भी बोले कि ठीक है हम कर लेंगे
1: जी। चलिए अच्छा है, बाद में और आपसे हम कोशिश करेंगे जानने का, लेकिन इस बीच में कमल भाई
2: जी सर,
1: आप जरा बताएं कि कब से आपने विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया था?
2: Absolutely.
1: और किस प्रकार जो है वो ममता जी तक पहुंचे आप?
2: Absolutely. सर, जैसे आपको मैं जैसा कि बताया हूँ कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने माँ बाप के 11 भाई बहन है, यानी कि क्रिकेट की पूरी टीम मौजूद है, और ये 11 भाई बहन में हमारी 8 बहनें और हम 3 भाई हैं, तो चूंकि ब्लाइंडनेस जो है वो गाँव में आज भी कर्ष समझा जाता है और कष्ट समझा भी जाता है, और देखा जाए तो परिस्थितियों के हिसाब से ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ी अब्स्ट्रैक्ट भी मुझे भी लगता है, क्योंकि तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, आजकल जो जिस तरह से एग्जाम सरकार ले रही है, जिस तरह से पेपर बनाओ तो इसकी कॉपी करो, तो उसको कॉपी वोपी करना तो ईजी है, फिर भी डायरी बनाओ, फिर बच्चों को टेस्ट दो, फिर उसको चेक करो, फिर चेक करके उसके अकॉर्डिंगली नंबर दो, तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप कितने भी सारे ऐप्स डेवलप हो गए हैं, पर आप ऐसी कोई ऐप नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं बनाई गई है आज तक जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड उसको लिख सके ब्लैक बोर्ड पे या फिर कागज पे, इस बात को मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग सहमत होंगे इस बात से जी। तो ये बात, फिर पढ़ाई जहां तक रही बात मुझे ममता सब मैम से मिलने की बात, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 2013 से जॉब कर रहा था डिफेंस कॉलोनी में, उसमें गेस्ट टीचरों की जो सैलरी थी वो पर डे के हिसाब से 700 रुपए थी
1: जी,
2: उसमें मेरा सीटेट क्वालिफाइड में नहीं था
1: जी,
2: तो मैंने बीच में अप्लाई करना छोड़ दिया, फिर 2015 में मेरा सीटेट हुआ, उसके बाद मैं दोबारा अप्लाई किया, उसके बाद हो गया, और 2015 में ही जॉब लगने से पहले ही ये अखिलेश सर, जैसा कि मैडम ने आपको बताया कि अखिलेश जी ये दिल्ली सरोजनी नगर में जो एज ए म्यूजिक टीचर है,
1: वो भी ब्लाइंड साइटेड है,
2: एब्सोल्युटली ही इज आल्सो ब्लाइंड, तो सर ऐसा हुआ कि उनसे मेरी मुलाकात हुआ करती थी मदनगिरी में, छुट्टियों में हम लोग आते थे
1: जी,
2: तो वो मुझसे बोलते थे कमल किशोर शादी करोगे? ओके, तो मैंने कहा कि शादी करोगे? तो मैंने कहा जरूर जी शादी कराओ सर, जो कहोगे वो कराऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, शादी तो शादी है। फिर किसी तरह से उनसे मतलब पट पट आ गए, उनसे नंबर मैंने ले लिया।
1: अच्छा
2: हाँ, और नंबर लेने के बाद मैंने पहले उनको सुना वो क्या क्या बोलते,
1: तो नंबर आपने क्या कह करके लिया, मतलब कि सीधा मतलब बात बात करूंगा या?
2: नहीं बोला नहीं सर, देखो मैंने उनके सामने बात की, पहले मैंने उन्हीं के फोन पे बात की, उन्हीं के फोन पे बात की, मैंने बोला कि जी मेरा नाम है कमल किशोर कुमार और आपके यहाँ एक लड़की है ममता करके, और मैं उसके लिए बात करना चाहता हूँ और मैं खुद बात कर रहा हूँ, तो फिर ममता बोली कि मेरा ही नाम ममता है, हम बोले ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर लेते हैं।
1: तो आपने क्या समझा था उस समय इनको?
2: नहीं उस समय मैं सोचा कि उनकी सिस्टर होगी या कोई और
1: जी जी जी। चलिए फिर आगे,
2: तो फिर हुआ कि नहीं, फिर उनका नंबर लिया और फिर हम

0: से जो है आपस में बातें, उन्होंने अपनी बातें रखी, जो ब्लाइंडनेस की जो कॉन्सेप्ट है आजकल या पहले भी थे, और जो गांव में जो ब्लाइंड के प्रति जो परिस्थितियां हैं उसके अगेंस्ट में उन्होंने जो कुछ भी बताया वो मेरे से मैच खाता दिखाई दिया। मुझे लगा कि हाँ, एक चीज मैच नहीं खाता है जो सही बात है कि मेरे फादर जो है वो गांव में, मतलब एज ए डॉक्टर, सिंपल डॉक्टर है, वो MBBS नहीं है, गांव में डॉक्टर रहे हैं, पर इनके जो फादर है वो गांव में हेडमास्टर रिटायर्ड है जी। तो हमने इनसे बातचीत की और हमें लगा कि चलो कोई नहीं, हम लोग जीवन जी लेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि कंप्रोमाइजिंग में क्या क्या कर लेती है, खाना बना लेती है, कपड़ा प्रेस कर लेती है, कपड़े धुल लेती है, सारे काम कर लेती है। तो मुझे भी लगा कि यार ये सारे काम ये कर ही रही है, मैं स्कूल में पढ़ाई रहा हूँ, पर जब लगी एक शादी कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने शादी कर ली और शादी भी करी तो बिल्कुल मतलब ऐसे कि उनके पेरेंट्स का कोई मतलब नहीं था, उनकी उनकी समर्थन बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी शादी कहीं और हो। और वो मैं भी शादी से पहले एक बार मिला भी था इनकी
1: कहीं और, मैडम मतलब, से मैंने कहीं और मतलब कहाँ हो,
0: कहीं और नहीं, हम मतलब उनके घर गए थे शादी से पहले एक बार गए,
1: मतलब वो साइटेड से करवाना चाहते थे क्या
0: जी, उनके पेरेंट्स चाहते थे हमें देखना कि ये तो वही बताएंगे कि वो किसे करवाना चाहते थे, चूंकि पर उनको लगता था कि मैं बेरोजगार हूँ और चूंकि उनका जो है भरण पोषण कैसे करूंगा। तो मैंने उनको बताया कि मैं एज ए गेस्ट टीचर जॉब करता हूँ, तो उनको यकीन नहीं हुआ। फिर भी ममता की मर्जी से शादी हो गई और शादी एक मंदिर में हुई। शादी के बाद हम लोग दिल्ली आ गए और ममता पहली बार दिल्ली आई, और इससे पहले वो दिल वालों की दुनिया में नहीं थी। तो फिर हमने दिल्ली लाया और दिल्ली में जब आने के बाद तो मेरे जो ससुराल वाले हैं वो आज भी कहते थे कि ये चंदा काटता होगा खाता होगा, पर मुझे चंदा काटना आया नहीं आज तक मैंने। तो फिर हुआ कि जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था 2017 में, तो पहली गुड़िया जब हुई तो वो मैके में हुई, तो मैके में जब ये हुई तो मैं पैसे भेजना शुरू कर दिया एक बार में, वैसे 10,000 रुपया महीना जब बच्चा होने लगा तो 40,000 ऐसे भेजने लग गया। तो गांव उनको लगा कि इसके पास पैसा है नहीं, ये भेज कैसे रहा है इतने इतने पैसे ना। उसके बाद है ना, उसके बाद फिर वो मेरी मिसेज को और बच्चे को छोड़ने आए, वो मेरे छोटे वाले साले हैं, वो आते हैं, वो बात करते हैं हमसे, और एक उनसे बड़े जो साले हैं उनकी मिसेज आई थी छोड़ने, वो लोग भी रहे।
1: कमल जी एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ
0: जी, जी,
1: मतलब आपने क्या ये तय कर रखा था कि भाई आपको बिना जॉब करती हुई और ब्लाइंड लड़की से ही शादी करनी है?
0: जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आ रही है
1: जी।
0: जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहा था
1: जी,
0: उस समय डॉक्टर आरके सर थे, डॉक्टर आरके चौहान थे डॉक्टर साहब, तो वो हमें पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि कमल किशोर मुझे तो नहीं लगता कि तुम एक देहाती।
1: आरके चौहान या आरएस चौहान?
0: या एब्सोल्युटली आरएस चौहान,
1: आरएस चौहान जी,
0: और हमारे फेवरेट गुरु रहे हैं अभी भी हैं
1: जी, जी, जी।
0: तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कमल किशोर तुम ब्लाइंड से शादी करोगे या सर्टिफिकेट से? मैंने कहा मैं ब्लाइंड से नहीं करूंगा शादी। तो फिर ये हुआ कि भाई बीएड करा, एमएड करा, उनमें भी लड़कियां थी, काफी अच्छी अच्छी लड़कियां थी, सब लोगों से हमारी दोस्ती प्यार सब कुछ होता रहा। पर मुझे लगा कि जब सब अलग थलग पड़ गए, जब हम बेरोजगार हो गए, तो मुझे लगा कि यार फिर कोई नौकरी करनी है, शादी करनी है, शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यार, फिर घर कैसे बसेगा, परिवार को क्या होगा। फिर यही बात मेरी मिसेज के मन में भी गूंज रहे थे, तो हमने कहा कि चलो यार फिर पहले शादी करते हैं, लेकिन नौकरी हमारी लग जाएगी क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है, सब कुछ जमा हो चुका है, बस जॉब ज्वाइनिंग की बात हो रही है। तो शादी करा मैंने 28 नवंबर को और 9 दिसंबर को ज्वाइनिंग हो गई।
1: क्या बात है, एक तरह से मतलब सब कुछ कार्रवाई हो ही गई थी जॉब की, फिर भी ममता जी के आने के बाद जो है आपकी नौकरी भी लग गई,
0: ज्वाइनिंग हो गई जी,
1: बहुत बड़ी
0: सर ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद आज तक वो ज्वाइनिंग चल रही है।
1: लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए कि आपने वास्तव में चाहा क्या था, कि कोई भी मिल जाए करनी है, या फिर आप कहीं ना कहीं ये चाहते थे?
0: नहीं सर, कोई भी मिल जाए कर ले वाली बात तो ये नहीं थी, पर हमारे भी कुछ अभिलाषाएं थी कि हम शादी करें, अगर या तो ब्लाइंड, चूंकि मैं ब्लाइंड हूं तो ब्लाइंड से शादी कर लेनी चाहिए भाई दवे। उस समय मुझे इतने अनुभव नहीं थे, लेकिन आज के अनुभव से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि हमने व्यक्ति इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को सुने हैं और बहुत सारे लोगों से बातें भी हुई है मेरी, जिसमें कि उन्होंने जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और जो ऑर्थोपेडिक हैं, और इनके भी मैंने देखे हैं, इनकी जिंदगी की भी कहानियां मैंने सुनी है, जो विजुअली इम्पेयर्ड साइटेड हैं उनकी भी कहानियां सुनी है, जाना है। और मैं जो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है, मैं उनके बारे में आपको बताऊं कि जो हमारी फीलिंग है वो लगभग सेम होती है जो विजुअल। हाँ, इस चीज को आप माने या ना माने, पर आप करीब से कभी आप देखिएगा सर, आपके काफी लोगों को आप हैंडल करते हैं जिनको करीब से फील करिएगा कि जैसे एक अनुभव के तौर पे ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग सामान्य यूनिवर्सिटी में या सामान्य कॉलेज में या सामान्य स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं और उसमें सामान्य टीचर हैं, मेल एंड फीमेल सारे हैं, तो आप देखेंगे कि आपसे कितनी लड़कियां बात करती हैं मजाक मजाक में, है ना। और जो तमाम सेटेड लोग हैं उनसे वो लोग एक दूसरे से किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं और कितने करीब पाते हैं वो लोग एक दूसरे को।
2: जी जी।
0: और जी, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने आपको सेग्रीगेशन दिखाई देगा। और यही आप किसी ब्लाइंड प्रोग्राम में जाइए जो स्पेशली ब्लाइंडों के लिए होता है, चाहे उसमें सेटेड लोग ही क्यों ना हो, पर उसमें जो है ब्लाइंड का पार्टिसिपेशन मस्ट होता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि हम लोगों की फीलिंग सेम है और शादी कर लेनी चाहिए। और ये बात सही भी है कि जो ब्लाइंड है वो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, किसी एक दूसरे को कुछ भी दुख पीड़ा दर्द सुख दुख में साथ हो सकते हैं। पर सेटेड में चाहे कहीं भी हो, मैं चाहे वो प्रोग्राम को ले लूं या कुछ भी ले लूं, मैंने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फीलिंग जरूर डिफरेंस देखी है। प्लस जो अदर डिसेबिलिटीज है जो ऑर्थोपेडिक है, वो कहीं कहीं तो मैंने उनमें भी इस तरह की चीजें देखी है, और कहीं कहीं सेटेड में मैंने बहुत अच्छी देखी है।
2: बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को समझाया कमल भाई, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि आपकी फैमिली ने क्या सोचा आपके विवाह के बारे में, या उन्होंने बस बिल्कुल ही छोड़ दिया कि भाई तुम जाने और तुम्हारा काम जाने।
0: तुम जाने और तुम्हारा काम जाने, बिल्कुल। बात यह है कि जो एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो, उनको लगता था कि जो सूरदास होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, तो सूरदास कहा जाता है गाँव में, तो हमारे पापा कहते थे कि सूरदास है, इसको क्या करेंगे, कुछ गाना भजन वगैरह सिखा देंगे, एक तो है गाएगा बजाएगा। तो हमको लगा कि हमें उस समय मुझे पता ही नहीं था कि मैं सूरदास क्यों कहता है, मुझे मेरा नाम कमल किशोर है और मुझे जो लोग सूरदास कहते थे तो मैं उसको भी कहता था हाँ सूरदास जी, तो हाँ सूरदास जी, जी सूरदास जी बताइए आप मुझे सूरदास क्यों कह रहे हैं, तो मैं कहता आप मुझे क्यों कह रहे हैं तो आपके पास आंख नहीं है, मेरे का मगाइए आपके पास आंख है, कहाँ कहाँ है आप दिखाइए, तो ये वाली बात होती थी। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि सूरदास जो है वो एक कवि थे और उनके नाम पे जो है ब्लाइंड को जॉन मिल्टन ना करके सूरदास कहते हैं क्योंकि इंडिया है ये। तो फिर मेरे पापा ने सोचा कि ये पढ़ाई लिखाई अपने आप करेंगे और हो सकता है अगर इसकी किस्मत में होगी तो शादीवादी करेगा, और मेरे भाई भाई नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो क्योंकि उनको लगता था कि ये शादी पढ़ लिख जाएगा, नौकरी वोकरी करेगा, तो इसकी जो है हम लोग शादीवादी करेंगे, इनको रखेंगे और इन्हीं के पैसे से हम लोग भी राज करेंगे। तो उनका मन में ये था, तो हमने जी
2: आमतौर से गांव में जो एक सोच होती है वही सब आपके साथ भी हुआ।
0: जी बिल्कुल, सेम सेम सेम थॉट, सेम फिलोसॉफी, सेम साइकोलॉजी लागू होता है। और सर ये जो ब्लाइंड के बारे में, मैं उन लोगों को भी एक हिदायत दूं जो ब्लाइंड से मैरिज करना चाहते हैं, जो कपल ब्लाइंड में बीवी है उनके लिए भी मैं एक बात बोलूंगा कि आप लोग चाहे कितना भी आप एक किसी ऐसे घर को देखिए, किसी आप ऐसे मित्र को तलाशिए जो जो ब्लाइंड हो, जिनकी बीवी सेटेड हो, और उनके यहाँ कभी कभार मौका मिले तो घूमने जाइए, नहीं भी जा पाए तो उनसे बातें करते रहिए, कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन मिलेगी सर। लेकिन अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो अगर जो आपके साथ होना है, जैसे मान लो आज स्कूल में हरासमेंट हो रहा है, कब यार पेपर चेक करना है, तो पेपर चेक कैसे करें, हमारे स्कूल में टीचर कोऑपरेटिव नहीं है, फिर कैसे होगा, बच्चों को पकड़ेंगे, बच्चे तो छुट्टी पे हैं, अब क्या होगा। और सेटेड बीवी रहेगी तो उसको लगेगा कि अब ये तो आपकी सरदर्दी है, चाहे वो मदद भी कर देगी। लेकिन एक ब्लाइंड है तो उनको लगता है कि यार जो प्रॉब्लम है जो इनके साथ है वो मेरे साथ भी है, जो कुछ भी हो रहा है वो इनके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कवर कर जाती है बात। और ये जो सेटेड होती है उनके मन में और भी भावनाएं आ जाएगी कि यार मैं मुझको जब यही करना था तो ये ब्लाइंड सही क्यों करा, तो फिर ये भी हो सकता है कि मैं कुछ और कर लेती, मैं भी जॉब में होती, तो बहुत तरह की बातें होती है। जी सर,
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमल भाई। तो कुल मिलाकर के मतलब बहुत ज्यादा इसमें आपने परेशान होने की बजाय और इधर उधर मतलब भटकने की बजाय आपको लगा कि जो दिल को पसंद आ जाए बस वहीं पर अपना घर बसा लिया जाए, क्यों?
0: नहीं सर, नहीं, मैं NIBH में जब था तो NIBH में बहुत सारी लड़कियां थी, तो मैंने NIBH में देखा कि हॉस्टल में जो लड़कियां हैं तो उनमें से मैंने बहुतों के बारे में कुछ सोचा भी, और चूंकि सेटेड भी थी, सेटेड में थी, मेरे साथ अनिता नेगी थी और लोग भी थे, तो लेकिन फिर जब हम अपने घर में आ गए, जब इंस्टीट्यूट से अलग हो गए, जब हम इधर उधर रहने लगे, फिर जॉब की तलाश में दिल्ली में आ गए, तो फिर हमें लगा कि हमें एक पार्टनर चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक पार्टनर जो है वो समझ सकता है कि एक व्यक्ति को कैसे अस्थायित्व कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने ममता से ऐसे शादी नहीं की है, इनसे मैंने 6 महीने तक पहले बात की है, बहुत कुछ इनके बारे में जाना है, सुना है और बहुत कुछ समझा भी है, और हमको और आज भी ये बात सही है कि किसी सेटेड लड़की से कम काम करने में नहीं है, वो हर काम करती है, खाना बना देगी कि आप भी खाओगे, सोचते रह जाओगे कि कैसे खाना बनाइए, तो सारा काम बहुत अच्छा कर लेती है। और हमारे इनके घर वाले भी आते हैं, सब लोग आते जाते रहते हैं, हमारा भी अभी भी मेरे साले साहब का लड़का आया हुआ है, मेरी शालिम साहिबा आ रही है होली में, और मेरे साले साहब आ रहे हैं, तो इन लोग आते जाते रहते हैं, और मुझे इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है फिलहाल। और आप पहला और दूसरा सवाल आप करोगे कि आप साला साले की बड़ाई तो खूब कर रहे हो, अपने घर के बारे में नहीं बता रहे हो। निश्चित रूप से मेरे जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेरे फादर का एक्सपायर हो जाने के बाद फिर मेरे घर में इस तरह कोई इंटरेस्टेड लोग नहीं दिखे कि हमारे साथ कोई रहे। मैंने मम्मी को भी कुछ दिन के लिए बुलाया था, तो मेरी मम्मी वैसे भी ब्लाइंडनेस को निगलेक्ट करती रही है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो जब दोनों दो दो ब्लाइंड उनके सामने आ गए तो उनको थोड़ा ज्यादा ही मुसीबत झेलनी पड़ी, उनको लगा कि हम दोनों ब्लाइंड के बीच में नहीं रहना चाहिए, फिर वो वापस चली गई मम्मी, फिर हम लोग रह रहे हैं ससुराल वालों की सपोर्ट से रह रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ समझदारी है, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो ये समझते हैं, ये लोग आते जाते हैं।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है कमल भाई, आपने जो कुछ जानने का प्रयास किया और किस तरह से आखिरकार आप सहमत हुए वो सब हम जानेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से में, लेकिन यहाँ पर ममता जी से थोड़ा बात करना चाहूंगा मैं।
0: ममता जी
2: जी
3: जी सर
2: जी ममता जी, तो ममता जी आपको क्या पहली नजर में ही ये सब अच्छा लगा था कि भाई कमल जी जो है उन्हीं से करनी है, या आपके लिए भी कहीं घर वाले और कहीं भी ढूंढ रहे थे?
3: नहीं सर, पहले नजर में तो नहीं थे, लेकिन मतलब मेरा नजर तो था पहले जो स्कूल का मतलब लड़का था लोग वो लोग पर, मतलब हम चाहते थे कि वो लोग नौकरी वाला था, जॉब वाले थे
2: जी,
3: तो मतलब हम तो पसंद पहले ही, मतलब ये लोग से बात नहीं हुआ था तब मुझे, मतलब मैं पसंद कर लिए थे लड़का, तो माँ बाप मम्मी पापा को भी, मतलब मम्मी को पसंद थे वो लड़का, इसलिए कि मतलब सामने सामने लोग दिखता था नौकरी करते हुए
2: जी,
3: तो वो लोग को पसंद था। फिर अखिलेश सर बताए लड़का को, तो ये नंबर से बात किए फोन से, तो मतलब ये कुछ अजीब अजीब से बात की है, बहुत मतलब लगे कि मतलब मेरे प्यार को, मेरे लव को समझ पाएंगे, मेरे दुख को समझ पाएंगे, तो हम भी उन पर हो गए और फिर ये भी हो गए
2: जी। नहीं अभी ममता जी, अभी इन्होंने कहा कमल जी ने कि आपके घर परिवार में थोड़ा विरोध था, तो
3: हाँ सर,
2: वो मतलब बताएं किस तरह का विरोध था?
3: विरोध था मतलब जैसे पहले फोन से बात हुआ, उसके बाद मतलब ये बोले कि हाँ शादी के बाद चलने लगा, फिर हम बोले, हमारे घर वाले बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले लड़का को देखेंगे, बुलाओ, तो मतलब तो फोटो, मतलब ये फोटो भेजे, नहीं फोटो नहीं भेजे, हम पटना एग्जाम देने गए थे KBS का
2: जी,
3: तो वहीं पर इनको बुलाए,
2: ठीक है,
3: दिल्ली से बुलाए, बोले कि मतलब मेरा एग्जाम है, आप आइए, यहीं पर हम लोग मिल भी लेंगे
2: जी,
3: और अपने मम्मी पापा से मिला भी देंगे
2: जी,
3: तो वहीं पर मेरी भाभी का भाई रहता है पटना में
2: जी,
3: तो हम उनको वहीं पर रखवा दिए, एक दिन पहले आ गए, रात भर वहीं पर रुक गए भाई के पास
2: जी,
3: और हम सुबह सुबह गए एग्जाम दिए, उसके बाद फिर आ गए इनके पास
2: जी,
3: और हम और हमारी सिस्टर और मेरे भाई, छोटे वाला भाई गए थे लोग तो लेकर इनको आ गए घर, तो घर आ गए तो फिर मतलब ये रात भर वहीं पर रह गए घर पे। तो मतलब मान लीजिए कोई घर पे रह जाएगा लड़का बिना शादी किए हुए, इसीलिए मेरे घर वाले विरोध किए कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे शादी ऐसा लड़का से नहीं होगा, ये सब मतलब अपना जो जितना सामान था रजिस्टर मतलब क्या बोलते हैं अपना सर्टिफिकेट भी सब लिए लिए गए थे, कपड़ा वपड़ा सब लेकर गए थे। तो मेरी माँ बोली भाभी बोली लोग कि जब अपना सामान लिए आया है तो फिर इसका घर द्वार है नहीं, कहाँ रह रहा है, जब सामान लेकर आया है तो फिर इसके साथ शादी कैसे होगा, जहाँ रह रहा है वहीं सामान लेकर जा रहा है आ रहा है तो फिर इसके साथ शादी कैसे होगा, नहीं होगा शादी। सब लोग विरोध करने लगे तो फिर ऐसे करते करते करते करते 5 दिन फिर घर पर रह गए हमारे। मतलब हम इनको सब करते थे, खाना पीना सब खिलाते थे, लेकिन मेरी मम्मी गुस्सा हो गई थी
2: जी
3: कि नहीं ये इसको घर पर क्यों रख रखी है, बोलो जाओ।
2: अच्छा
3: तो हमको भी शर्म लगता था कि हम कैसे बोले इनको।
2: सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी।
3: तो हम बोले कि कैसे, मतलब अपने मन में कहते थे कि अरे हम कैसे बोले जब ये अपने से नहीं जा रहा है लड़का तो
2: जी।
3: तो फिर मतलब मेरे स्कूल का एक सर है तो वो आए इनको समझाए कि आप अपने घर को चले जाइए। तो फिर ये जाने लगे तो हम रोने लगे, अब 5 दिन रह जाएगा कोई।
2: सही बात है।
3: तो रह गए तो मतलब ये अपने घर चले गए तो फिर हम रोने लगे, तो फिर मतलब मोबाइल से कॉन्टेक्ट होते रहा, हम बोले मोबाइल नंबर मत बदलिएगा। फिर इधर उधर भड़काने लगा लोग, सब स्कूल का टीचर लोग, मेरी मम्मी पापा को सबको बोलने लगा कि नहीं ऐसा लड़का है वैसा लड़का है शादी मत करो। तो मेरी मम्मी कुछ भी नहीं एकदम ना के हाँ नहीं करती थी, कभी नहीं,
2: कभी हाँ नहीं करती। अच्छा
3: नहीं कभी हाँ नहीं करती थी, बोलती थी नहीं शादी होगा ही नहीं।
2: अच्छा
3: तो वो हम मतलब रोते रहते थे, खाना पीना नहीं खाते थे, छोड़ दिए थे।
2: हाँ।
3: तो फिर बोले मतलब वही सर से अर्जुन सर है तो वही बोले अखिलेश सर का दोस्त है तो बोले कि सर मेरी मम्मी से बात होती है उनको।
2: हाँ।
3: तो ब्लाइंड का ब्लाइंड दुख समझ सकता है।
2: सही बात है।
3: तो उन्हीं से हम बोले कि सर आप कहिएगा तभी होगा, उनको कैसे कैसे करके पटाए रोए बहुत बार, अकेले में बोले कि सर अपने भतीजी को लेकर गए। हाँ। और बोले सर प्लीज शादी करा दीजिए हमको यही पसंद है, और वो भी बोले कि हमको यही लड़की पसंद है।
2: हाँ।
3: तब जाके बोले तो फिर नहीं नहीं नहीं नहीं हुआ। फिर हम बोले कि कुछ नहीं होगा तो भाई हम दुनिया में रहेंगे ही नहीं, बस हम दूसरे।
2: यहाँ तक बात हो गई थी मतलब।
3: हाँ सर।
2: ओहो, आज कैसा लग रहा है आपको ममता जी, आप सब ठीक है ना?
3: सब सही है सर।
2: खुश हैं आप?
3: जी सर।
2: और बेटियां कैसी हैं आपकी?
3: सब सही है, दोनों
2: दोनों अच्छे हैं।
3: ठीक जी सर।
2: क्या बात है। तो बच्चों को मतलब पालने में कोई दिक्कत होती है आपको कि नहीं?
3: नहीं, बड़ी वाली तो मेरी मायके में ही हुई थी तो 4 महीना के हो गई तो लेकर आ गए यहाँ पर।
2: हाँ जी।
3: तो फिर उसके बाद मतलब दवा ववा पिलाने में मतलब हमको तो पता नहीं था कि पहले अपने भतीजा और भतीजी को हम पाले हुए थे छोटे।
2: अच्छा,
3: थे
2: अच्छा,
3: हम अपने घर में लड़की में बड़े हैं। हाँ, तो ये सब करने में सब हमको मतलब सब कर लेते थे,
2: सब अनुभव था, अनुभव था।
3: हाँ, हाँ सब छोटे। मेरी मम्मी का हरदम तबीयत खराब रहता है
2: जी।
3: तो मेरी भाभी लोग को शादी नहीं हुआ था, भैया को, तो पहले मतलब घर में हम ही काम करते थे, पढ़ाई भी करते थे काम भी करते थे
2: जी।
3: तो सारे खाना पीना सब चीज काम कर लेते थे। तो फिर वो भतीजा भतीजी को सब संभाले हुए थे तो हम अपने बच्चे को भी संभाली, बस सिर्फ दवा पिलाने में दिक्कत होता था। फिर वो भी आ गया दवा पिला, धीरे धीरे आ गया वो भी।
2: तो ममता जी एक बात बताइए, जैसे कमल जी ने आपसे बहुत सारी बातें पूछी, 6 महीने तक उन्होंने बातचीत रखी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने भी कभी पूछा था कमल जी को कि भाई आप क्या कर सकते हैं, या अपना एक तरह से आपने इरादा पक्का करने के लिए कोई बात पूछी हो कमल जी से?
3: नहीं सर, मैं तो बस यही पूछे कि आप नौकरी करते हैं कि नहीं, फिर ये बात तो बोले कि हमारा नौकरी हो जाएगा, हो गया है, फिर लास्ट में ये बोलने लगे कि तुम किसी और से शादी कर लो, हमारा नौकरी नहीं हुआ है।
2: अच्छा अच्छा।

0: फिर बोले कि नहीं, हम बोले कोई बात नहीं, जब सब कुछ हो गया, मतलब मेरे घर पर गए थे तो पहले जो शादी के बाद मतलब होता है वो भी सब कुछ कर लिए थे, तो फिर हम क्या करते, कहाँ जाते उससे। बोले कोई बात नहीं, नौकरी होगा बाद में होगा, शादी कर लिया जाए। तो फिर शादी हो गया, फिर नौकरी हो गया।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कमल भाई, आपने कौन कौन से प्रश्न पूछे 6 महीने के दौरान ममता जी को?
2: ये सारे प्रश्न तो याद नहीं है सर।
1: हाँ नहीं, फिर भी जो एक आपने अपने अपना मन बनाने के लिए कोई ऐसी बात।
2: लेट मी कंक्लूड माय वर्ड शॉर्टली। ये सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो मैं ये बताऊंगा, चूंकि हम हॉस्टल में रखे पढ़े हैं, हमने सारी पढ़ाई यहाँ तक जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई की है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब हॉस्टल में, जिसको बोलते हैं एनडी हॉस्टल इंटरनेट, वहाँ पे रह के पढ़े हैं। तो हमने जो भी पढ़ाई की है लगभग हॉस्टल में रह के की है। छुट्टियों में मैं हरियाणा जाया करता था, जैसा मैं आपको बताया हरियाणा, वहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में भी मैंने कुछ दिनों तक जॉब भी की है गुरमित राम रहीम के यहाँ। ये तो मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि मुझे परिवार में रहने का ज्यादा अनुभव था नहीं, और चूंकि मेरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे तो मैं अपने घर पे छोड़ा नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं इमरजेंसी जरूरत पड़े, और उस समय हमारे पास ईमेल आईडी भी उतने वो नहीं थे, तो हमें लगा कि यार किसी भी डॉक्यूमेंट की कभी जरूरत पड़ जाए तो हम कहाँ जाएंगे घर लाने, झारखंड। तो इस प्रकार हम अपने साथ लिए फिर, और वो डॉक्यूमेंट्स मैं उनको अपने ससुराल गया, तो चूंकि उनको लगता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ भी या नहीं, तो उस तरह से मैं उस क्रम में डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ले गया था मैं। और चूंकि जब मैं कपड़े वपड़े सब कुछ ले गया था, तो मैं 1-2 दिन 4 दिन ऐसे कुछ करके रहा, मुझे किसी तरह की फील, चूंकि एक आंख वाला होता है तो उसको आंखों में दिखाई देता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, अगर कुछ, वरना ब्लाइंड को तभी पता चलेगा, या तो ये जुबान से कुछ कहे या हाव भाव कहीं शो हो, तो इस तरह की चीजें मुझे फील नहीं हुई।
1: जैसे ये बात जब मैं सुन रहा था कमल भाई, आपके 5 दिन तक रुकने वाली और फिर आप जा भी नहीं रहे थे, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था जो मैं आप पूछ लेता हूँ आपसे, कि आपको कभी डर नहीं लगा यार कि अनजान जगह है, अनजान लोग हैं, और पता नहीं कल को कुछ हो जाए मेरे साथ, तो मतलब कभी डर नहीं लगा?
2: मैं आपको बताऊं सर, देखो सच्चाई तो ये था कि हमने शादी पहले निश्चित कर लिया था
1: जी।
2: हमें लगा उनको जो उन्होंने जो बात जिस तरह से बातें की थी उनके हिसाब से मुझे लगा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम यहीं से शादी करके चल चलेंगे
1: जी।
2: तो इस वजह से मैं जो है डर हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर लड़की मेरे साथ है, ये लड़की राजी है शादी करने को, और सब हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ जीवन जीने को रेडी है, एक दूसरे को समझते हैं, तो फिर तो कोर्ट भी हमारे साथ, कोर्ट भी जाएंगे तो हमारी जीत होगी, जब हम शादी कर रहे थे कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो फिर इस वजह से, हाँ तो इस वजह से फिर मुझे लगा कि एक ब्लाइंड, जितना ब्लाइंड के बारे में, चूंकि जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि ये ब्लाइंड स्कूल करके बिहार छपरा में कोई इंस्टीट्यूट है ब्लाइंड वाली, गवर्नमेंट एडेड या कुछ भी है, तो बॉयज स्कूल है वहाँ पे, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पढ़ी और जो कुछ भी बताया इन्होंने, तो हम हमें लगा कि वहाँ पे और भी ब्लाइंड हैं, वो जानते हैं, इनके मम्मी पापा भी ब्लाइंड को जानते हैं, अभी भी ब्लाइंड की एक्टिविटी से अवेयर हैं वो लोग, तो उस बात से मुझे, मैं तल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं डरने वरने की जो बात की, मैं यही सोच रहा था कि मुझे शादी करनी है, चूंकि मेरी साली से जब मेरी बात हुई थी शादी से पहले ही, तो मेरी साली ने मुझे बोला जीजाजी नमस्ते, तो मैंने कहा शादी हुई नहीं तो जीजाजी बन गए, तो हाँ तो जब जीजाजी बन ही गए तो फिर इनसे भी शादी की बात करी थी मैंने, तो हमें लगा कि हम शादी कर रहे हैं, शादी करेंगे ही, ये निश्चित है कि शादी होना हम दोनों का तय है। तो जी, तो सर देखो, मैं मेरे मन में किसी तरह की कोई वो नहीं थी, और जो कुछ भी होता है वो सबके कहीं ना कहीं सबकी मर्जी होती है, तो हमें लगा कि चलो हम शादी करना आ जाए, जिंदगी जीना साथ में, तो इस वजह से जो है हमने, अब मैं भी एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, मुझे कहीं रख दोगे तो मैं रह जाऊंगा, मुझे क्या पता कि आप कहाँ हो, आप कहाँ, आपके इसमें कितने कमरे हैं, कौन कौन कमरे कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, तो कुल मिलाकर के ये है कि कहीं ना कहीं मतलब ब्लाइंड को कुछ बताया जाएगा जब ही तो आएगा, तो हमने इनसे शादी जी, तो हमने इनसे शादी करने की, और इस वजह से मैं, मुझे डर नहीं लगा।
1: बहुत बढ़िया
2: जी।
1: तो कमल भाई, जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप लोग रहते हैं
2: जी,
1: काफी भागदौड़ भरा शहर है,
2: बहुत ज्यादा,
1: तो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, सामान लाना, ये वो छोटी छोटी चीजें, घर की आवश्यकताएं, और हर बार कोई पास में हो ये जरूरी नहीं है, और आप दोनों दृष्टिबाधित हैं, तो इन चुनौतियों का सामना आप लोग कैसे करते हैं, क्या उसके लिए क्या व्यवस्था स्पेशल आपने कर रखी है?
2: पहले कभी इस बारे में सोचा करता था, मुझे लगता था कि कभी जब ये कमरे में आए तो यार कहाँ पे राशन दुकान कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। चूंकि अब रहते हुए 5 साल 5.5 साल हो गए, तो मुझे सब जगह का अनुभव भी हो गया। और वैसे भी मैं जैसे सब्जी वब्जी खरीदना हो गया तो मैं सब्जी बाजार से, मैं खुद भी स्कूल से आता हूँ तो बाजार से चला जाता हूँ, या अब कभी मेरी मिसेज जो है किसी लेडीज के साथ सब्जी मंडी से जाकर सब्जी ले आई, राशन की दुकान पास में ही है उनके, वो दुकान वाले से मेरी हमारी बनती रहती है। जैसे मान लो सामान आता गया महीने दो महीने में जब भी सैलरी आई उनको पैसा दिया गया, कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है। कोई भी सामान आपको, कोई भी सामान चाहिए, किसी भी तरह का सामान अगर इमरजेंसी है तो रात में भी मिल जाएगी, ऐसे कोई बात नहीं है। और भाग दौड़ वाली समस्या तो समस्या ही है, जब कोरोना का दौर चल रहा था दिल्ली में उस समय भी हम दिल्ली में ही थे और उस समय भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
1: गुड, वेरी नाइस। मतलब
2: क्योंकि हमारा स्कूल भी पास में, घर भी पास में, और दूसरी चीज ये कि सारे मार्केट वर्केट भी लगभग पास में ही है। और मार्केट जब कभी जाने के लिए निकलते हैं तो हमारे जानने वाले तमाम सारे बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं, सर जी नमस्ते, सर जी कहाँ चले हो, सर जी कहाँ चलोगे, ये तो बहुत सारे बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप चले जाते हैं, चलो सर जी मैं चलता हूँ आपके साथ, ये तो वो, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है जी, सब कोई दिक्कत नहीं है जी।
1: बहुत बढ़िया कमल भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय निकल करके आया आपकी बातचीत में
2: जी।
1: आपने डेरा सच्चा सौदा का जिक्र किया
2: जी।
1: और आपने ये भी बताया कि वहाँ आपने जॉब की, तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका?
2: सर मैं आपको बताऊँ, जो 92 से जब मैं पटना में पढ़ना शुरू किया था तो 95 में मैं पहली बार जो है मुझे सिरसा जाना हुआ, जहाँ मेरी दीदी रहती है, दो दो बहने
1: जी।
2: सिरसा में मेरी बहन, चूंकि मेरी बहन का मानना था कि मैं गाँव ना जाऊँ, गांव ना जा करके सिरसा में ही मन लगाऊं, ताकि वो अच्छा शहर है, वहाँ पे थोड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा। मेरी बहन का ये भी मानना था कि वो, मैं उनके साथ रहूं और उनसे कुछ सीखूं, घूमना फिरना, और जब जब छुट्टियां हो तो मैं उनके पास जाऊं और उनके बच्चों से खेलूं कूदूं, वो लोग हमें घुमाएंगे पार्क वार्क में और सब जगह, डॉक्टर को दिखाएंगे या और जो कुछ भी करना होगा वो लोग करेंगे, वो ऐसा मान के मुझे अपने पास रखती। तो वो लोग थोड़ा गांव के वो हैं, हम लोग जैसा कि हम लोग हिंदू हैं तो बनिया हैं तो धर्म को ज्यादा मानते हैं, तो वो डेरा सच्चा सौदा वाले जो है गुरमित राम रहीम किस सेवेदार हमारी दीदी हुआ करती, वो जो है जाती थी उस सेवा करने कभी कभी जब भी टाइम मिलता, तो उनका मानना था कि मेरी आंखें बन जाएगी। और मैं भी 9th क्लास तक ऐसा सोचता रहा कि मैं बहुत पूजा पाठ करूंगा तो कभी ना कभी मेरी आंख बन जाएगी। और इस क्रम में मैं डेरा सच्चा सौदा में उसके जो साप्ताहिक सत्संग हुआ करता था उनमें मैं भाग लिया करता था, और मैं उनको सुनता था और मुझे अच्छा लगता था, और उन्होंने कुछ मंत्र भी दिए थे उनको भी हम फॉलो करने का प्रयास करते रहे थे। तो ये सब मुझे ढकोसला लगा कि जब मैं पढ़ लिख करके वो काफी वो हो गया, तो डेरा सच्चा सौदा वाले ने मुझे अपने जॉब पे रख लिया। और वो लोग डेरा सच्चा सौदा की, क्योंकि अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं, तो वहाँ भी अच्छे बुरे लोग थे और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे उनमें
1: वहाँ पे, लेकिन एक अलग तरह का माहौल होता था जब भी वो चलता था तब

0: बहन के यहाँ से जाता था वहाँ पढ़ाने, तो वहाँ पे लोग कहते थे कि जो है वहाँ पे जो उनके गुरु जो बाबा थे गुरमीत राम रहीम, उनसे बात करना और बड़े मिनिस्टर से मिलना एक बराबर हुआ करता था। तो वो इतने पहुंच वाले थे, और आपको भी पता होना चाहिए कि वो राजस्थान को मैं विजिट किया हूँ, आई हैव बीन राजस्थान फॉर सेवरल टाइम्स। तो राजस्थान में भी बहुत सारे प्रेमी हैं वहाँ पे, और उनके भी आश्रम भी वहाँ भी खुले हुए हैं। तो हम वहाँ पे जाते थे उनके यहाँ जॉब करने के लिए, क्योंकि जब हम जॉब पर्पज से जाते थे तो हमारा प्रोफेशनलिज्म हुआ करता था, हमारा कोई मतलब नहीं था डेरा सत्संग से, प्रेमी प्रेमी इन चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। हम लोग अपना जॉब करने जाते थे, जॉब पर क्या
1: और बढ़िया, वेरी नाइस जी जी जी।
0: लेकिन इस जॉब के दौरान क्या होता था कि जो हमारे पार्टनर जो काम करने वाले होते थे, तो वो गुरमीत राम रहीम ने जो है मुझे टीचर के पोस्ट पे रखने के लिए बोला था, और इन्होंने मुझे जो है टेलीफोन एक्सचेंज में रख दिया, और टेलीफोन एक्सचेंज में रख दिया मैं वहाँ पे जॉब करने लगा। और जो हमारे साथ काम करने वाले बंदे थे वो मुझसे बहुत जलते थे, तो मैं बाथरूम में जाता था, गाना वाना गुनगुनाता था कि बात पड़ गई। तो उन्होंने बोला कि कमल किशोर जी आप जो है जॉब करना चाहते हो या नहीं। हम बोले मैं जॉब करना चाहता तो हूँ, पर मैं

0: किसी के दबाव में नहीं करना चाहता हूँ। बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई देखो ये जॉब है ये 7,000 रुपए की है और मेरी डिग्री है बीएड और एमएड, ये 7,000 में तो मेरा पानी भी गर्म नहीं होता भाई, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल बोला मिस्टर केकी कैन यू विल लीव दिस इंस्टीट्यूट। हमने कहा कि आई विल लीव दिस इंस्टीट्यूट, यू हैव नॉट परचेज्ड मी ओके फॉर 7,000, इट नॉट सफिशिएंट फॉर मी। तो मैं वहां से भगाया और जॉब छोड़ दिया। अब जॉब छोड़ने के बाद क्या हुआ कि मैं अपने मिसे अपनी बहन को कैसे बताऊं कि मैं जॉब छोड़ दिया हूं, मैं नौकरी भी नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ लिख भी गया हूं। और एक मेरा दोस्त था अभिनव मिश्रा, वो वहीं पे जॉब करता था, वो गेस्ट टीचर का ही सिरसा में ही। तो क्या हुआ कि मेरी बहन ने जब मुझे डांटा तो मैं वहां से भाग गया, अपनी बहन के यहाँ से भाग गया। और भाग के जो है चौकटा में एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट हुआ करता था, मैंने कभी सुना था किसी के मुंह से, तो भटक के मैं वहीं चला गया इंस्टीट्यूट में। जब मैं चला गया तो मेरे घर वाले सब घबरा गए। मेरी बहन बोली कि मैं इनको डांट के भगा दिया, ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया। अभिनव मेरा दोस्त फोन किया गया, अभिनव तुम्हारे पास तो नहीं गया? तो नहीं। अब मेरे मम्मी पापा सब लोग मेरी बहन से लड़ने लगे, मेरा जो है मेरा बेटा को घर से भगा दिए, वो कहाँ भाग गया, मेरा सोना जिसका बेटा है ब्लाइंड है तो क्या हुआ, तुमको नहीं रखना था तो मेरे पास भेज देती, तुम भगा क्यों दी, ये वो दुनिया भर की बात है। तो फिर जो है अभिनव किसी तरह से पता किया और वो इंस्टीट्यूट में जाके मेरे को ढूंढ, और ढूंढने के बाद मेरे को बोला कि दोस्त चलो जो है दिल्ली तुम्हारा इंतजार कर रही है नौकरी की। मैंने कहा कैसी नौकरी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और साले ने उसने जो क्या किया कि मेरे फॉर्म वॉर्म सब भर रखे थे उसने, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास थे, फोटोकॉपी वगैरह। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो मुझे दिल्ली ले आया और तब से मैं दिल्ली रहने लग गया, जॉब करने लग गया। और फिर दोबारा मुड़के मैं कहीं नहीं पूछा जी सर।
1: क्या बात है। तो कमल भाई आप सुनते हैं ये कार्यक्रम हमराही, आपने जैसा कि बताया
0: सर मैं आपके प्रोग्राम हमराही बहुत सुनते हैं, पर इधर कुछ दिनों से कुछ व्यस्तताएं बढ़ चुकी हैं। आपको शायद जो गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से जुड़े होंगे उनसे पता करिएगा,
1: जी जी
0: दिनों इतना काम बहुत लोड बढ़ गया है तो सुनना तो बहुत दूर की बात है, बात भी नहीं कर पाते।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं
0: जी, लेकिन फिर भी समय निकाल के हम सुनते हैं और जब भी मुझे टाइम मिलता है स्कूल में भी या घर में भी तो हम सुनते हैं।
1: बहुत खूब बहुत खूब
0: जी।
1: तो अपनी जिंदगी के अनुभव से कमल भाई क्या कहना चाहते हैं अब आज के हमारे श्रोताओं के लिए?
0: सर देखो अनुभव मेरे इतने हैं कि अगर उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश करूँ, समराइज करने की कोशिश करूँ तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाई हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चूंकि सर मैं आपको बताऊं मैंने बीए में ग्रेजुएशन में मेरी फिलोसॉफी थी, ग्रेजुएशन में इंग्लिश हिंदी फिलोसॉफी, और चूंकि बीएड और एमएड में मेरी साइकोलॉजी रही है, और साइकोलॉजी और फिलोसॉफी जब ये दोनों मिल जाते हैं तो और भी तगड़े हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो पौराणिक काल में जो पढ़े हैं कि कलयुग में द्वापर युग त्रेता युग सतयुग, इन बातों को अगर थोड़ा सा विचार के अपनी जिंदगी से जोड़ के चले तो चूंकि मुझे याद है और आपने भी सब सुना होगा कि त्रेता युग जो होता है उस युग में धर्म के केवल 3 पद रह जाते हैं और 1 पद जो है और वो पाप के होते हैं। और उन्हीं पद त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था उस समय रावण जो बैरी था जो दानव राक्षस था उनको स्वयं दानव होते हुए भी शिव भक्त था और उन्हीं के घर में विभीषण जैसा राम का भक्त हुआ करता था। तो वो युग था जब कृष्ण भगवान ने जो है वो समझाया अपने उपदेश में बताया भीष्म पितामह को कि भाई देखो द्वापर युग में जो है त्रेता युग में तो ये था कि 3 पैर थे धर्म के 1 पैर थे पाप के, तो इसकी वजह से रावण भी शिव भक्त बना, लेकिन जब द्वापर आया तो उससे भी बुरा हुआ क्योंकि शकुनी से लेकर के कौरव से लेकर के सारे विपक्ष में आ गए और बेचारे 5 पांडव अकेले बच गए, क्योंकि जबकि दो धर्म के 2 पैर पाप के हैं तो बराबर होने चाहिए। तो परिस्थितियां बदल गई, ये तो कलयुग है, यहाँ तो 3 पद पाप के और 1 पद पुण्य के हैं, इनमें से आप जो कुछ भी कमाते हैं जो कुछ भी करते हैं उनमें हिस्सा लगा लीजिए कि 3 पद आपका नेगेटिव में जा रहा है, या अगर आप 100% ऑनेस्ट हैं तो 75% आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धोखा खाओगे, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे जज हो, इंजीनियर हो, आज के दौर पे देख लीजिए टीचर हो, प्रोफेसर हो, एडवोकेट हो, जो भी हो, अगर आप वाकई ईमानदारी से काम करते हैं 100% तो निश्चित रूप से 75% आपको माइनस में जाना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जब जिंदगी जिए तो नेगेटिविटी को अवॉइड करें, प्लस हम उनको स्टडी जरूर करें कि हम उनसे बचें कैसे। और पॉजिटिविटी जितना हो सके, तो हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया, पामेस्ट्री ने बताया, फिलोसॉफी ने बताया, और हमारी जो साइंस कहता है उनके अकॉर्डिंगली जो आप निष्कर्ष निकल पाते हैं उनके अकॉर्डिंगली आप जिंदगी जिए हैं।
1: बहुत खूब, बहुत बढ़िया कमल भाई, काफी मजा आया आपसे बात करके। तो ममता जी हैं?
0: जी
1: जी ममता जी, तो आप कार्यक्रम के लगभग बिल्कुल अंत में हैं, हम हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे ममता जी? जी कोई संदेश देना चाहेंगे आप
2: सुनने वाले को? यही बोलेंगे श्रोता को कि मतलब ब्लाइंड को ब्लाइंड से शादी करना चाहिए, आंख वाला को भी, किसी किसी का होता है कि हाँ भाई आंख वाले से शादी करेंगे, और किसी किसी का होता है कि ब्लाइंड से करेंगे, लेकिन ब्लाइंड ब्लाइंड को दुख समझता है, इसलिए ब्लाइंड को दुख ब्लाइंड से शादी करना चाहिए।
1: जी जी जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद। तो कमल भाई और ममता जी, आप लोग हमारे आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, समय दिया, तो उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सर, धन्यवाद। मैं सुनने वाले श्रोताओं से ये भी आग्रह करूंगा कि हमारे बातचीत के दौरान अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम दोनों ही क्षमा प्रार्थी हैं कि ह्यूमन इज द एरर ऑफ सोसाइटी। थैंक यू।
1: जी जी जी, तो श्रोताओं ये था हमारा आज का हमराही कार्यक्रम। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें हमेशा की तरह, और रेडियो मधुबन को सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, और कॉल करते रहें 94-14-15-14-15 पर, वहां पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बता सकते हैं, और भी रेडियो मधुबन के किसी भी कार्यक्रम पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और आप यदि चाहते हैं, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना या किसी को भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, और आप सबका स्वागत है। देखिए, आप सबके योगदान से ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और नहीं तो जो आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम है, जिसको आप सब अपना समझ करके इतना प्यार देते हैं, सुनते हैं, हो सकता है आने वाले समय में फिर बहुत लंबे समय तक शायद हम जारी ना रख पाए इस कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, रेडियो मधुबन का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा रेडियो मधुबन के ही नाम से। आप ईमेल भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। इंतजार रहेगा आप सबकी प्रतिक्रियाओं का, मैसेजेस का, आज के इस कार्यक्रम में। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले रविवार फिर किस

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात के कार्यक्रम में। और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष डॉक्टर भावना स्वामीनाथन जी हैं, उनके साथ हम लोग बातें करेंगे। और आप विशेष जिस विषय को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं वो डायबिटीज पर आपने काम किया है ग्रुप के साथ। और बहुत सारे लोग डायबिटीज होने के बाद बड़े परेशान होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि करें क्या। तो ऐसे सिचुएशन में जो है कि आपने एक डाइट सिस्टम और होलिस्टिक कोचिंग के माध्यम से लोगों को आपने अच्छा किया है और उनके जीवन में काफी बदलाव आया। तो उनके जीवन के जो बदलाव है उन्हीं से हम लोग जानेंगे। और अभी हम लोग जो बातें करेंगे वो इस विषय को जानेंगे कि डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आपसे। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन जी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति, नमस्ते, स्वागत है डॉक्टर स्वामीनाथन जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया एकदम।
0: जी जी, और मुझे लगा कि आज हम लोग जो बातें करेंगे वो हमारे मित्रों को भी अच्छा लगेगा और एक नई चीज जो है उनको सीखने को मिलेगा कि जो डायबिटीज को हम लोग सोचते हैं कि बहुत कभी ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए उनको एक नया चैप्टर उनके लाइफ का होगा, एक आई ओपनिंग सेशन रहेगा आज हम लोग बातें करेंगे। तो आइए डॉक्टर भवानी जी का स्वागत में एक छोटा सा गीत रश्मि जी हमारे साथ लेकर आ रही है।

0: थैंक यू रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और आइए मैं डॉक्टर भवानी जी से सीधे जोड़ता हूँ आप सभी को। स्वागत है भवानी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ शांति, थैंक यू।
0: जी जी, मैं चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना परिचय भी दीजिए और उसके बाद हम लोग जिस विषय को बात करने वाले हैं उस विषय पे बातें करें। जी,
1: तो जैसा आप नाम मेरा देख रहे हैं डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और न्यूट्रिशन मेरा मेजर सब्जेक्ट रहा है। और उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, कई सालों तक मैंने पढ़ाया न्यूट्रिशन सब्जेक्ट MSc BSc के बच्चों को। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कुछ कुछ हटके करना चाहिए, क्योंकि वही रोज कॉलेज जाना, वही पढ़ाना, तो कुछ लग रहा था कुछ नया कुछ करें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपने न्यूट्रिशन का जो भी नॉलेज है तो वो सोसाइटी को क्यों ना दूं। तो मैंने अपना एक खुद अपना वेंचर स्टार्ट किया, जिसका नाम मैंने रखा आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस। तो ये लॉकडाउन के पहले की बात है, जब मैं देखती थी लोगों को खाने पीने का तरीका ही नहीं पता, क्या खाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जो मिला खा लेते और हेल्थ खराब होती है। तो मैं ये सोचने लगी कि हर एक को एक डिजायर होती है, एक इच्छा होती है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, लेकिन वो हेल्थ अच्छी रखने के लिए एक अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल भी होना जरूरी है। तो ये सोच के मैंने अपने इसका नाम रखा अपने वेंचर का आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस। और धीरे धीरे मैंने शुरू किया और शुरू करके कुछ ही महीनों में मार्च 2020 लॉकडाउन शुरू हो गया। फिर मैंने देखा ऑनलाइन में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, तो ऑनलाइन में लोग जुड़ने लगे, काफी हेल्थ के बारे में टिप्स देने लगे, किस तरह का डाइट लेना चाहिए। और इसी दौरान मेरी PhD की पढ़ाई भी चल रही थी, तब मैंने सोचा क्योंकि मैं डायबिटीज जो एजुकेटर हूँ, तो नेशनल डायबिटीज एजुकेटर जो कहा जाता है, तो मैंने डायबिटीज सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत नजदीक है, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है, जो सासू माँ है, और मेरी सगी लौकिक बहन जो है बड़ी मुझसे, दोनों डायबिटीज का शिकार हैं, और एक को डायबिटीज नेफ्रोपैथी और एक न्यूरोपैथी। तो मैं सोचती थी कि ये दवाइयां तो ये लोग खा रहे हैं, तो फिर क्यों ठीक नहीं हो रहा है। इसके बाद में मैंने जो PhD जब करना शुरू किया, तो साइकोन्यूरोबिक्स एक टेक्निक है, जिससे मेरे जो गाइड है डॉक्टर स्वामीनाथन भाई जी जो है, तो वो मेरे गाइड है, तो हमने मिलकर के ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम। और इसके अंदर बहुत लोग जुड़ने लगे और यही से सिलसिला शुरू हुआ डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे ये कहानी शुरू हुई डायबिटीज, और डायबिटीज पर आपने पहले भी काम किया है, और एक तरह का आपको जो है इसके बारे में, इसके पेशेंट्स के बारे में काफी कुछ जानकारी भी है, तो निश्चित तौर पे आप इस पे ज्यादा वर्कआउट अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो निश्चित पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आप थोड़ा सा डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम जो है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा नोहो हमें कराइए, क्योंकि डायबिटीज से सुना है डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ये क्या है, थोड़ा सा लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई दूसरा टाइप का डायबिटीज तो नहीं।
1: डायबिटीज से लेके आजकल इतना डायबिटीज जो है, मतलब जैसे हम कोरोना वायरस, हाँ जैसे कोरोना वायरस अब इतना फैल रहा है, नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे, तो डायबिटीज भी उसी एक क्या कहते हैं ना, कम्युनिटी का ऐसा लगता है कि बढ़ते जा रहा है। और आप 1970 में जब देखेंगे तो 1970 में सिर्फ 2 या 3 दवाइयां थी डायबिटीज के लिए, आज बहुत सारी दवाइयां लोग खाते जा रहे हैं, पर फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, डायबिटीज चलता जा रहा है। तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, मतलब जीवन शैली अगर हमारी सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, तब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, PCOS ये सारी बीमारियां होती है। तो मेरा जो रिसर्च टॉपिक, क्योंकि मुझे रिसर्च एक ही टॉपिक पे मैं कर सकती थी, सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं ले सकते हम PhD में, तो मैंने सोचा डायबिटीज लेते हैं, क्योंकि और मैं नेशनल डायबिटीज एजुकेटर हूँ, तो मुझे लगा डायबिटीज से रिलेटेड ही काम होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में काफी मुझे जानकारी है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया, और तब लॉकडाउन शुरू हो चुका था, तो ऑफलाइन कुछ होने के चांसेस नहीं थे, तो ऑनलाइन करवाना था मुझे कोर्स। तो मैंने जैसे व्हाट्सएप पे तो सब भेज देते हैं ना आजकल सारे, तो मैंने भेजना शुरू किया, तो व्हाट्सएप के जरिए, मतलब एक कहते हैं ना कि लॉकडाउन भी एक तरह से अच्छे के लिए आया, जैसे काफी सारी बातें हुई जो काफी अच्छी नहीं थी, पर हर बुराई में हम अगर कुछ अच्छाई भी ढूंढे, तो इस तरह से लोग जुड़ने लगे इस डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं ना, लोगों को वही बड़ा आश्चर्य लगा रहे हैं, ये रिवर्स कैसे होगा, अब डायबिटीज मैनेजमेंट सुना है, ये रिवर्स कैसे हो सकता है, अब लोगों को उत्सुकता होने लगी और ज्वाइन करने लगे प्रोग्राम, और इसी तरह से संख्या बढ़ती गई और ये रिवर्सल प्रोग्राम ऑनलाइन शुरू हुआ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, ये जैसे कि आपने कहा कि डायबिटीज ये जो रिवर्सल प्रोग्राम है आप लॉकडाउन के बाद शुरू हो गया ऑनलाइन में, तो अब इसमें जो बात आती है है कि कितना टाइम लेता है ये डायबिटीज को रिवर्स करना। बात आती है कि डायबिटीज जो पेशेंट है टाइप 1 के भी, टाइप 2 के भी है, और फिर इन सभी लोगों को क्या हम लोग इस प्रोग्राम में डालने के बाद, आपके साथ जुड़ने के बाद, वो चाहे आप डाइट कहो या कुछ भी कहो, लेकिन इसमें कितना टाइम लगता है वो वापस अपने नॉर्मल लाइफ जीने?
1: तो ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, कितना टाइम लगता है। जैसे जब लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि मैडम देखिए मुझे 20 किलो वजन कम करना है, तो कितने दिनों में आप कर देंगे? तो अब चूंकि 20 किलो बढ़ा हुआ है वजन, अब दिनों तक तो हो नहीं सकता, महीनों सालों भी लग सकते हैं। तो डायबिटीज रिवर्सल भी कुछ इसी तरह से है कि कितने सालों से आपको डायबिटीज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और कौन से लेवल पे है, क्योंकि कुछ लोगों के जो HbA1c है वो 11-11 तक पहुंच जाते हैं, पोस्ट जो मील होता है पोस्ट प्रांडियल वो 450-500 तक चला जाता है, और सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से वो पर्सन इस प्रॉब्लम को सफर कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि वो कितने सिंसियरली इस प्रोग्राम में जो जो कहा जाता है, मतलब ये 3-डायमेंशनल अप्रोच है जहाँ पे हम डाइट, फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, और हम मेडिटेशन के टेक्निक सिखाते हैं। तो मतलब कोई कोई ऐसे जैसे स्कूल में होते हैं ना 50 बच्चे क्लास में होते हैं, तो वो 50 में से 50 के 50 सिंसियर नहीं होते हैं, कुछ बहुत सिंसियर होते हैं, एकदम फर्स्ट मेरिट में आ जाते हैं, कुछ थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो ये अपने विल पावर पे भी डिपेंड करता है। एक तो हो गया कि आप कितने सालों से आपको ये प्रॉब्लम है, दूसरा आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है कि आप इसको कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूअसली आप कर रहे हैं। ये दो चीजें बहुत जरूरी है रिवर्स करने के लिए। जैसे हमारे साथ एक बहन जुड़ी थी, तो उनकी एज काफी हो चुकी है, वो 70 के ऊपर है, लेकिन उनका कुछ ही महीने में ठीक हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर ने भी कहा ये तो पूरा आपका तो आपको दवाई खाने की जरूरत ही नहीं, ये नॉर्मल हो गया। एक साल पहले कुछ उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी, तो उन्हें रिवर्स करना जल्दी उनके

0: ही टाइम लगेगा। ऐसा कहा जाता है भाई, कुछ चीजें हैं जल्दी भी हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना ही टाइम लगेगा, कुछ चीजें हो उनके साथ में। जैसे कि तो जैसे हम लोग टाइप वन और टाइप टू ये बात करते हैं डायबिटीज में, तो आप जो प्रोग्राम करवाते हैं डायबिटीज रिवर्स सर, इसमें दोनों काम करते हैं या फिर किसी एक पर ज्यादा फोकस है आपका?
1: नहीं देखिए, टाइप वन जो है जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज, मतलब बच्चा जब छोटा होता है तभी उसको ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। तो टाइप वन डायबिटीज में हम ये रिवर्सल ऑफ डायबिटीज नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चे की जो पैनक्रियाज है वो फंक्शन ही नहीं कर रही है। टाइप टू डायबिटीज में होता ये है कि वो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, गलत खान पान गलत जीवन शैली की वजह से टाइप टू डायबिटीज हुआ है, तो उसमें जो है पैनक्रियाज की फंक्शनिंग जो है वो कुछ हद तक कम हो गई है, तो उसको हम वापस से ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन टाइप वन में ये चीज नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम था ये स्पेसिफिकली टाइप टू डायबिटीज वालों के लिए था। और इसके अंतर्गत जो जिनको अपने अपने जिन्होंने अपने डाइट को चेंज किया, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, मतलब कोई ऐसे भी बहुत लोग होते हैं कि उनको खाने पीने का तरीका सही नहीं पता, कोई भी टाइम पे सो जाते हैं, कोई भी टाइम पे उठते हैं, तो आज अगर आप देखेंगे आज के दिन में तो लोगों का एक बहुत अजीब सा अजीब सी एक कहते हैं ना जो ख्यालात है नींद के बारे में, कि 8 घंटा अगर सो लो तो 8 घंटा है ना वो समझते नहीं है कि वो रात की नींद होनी चाहिए, दिन में भी सो लिया कॉम्पेंसेट कर लिया, ऐसे नहीं। तो टाइप टू डायबिटीज लाइफ स्टाइल जो गलतियां हम करते हैं और खान पान की गलतियां करते हैं उसकी वजह से होता है। तो इस केस में हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन टाइप वन जो जुवेनाइल डायबिटीज है बच्चों का उसको रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पैनक्रियाज की फंक्शनिंग पूरी बंद रहती है, तो उसको रिवर्स करना अभी तक संभव नहीं है। आगे अगर देखिए क्या हो सकता है कि नहीं, पर फिलहाल तो नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। टाइप टू जो है इस भी काम हो रहा है, टाइप वन तो बच्चों के लिए है, उसमें इतना काम होना संभव नहीं, लेकिन फिर भी आगे चल के कुछ हो सकता है तो उसमें देखा। तो एक और बात, ये डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम कब शुरू करना चाहिए?
1: अच्छा, ये शुरू करना चाहिए मतलब जब आपको लगे कि आप दवाइयां खा रहे हैं मैनेज नहीं हो रहा है, कभी भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कोई डेट या टाइम या हमें कोई अच्छे से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, पर कभी भी शुरू कर सकते हैं। पर शुरू करके कम से कम मतलब मिनिमम 3 महीने का टाइम हमें अपने आप को देना है क्योंकि लोगों में जल्दबाजी बहुत रहती है। अभी शुरू किया तो 15 दिन में कि दीदी कुछ फर्क नहीं आ रहा है, मैडम कुछ हो नहीं रहा है ऐसे, क्योंकि कोई भी आप चेंज देखेंगे ना उसको कम से कम चेंज होने में 15 दिन तो 3 महीने तो लगते ही है, उससे कम में तो होगा नहीं। तो वो 3 महीने अगर हम लगातार, क्योंकि पहले का जो महीना जाता है जो 21 दिन 30 दिन जो पहले के जाते हैं उसको तो वो एडजस्ट करने में हमारा उतना टाइम चला जाता है क्योंकि नया सब कुछ सीख रहे कर रहे हैं ना। तो धीरे धीरे आप 3-6 महीने अगर आप लगातार करेंगे बिना अपना विल पावर खोए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कि नहीं मैं ठीक हो सकता हूँ, तब जरूर जरूर ये टेक्निक काम करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि कुछ एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने जो शुरू शुरू में ये प्रोग्राम आपने शुरू किया तो आपको क्या लगा कि कैसे, क्योंकि ऑलरेडी आप डायबिटीज के पेशेंट्स के साथ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम जो है कैसे स्टार्टअप हुआ और थोड़ा सा उसमें बताइए कि आपको कैसे लगा कि ये चीजें रिवर्स में आ सकती है।
1: तो बहुत आपको हंसी आएगी सुन के, शुरुआत जब हमने किया था तो जैसे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जब हम डालने लगे तो बहुत सारे लोग जुड़े, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतने लोग जुड़ जाएंगे, और देखते रोज वो लिंक भेजा ना तो लिंक ग्रुप बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, बहुत लोग आ गए। फिर बाद में शुरुआत करने के पहले वो मैसेजेस जैसे डालते हैं ना भी ये दिन से शुरुआत हुई, क्योंकि मुझे आज भी डेट याद है 19 मई को हमने शुरू किया था, तो 1 साल होने को आया अभी हो जाएगा 1 साल। तो जब स्टार्ट किया तो इतने लोग सब खुश हो गए, और जैसे ही उन्होंने देखा टाइम 6 बजे सुबह का, क्योंकि सुबह हम लोग को 6 से 7 का ये प्रोग्राम रखा था, रोज 6 से 7 सबको मिलना है, सुबह एक बार 6 से 7 और शाम को 5 से 6 एक्सरसाइज के लिए मिलना है, और सारा दिन जो मैं डाइट प्लान शेयर करूंगी वो डाइट बना के वो घर पे खाएंगे और उसके फोटोज भेजेंगे, क्योंकि मुझे भी तसल्ली होनी चाहिए कि ये लोग सही सही सब कर रहे हैं करके। तो देखा मैंने जब 6 बजे का जैसे ही टाइम देखा उस लोगों ने, तो आधे लोगों ने वैसे ही ड्रॉप आउट कर दिया, कहते कि नहीं सुबह सुबह 6 बजे तो मुश्किल है, नींद ही नहीं खुलती है कैसे होगा। लेकिन फिर भी काफी लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद में कुछ दिनों के बाद में फोन करके कहने लगे कि दीदी बड़ा मुश्किल लग रहा है सुबह सुबह 6 बजे उठना क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, तो घर पे क्या मेड नहीं आती, सारा काम खुद करो, रात को लेट सोते।

0: कैसे होगा, तो थोड़े और लोग कम हो गए, फिर भी काफी बचे थे लोग उनमें से। फिर देखा कि बहुत सिंसियर उसमें काफी कई सारे लोग थे, तो ठीक सुबह 6 बजे जुड़ जाते थे। तो हम लोग की शुरुआत होती थी साइको न्यूरोबिक्स ट्रेनिंग से। तो ये जो साइको न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज है, इसमें ये एक तरह का मेडिटेशन है। तो इस मेडिटेशन में हम कलर, साउंड और मुद्रा थेरेपी, इन तीनों चीजों का हम यूज करते हैं। तो कलर मतलब जो 7 कलर्स है, जो काफी दर्शकों को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता है वो जो 7 कलर जिसको हम चक्रास कहते हैं, जो हमारे रूट चक्रा से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक जो जाता है, मतलब रेड से लेकर के वायलेट कलर तक। तो इसमें हम स्पेशली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम काम करते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही पैनक्रियाज है, तो उसको हील करते हैं। तो ये 25 मिनट का मेडिट होता है, जहाँ पे हम मुद्रास, हर एक चक्रा के लिए हम एक मुद्रा रखते हैं। तो मुद्रा मैंने उनको सिखाया, जैसे कि हम ज्ञान मुद्रा करते हैं, उसके बाद में अपान वायु मुद्रा हुआ, फिर अपान मुद्रा हुआ, तो अलग अलग मुद्रास होते हैं। तो सारे जो ऑडियंस जो जुड़े, तो थोड़ा टाइम लगा उन्हें सिखाने के लिए कि भाई मुद्रास ऐसे आपको करना है, आपको कलर देखना है, फिर एक साउंड आपको करना है, जिससे आपकी हीलिंग होगी। ये एक तरह का मेडिटेशन है। तो इस चीज को समझ काफी वक्त गया, और क्योंकि काफी सारे आप जैसे जानते हैं कि जो लोग होते हैं ना, मतलब इतने आसानी से किसी चीज को मानते नहीं है, तो कहते खाली हमने उंगलियां ऐसी रख
1: बिल्कुल
0: ली तो फिर कैसे तबीयत ठीक हो जाएगी। तो लोग बहुत मेहनत करके, सब बड़े बड़े उम्र वाले, ऐसे नहीं कि बच्चे हैं, सब 40 के ऊपर वाले, समझाना पड़ता था कि भाई देखिए हमारे जो 5 तत्व है, जिसको पंच महाभूतास कहते हैं, तो फायर, वाटर, एयर, ये सारी, तो ये जब इम्बैलेंस होता है तो बीमारियां आती है। तो हम अगर उंगली को ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं, तो हम अपना एयर एलिमेंट और हम अपना स्पेस एलिमेंट इस तरह से हम बैलेंस कर रहे हैं। तो एक एक चीज, क्योंकि सारे पढ़े लिखे और जॉब जाने वाले लोग थे, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि उनको हर हर एक सवाल का उनको जवाब चाहिए था। और सही भी है, अगर वो जुड़ रहे हैं, अगर वो अपना समय दे रहे हैं, एक एक दो दो घंटा दिन का, तो उन्हें लगना नहीं चाहिए ना कि हमने टाइम वेस्ट किया है करके। तो सारी चीजों को जब वो धीरे धीरे समझने लगे, उसके बाद में 1 या 1.5 महीने के बाद में एक ऐसा टाइम आया जब वो खुशी खुशी जुड़ते थे। मतलब अगर कभी ऐसा अटेंडेंस कम नहीं होता था, मतलब सब आ रहे एकदम सुबह उठ के बहुत खुश होके आते थे। तो धीरे धीरे उनको है ना, जैसे हम एडिक्शन कहते हैं ना, लोगों को चाय की एडिक्शन लगती है, फिर हार्ड ड्रिंक्स की
1: बिल्कुल
0: एडिक्शन लगती है, अल्कोहल की, तो उन्हें फिर ये 6 बजे का एडिक्शन हो गया। तो उसमें कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम तो सुबह उठ ही नहीं सकते, और वो 10-15 मिनट पहले जुड़ जाते थे। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की शुरुआत तब से हुई, और उन्होंने चेंजेस, उनके समझ में आने लगा कि वो चेंजेस अपने में आने लगे उनको, कि सुबह उठ के अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, हम ये 25 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद में हम प्राणायाम करते थे। फिर धीरे धीरे हमने फिर कोर्स, जो हमारा 7 दिन का जो कोर्स है राजयोगा का, फिर वो इंट्रोड्यूस किया, तो वो भी उन्होंने किया। उसके बाद धीरे धीरे हमने वो मुरली सुनने लगे। तो मतलब डाइट चल रहा था, एक्सरसाइज भी चल रहा था, और साइको न्यूरोबिक्स के साथ साथ फिर कोर्स करने के बाद में मुरली भी उन्होंने सुनना शुरू किया। तो मतलब ये शुरू 7-8 महीने में इतने चेंजेस उनमें आए जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और उन्हें ना एक फील गुड फैक्टर जो कहते हैं, वो उन्हें अच्छा लगने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जब वो रिपोर्ट्स अपने वापस शुगर टेस्ट कराने लगे, अपना ब्लड टेस्ट, तो एक एक रिपोर्ट्स वो शेयर करते थे, तब वो रिपोर्ट्स देख के, मतलब हर 1-2 महीने में ना जो चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस देख के उनको भी खुशी होती थी, मुझे भी खुशी होती थी कि भाई इतना डिफरेंस आ रहा है करके। सो नेचुरली जैसे ब्लड शुगर लेवल उनका एक रिपोर्ट में कम दिखा, तो खुश होके वो और ज्यादा सिंसियरली करने लगते थे। तो इस तरह से, और एक दूसरे को रिपोर्ट देख के उनको मोटिवेशन होता था कि भाई चलो इनका कम हुआ तो मैं भी कर लूं, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं। तो एक तरह से बहुत एक हेल्दी जो गेम जिस तरह से खेलते हैं ना, उस तरह से एक सबने खेला, और सब खुशी खुशी सबने अपना, मतलब काफी हद तक अपने में इम्प्रूवमेंट लाना शुरू किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल। कई बार होता है कि शुरुआत में हम लोग उन चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करना है, इससे कब क्या होगा पता नहीं, लेकिन मजबूरी से ही, जबरदस्ती से ही थोड़ी दिनों के लिए हम लोग करते हैं, तो जब रिजल्ट आता है या कुछ ऐसे रिपोर्ट हम लोग देखते हैं या खुद में चेंज अपने को देखने को मिलता है, तो नेचुरली ये जो है बहुत ही अच्छा अपने को लगता है, पॉजिटिव साइंस मिल जाते हैं, तो फिर अपने से खुद करने। तो कई बार होता है कि चीजें जो है काम करते रहते हैं हम लोग, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट्स कहीं से दिखाई नहीं देते, तो वहां पर पीछे जाने वाली जो है बात आती है, लेकिन रिजल्ट अगर दिखने लगती है तो फिर हम लोग थोड़ा स्टेप आउट, हाई जंप करते हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं, तो चीजें। और ये जो चीजें है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको फील भी होगा डायबिटीज वाले पेशेंट्स को। वैसे भी डायबिटीज क्या है, एक मैनेज काम करता है, चीज हो गया मना, और कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज अ समथिंग व्हिच यू हैव टू मैनेज, मतलब आप अपने खाने को, अपने डेली रूटीन को पूरा सा बारीकी से, और भी आप इनसाइड हो जाते हैं। एक्चुअली में डायबिटीज आउटसाइड यानी ध्यान नहीं दिया इसलिए आप डायबिटीज जैसा बीमारी आता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये है कि आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ यानी खुद की तरफ अटेंशन देना डायबिटीज, और जैसे ही आप अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देते हो, आप खाना उस टाइप के खाने लगते हो, एक्सरसाइज करने लगते हो, अपने आप को प्यार करने लगते हो, तो फिर आपका डायबिटीज नॉर्मल हो जाता है। प्रॉब्लम वही था ना कि आपने अपने आप को कभी प्यार किया ही नहीं, अपना खाने का ध्यान नहीं दिया, जो आया सो करके गए, आगे बढ़ते गए, कभी अपने आप से ज्यादा टाइम नहीं दिया हमने कि क्या मेरा शरीर मेरा अपना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कभी हमने उसको नहीं देखा। दूसरे जो फिजिकली हमें जो बाहर से दिखता है, उन चीजों को अपना समझने के चक्कर में अपने आप को जो है नुकसान। तो कोई नहीं, ऐसा कहते हैं कि जैसे ये संसार जो है इसमें कल्याणकारी भावना छुपा है, क्योंकि ये ईश्वर की बना है। दैट द वो चाबी आपको मिल जाए कि कल्याणकारी है तो कैसा करें। तो डायबिटीज जैसे पेशेंट अगर ये सोचने लगे, ये अच्छा हुआ कि मुझे की मिल गया, सेल्फ इंट्रो में अंदर झांकने का एक मौका मिला है, अदरवाइज मैं कभी जाते ही नहीं। एक्चुअली में एक बहुत बड़ा की है आपके पास, यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, और अपने आप को टाइम देकर आप अपने साथ जी रहे हो, सच्ची में आप जी रहे हो। तो वो जो है ईश्वर ने, जैसे छोटा बच्चा है लकरा करता है, बीमार है, तो माँ बाप क्या करेंगे, नाक पैर पकड़ के उसको दवा दे देंगे ठीक हो जाए। माँ बाप का कोई वो नहीं रहता कि भाई इसको हाथ पैर पकड़ो इसका, नहीं, इसका कल्याण अर्थ उसको पकड़ के उसको दवा पिलाया जाता है ताकि वो ठीक हो। तो डायबिटीज ये भी एक हमारे इंट्रोवर्ट यानी खुद को मिलने का एक बहुत ही अवसर प्रदान करता है। डोंट वरी बी हैप्पी, और डॉक्टर भवानी जैसे लोग हैं जो आपको बहुत तरीके से टेक्निकली उन चीजों के अपने आप से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और आपको जो है एक्सरसाइज सिखाते हैं, प्राण मुद्रा, ये सब चीजें, योग, राजयोग सिखाते हैं, ताकि आप अपने आप का जो सही अपनी पहचान के साथ आइडेंटिफाई को समझे और जीवन का सच्चा सुख जो है वो पाए। तो आई हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं और मैं चाहूंगा कि उनसे भी बातचीत करें। डॉक्टर भावना जी, मेरे को बताइए इनके बारे में और थोड़ा सा कुछ पूछना है मैं पूछूं।
0: तो संध्या जी हमारे साथ जुड़ी है। तो संध्या जी रिटायर्ड है जी, नमस्ते, रिटायर्ड है, तो मुंबई की रहने वाली है। तो मुंबई में रहते हुए मैं इनसे कभी मिली नहीं थी, तो व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने ज्वाइन किया था ग्रुप। और संध्या जी, अच्छा, स्कूल में बच्चे होते हैं ना, बच्चे जैसे गुड स्टूडेंट, थोड़े से बदमाश स्टूडेंट, तो संध्या जी बहुत गुड स्टूडेंट में आती है। मतलब जो मैंने कहा तो बड़ी गुड स्टूडेंट है वो, मतलब सब कुछ करेंगी। और उनको, और मधुबन भी मेरे साथ आ गई मेरे कहने पे, तो उन्होंने, तो उनको, हाँ जी, उनको बहुत फायदा भी हुआ। तो संध्या जी खुद बताएंगी कि उन्हें क्या फायदा मिला ये प्रोग्राम ज्वाइन करके।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
2: नमस्ते नमस्ते सर। भवानी मैडम उसी वक्तशीर और हसमुख है और पॉजिटिव एटीट्यूड की है।
0: संध्या जी आप बताइए कि आपको क्या फायदा हुआ ये, आप मेरे बारे में।
2: बहुत ही माँ है, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के हो गई मैं भी, मुझे अभी एनर्जी लग रही है, कुछ भी कभी भी थकावट नहीं लगता है। पहले तो मैं एकदम हमेशा थकावट लगती थी, अभी मैं 6-7 महीने से मैं जो साइकोन्यूरो भी कर रही है तो मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा है। हम लोग सुबह 5 बजे उठ के मुरली भी सुनते हैं, मैडम बहुत ही एकदम वक्तशीर है, 2 मिनट भी इधर का इधर नहीं होता है। हम जैसे जल्दी आते हैं वैसे मैडम भी जल्दी आती है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा वेट भी कम हो गया है। मैडम अभी न्यूट्रिशियल डाइटिशियन बन गई है अभी, तो हमें चार्ट भी दिया है तो हम उसका पालन करते हैं हमेशा। और अभी तो सुबह 6:25 से 7 बजे तक मैडम हमारे से फिजिकल एक्टिविटीज भी करा के लेती है, तो हमें बहुत ही फ्रेश लगता है। रात को हमें नींद भी अच्छी आती है, नो एनी निगेटिव थिंकिंग आता ही नहीं है, ऐसा लगता है कभी जल्दी सुबह उठे और मैडम का दर्शन ले लो। इतनी मैडम बहुत ही अच्छी है, जो कुछ है मैडम के लिए है। अभी मेरा
1: अच्छा,
2: डायबिटीज हो रहा है मेरा,
1: संध्या जी मैं
2: कम हो गया है, ऑल क्रेडिट गोज टू माय भवानी मैडम।
1: बिल्कुल बिल्कुल। संध्या जी, शुरुआत में जब प्रोग्राम अटेंड नहीं करते थे तो तभी का डायबिटीज कैसा था, कितना?
2: तभी हम लोग जरा देर से उठते थे, अभी हम लोग एकदम।
1: शुगर लेवल कितना होता था उस समय?
2: हाँ, शुगर हमारी तभी 140 के ऊपर थी, अभी एकदम कम हो गई है, 114 हाँ। तक हो रही है अभी। अभी का 10 दिन पहले ही मेरा रिपोर्ट है,
1: हाँ।
2: एकदम नॉर्मल हो गया है। रियली आई एम सो हैप्पी मैडम के वजह से एकदम अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया संध्या जी। और मुझे आपको कितना टाइम लगा ये रिवर्सल प्रोग्राम में आप जुड़े भवानी जी के
2: छह
1: साथ
2: छह
1: में?
2: सात महीना हो गया फिलहाल, अभी 6-7 महीना हो गए हैं।
1: अच्छा अच्छा
2: कंटिन्यूस हम लोग करते हैं, राजयोगा भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मैडम एकदम अप टू डेट है, एकदम हमें भी अप टू डेट किया है, वो मैडम भी अप टू डेट है। हम डिसिप्लिन हो गए अभी, पहले के सर हुआ नहीं हुआ चलता था, अभी नहीं। सुबह उठ के बराबर जूस भी नहीं, लेमन जूस भी पीते हैं, करेला जूस भी पीते हैं। मैडम ने अच्छी तरह से डाइट
1: अच्छा,
2: प्लान दिया
1: ये सब करने में आपको कंटाला तो नहीं आ रहा है? यू आर
2: है। नहीं
1: फीलिंग दैट,
2: जरा
1: अरे
2: भी, हम
1: यार
2: सुबह भी सर हम लोग सुबह की याद करते हैं कि कभी जल्दी सुबह हो गए, 4:30 बजे हम लोग याद से उठते ही है विदाउट एनी अलार्म।
1: अरे
2: नींद
1: वाह क्या
2: खुलती है
1: बात।
2: क्योंकि अच्छी तरह से नींद होती है ना।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू संध्या जी, बहुत ही अच्छी बात आपने
2: थैंक यू
1: बताया
2: सर,
1: हमें,
2: थैंक यू
1: और
2: मैडम,
1: आप 6 महीने
2: थैंक
1: से इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और बहुत सारी खुशियां आपको मिली हैं और डायबिटीज आपका जो है कंट्रोल में है और आप लाइफ को
2: यस
1: एंजॉय कर। सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रोल ना कंट्रोल वो मैं इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट
2: यस
1: देता हूँ आपको जीना अच्छा लग रहा है, जीने को आ रहा है,
2: यस यस
1: वो
2: हंड्रेड
1: इम्पोर्टेंट
2: परसेंट 100%।
1: है। वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप जिए, खुशी से जिए, और
2: यस
1: ये
2: सर,
1: सेकेंडरी है, सारे बीमारियां सेकेंडरी है। फर्स्ट पार्ट तो आपके चेहरे की मुस्कान और आपको जो भी आप कर रहे हैं उसमें खुशी मिले, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग।
2: यस सर, यस
1: और
2: सर,
1: आप राइट
2: यस
1: पाथ में हैं, राइट हैंड के साथ घूम रहे हैं, तो बहुत बहुत आपको अच्छी बात है, यू आर लकी। तो टेक केयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखा हमने संध्या जी को बहुत अच्छी तरह से, वो 6 महीने से इस प्रोग्राम से अपने आप को जो है एनहांस कर रही हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे वही लगी कि उनके चेहरे पे जो मुस्कान है और वो इस उम्र में भी खुश रहना चाहती हैं, और सवेरे उठकर 6 बजे जो है, 5 बजे से उनका तैयारी होता होगा, तब तो 6 साढ़े 6 बजे अपने क्लास को अटेंड करती होंगी, तो बहुत ही अच्छा लगे हमें। और अभी अनुराधा जी हमारे साथ हैं। अनुराधा जी नमस्ते, कैसे
0: जी
1: हैं आप?
0: नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: बहुत अच्छी हूँ। मैं
1: और
0: हैदराबाद
1: तो
0: से हूँ,
1: जी जी जी
0: मैं हैदराबाद से हूँ और मैं
1: हाँ
0: एक होम मेकर हूँ। होम मेकर हूँ। भवानी जी को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मेरे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था कि ऐसा,
1: अच्छा
0: जब तभी था जब मेरे को डायबिटीज शुरू हो गया था तभी, तो डॉक्टर सारे डॉक्टर्स बोल रहे थे कि अभी मेडिसिन आप मत यूज करो, एक्सरसाइज और डाइट के साथ आप शुरू करो बोल के। तो भगवान का कृपा है, 10 दिन के बाद मेरे को भवानी जी का प्रोग्राम में मैं तो शुरू कर दी पूरा। तो उन्होंने जैसे बोला था कि 6 बजे उठना, पहले हमको 6 बजे था, तो 6 बजे उठने के बाद 6 to 6:30 साइकोन्यूरोबिक्स था, उसके बाद हमको मुरली का सेशन भी था ब्रह्म कुमारीज का, और उसके बाद उनको एक्सरसाइज भी सिखाया था भवानी जी ने, और थोड़ा क्लासेस भी डाले शाम को, न्यूट्रिशन क्लासेस और कैसे वॉक, क्योंकि ज्यादातर सभी लोग डायबिटीज बोले तो वॉकिंग करते हैं, लेकिन भवानी जी ऐसा नहीं है, वो तो पहले से योगा भी सिखाई और कैसे हमको माइंड को कंट्रोल करना है वो सब। और शाम को भी थोड़ा डिफरेंट वॉकिंग एक्सरसाइज बोल के, तब कोविड भी था तो घर में ही हम लोग वॉकिंग एक्सरसाइज कर रहे थे विथ एक्सरसाइज, विथ मसल एक्सरसाइज और डिफरेंट पार्ट्स का भी एक्सरसाइज हो रहा था, तो ये सबसे मुझे तो बहुत फायदा हुआ था। तो क्या खाना
1: बहुत
0: है
1: बढ़िया
0: क्या नहीं खाना है, हम तो जब डायबिटीज में क्या होता है कि हमको जब भूख लगता है तो हम जो भी हाथ लग गया तो हम लोग खा लेते हैं, बिस्किट्स या कोई भी जंक फूड,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उसका पहले हमको सेशन मिला कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है,
1: बिल्कुल
0: उसका कितना क्वांटिटी में खाना है, वो सब हमको बहुत अच्छी तरह से सिखाया था भवानी जी मैडम ने। फिर
1: बिल्कुल
0: साइको न्यूरोबिक्स तो बहुत हेल्प हुआ था मुझे, तो मेंटल टेंशन पूरा कम हो गया, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस क्या है कि डायबिटीज में टेंशन होना भी है, और आजकल हम लोग बहुत
1: बिल्कुल
0: मोबाइल भी देखते हैं, तो ठीक तरह से सोना या उठाना वो सब सो वो
1: अच्छा
0: सब
1: अनुराधा जी,
0: पूरा।
1: थोड़ा सा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं और परिवार
0: जी
1: में कौन कौन?
0: मैं तो अपनी सास और ससुर के साथ रहती हूँ, और एक बड़ा बेटा है मेरा जो अभी 10th में है अभी,
1: अच्छा
0: तो मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे
1: बिल्कुल
0: पति तो आईटी में काम करते हैं, तो यही
1: बिल्कुल।
0: है और कुछ।
1: अच्छा, आपको जो डायबिटीज या जो भी ये हुआ वो कितने टाइम से है?
0: 1 ईयर है अभी तक, 1 ईयर हो गया है अभी।
1: अच्छा, और ये रिवर्सल प्रोग्राम कितने टाइम से आप अटेंड कर रहे हैं?
3: जी, रिवर्सल प्रोग्राम तो मैं 6 महीने से कर रही हूँ।
1: अच्छा।
3: तो पहले जब ज्वाइन हुई तो तब अराउंड 140 था मेरा लेवल, आई मीन बिफोर फास्टिंग में बोल रही हूँ। तो जब प्रोग्राम चालू हो गया 3 मंथ्स में ही मेरे को फायदा हुआ, रिजल्ट देख पाई थी मैं, ऑलमोस्ट 100 तक आ गया था फास्टिंग। और जो 3 मंथ्स लेते हैं रेटिंग वो भी बहुत कम हो गया है। तो मुझे तो पहले बहुत टेंशन था कि मुझे मेडिसिन स्टार्ट करना है, तो जब वो स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक और वही लिमिट में है, ज्यादा नहीं हो रहा है अभी तक, उससे कम नहीं आया है क्योंकि अभी 6 महीने ही तो हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो
1: अच्छा, अभी मेडिसिन आप ले रहे हैं क्या? मेडिसिन कौन से ले रहे हैं?
3: मैं पहले से ही नहीं ले रही हूँ मेडिसिन।
1: अच्छा, मेडिसिन ले ही नहीं है। ओके,
3: मेडिसिन पहले से ही नहीं ले रही हूँ, विदाउट मेडिकेशन ही हो रहा है मेरे पहले से ही, क्योंकि अभी 1 ईयर ही हुआ है ना। सो तो वो लेवल भी बहुत कम है, 180 से कम है मेरा लेवल, प्री डायबिटीज कहते हैं ना, वो लेवल पे हूँ मैं। टाइम लगेगा, अभी हम लोग नेचुरल लेवल कर रहे हैं ना विदाउट मेडिसिन, तो इसलिए और फुल नॉर्मल आने तक थोड़ा लगेगा, क्योंकि डॉक्टर तो मैं कंसल्ट कर रही हूँ, डॉक्टर भी बहुत खुश है कि तुमने एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट कंट्रोल कर रहे हो और ये मेडिटेशन या साइकोन्यूरोबिक्स कर रहे हो। तो डॉक्टर तो यही बोले कि तुम बहुत लकी हो कि तुम विदाउट मेडिसिन तुमको मिल गया है प्रोग्राम जनरली किसी को नहीं मिलता है।
1: सही बात है, सही। ओके अनुराधा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बातें आपने बताया। और छह महीना जैसे आपको पता चला कि डायबिटीज है, तो आप ये सोच रहे थे कि मेडिसिन स्टार्ट करें या नहीं करें, कंसल्टिंग आपकी चल रही थी और उसी बीच आपको ये प्रोग्राम के बारे में पता चला, तो आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपका 140 से 100 फास्टिंग में है शुगर, तो ये एक अच्छे रिजल्ट है आपके पास। तो मैं चाहूंगा कि आपके एग्जाम्पल बनेंगे आप आगे चल के, क्योंकि कई बार चीजें जो है डायबिटीज आ जाता है तो फिर मेडिसिन लो, इंजेक्शन लो, कंटिन्यू लाइफस्टाइल में ही डलवा देते हैं डॉक्टर्स तो, और आपको भी डर लगता है कि अभी दवा खाएंगे तो ही ठीक रहेंगे, नहीं तो नहीं, मुश्किल है जीना। तो ऐसे समझ के हम लोग दवाइयां खाते जाते हैं और खाना भी खाते जाते हैं, तो उसमें फिर वापस कॉम्प्लिकेशंस ये हो जाते हैं कि मेडिसिन डबल हो जाते हैं धीरे धीरे, हमें पता नहीं चलता है, फिर इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं ना। तो वो सारी चीजों से आप शायद बच गए हैं और आपने अभी कंट्रोल कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइफस्टाइल में आपने चेंजेस किया है, और जो लाइफस्टाइल आपको जिस तरह से रखना है वो आप रखेंगे कंटिन्यू, तो आपको फिर बढ़ने का चांसेस भी नहीं होगा। तो दूसरे लोगों को आप इस प्रोग्राम में जुड़ने वाले दूसरे लोगों के लिए एक मोटिवेटर बन के आप उनको भी सजेशन दे सकते हैं आपने कैसे विदाउट मेडिसिन इसको कंट्रोल किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर भवानी जी जिनको ट्रीटमेंट दे रही है, जिनके साथ रिवर्सल प्रोग्राम जो कर रहे हैं, संध्या जी और हमने अनुराधा जी से बातें की, आशा करता हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम डायबिटीज के अंदर, डायबिटीज हो जाने पर घबराने की बात नहीं है, बस आपको एक ऐसा प्रोग्रामर ढूंढना है जो आपको रिवर्स कर सके डायबिटीज, इसके लिए बातचीत करना। तो डॉक्टर भवानी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे प्रोग्राम्स देते हैं, बस आपको वहां पर पहुंचने की जरूरत है और उनको समझे और अपने आप को समझे, और थोड़ा सा एक जो लाइफस्टाइल में बदलाव है उसे जरूर कीजिए, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण हमारा डायबिटीज आता है, और जैसे फिर से हम लोग अपने नेचुरल लाइफस्टाइल में आ जाते हैं तो फिर से डायबिटीज जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर भवानी जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे, तो सभी लोग सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक मैसेज।
0: तो मैसेज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कहते हैं ना ऊपर वाले ने इतनी सुंदर जिंदगी दी है हमें, और जैसे कि जो हम गाड़ियां जैसे मुंबई में आप देखोगे तो इतनी सारी गाड़ियां सारे कहते हैं ना एकदम एक्सपेंसिव कार्स लोग रखते हैं, और कार की इतनी देखभाल करते हैं कि हल्का सा एक डेंट भी लग जाए परेशान होके घूमते कि कार में दाग लग गई, और जो ऊपर वाले ने इतनी सुंदर सी ये कार जो दी है ये बॉडी हमें उसका ध्यान नहीं रखते। तो मैं हर किसी से यही अर्ज करना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपनी खान पान पे जरूर जरूर ध्यान दें, और जीवन शैली जिसको कहते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये दोनों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने आज बहुत ऑप्शंस है, आप हर जगह आउटलेट आप देखोगे, घर पे आप बस एक ऐप आपको दबाने की जरूरत है, घर पे आपको 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा फूड, लेकिन फूड इस तरह से खाने का कोई मतलब नहीं है। आजकल फूड को हम एंटरटेनमेंट की तरह खा रहे हैं कि बस दोस्तों के साथ पार्टी हो गया, हमने खाया, बच्चा पास हो गया तो हमने एंजॉय किया, तो फिर हमने पार्टी कर ली। तो फूड को एंटरटेनमेंट की तरह ना देखते हुए आप देखोगे, मतलब मैं जब लोगों से कहती हूँ ना, लोग हंसते हैं, मैं कहती हूँ जब आप 10 साल बाद अपने दोस्त से मिल रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि आप रेस्टोरेंट में जाकर डिनर टेबल पे मीट करो, आप ये भी कह सकते हो चलो साथ में मिलके वॉकिंग करते हैं। तो लोग कहते ये कोई बात हुई क्या, वॉकिंग करते हैं, किसी को बुलाते हैं कि इनवाइट करते हैं क्या? मैंने कहा यही तो हेल्थ और फिटनेस तो यही होता है। चलिए आप चाय पे बुला लीजिए, तो कहते हैं चाय पे बुलाएंगे तो कहते ये कंजूस है, ये तो बुलाया नहीं खाना खाने के लिए। तो फूड को हम एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, तो एंटरटेनमेंट की तरह ना देखते हुए हम उसको न्यूट्रिएंट्स, उसमें से हमें कितने क्या कहते हैं जो पौष्टिक आहार जो हम खा रहे हैं, हमारी कोशिकाओं में वो सारे न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेंगे, उस हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। और दूसरी बात, ये आजकल आप देखोगे मिडनाइट स्नैकिंग का बहुत जमाना चल रहा है, मतलब आधी रात

0: टाइम पास के लिए खाना, तो ये आधी रात को टाइम पास के लिए खाना मतलब हम अपने शरीर को बिगाड़ने का पूरा पूरा तरीका, नया तरीका ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने फूड पे ध्यान रखना है, और लाइफस्टाइल मतलब जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करने की जरूरत है। और जैसे पेरेंट्स जो है ना हमेशा कंप्लेन करते कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, इनडिसिप्लिन है, तो मैं पूछती हूँ पेरेंट्स को, आप खुद पहले डिसिप्लिन हो क्या वो देखो। आप खुद जब ऑर्डर करके खाओगे तो बच्चा क्या सीखेगा, वही तो सीखेगा। आप खुद अगर 8 बजे उठोगे और चाहोगे कि बच्चा 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करे पढ़े, तो होगा नहीं। तो ये पेरेंट्स की, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद एक अच्छी जीवन शैली जिए, अच्छा डाइट खाए, तब उनको देखकर बच्चे समझे। क्योंकि बच्चों को आज के दिन में सिर्फ बोलना काफी नहीं है, अगर आप खुद एक रोल
1: बिल्कुल
0: मॉडल
1: बिल्कुल
0: बनोगे तब वो जाकर समझेंगे। तो डाइट और लाइफस्टाइल का जरूर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि वेट जैसे ही बढ़ेगा मतलब आप सारी बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। तो वेट को कंट्रोल में रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड करें। और जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, लोग समझते हैं हेल्दी इज बोरिंग, तो मैं बता दूं इतने सारे हेल्दी रेसिपीज आप बना के खा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस, तो मैंने इतने रेसिपीज डाले हैं कि आप रोज एक एक नया रेसिपी आप ट्राई करोगे, सारे हेल्दी और सारे टेस्टी है। तो कभी भी कोई हेल्दी रेसिपी बोरिंग नहीं होती है। तो हमें इन सब छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, डाइट अच्छी वाली लेना, टाइम टू टाइम खाना, रात में सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज वालों को स्ट्रेस, जैसे अनुराधा जी ने कहा, स्ट्रेस से भी ये लेवल्स बढ़ते हैं। तो अगर आप सोएंगे नहीं रात को टाइम पे, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, फिर आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, तो आपके शुगर लेवल्स बढ़ने के चांस है, मोटापा बढ़ने के चांस है। तो एक अच्छी नींद, अच्छा खान पान और अच्छी एक्सरसाइज, बस बहुत सिंपल चीज है। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें, बस इतना हम ध्यान रखेंगे तो हम सब हेल्दी रह सकते हैं।
1: डॉक्टर भवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। और डायबिटीज रिवर्सल जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कंटिन्यू करें आप, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े, ऐसा मैं शुभकामना करता हूँ। और जो भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन करके लिखिए डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, गूगल में भी आपको मिल जाएगा उनका डिटेल्स, तो आप उनसे जरूर जुड़े। और जुड़ने के बाद जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऑनलाइन भी प्रोग्राम्स आपको करने को मिलेंगे, और कहीं दूर है तो आप ऑनलाइन भी उनसे बातचीत करके और मीटिंग अटेंड करने से आपको काफी चीजें सीखने को। तो निश्चित तौर पे डायबिटीज कोई बड़ी बात नहीं है, ये जस्ट आपको अपने आप से मिलाता है
0: जी बिल्कुल
1: जो है अपने आप से मिलाने का काम करता है बस, क्योंकि आपने पूरे लाइफ टाइम में कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया। आपने टाइम दिया बच्चों के लिए, आपने टाइम दिया दूसरों के लिए, आपने टाइम दिया अपने जॉब के लिए, आपने टाइम दिया अपने प्रॉपर्टीज को बनाने के लिए, आपने टाइम दिया भविष्य अच्छा बनने के, लेकिन वर्तमान आपका जो है मुश्किल में आए, तो अब टाइम आ गया है वर्तमान में अपने आप को टाइम दे योग्यू, मना आप जितना अपना टाइम दे देंगे अपने आप को, उतना ही अच्छा फील करेंगे और डायबिटीज आपसे दूर हो जाएगा। नेचुरल सिंपल आइडिया, तो सिंपल तरीका यही है। और आप गहरी नींद लें, है ना, और जो डाइट आपको बताया जाता है वो डाइट आप शुरू करें, थोड़ा डाइट को चेंज भी जरूरत है। जीप की मत सुने, ऐसा कहा जाता है जीप अगर सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा तो ये थोड़ा सा आपको समझना है बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और डॉक्टर भवानी जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आप डायबिटीज के साथ साथ आप डाइटिशियन भी हैं, तो डाइटिशियन अर्थात आपने काफी रिसर्च किया है इंडियन फूड पर, तो इंडियन फूड एंड हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में आपसे जानेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड और सवेरे का ब्रेकफास्ट कैसे होना चाहिए, दोपहर का लंच कैसे होना चाहिए, रात का डिनर कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत सारी है। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स को लेकर भी बड़ी मुश्किलें आती है, और किस तरह से कभी कभी हम लोग पिकलेट्स वगैरह खाते हैं, अचार भी खाते हैं, तो क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ऐसे कई सवाल डाइट को लेकर आज, तो इसीलिए आज इंडिया में जो है डाइटिशियंस का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है डॉक्टरों के साथ साथ में, फिजियोथेरेपी वालों का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है डॉक्टरों के साथ में। तो ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो चीजें आ रही हैं, जहाँ पर डाइट और फिजियोथेरेपी ये दोनों चीजें क्यों इम्पोर्टेंस आज हो गए हैं, क्यों डॉक्टर लोग खुद प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप डाइटिशियन के साथ जुड़िए, आप फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जुड़िए, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, जो खुद डॉक्टर इन लोगों के पास आपको भेजते हैं। तो नेचुरली कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हमें मिस कर रहे हैं या हम कहीं उससे दूर हो गए। तो इंडियन फूड एंड उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग डॉक्टर भवानी जी से सुनेंगे इसी तरह। तब तक आप वेट कीजिए, है ना। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत ओम शांति।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है अपनी मीना के स्कूल में एक नाटक होने वाला है, झांसी की रानी का नाटक। क्या कहा, मीना कौन सा रोल कर रही है? अरे भाई, मीना और उसके दोस्त इस नाटक में भाग नहीं ले रहे, क्योंकि ये नाटक सिर्फ बड़ी क्लास के बच्चों का है। चलो हम भी मीना के स्कूल चलते हैं नाटक की तैयारी देखने।
1: रज्जो, अब तुम जोर से बोलो, मेरा नाम लक्ष्मीबाई है, मैं

0: अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दूंगी।
1: मेरा नाम लक्ष्मी बाई है, मैं दांतों के अंग्रेज खट्टे कर दूंगी।
0: दांतों के अंग्रेज नहीं रज्जो, अंग्रेजों के दांत। और लक्ष्मी बाई नहीं, लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी बाई। एक बार फिर से कोशिश करो, शाबाश।
1: मेरा नाम अंग्रेज है, मैं दांत की लक्ष्मी बाई खट्टी कर दूंगी।
0: क्या हुआ रज्जो, तुम्हें कल भी अपनी पंक्तियाँ ठीक से याद नहीं हुई थी?
1: कल अच्छी तरह से याद करके आऊंगी बहन जी।
0: ठीक है महेश, अब तुम गंगाधर राव की पंक्तियाँ बोल के दिखाओ।
2: जी बहन जी। लक्ष्मी बाई, तुमने जो फैसला।
3: मीना की बहन जी सब बच्चों को नाटक का अभ्यास कराती रही, और थोड़ी देर बाद जब मीना घर वापस लौट रही थी तो उसने हैंडपंप के पास बेला दीदी को देखा।
4: मेरा नाम लक्ष्मी बाई है, मैं अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दूंगी।
5: वाह बेला दीदी, आप तो बहुत अच्छी तरह अभिनय करना जानती है।
6: मीना, मैं तो बस ऐसे ही।
5: नहीं दीदी, सच में मैंने स्कूल में नाटक का अभ्यास देखा था। रज्जो दीदी को अपनी पंक्तियाँ बोलने में तो बहुत मुश्किल आ रही थी।
7: मुश्किल आ रही थी, रज्जो तो घबरा रही थी।
5: चुप मिट्ठू, शरारती कहीं के। बेला दीदी, आप नाटक में हिस्सा क्यों नहीं ले रही?
6: बहन जी तो चाहती है कि मैं नाटक में हिस्सा लूं मीना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती।
5: क्यों दीदी, क्या हुआ?
6: स्कूल से घर लौटने के बाद इतने सारे काम होते हैं, अगर मैं नाटक के अभ्यास के लिए स्कूल में रुकी तो वो सारे काम कौन करेगा?
5: कुछ दिनों की तो बात है दीदी, उसके बाद तो फिर से।
6: माँ कभी नहीं मानेंगी।
5: आप चाची जी से एक बार बात करके तो देखो।
6: नहीं मीना, मैं जानती हूँ नाटक का नाम सुनते ही माँ झट से मना कर देंगी। आओ चले।
5: ठीक है दीदी, चलिए, मुझे भी देर हो रही है, एक निबंध याद करना है।
3: मीना और बेला दीदी घर की तरफ वापस चले। वो दोनों लाला जी की दुकान के सामने से निकल ही रहे थे कि
8: मीना बेटी, मेरा एक काम कर दोगी?
5: कैसा काम लाला जी?
8: सरपंच जी के घर पे एक पैकेट नमक छोड़ना है।
5: नमक?
8: हाँ, सुबह भाभी जी आई थी आयोडीन वाला नमक लेने, लेकिन उस समय दुकान में नमक था नहीं। अभी अभी सामान आया है, कोई आधा घंटा पहले। अगर तुम ये पैकेट उन्हें देती जाओ तो।
5: लाला जी, आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन।
8: लेकिन क्या मीना बेटी?
5: मुझे बहुत देर हो रही है, घर जाके मुझे एक निबंध भी याद करना है और।
8: ज्यादा देर थोड़ी लगेगी तुम्हें, भाभी जी को नमक दे के चली जाना अपने घर, फिर मजे से याद करना अपना निबंध। मैं कौन सा रोज रोज तुमसे मदद मांगता हूँ।
5: आपका कहना ठीक है लाला जी, अगर मैं देर से पहुँची तो माँ परेशान होंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये नमक का पैकेट ले जाती हूँ और सुबह स्कूल जाते हुए सरपंच जी के घर।
9: अरे बेटी, नमक तो उन्हें आज ही चाहिए रात के खाने के लिए।
5: ओह, अब क्या करें, अब क्या करें। हाँ, एक काम हो सकता है। लाला जी, शाम को दुकान बंद करने के बाद आप खुद ही ये नमक का पैकेट सरपंच जी के घर छोड़ सकते हैं, आपके पास तो साइकिल भी है।
8: बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। शाम को घर जाते हुए भाभी जी को नमक दे आऊँगा।
5: मैं जाऊँ लाला जी?
8: हाँ हाँ मीना बेटी, खुश रहो।
3: और अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद।
6: मीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
5: हाँ हाँ बेला दीदी, कहिए।
6: कल जिस आत्मविश्वास से तुमने लाला जी से बातचीत की, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी बात भी रह गई और लाला जी को बुरा भी नहीं लगा।
5: बेला दीदी, माँ कहती है कि बातचीत करने से ही बात बनती है।
6: पता है मीना, कल शाम को मैंने भी घर जाके सोचा कि माँ से ठीक उसी तरह बात करूं जैसे तुमने लाला जी से की थी, लेकिन।
5: लेकिन क्या दीदी?
6: मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पाई। मीना, क्या तुम मेरी मदद करोगी?
5: मदद? कैसी मदद दीदी?
6: मुझे भी ऐसे बातचीत करने का तरीका सिखाओ ना, जिसमें कहने वाले और सुनने वाले दोनों की बात रह जाती है और किसी को बुरा भी नहीं लगता।
5: एक काम करते हैं, आप और मैं मिलके बातचीत का एक अभ्यास करते हैं।
6: बातचीत का अभ्यास? मैं कुछ समझी नहीं मीना।
5: देखिए, जैसे बहन जी रज्जो दीदी को नाटक का अभ्यास करा रही थी, वैसे ही हम भी अपनी बातचीत का अभ्यास करेंगे, ताकि आप घर जाके चाची जी से पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर सकें।
6: ओह, अब समझी।
5: तो फिर ठीक है, मैं बनती हूँ बेला दीदी और आप बनिए चाची जी। माँ?
6: हाँ बेला, कुछ कहना चाहती हो?
5: माँ, हमारे स्कूल में एक नाटक होने जा रहा है, बहन जी हमें रोज शाम तक उसका अभ्यास भी कराएंगी, क्या मैं उसमें भाग ले सकती हूँ?
6: बेला बेटी, अगर तुम शाम को घर लौटोगी तो हैंड पंप से पानी भर के कौन लाएगा?
5: पानी मैं सुबह भर दिया करूँगी माँ, स्कूल जाने से पहले।
6: वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें किसी दिन देर हो गई तो?
5: आप चिंता मत कीजिए, बहन जी नाटक में भाग लेने वाले सब बच्चों को उनके घरों तक छोड़ने आती हैं।
6: लेकिन बेला, तुम नाटक का अभ्यास करके तो थक जाओगी, फिर अपनी पढ़ाई कब करोगी?
5: मैंने वो भी सोच लिया है माँ, मैं एक घंटा सुबह और एक घंटा रात को भी पढ़ा करूँगी, ताकि मेरी पढ़ाई का नुकसान ना हो।
6: कह तो तुम ठीक रही हो।
5: माँ, तो क्या मैं नाटक में भाग ले सकती हूँ?
6: हाँ, ले सकती हो।
5: बहन जी आप?
10: हाँ, मैंने तुम दोनों की बातचीत का ये अभ्यास देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। बेला, अगर तुम घर जाकर अपनी माँ से ऐसे ही बात करो तो वो तुम्हें नाटक में भाग लेने की अनुमति दे देंगी।
6: लेकिन बहन जी, अगर वो नाराज हो गई तो?
10: बेला, अगर बड़ों से नम्रता और आत्मविश्वास से बात की जाए तो वो बच्चों की बात को सुनते और समझते हैं और कभी भी नाराज नहीं होते। अब घर जाओ और अपनी माँ से बात करो।
3: उस दिन बेला ने बड़ी नम्रता और आत्मविश्वास के साथ अपनी माँ से बातचीत की और फिर पता है क्या हुआ? बेला की माँ ने उसको नाटक में भाग लेने की अनुमति दे दी। क्यों दोस्तों, मजा आया ना मीना से मिलके? चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्टू की एक प्यारी सी कविता।
5: अपने माँ बाबा को जब किसी चीज के लिए मनाना,
7: बातचीत से बात है बनती, खुद को याद दिलाना।
3: भाई वाह, क्या कविता कही है अपनी मीना और मिट्टू ने। जब कविता इतनी बढ़िया थी तो गाना कितना मजेदार होगा। आओ सुनते हैं।

0: समझ गया बहन जी,
1: सही जवाब है मोनू, क्योंकि मोनू मेरे साथ ही स्कूल जाता है और मेरे साथ ही स्कूल से वापस आता है।
2: पहले पूरी कड़ी तो सुन लो दीपू, साथ मेरे ये स्कूल को जाता, साथ मेरे ये वापस आता, आधी छुट्टी में जब खेलूं तब तो क्लास में ये रह जाता। चलो चलो, शाबाश, जल्दी से सोचो
3: क्या हो सकता है,
4: क्या होगा,
3: जाता लेकिन आधी छुट्टी में साथ नहीं होता।
5: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
2: ठीक है सुमी, बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। कभी झूलता है कांधे पर, कभी पीठ पे चढ़ता, इसे खोल के ही हर बच्चा स्कूल में घर में पढ़ता।
3: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है बस्ता। अपने कंधे या पीठ पे बस्ता उठा के हम स्कूल जाते हैं और बस्ता खोल के पढ़ते हैं।
2: हाँ मीना, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना?
6: जी बहन जी।
7: मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: डिटेक्टिव गोपीचंद। गोपीचंद के खास दोस्त सलीम की बेटी का आज जन्मदिन था। वह शहर का बड़ा रईस, व्यापारी और प्रसिद्ध व्यक्ति था। रीटा गोपीचंद से इस बारे में बात कर रही है।
3: सर, हमें सानिया की जन्मदिन की पार्टी में जाना है, आप तैयार हैं ना? सलीम जी ने खास तौर पर हमें बुलाया है।
2: वहाँ शहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, वाकई यह अमीरों की पार्टी थी।
4: आइए आइए, चाहे कितने व्यस्त क्यों ना रहे, पर मुझे मालूम था आप आएंगे।
3: सानिया, आज तो तुम पूरे 10 साल की हो गई हो, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अरे वाह, तुम्हारी अंगूठी तो बड़ी सुंदर है।
2: थोड़ी देर बाद सानिया हैरान परेशान रोती हुई अपने पापा सलीम के पास आकर उन्हें कुछ बताती है।
5: सलीम, क्या हुआ? कुछ देर से तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है?
4: सानिया की कीमती अंगूठी अचानक गायब हो गई, वो बच्चों के साथ खेल रही थी। गोपी, अंगूठी की कीमत 5 लाख है।
3: सर, सानिया ने मुझे बताया था कि उस अंगूठी में सोने पर हीरे का नग चढ़ा था, वह बड़ी भारी थी।
2: गोपीचंद की नज़र चारों ओर थी, अधिकतर लोग घर जा रहे थे। तभी सलीम की इंडस्ट्री के सुपरवाइजर मिस्टर शर्मा हड़बड़ाते हुए आते हैं।
6: सलीम साहब, आपको तो मालूम है मैं आज बैंगलोर जा रहा हूँ। मैंने केक का पीस रख लिया है, सोनिया ने बड़े प्यार से मुझे दिया है, मेरी ट्रेन ठीक 15 मिनट बाद ही है।
5: शर्मा जी, क्यों ना हम मिलकर केक खाएं? केक तो मैंने भी नहीं खाया है।
6: अरे भाई, यह सोनिया ने मुझे बड़े प्यार से दिया है, यह मैं आपको नहीं दे सकता।
5: अरे साहब, ऐसी भी क्या जल्दी, जरा अपना केक मुझे भी तो दीजिए।
2: सभी हैरत में थे कि अचानक ही गोपीचंद केक पीस छीन लेते हैं और उससे वह अंगूठी निकालते हैं।
5: सलीम, मैंने देखा शर्मा ने सानिया से कुछ अलग अंदाज में ही हाथ मिलाया था और इसी बीच इन्होंने अंगूठी पर हाथ साफ कर लिया होगा और अंगूठी को केक पीस के बीच में छिपा कर ले जा रहे थे। मैंने देखा कि इनके हाथ के केक पीस में एक कट था, तभी मुझे शक हो गया था।
3: कीमती अंगूठी के लिए इस लालची आदमी का मन डोल गया और यह चोरी पर उतर आया। 5 लाख की बड़ी रकम ने इसे चोर बना दिया।
2: चाहे चोरी कितनी भी हेरा फेरी से की जाए, पर अपना निशान जरूर छोड़ती है और इस निशान के जरिए ही डिटेक्टिव गोपीचंद चोर को पकड़ लेते हैं।

Hello students, this is Sandeep Trivedi for today's class, and today I am going to teach you the grammar portion of the lesson 9, which is A Man's True Son, and the name of the book is Golden Race. So बच्चों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है गोल्डन रेस की, उसका लेसन 9 क्लास 10th के लिए हम पढ़ रहे हैं। हमने कुछ शुरू किया था ग्रामर पोर्शन कल, नाउन क्लॉज, और उसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था और वो था सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब सेकंड इसमें आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ओके, इसमें देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं, क्या क्या हैं। फर्स्ट, we believe that the train will arrive on time. We believe that the train, so the train object hai, direct object of the verb. Second, we know that the sun rises in the east. Third example hai, we must accept the fact that the pole star appears in the north. Fourth, we cannot disagree with the fact that terrorism is a global issue. Ye four examples. Fifth example hai, I admit that the Indian economy is improving fast. So inko that se joda hai, sabhi ko objects ko actually. Ab aage dekhiye, thoda samjhaya inhone. It is to be observed that ye dekha gaya hai ki इन अबव सेंटेंसेज, ऊपर के सभी वाक्यों में द नाउन क्लॉजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट, नाउन क्लॉज को दैट से ही पहचाना गया है, आर ऑब्जेक्ट्स टू द वर्ब्स, और ये वर्ब के क्या थे, सबके सब ऑब्जेक्ट थे, हूज सब्जेक्ट्स डिनोट ह्यूमन बीइंग, जिसका जो सब्जेक्ट था वो इंसानों से जुड़ा हुआ था, आई वी, बट वेन वर्ब्स लाइक प्रूव, लेकिन जब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे कि प्रूव, रिवील, इंडिकेट, शो, अकर, दैट क्लॉज फंक्शन एज ऑब्जेक्ट्स इवन व्हेन द सब्जेक्ट्स ऑफ दीज वर्ब्स आर नॉन ह्यूमन्स। सिक्स्थ है एग्जांपल, द सर्वे शोज दैट टू मच यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इज हार्मफुल, द सर्वे शोज दैट एवरीथिंग इंडिकेट्स दैट प्राइसेस ऑफ लैंड प्रॉपर्टी विल कम डाउन। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। थर्ड पॉइंट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको समझते हैं जरा। नाउन क्लॉजेस मे बी यूज एज कॉम्प्लीमेंट्स टू सब्जेक्ट्स। नाउन क्लॉज का इस्तेमाल सब्जेक्ट में भी यूज एज कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। कैसे? द फैक्ट इज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। द फैक्ट इज, तथ्य क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट। द फैक्ट्री वर्कर्स से दैट देयर लाइव्स आर इन डेंजर। फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। अभी हमने थर्ड में देखा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव। दैट क्लॉजेस आफ्टर एडजेक्टिव्स आर लेबल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, बट द यूज ऑफ सच एडजेक्टिव्स इज लिमिटेड। द पॉपुलर एडजेक्टिव्स इन सच सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर श्योर, सर्टेन, कॉन्फिडेंट, होप, लाइक एक्सेट्रा। आई एम होपफुल दैट ही विल गिव अप बैड हैबिट्स। दूसरा एग्जाम्पल है, वी आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया विल विन द मैच। थर्ड है, I am sure that demonetization will curb black money.
ये तीन एग्जाम्पल हो गए. बट नाउन क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय वेदर. नाउन क्लॉज को वेदर से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द सेंटेंसेस इनडायरेक्टली कंटेनिंग यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन टैग्स होते हैं यस नो टाइप में, तो उसको वेदर से भी हम कर सकते हैं. जैसे इट डज नॉट ट्रबल मी स्टेटमेंट है ये, विल शी सिंग और नॉट, यस नो टाइप क्वेश्चन. वेदर, अब इसको वेदर से कैसे जोड़ा है, देखिए दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दो अलग अलग बातें हैं. पहला है इट डज नॉट ट्रबल मी, ठीक है मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है. विल शी सिंग और नॉट, कि वो गाएगी या नहीं गाएगी, यस या नो टाइप. तो वेदर शी विल सिंग और नॉट, कि वो गाएगी या नहीं गाएगी, डज नॉट ट्रबल मी. यहां पे ये पूरा एक तरह से सब्जेक्ट हो गया. आर कंबाइंड बाय द नाउन क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेदर. सच क्लॉजेज आर यूज्ड एज पॉइंटेड आउट बिलो. तब इस तरह के जो क्लॉजेस इस्तेमाल होते हैं उसका नीचे बता रखा है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. फर्स्ट है वेदर ही एक्सेप्ट्स द इनविटेशन और नॉट इज अनसर्टेन. वेदर शी सेज यस और नो फॉर मैरिज डिपेंड्स ऑन हरसेल्फ. थर्ड है वेदर वी शैल सक्सीड और नॉट इज अनप्रिडिक्टेबल. सेकेंड है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. आई डोंट नो वेदर इफ द ऑफिसेस आर ओपन ऑन सैटरडे. सेकेंड है वी डोंट नो वेदर इफ शी इज इल. थर्ड है आई डोंट नो इफ शी इज इल और नॉट. ये सब एग्जाम्पल्स है. नोट इफ इज फ्रीक्वेंटली यूज इन place of whether in noun clauses function as objects in the subject position of this noun clause, the use of if is avoided. Before an infinitive only whether is used. Infinitive से पहले केवल whether का use करना है. The use of if is avoided. Fourth है they have yet to decide whether to travel, जैसे infinitive है, to infinitive है जैसे by air or train. तो C है noun clauses may be constructed by using question words as who, why, what. जो WH words होते हैं where, whose और how, इससे भी noun clause हो सकता है. देखिए जरा कैसे. Where he lives is not known to me. वो कहाँ रहता है वो मुझे नहीं पता. Subject of verb है ना. Where he is lives is not known to me. I don't know where he lives. दूसरे तरीके से ऐसे भी object of verb. Third है how they do it is not known to me. Subject of. चौथा है I don't know how they do it. दोनों ही तरीके से आप कह सकते हैं. इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों साथ साथ बता रहे हैं. पांचवा आई एम इग्नोरेंट ऑफ व्हाट यू से. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आफ्टर एडजेक्टिव. तो नाउन क्लॉजेस विद इंपेरेटिव मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स टू कंस्ट्रक्ट इंपेरेटिव इंपेरेटिव्स आर रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस डिमांड सजेस्ट. जो इंपेरेटिव यानी आज्ञार्थक वाक्यों में जो सबसे ज्यादा वर्ब यूज होती है वो ये वाली वर्ब है. मैं रिपीट कर रहा हूं रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस डिमांड सजेस्ट और प्रपोज रिकमेंड अर्ज एक्सेट्रा. नाउन क्लॉजेस इन दिस कैटेगरी ऑफ constructions are introduced by that they function as objects in the sentences. People demanded that the terrorist should be punished.
द इकोनॉमिस्ट सजेस्टेड दैट जीएसटी बिल शुड बी पास्ड इन पार्लियामेंट. थर्ड है, पास भी हो गया अब तो. द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द ट्रेटर शुड बी एग्जीक्यूटेड. तो ये इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं. अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, एक एक्सरसाइज दी है. ओके, तो फ्रेम नाउन क्लॉजेस बाय जॉइनिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पहला भाग. दूसरा भाग है, दूसरा सेंटेंस है, इट इज अ वेल नोन फैक्ट. अब इसको कैसे बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ना है. पहले में कहा गया है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये समझ लेंगे आप एग्जाम्पल को तो आई थिंक आपको पूरा नाउन क्लॉज समझ में आ जाएगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उदय होता है, सबको मालूम है. इट इज अ वेल नोन फैक्ट, ये सर्वमान्य तथ्य है. अब क्या सर्वमान्य तथ्य है, आप प्रश्न कीजिए, क्या सर्वमान्य तथ्य है, तब आप उत्तर देंगे कि सूरज पूरब से उदय होता है. दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब वो सर्वमान्य तथ्य इज अ वेल नोन फैक्ट. दोनों को जोड़ दिया ना, कॉमा फुल स्टॉप हटा दिया दोनों का, कैपिटल हटा दिया, दैट से जोड़ दिया सीधा. दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ वेल नोन फैक्ट. इस तरह से करना है हमें. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप विल विजिट इंडिया, इट हैज बीन रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर्स. दैट, अब इसको कैसे करेंगे, दैट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप विल विजिट इंडिया हैज बीन रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर्स. हमने इट हटा दिया. अब देखिए, प्राइसेस ऑफ गोल्ड विल कम डाउन, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय इकोनॉमिस्ट्स. दैट प्राइसेस ऑफ गोल्ड विल कम डाउन हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द इकोनॉमिस्ट. ये तीसरा हो गया. थर्ड, टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है. इट इज अ प्रूव्ड फैक्ट दैट टोबैको कॉजेस कैंसर, कि तंबाकू से कैंसर होता है, इज अ प्रूव्ड फैक्ट. ये पूरी तरह से साबित हो चुका है. ओके, चौथा एग्जांपल देखिए, द यूज ऑफ कैरेट्स इंप्रूव्स आई साइट, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय डॉक्टर्स. भाई डॉक्टर ने यह स्वीकार कर लिया है कि द यूज ऑफ कैरेट, कैरेट को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है. दैट द यूज ऑफ कैरेट इंप्रूव्स आईसाइट हैज बीन अप्रूव्ड. तो ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया. पांचवा है, द वीट प्रोडक्शन विल गो अप, इट इज डाउटफुल. दैट द वीट प्रोडक्शन विल गो अप इज डाउटफुल. सिक्स्थ है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी हैज बीन डिटेक्टेड, इट इज अ क्लेम ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि काला धन बहुत अधिक मात्रा में है. दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी हैज बीन डिटेक्टेड इज अ क्लेम ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सेवेंथ एग्जांपल है, सेवेंथ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, द गवर्नमेंट प्लान्स टू ओपन मोर स्कूल्स इन रूरल एरियाज, इट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट. That the government plans to open more schools in rural areas has been announced by the education department. More funds will be allocated for civil aviation. Nagrik Uddayan, civil aviation matlab Nagrik Uddayan. It has been declared in parliament. Parliament matlab Sansad. That more funds will be allocated for civil aviation has been declared in parliament. Ninth hai, India was a
प्रॉस्परस नेशन, भारत एक समृद्ध राष्ट्र था, इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट दैट इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस नेशन, सोने की चिड़िया इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। दसवा, द रामायण इज अ होली बुक, दिस फैक्ट इज नोन टू एवरी इंडियन। दैट द रामायण इज अ होली बुक इज नोन टू एवरी वन। अब हमारा ये नाइन्थ लेसन भी यहां पर पूरा हुआ। अब हम इसके बाद टेंथ लेसन पढ़ेंगे और आप लोग मेहनत कीजिए खूब अच्छे से। हमेशा आई यूज टू से कि मेहनत का कोई अंत नहीं होता है ना, पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता है। और देखिए इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आए लाए जाते हैं आप सबके लिए, खास करके वो बच्चे जो बिल्कुल गांव में रहते हैं, जो बहुत कम समझते हैं, जो शहर की भागदौड़ से दूर हैं, आप सबके लिए चाहे टीवी हो, रेडियो हो, है ना, समाचार पत्र हो, जो आसानी से आपके आसपास उपलब्ध हो जाए, ऐसे माध्यमों से आप तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य हमेशा किया जाता रहा है। पहले भी ये सब कार्य किए गए, आज भी किए जा रहे हैं। सवाल है कि आपको समझना है चीजों को, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है खूब मन लगा के, दिल लगा करके, क्योंकि हमारा ये मानना है कि टैलेंट कभी छुपता नहीं है। आपने मेहनत की है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो फिर चाहे आप किसी गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आखिरकार जीत हमेशा ज्ञान की होती है। आखिरकार जीतता कौन है? नॉलेज। जितना हो सके उतना नॉलेज हासिल कीजिए, है ना। अभी हमने हमारे एक जगह प्रोग्राम में भी सुना था कि कभी भी अपना क ख ग मत भूलिए। क मतलब कमियां, ख मतलब खूबियां, और ग मतलब गलतियां। तो आप क ख ग पढ़ते हैं ना, ऐसे ही हर चीज में, हर सब्जेक्ट में ये जरूरी है, मेहनत करनी है। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे टेंथ क्लास में हो, चाहे ट्वेल्थ क्लास में हो, चाहे एट्थ क्लास में हो, चाहे इलेवंथ क्लास में हो, और कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, और शुरुआत करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है। ध्यान रखिए, आप जब जागें तभी सवेरा है। इस वक्त आपको याद आ जाए, अरे अभी मुझे पढ़ना है, बस बैठ जाइए पढ़ने, सोचिए मत, तुरंत अपने जो पढ़ाई का स्थान है वहां पर कुछ चार्ट्स लगाइए, वहां पे आप पॉइंट आउट करके रखिए चीजों को, वहां पे देखिए कि आज आपको क्या करना है। दिन भर का अपना एक रूटीन बनाइए, एक अपना दिन भर का टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इतनी बजे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और वो जब टाइम टेबल आपकी आंखों के सामने घूमेगा ना बच्चों, तो फिर आपको याद रहेगा कि सारे काम टाइम से कैसे होते हैं। तब आप समझेंगे खुद ही कि आपका टाइम टेबल कितना अच्छा चल रहा है। तो बस यही सब करना है आप सबको। ऐसी बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे आपके लिए मोटिवेशन की, और कुछ याद आएगा, कुछ टॉपिक, कुछ कहानी भी आपको बताएंगे इसमें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं जितना इजी गोइंग आपको हम पढ़ा सकें, है ना। देखिए जो किताबें हैं, बुक्स हैं, सिलेबस हैं, वो तो कोई भी कवर करवा सकता है, वो तो आपको पासबुक भी करवा सकती है, लेकिन जो जिंदगी का नॉलेज है आपको, वो कोई नहीं देगा, वो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस हो चाहे वो दूसरों का एक्सपीरियंस हो। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ना, वर्ल्ड लिटरेसी डे। तो आज के दिन हम संकल्प करें कि हम खुद भी पढ़ें औरों को भी पढ़ाएं, जितना हो सके उतना हम पढ़ें, पढ़ें जो मिल जाए वो पढ़ें। आप दिन की शुरुआत अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ न्यूज़पेपर्स से कीजिए, हो सके तो आप कभी कभार ही सही इंग्लिश का न्यूज़पेपर्स भी पढ़िए, क्योंकि दुनिया से जुड़ने के लिए, आपको नए नए वर्ड्स सीखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दिन आप अपने बड़े बुजुर्गों को पढ़ाएं। आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो शायद शिक्षा से वंचित रह गया, जो शायद प्रॉपर एजुकेशन जिनको नहीं मिली, आप उन्हें सिखा सकते हैं। कुछ नहीं तो साइन करना सिखाइए, अपना नाम लिखना सिखाइए, लेकिन उनको सिखाइए जरूर।
ऐसा नहीं है कि छोटे ही बड़ों से सीखते हैं, बड़े भी छोटों से सीख सकते हैं। तो ये आप सबको बताइए ये बात, अपने आसपास जहां भी आप देखते हैं हर बात, कुछ बातें हैं जैसे देखिए शिक्षा, स्वच्छता, इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। सामाजिकता, हमारे अंदर समाज में किसी के प्रति भेदभाव नहीं हो, और ये सब कब होगा, शिक्षा से। कहीं गलत हो रहा है, अन्याय को कभी सहना नहीं है, ये सब शिक्षा ही तो बताती है, और कौन बताता है। एजुकेशन इज द की, सब चीजों की चाबी क्या है, एजुकेशन है, शिक्षा है। तो इसीलिए आप आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, और खूब पढ़िए, और अपना नाम, अपने परिवार का, अपने टीचर्स का, अपने समाज का, अपने शहर का, अपने देश का रोशन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हाय,
1: कैसे हो?
0: बस ठीक हूँ।
1: पता है भैया, स्कूल में मुझे एक एसे लिखने के लिए बोला।
0: किस पे?
1: एक इंस्पिरेशन के बारे में।
0: अच्छा,
1: आपका इंस्पिरेशन कौन है भैया?
0: मेरे पापा।
1: पापा? तो आपके पापा के बारे में कुछ बोलो ना।
0: हाँ, मेरे पापा बहुत ईमानदार है और मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ।
1: तो आपको एसे लिखने को बोला, तो आप लिख सकते हैं?
0: हाँ, एक दो पेज तो लिख ही सकता हूँ।
1: ग्रेट, तो चलो हमारी दीदी की एडवाइस भी लेते हैं।
0: हाँ, ये ठीक है।
2: हेलो बच्चों।
1: हेलो दीदी,
2: क्या कर रहे हो तुम लोग?
1: दीदी, आपको पता है मेरे स्कूल में एक एसे लिखने के बोला।
2: एसे? किस पे लिखना है बोलना?
1: एक इंस्पिरेशन के बारे में।
2: मतलब आपकी इंस्पिरेशन के बारे में? अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं और लोग भी होते हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं और सिखाते हैं। तो बुबना, तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है?
1: मेरी बहुत सारी इंस्पिरेशन है। पहली इंस्पिरेशन मेरे पापा, नरेंद्र मोदी जी, सुभाष चंद्र बोस।
2: अरे वाह, आपकी तीन तीन इंस्पिरेशन है। तो सुभाष चंद्र बोस आपके इंस्पिरेशन क्यों है, उनके बारे में हमें कुछ बताओ।
1: सुभाष चंद्र बोस सच में बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत अच्छी आदमी है, उनके बिना हमको फ्रीडम नहीं आती।
2: ठीक है, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए वो आपकी इंस्पिरेशन है। आप उनसे क्या सीखते हो भावना?
1: कि किस टाइम क्या बात करना है। वो इतनी इंटेलिजेंस से बात करती, इतनी इंटेलिजेंस यूज कर भारत के लिए, हमारी इंडिया को यूनाइट करने के लिए इतना किया। दीदी, मैं बोल नहीं सकती हूँ, बहुत। मैंने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ा।
2: आपने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी? अच्छा, और उनमें सबसे ज्यादा स्पेशल आपको क्या लगा?
1: मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो ब्रिटिशर्स ने बोलते हैं कि वो मर गए प्लेन क्रैश में, लेकिन उन्होंने बहुत सारे विलेजेस ये सोचते हैं कि वो तीन प्रकार की सोच सोचते। दीदी, एक प्रकार वो प्लेन क्रैश में मर गए, दूसरा वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनके ब्रेन को साइंटिस्ट रिसर्च के लिए ले गए, और तीसरा ब्रिटिशर ने उनको मेंटल टॉर्चर किया, फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने कुछ भी नहीं कहा। और वो सच में होते ना दीदी, कांग्रेस के सारे कुछ भी हो, उनका क्या क्या ट्रूथ, उनके बारे में उनकी सच्चाई बाहर निकल आती।
3: हाँ भुवना, ऐसे मैंने भी एक बार सुना है कि सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशर्स ने नजरबंद कर लिया था, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, भेष बदल के जहाँ पे थे वहाँ से भाग गए। तो वहाँ से भाग गए, फिर बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स को नहीं मिले, फिर जब मिले तो उनको काले पानी की सजा दे दी, कई दूर समुद्र में जाके उनको टापू पे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा समुद्र खुद तैर के पार करके वापस आ।
1: और दीदी, आपको पता है, मैंने तो न्यूज़पेपर में देखा कि दो लोग सुभाष चंद्र बोस को मिल के आए, वो रशियन जेल में है, बोलते है कि अब तक जिंदा है, उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया।
2: सुभाष चंद्र बोस के बारे में वैसे तो कई बातें चर्चित हैं, ये भी कहा जाता है कि वो कई जगह जाके बनारस में एक सेंट बनकर रहे।
1: हाँ,
2: काफी समय तक।
1: हाँ दीदी।
2: लेकिन जो उनकी देशभक्ति की भावना है वो सबके सामने है, भले उनके आगे की जिंदगी के बारे में कुछ लोग अलग बात करते हैं, लेकिन जो उनकी देशभक्ति की भावना थी और जो उनका इंटेलिजेंस था जो आपने बोला, वो किसी से नहीं छुपा, और ये एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है भुवना।
1: हाँ दीदी, और बताए दीदी, नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि वो सुभाष चंद्र बोस की फाइल खोलेंगे उनके बर्थडे,
2: और इससे आप बहुत खुश है?
1: हाँ दीदी, मैं जब छोटी थी सोच रही थी मैं बड़ी होकर जर्नलिस्ट बनूंगी, सुभाष चंद्र बोस को फाइल करूंगी।
2: अच्छा, अरे वाह, मतलब सुभाष चंद्र बोस से आप इतने इंस्पायर्ड हैं।
1: हाँ दीदी,
2: ये बहुत अच्छी बात है, और उनकी तरह बनने की कोशिश भी करना।
1: हाँ दीदी।

0: और सैंडी, आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
1: मेरे तो सबसे पहले मेरे पापा।
0: आपके पापा? और आपके पापा आपको कैसे इंस्पायर करते हैं?
1: मेरे पापा ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो, वो अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ते।
0: उनकी ईमानदारी?
1: हाँ, और हमेशा सच बोलते हैं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, या बुरी कंडीशन हो या अच्छी कंडीशन हो, अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ते। और मुझे मेरे पापा इस बात पे बहुत इंस्पायर करते हैं।
0: वैसे ये तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हम सबको अपनानी भी चाहिए, ईमानदारी। और अगर ये आप अपने पापा में देखते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो भी करनी चाहिए।
1: हाँ, पर मैं कोशिश करता हूँ।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है सैंडी, इसकी ज़रूरत आपको आगे भी पड़ेगी। और अगर आप अपने पापा के नक्शे कदमों पे चलेंगे तो सच में आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे।

0: और आप बताओ पंकज, आपकी इंस्पिरेशन कौन है?
1: दीदी, मेरे इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है?
1: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ बातें हैं जो मुझे इंस्पायर करती है, जैसे कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन जो वो अपनी लाइफ में जो चाहते थे उन्होंने सब हासिल कर लिया।
0: और जितना उन्होंने अचीव किया वो उतना ही डाउन टू अर्थ और सिंपल भी रहे।
1: हाँ दीदी,
0: है ना, अगर उनका जीवन हम अच्छे से देखें तो जिस तरह के वो व्यक्ति थे, वे आम इंसान से भी मिलने से कभी हिचकिचाते नहीं थे।
2: हाँ दीदी, उनके घर देखो तो हमसे भी बहुत छोटा, और कोई भी सुविधाएं नहीं होती थी, और जो भी पैसे आते थे गवर्नमेंट से वो सारे लोग के लिए यूज़ करते, लेकिन उनकी सुविधाएं के लिए कभी नहीं यूज़ नहीं करते थे।
3: हाँ दीदी, मैंने भी एक बार एपीजे अब्दुल कलाम का नोबल पढ़ा था, उसके अंदर बताया था कि एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे थे, उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो वो बाहर जाके जो स्ट्रीट लाइट होती है ना उसके नीचे जाके पढ़ते थे रात को।
0: पता है वो यहाँ पे माउंट आबू भी आ चुके हैं पहले?
3: हाँ दीदी,
1: हाँ दीदी, शांतिवन में भी आए।
2: पता नहीं,
0: शांतिवन में भी आए? नहीं पता
1: मुझे।
0: वो शांतिवन भी आए हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल भी आए हैं, वो जितनी लोगों की मदद कर सकते थे उन्होंने हमेशा की है। और चाहे वो किसी ऑफिस के बाहर खड़ा गार्ड हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, कहते वो जाके सबसे पहले उसी से मिलते थे जो सबसे लो ग्रेड के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो जाते थे उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे और फिर जाके वो अपना काम करते थे, वो सबका हाल चाल लेते थे। इसीलिए अचीवमेंट के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी हम सब उन्हें हमेशा याद करते हैं, है ना। और उनकी तरह बनने के लिए हमें ये बात याद रखनी होगी कि चाहे हम कितना ऊपर भी क्यों ना पहुंच जाएं, एक इंसान की तरह हमें दूसरे इंसान को देखना चाहिए, है ना।
4: I learned every youth wants to be unique. Every youth wants to be unique. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Whether you want to be you or everybody else. Everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. To get the unique you is a big battle. The battle means you don't need to take a gun. The battle means you have to have four unique things, four unique tools you must have in that battle. One is you have to set the goal. The second one is acquire the knowledge continuously. And third one is a hard work with the devotion. And fourth is perseverance.
0: Akash, आपकी inspiration कौन है?
3: मेरे इंस्पिरेशंस मेरी मूवीज़ हैं।
0: मूवीज़ आपको कैसे इंस्पायर करती हैं?
3: दीदी, जब मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में था तब मैं मूवीज़ देखता था, उसके अंदर देशभक्ति मूवीज़ ज़्यादा देखता था। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो गुंडों की जिस तरह से धुलाई करते थे, मुझे लगता था मैं भी बड़ा होके इन्हीं की तरह बनूंगा, ऐसे ही पूरे देश में करप्शन को कम करूंगा। लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक मूवी देखी थी, एक ऐसा बच्चा था जो बचपन में अपने माँ बाप से खो गया था, तो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के देने के लिए पैसे भी नहीं थे, उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया था और प्रिंसिपल ने बोला था जा पहले अपने माँ बाप को ढूंढ के ला, उसके बाद आना स्कूल में पढ़ने। तो उसको कोई पैसे भी नहीं देता था, बेचारा बहुत उदास उदास रहता था। तब उसने चाइल्ड लेबरिंग करनी स्टार्ट कर दी, और ऐसे करते करते 15 साल बाद वो बॉम्बे गया और बॉम्बे से इतना बड़ा बिजनेसमैन बन के आया, और जो प्रिंसिपल था वो बुढ़ा हो गया था और उसके बेटे बहू सब ने उसको छोड़ दिया था और उसकी स्कूल भी हड़प ली थी। तो उस प्रिंसिपल को जाके बोला, सर जैसे को तैसा आपने मुझे स्कूल से निकाला था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, आपके बेटे बहू ने आपको निकाला है और आज आप मेरी स्थिति पे हो और मैं आज आपकी स्थिति पे हूँ। ऐसा ही मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ।
0: मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सबको हर किसी के साथ अच्छा करना चाहिए, इसीलिए आपको इंस्पिरेशन मिली। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ें आकाश और भी इंस्पायर करती हैं, हम जिनकी तरह बनना चाहते हैं लाइफ में और जो चीज़ें करना चाहते हैं और जिसकी मदद करना चाहते हैं, है ना? तो हमें अपने आसपास और लोगों में भी ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें इंस्पायर कर सके।
2: हाँ दीदी,
0: भले वो किताबें हो, भले वो ऐसे लोग हो। वैसे भी भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ की बहुत ही बड़े और नेक लोगों ने जन्म लिया है।
2: हाँ दीदी,
0: तो हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारी इंस्पिरेशंस हमारे आसपास ही मिलेंगी।
2: दीदी मैं एक बात बताऊं, इंस्पायर हम कैसे हो सकते हैं? देखो दीदी, जब कोई हमसे कुछ अच्छा करे, वो स्कूल में हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो, हमसे बेहतरीन है और अच्छे हैं, जब हम वो एक्सेप्ट करेंगे ना, वो इंस्पिरेशन बन जाएगा। जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो जलसी बन जाएगी।
0: बात तो भुवना आपने बहुत सही कही, जब हम किसी की अच्छाई को एक्सेप्ट करेंगे तो वो इंस्पिरेशन बन जाएगा, नहीं करेंगे तो वो जेलसी बन जाएगी। और हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं और ऐसे लोग होते हैं जो हमें जीवन में मिलते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए हमें इंस्पायर करके जाते हैं।
2: हाँ दीदी,
0: तो भुवना आप कभी अपनी लाइफ में ऐसा किसी से मिले हो जिसने आपको इंस्पायर किया?
2: हाँ दीदी, मैं अनूप जलोटा से मिली।
0: अच्छा, तो उन्होंने आपको कैसे इंस्पायर किया?
2: दीदी, रेडियो पे एक क्वेश्चन पूछा विशाल भैया ने कि जब आपकी स्टेज पे कोई और आके गाए और आपको बुरा नहीं लगेगा, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई ईगो नहीं है, कुछ भी हो, अच्छा प्रोग्राम हो। वो बोल रहे थे मेरी वर्क कम हो गई, ऐसे अच्छे से बात करते हैं और उनकी ईगो भी नहीं है। उस फीलिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनूप जलोटा ऐसे है और वो मेरी अच्छी इंस्पिरेशन है।
0: वो हमारे देश के बहुत ही जाने माने गायक हैं।
2: हाँ,
0: और उनके कई भजन हम लोग डेली सुनते हैं। और
2: वो एक गजल सिंगर भी है।
0: हाँ बिल्कुल, और इतने अच्छे गायक होने के बावजूद उनमें ईगो नहीं है, इसने आपको इंस्पायर किया। मतलब आप भी जब बड़े होके क्रिमिनल लॉयर बन जाओगे तब ईगो को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे।
2: हाँ दीदी,
0: चाहे क्लास में फर्स्ट आओ, चाहे कुछ भी अजीब कर लो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भुवना। पंकज आप बताओ, आप अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो या ऐसी सिचुएशन आई है जिसने आपको इंस्पायर किया हो?
1: हाँ दीदी, वैसे कल की ही बात है, कल हम मैच खेल रहे थे और हमारे विपक्षी जो टीम थी वो हमसे काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रही थी और जब मैंने उनकी बॉलिंग देखी तो मैं उनसे इंप्रेस हो गया कि इतनी अच्छी बॉलिंग मैंने आज तक नहीं देखी। तो मुझे लगा कि काश मैं भी इनकी तरह बॉलर बन सकूं और मैंने सोचा और मैंने कल से ही प्रैक्टिस करनी चालू कर दी कि उनके जैसा बॉलर बनूं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने तुरंत प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। वेरी गुड पंकज। हाँ सैंडी आप बताओ।
5: दीदी मैं, हमारे पास में एक भैया रहते हैं अभिषेक भैया, वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते क्योंकि उन्होंने अभी जॉब कर रहे दिल्ली में और उनकी बीटेक भी पूरा हो गया। वो इतने अच्छे जॉब कर रहे हैं फिर भी वो हमेशा सिंपल रहते हैं, बच्चों से हमेशा प्यार से बातें करते हैं, इसीलिए मुझे वो सही लगते हैं।
0: अच्छा, तो वो भैया आपको इसलिए इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो जॉब भी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं।
5: हाँ
0: ये तो अच्छी बात है कि हम कितना भी ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाएं, हमेशा सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, जो कि सैंडी ने सीखा। तो आकाश आपने कभी किसी से कोई इंस्पिरेशन ली है?
3: हाँ दीदी, जब सर हमें पढ़ाते थे तब उनका एकदम एक्यूरेट ध्यान पढ़ाई में होता है और कुछ भी उनके दिमाग में उल्टा सीधा नहीं चलता, मतलब सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं, सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बारी आती है तब वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सबको अपने साथ ऐसे रखते हैं कि वो सर और

0: हाँ दीदी, मैंने अभी से ही शुरुआत कर दी उनके जैसा बनने की।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक स्पेशल क्वालिटी उनमें पता है और क्या है? उन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। कई बार उन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा, कई बार ऐसा भी हुआ जब लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को छोड़ा भी नहीं और हार भी नहीं मानी। इसीलिए आपकी जो इंस्पिरेशन है, उन्हीं की तरह आपको भी जिंदगी में ऐसा ही करना है। और आप लोग किताबें पढ़ते हो कि नहीं?
2: हाँ दीदी।
1: तो कभी किताबों में ऐसा कुछ पढ़ा है या कोई ऐसी चीज आपने किसी के बारे में पढ़ा है जिसने आपको इंस्पायर किया हो?
0: हाँ दीदी, मैंने जैसे नॉवेल्स पढ़ी है, कुछ स्टोरी बुक्स भी पढ़ी है, तो स्टोरी बुक्स ज्यादा इंस्पायर करती है हमें।
1: स्टोरी बुक्स?
0: हाँ दीदी।
1: कोई ऐसी सीख आपको याद है जो आपको किसी स्टोरी से मिली हो?
0: स्टोरी से तो हमें बहुत सारी सीख मिलती है। किसी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। तो किसी स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए, हमेशा बुरे के साथ भी अच्छा ही करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सीख मिलती है।
1: ये सीख तो बहुत अच्छी है। क्या ये सीख और इंस्पिरेशन आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हो बच्चों?
0: हाँ दीदी, मैं तो करता हूँ।
1: करते हो? ठीक है। भुवना आप बताओ।
3: मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती हूँ दीदी। एक नॉवेल पढ़ी मैंने, आराम दी वाली 80 डेज, फिर जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इतनों नॉवेल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में हमें उस कैरेक्टर का पेशेंस पता चलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे।
1: अच्छा, उनके पेशेंस से आपने बहुत कुछ सीखा।
3: हाँ दीदी।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आकाश आप बताओ, आपने कभी किसी बुक से, कहानी से, नॉवल से या किसी भी चीज से ऐसा कुछ सीखा है?
2: हाँ दीदी, मैंने बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर है उसकी बुक से सीखा है।
1: अच्छा, क्या सीखा आपने?
2: दीदी, उसकी बुक में ऐसा बताया था कि जब वो बच्चा था तब उसके जो टीचर थे वो पहले पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं था, कम पढ़ता था, तो उसके टीचर ने बोला था, अरे तू तो पत्थर है पत्थर, तेरे दिमाग में तो भूसा है। तो वही बात उनके माइंड पे प्रिंट हो गई और ना मतलब थोड़ा पागल जैसे रहने लग गए, किसी से भी पूछते ये मैं पत्थर हूँ क्या, ऐसा ऐसा करने लगे। लेकिन उसके बाद ये बात जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने सोचा कि मैं सर को करके दिखाऊंगा कि मैं पत्थर नहीं हूँ, ना मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो ये उनकी स्ट्रगल थी जो आज वो वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसे वाले आदमी हैं।
1: अच्छा, मतलब कोई अगर आपको ये कहे भी कि मैं नहीं कर सकता हूँ तब भी हिम्मत रखनी चाहिए, ये आपने इंस्पिरेशन ली।
2: हाँ दीदी।
1: और ये इंस्पिरेशन हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ाती है।
2: हाँ दीदी।
1: हाँ सैंडी, आप बताओ।
4: दीदी, मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी बातें काफी अच्छी लगती थी, क्योंकि जब वो छोटे थे, कम 7 साल के थे, तो उन्होंने 7 साल तक तो कुछ नहीं बोला, तो उन्हें उनके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि शायद हमारा बच्चा कुछ बोलता वोलता नहीं है। फिर एक बार उनके खाना खा रहे थे सब लोग, तो सूप था वो गर्म था, तो उन्होंने पहली बार बोला कि सूप बहुत गर्म है, तो उनकी मम्मी पापा सब चौंक गए, बोले 7 साल तक तो कुछ बोला नहीं और आज अचानक। तो उनसे पूछा ना उनके मम्मी पापा ने कि तुम इतने से बोल सकते, बोलते क्यों नहीं थे? तो उन्होंने बोला, हर मुझे ज़रूरत की चीज़ मुझे टाइम पे मिल जाती थी, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाता था, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही कहाँ। तो लाइफ में ऐसी चीज़ें जहाँ जरूरत है वहीं बोलना चाहिए। और उन्हें स्कूल में कभी उनको जो रूल्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता था, मतलब स्कूल के रूल्स होते थे वो हमेशा फॉलो नहीं करते, तो खुद के रूल बनाते थे। उन्हें कभी स्कूल क्लास से मैम बाहर कर देती थी सब ऐसा। तो उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था कि तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने बोला सर ठीक है, पर उन्होंने आज वो आइंस्टाइन है, अपने वैज्ञानिक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो ज़रूरी नहीं कि रूल्स ज़्यादा फॉलो करके कुछ कर सकते हैं, पर हाँ जो नियम है उनको तो मानना चाहिए, तो सबके लिए है, पर अपनी पढ़ाई के बारे में कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
1: देखो, नियम तो हमारे लिए ही बने हैं, उनकी सिचुएशन और उनके सर्कमस्टांसेस थोड़े से अलग थे।
4: हाँ।
1: और उनकी तरह हमें बनना जरूर चाहिए, लेकिन उन्हीं की तरह मेहनत भी करेंगे तभी हम पर ये चीजें लागू होती हैं, है कि नहीं?
4: हाँ दीदी।
2: हाँ।
1: पर ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जिन्होंने लाइफ की कमी को एक्सेप्ट करने के बाद भी कभी होप लूज नहीं की और बड़े बड़े काम करके दिखाए।
2: हाँ दीदी।
1: ठीक है, तो आज के इस बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर अगले

0: बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बनें, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: सन 1901 ईस्वी का समय। स्वामी जी अस्वस्थ होकर शिलोंग पहाड़ से लौटे हैं, इसलिए उनके गुरु भाईगण बहुत ही चिंतित हैं। शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती महाशय वहां आए। उस दिन स्वामी जी का शिष्य के साथ क्या वार्तालाप हुआ, आइए सुनते हैं। शरद चंद्र ने अपने संस्मरण में लिखा है,
1: दिन के लगभग 10 बजे का समय है। स्वामी जी ऊपर ही बैठे हैं, स्त्रियों के लिए भविष्य में जो मठ तैयार करेंगे उसके संबंध में शिष्य के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माता जी को केंद्र मानकर गंगा के पूर्व तट पर स्त्रियों के मठ की स्थापना करनी होगी। मैंने पूछा, महाराज भारतवर्ष के इतिहास में बहुत प्राचीन काल में भी स्त्रियों के लिए तो किसी मठ की बात ही नहीं मिलती। बौद्ध युग में ही स्त्री मठों की बात सुनी जाती है, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे थे। घोर वामाचार से देश भर गया था।
2: इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अंतर क्यों समझा जाता है, ये समझना कठिन है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है, एक ही चित्त सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो, परंतु उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया बोलो तो? महामाया की साक्षात मूर्ति इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्या तुम लोगों की उन्नति संभव है?
1: महाराज, स्त्री जाति साक्षात माया की मूर्ति है। मनुष्य के अधपतन के लिए ही मानो उसकी सृष्टि हुई है। स्त्री जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान वैराग्य को आवृत्त कर देती है। संभव है इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि उन्हें ज्ञान भक्ति का कभी लाभ न होगा।
2: किस शास्त्र में ऐसी बात है कि स्त्रियां ज्ञान भक्ति की अधिकारिणी नहीं होंगी? भारत का अधःपतन उस समय हुआ जब द्विज पंडितों ने अन्य जातियों को वेद पाठ का अनाधिकारी घोषित किया और साथ ही स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन लिए। नहीं तो वैदिक युग में, उपनिषद युग में तू देख कि मैत्री, गार्गी आदि प्रातः स्मरणीय स्त्रियां ब्रह्म विचार में ऋषि तुल्य हो गई थी। इन सब आदर्श विदुषी स्त्रियों को जब उस समय आध्यात्म ज्ञान का अधिकार था, तब फिर आज भी स्त्रियों को यह अधिकार क्यों ना रहेगा? जिस देश में, जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं है, वो देश, वो जाति कभी बड़ी नहीं बन सकती और ना कभी बन ही सकेगी। मनु ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वे दुखी रहती हैं, उस परिवार की, उस देश की उन्नति की आशा नहीं की जा सकती।
1: महाराज, प्रथम बार विलायत से लौटकर आपने स्टार थिएटर में भाषण देते हुए तंत्र की कितनी निंदा की थी, अब फिर तंत्रों द्वारा समर्थित स्त्री पूजा का समर्थन कर आप अपनी ही बात बदल रहे हैं।
2: तंत्र का वामाचार मत बदल कर इस समय जो कुछ बना हुआ है उसी की मैंने निंदा की थी। तंत्रोक्त मातृभाव की अथवा यथार्थ वामाचार की मैंने निंदा नहीं की। भगवती मानकर स्त्रियों की पूजा करना ही तंत्र का उद्देश्य है। बौद्ध धर्म के अधःपतन के समय वामाचार घोर दूषित हो गया था, वही दूषित भाव आजकल के वामाचार में प्रस्तुत है। अभी भी भारत के तंत्र शास्त्र उसी भाव द्वारा प्रभावित हैं। उन सब विभत्स प्रथाओं की ही मैंने निंदा की थी और अभी करता हूं। जिस महामाया का रूप रसात्मक बाह्य विकास मनुष्य को पागल बनाए रखता है, जिस माया का ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्यात्मक अंतर विकास मनुष्य का सर्वज्ञ सिद्ध संकल्प ब्रह्मज्ञ बना देता है, उस प्रत्यक्ष मात्र रूपा स्त्रियों की पूजा करने का निषेध मैंने कभी नहीं किया।
1: श्री राम कृष्ण के भक्तगण इस कार्य में अवश्य ही सम्मिलित होंगे, परंतु साधारण लोग इस कार्य में सहायक बनेंगे ऐसा सरल प्रतीत नहीं होता।
2: जगत का कोई भी महान कार्य त्याग के बिना नहीं हुआ है। वट वृक्ष का अंकुर देखकर कौन समझ सकता है कि समय आने पर वो एक विराट वृक्ष बनेगा। अब तो इसी रूप में मठ की स्थापना करूंगा, फिर देखना एकाध पीढ़ी के बाद दूसरे सभी देशवासी इस मठ की भी कद्र करने लगेंगे। ये जो विदेशी स्त्रियां मेरी शिष्य बनी हैं, ये ही इस कार्य में जीवन उत्सर्ग करेंगी। देखना समय पर इसकी प्रभा से देश उज्ज्वल हो उठेगा।
1: महाराज, स्त्रियों के लिए किस प्रकार मठ बनाना चाहते हैं, कृपया विस्तार के साथ मुझे बतलाइए।
2: गंगा जी के उस पार एक विस्तृत भूमिखंड लिया जाएगा, उसमें अविवाहित कुमारियां रहेंगी तथा विधवा ब्रह्मचारिणियां भी रहेंगी, साथ ही गृहस्थ घर की भक्तिमय स्त्रियां भी बीच बीच में आकर ठहर सकेंगी। इस मठ से पुरुषों का किसी प्रकार संबंध न रहेगा। स्त्री मठ में लड़कियों का एक स्कूल रहेगा, उसमें धर्मशास्त्र, साहित्य, संस्कृत, व्याकरण और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सिखाई जाएगी। सिलाई का काम, रसोई बनाना, घर गृहस्थी के सभी नियम तथा शिशु पालन के छोटे मोटे विषयों की शिक्षा भी दी जाएगी। साथ ही जप, ध्यान, पूजा, ये सब तो शिक्षा के अंग रहेंगे ही। जो स्त्रियां घर छोड़कर हमेशा के लिए यहीं रह सकेंगी, उनके भोजन वस्त्र का प्रबंधन मठ की ओर से किया जाएगा। जो ऐसा नहीं कर सकेंगी, वे इस मठ में दैनिक छात्राओं के रूप में आकर अध्ययन कर सकेंगी। स्त्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन कराने के लिए वृद्धा ब्रह्मचारिणियां छात्राओं की शिक्षा का भार लेंगी। इस मठ में 5-7 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर लड़कियों के अभिभावक गण उनका विवाह कर दे सकेंगे।
1: पर ऐसी लड़कियां मिलेंगी कहां स्वामी जी?
2: यदि कोई ठीक समझी जाएगी तो अपने अभिभावकों की सम्मति लेकर वो वहां पर चिर कौमार्य व्रत का पालन करती हुई मठ में रह सकेगी। जो स्त्रियां चिर कौमार्य व्रत का अवलंबन करेंगी, वे ही समय पर मठ की शिक्षिकाएं तथा प्रचारिकाएं बन जाएंगी और गांव-गांव, नगर-नगर में शिक्षा केंद्र खोलकर स्त्रियों की शिक्षा की विस्तार से चेष्टा करेंगी। चरित्रशीला एवं धार्मिक भाव संपन्ना प्रचारिकाओं के द्वारा देश में यथार्थ स्त्री शिक्षा का प्रसार होगा। इस प्रकार आदर्श जीवन देखने पर कौन उनका सम्मान न करेगा और कौन उन पर अविश्वास करेगा?
1: महाराज, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि लड़कियां विवाह कर लेंगी तो फिर उनमें लोग आदर्श जीवन कैसे देख सकेंगे? क्या यह नियम अच्छा न होगा कि छात्राएं इस मठ में शिक्षा प्राप्त करेंगी, वे फिर विवाह न कर सकेंगी?
2: ऐसा क्या एकदम ही होता है रे? शिक्षा देकर छोड़ देना होगा, उसके पश्चात वे स्वयं ही सोच समझकर जो उचित होगा करेंगी। विवाह करके गृहस्थी में लग जाने पर भी वैसी लड़कियां अपने पतियों को उच्च भाव की प्रेरणा देंगी और वीर पुत्रों की जननी बनेंगी। परंतु ये नियम रखना होगा कि स्त्री मठ की छात्राओं के अभिभावक गण 15 वर्ष की अवस्था के पूर्व उनके विवाह का नाम न लेंगे।
1: महाराज, फिर तो समाज उन सब लड़कियों की निंदा करने लगेगा, उनसे कोई भी विवाह करना ना चाहेगा।
2: क्यों नहीं, तू समाज की गति को अब तक नहीं समझ सका है। इन सब विदुषी और कुशल लड़कियों को वरों की कमी ना होगी। दशमें, कन्यका प्राप्ति, इन सब वचनों पर आजकल समाज नहीं चल रहा है, चलेगा भी नहीं, अभी भी देख नहीं रहा है।
1: आप चाहे जो कहें, परंतु पहले पहल इनके विरुद्ध एक प्रबल आंदोलन अवश्य होगा।
2: आंदोलन का क्या भय है? सात्विक साहस से किए गए सत्कर्म में बाधा होने पर कार्य करने वालों की शक्ति और भी जाग उठेगी। संघर्ष ही जीवन का चिन्ह है, समझा?
1: जी हाँ।
2: पर ब्रह्म तत्व में लिंग भेद नहीं है, हमें मैं तुम की भूमि में लिंग भेद दिखाई देता है। फिर मन जितना ही अंतर्मुखी होता है उतना ही वो भेद ज्ञान लुप्त होता जाता है। अंत में जब मन एक रस ब्रह्म तत्व में डूब जाता है तब फिर ये स्त्री वो पुरुष आदि का ज्ञान बिल्कुल नहीं रह जाता। इसलिए कह रहा था, स्त्रियों में समय आने पर यदि एक भी ब्रह्मज्ञ बन सकी तो उसकी प्रतिभा से हजारों स्त्रियां जाग उठेंगी और देश तथा समाज का कल्याण होगा, समझा?
1: महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आंखें खुल गई हैं।
2: अभी क्या खुली है? जब सब कुछ उद्भासित करने वाले आत्म तत्व को प्रत्यक्ष करेगा तब देखेगा ये स्त्री पुरुष के भेद का ज्ञान एकदम लुप्त हो जाएगा। तब स्त्रियां ब्रह्म रूपिणी ज्ञात होंगी। श्री कृष्ण को देखा है, सभी स्त्रियों के प्रति मातृभाव, फिर वो चाहे किसी भी जाति की कैसी भी स्त्री क्यों ना हो। मैंने देखा है ना, इसलिए मैं इतना समझाकर तुम लोगों को वैसा बनने के लिए कहता हूं, और लड़कियों के लिए गांव गांव में पाठशालाएं खोलकर उन्हें शिक्षित बनाने के लिए कहता हूं। स्त्रियां जब शिक्षित होंगी तभी तो उनकी संतान द्वारा देश का मुख उज्जवल होगा और देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी।
1: परंतु महाराज, मैं जहां तक समझता हूं, आधुनिक शिक्षा का विपरीत ही फल हो रहा है। लड़कियां थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं और बस कमीज गाउन पहनना सीख जाती हैं। त्याग, संयम, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने योग्य विषयों में उनकी क्या उन्नति हो रही है, समझ में नहीं आता।
2: पहले पहल ऐसा हुआ ही करता है। देश में नए भाव का पहले पहल प्रचार करते समय कुछ लोग उस भाव को ठीक नहीं ग्रहण कर सकते। इससे विराट समाज का कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु जिन लोगों ने आधुनिक साधारण स्त्री शिक्षा के लिए भी प्रारंभ में प्रयत्न किया था, उनकी महानता में क्या संदेह है। असल बात यह है कि शिक्षा हो अथवा दीक्षा हो, धर्महीन होने पर उनमें त्रुटि रह जाती है। अब धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं गौण होंगी। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान काल में आज तक भारत में स्त्री शिक्षा का जो प्रचार हुआ है उसमें धर्म को ही गौण बनाकर रखा गया है। तूने जिन सब दोषों का उल्लेख किया वे इसी कारण उत्पन्न हुए हैं, परंतु इसमें स्त्रियों का क्या दोष है, बोल।
1: जी हाँ, देखा जाता है अनेक शिक्षित लड़कियां केवल नाटक उपन्यास पढ़कर ही समय बिताया करती हैं, परंतु पूर्वी बंगाल में लड़कियां शिक्षा प्राप्त करके भी नाना व्रतों का अनुष्ठान करती हैं। इस देश में भी क्या वैसा ही करती हैं?
2: भले बुरे लोग तो सभी देशों तथा सभी जातियों में हैं। हमारा काम है अपने जीवन में अच्छे काम करके लोगों के सामने उदाहरण रखना। निंदा करके कोई काम सफल नहीं होता, केवल लोग बहक जाते हैं। लोग जो चाहे कहें, विरुद्ध तर्क करके किसी को हराने की चेष्टा न करना। इस माया के जगत में जो कुछ करेगा उसमें दोष रहेगा ही, आग रहने से धुआं उठेगा। परंतु क्या इसलिए निश्चेष्ट होकर बैठे रहना चाहिए? नहीं, शक्ति भर सत्कार्य करते ही रहना होगा।
1: महाराज, अच्छा काम क्या है?
2: जिससे ब्रह्म के विकास में सहायता मिलती है वही अच्छा काम है। प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष न हो, परोक्ष रूप में आत्म तत्व के विकास के सहायक रूप में किया जा सकता है, परंतु ऋषियों द्वारा चलाए हुए पथ पर चलने से वह आत्मज्ञान शीघ्र ही प्रकट हो जाता है, और जिन कार्यों को शास्त्रों ने अन्याय कहा है उन्हें करने से आत्मा को बंधन होता है, जिससे कभी कभी तो जन्म जन्मांतर में भी वो मोह बंधन नहीं कटता। परंतु यह स्मरण होना चाहिए कि जीव की मुक्ति सभी देशों तथा कालों में अवश्यंभावी है, क्योंकि आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या कोई स्वयं छोड़ सकता है? तेरी छाया के साथ तू हजार वर्ष लड़कर भी क्या उसको भगा सकता है? वो तेरे साथ रहेगी ही।
1: आहा, यह तो वेदांत के कर्म और ज्ञान का समन्वय करने वाली बड़ी सुंदर मीमांसा है। इसके पश्चात नीचे प्रसाद पाने की घंटी बजी और स्वामी जी ने मुझको प्रसाद पाने के लिए जाने को कहा। मैं भी स्वामी जी के चरण कमलों में प्रणाम करके जाने के पूर्व हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपके स्नेह आशीर्वाद से इसी जन्म में मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए। स्वामी जी ने मेरे मस्तक पर हाथ रख कर कहा, भय क्या है भाई, तुम लोग क्या अब भी इस जगत के लोग रह गए हो? न गृहस्थ, न सन्यासी, तुम तो एक नया ही रूप हो। स्वामी जी, कुछ दिन हुए पूर्वी बंगाल और आसाम की यात्रा से लौट आए हैं। शरीर अस्वस्थ है, पैर सूज गया है। मैंने आकर मठ की ऊपरी मंजिल में स्वामी जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। शारीरिक अस्वस्थता के होते हुए भी स्वामी जी के मुखमंडल पर मुस्कुराहट और दृष्टि में स्नेह झलक रहा था, जो देखने वालों के सब प्रकार के दुखों को भुलाकर उन्हें आत्मविस्मृत कर देता था। महाराज, आपका स्वास्थ्य कैसा है?
2: मेरे बच्चे, मैं अपने स्वास्थ्य के संबंध में क्या कहूं। शरीर तो दिनों दिन कार्य के लिए अक्षम बनता जा रहा है। बंगाल प्रांत में आकर शरीर धारण करना पड़ा। शरीर में रोग लगा ही है। इस देश का शारीरिक गठन बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम लोगों के लिए परिश्रम करूंगा, परिश्रम करते हुए ही शरीर त्याग करूंगा।
1: आप अब कुछ दिन काम करना बंद कर विश्राम कीजिए, तभी आप स्वस्थ होंगे। इस शरीर की रक्षा से जगत का कल्याण होगा।
2: विश्राम करने को अवकाश कहाँ है भाई? श्री राम कृष्ण जिन्हें काली काली कहकर पुकारा करते थे, वही उनके शरीर त्याग के 2-3 दिन पहले से ही इस शरीर में प्रविष्ट हो गई हैं। वही मुझे इधर उधर काम कराती हुई घुमा रही हैं, बैठे रहने नहीं देती, अपने सुख की ओर देखने नहीं देती।
1: शक्ति प्रवेश की बात क्या आप किसी रूपक के रूप में कह रहे हैं?
2: नहीं रे, श्री राम कृष्ण के देह त्याग के 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे एक दिन एकांत में अपने पास बुलाया और मुझे सामने बिठाकर मेरी ओर एक दृष्टि से एक टक देखते हुए समाधिमग्न हो गए। मैं उस समय ठीक अनुभव करने लगा कि उनके शरीर से एक सूक्ष्म तेज बिजली के कंपन की लहर आकर मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रही है। धीरे धीरे मैं भी बाह्य ज्ञान खोकर निश्चल हो गया। कितनी देर तक ऐसे भाव में रहा मुझे कुछ याद भी नहीं है। जब बाहर की चेतना हुई तो देखा श्री रामकृष्ण रो रहे हैं। पूछने पर उन्होंने स्नेह के साथ कहा, आज सभी कुछ तुझे देकर मैं फकीर बन गया, तू इस शक्ति के द्वारा संसार का बहुत कल्याण करके लौट जाएगा। मुझे लगता है वो शक्ति ही मुझे इस काम से उस काम में घुमाती रहती है। बैठे रहने के लिए मेरा ये शरीर बना ही नहीं है।
1: मैं विस्मित होकर सुनते सुनते सोचने लगा, इस सब बात को साधारण व्यक्ति कैसे समझेंगे? कौन जाने। इसके बाद दूसरा प्रसंग उठाकर बोला, महाराज, हमारा बांग्लादेश आपको कैसा लगा?
2: देश कोई बुरा नहीं है। मैदान में देखा पर्याप्त अन्न उत्पन्न होता है, जलवायु भी बुरी नहीं है, पहाड़ की ओर का दृश्य भी बहुत सुंदर है, ब्रह्मपुत्र की घाटी की शोभा अतुलनीय है। हमारी इस ओर की तुलना में लोग कुछ मजबूत तथा परिश्रमी हैं।
1: हमारे पूर्व बंगाल में आजकल अनेक अवतारों का उदय हो रहा है।
2: गुरु को लोग अवतार कह सकते हैं अथवा जो चाहे मानकर धारण करने की चेष्टा कर सकते हैं, परंतु भगवान का अवतार कहीं भी तथा किसी भी समय नहीं होता। एक ढाका में ही सुना है 3 बार अवतार पैदा हो गए हैं।
1: उस देश की महिलाएं कैसी हैं?
2: महिलाएं सर्वत्र प्रायः एक सी ही होती हैं। वैष्णव भाव ढाका में अधिक दिखा। स्त्रियां बहुत बुद्धिमती जान पड़ी, बहुत आदर के साथ भोजन तैयार करके मेरे पास देती थीं।
1: महाराज, कामाख्या में जाकर आपने क्या देखा?
2: शिलोंग पहाड़ बहुत ही सुंदर है। वहां पर चीफ कमिश्नर मिस्टर कॉटन के साथ साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी, यूरोप और अमेरिका घूमकर इस दूरवर्ती पर्वत के पास आप क्या देखने आए हैं? कॉटन साहब जैसे सज्जन व्यक्ति प्रायः देखने में नहीं आते। उन्होंने मेरी अस्वस्थता की बात सुनकर सरकारी डॉक्टर भिजवाया था। वे साया प्रातः दोनों समय मेरी खबर लेते थे। वहां पर अधिक व्याख्यान आदि न दे सका, शरीर बहुत ही अस्वस्थ हो गया था।
1: महाराज, उस देश के लोग संभव है आपको ठीक ठीक समझ ना सके हो?
2: समझें या ना समझें, इस अंचल के लोगों की तुलना में उनका रजोगुण अवश्य प्रबल है। आगे चलकर उसका और भी विकास होगा। जिस प्रकार के चाल चलन को इस समय सभ्यता या शिष्टाचार कहते हैं, वो अभी तक उस प्रांत में भली भांति प्रविष्ट नहीं हुआ है। ऐसा धीरे धीरे होगा। सदैव राजधानी से ही अन्य विभागों में धीरे धीरे चाल चलन, अदब कायदा, आचार विचार आदि का विस्तार होता है। उस देश में लोग मेरे खाने पीने के प्रश्न को लेकर बड़ी चर्चा किया करते थे। कहते थे, वो क्यों खाएंगे, उसके हाथ का क्यों खाएंगे आदि आदि। इसलिए कहना पड़ता था, मैं तो सन्यासी फकीर हूं, मेरा नियम क्या। हजार वर्ष गंगा स्नान कर और हजार वर्ष निरामिष भोजन कर भी यदि आत्म विकास नहीं होता तो सब जानना व्यर्थ हुआ। और नियम निष्ठा पर ध्यान न रखकर यदि कोई आत्मदर्शन कर सके तो वो अनाचार भी श्रेष्ठ नियम निष्ठा है। परंतु आत्मदर्शन होने पर भी लोक संस्थिति के लिए कुछ नियम निष्ठा मानना ही उचित है। मुख्य बात है मन को एक निष्ठ बनाना। एक विषय में निष्ठा होने से मन की एकाग्रता होती है, अर्थात मन की अन्य वृत्तियां शांत होकर एक विषय में ही केंद्रित हो जाती हैं। बहुतों का बाहर की नियम निष्ठा या विधि निषेध की झंझट में ही सारा समय बीत जाता है, फिर उसके बाद आत्मचिंतन करना नहीं होता। दिन रात विधि निषेधों की सीमा में आबद्ध रहने से आत्मा का प्रकाश कैसे होगा। जो आत्मा का जितना अनुभव कर सका उसके विधि निषेध उतने ही शिथिल हो जाते हैं। हजार नियम निष्ठा मानकर चले, हजार श्लोक सुने, पर फिर भी यदि त्याग का भाव ना आया हो तो जानना जीवन व्यर्थ है। अतएव यही अनुभूति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जा। शास्त्र तो बहुत पढ़ा, बोल बोल तो उससे क्या हुआ। कोई धन की चिंता करते करते धन कुबेर बन जाता है और कोई चिंतन करते पराविद्या प्राप्त करके विद्या और अविद्या से परे चला जाता है।

0: ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे आत्मानुभूति की प्राप्ति इसी शरीर में हो जाए।
1: मनुष्य ने इस देह को प्राप्त किया है केवल आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। संसार में सभी लोग जिस रास्ते से जा रही हैं, क्या तू भी उसी स्रोत में बहकर चला जाएगा? तो फिर तेरे पुरुषत्व का मूल्य क्या है? सब लोग तो मरने बैठे हैं, पर तू तो मृत्यु को जीतने आया है। महावीर की तरह अग्रसर हो जा, किसी की परवाह न कर। कितने दिनों के लिए है यह शरीर, कितने दिनों के लिए है यह सुख दुख? यदि मानव शरीर को ही प्राप्त किया है तो भीतर की आत्मा को जगा और बोल, मैंने अभय पद प्राप्त कर दिया है। बोल, मैं वही आत्मा हूं जिसमें मेरा क्षुद्र अहम भाव लीन हो गया है। इसी तरह सिद्ध बन जा। उसके बाद जितने दिन ये देह रहे उतने दिन दूसरों को ये महावीर ये प्रद अभय वाणी सुना, तत्वमसी उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये होने पर तब जानूंगा कि तू वास्तव में एक सच्चा मनुष्य है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

रिक्शा से बालीनाथ जी की टोनी में चल जावे, जब कहीं बात बने देखो। रामदेव जी झोंपड़ी में कुटिया में छुप जावे, भैरव राक्षस भूतनी ने कांच पर लगा।

कहेंगे देखो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग राजस्थान, गुड इवनिंग गुजरात, गुड इवनिंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं, और ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर से आज आ गया है पहली तारीख। जी हाँ, पहली तारीख है भाई, पहली तारीख, खुश है जमाना के पहली तारीख है। जी हाँ, किशोरदा के ये खूबसूरत गाने, शायद आपको खूबसूरत जो गाना है इनका, एक तारीख पर, पहली तारीख पर, वो ज़रूर याद आता होगा आपको। तो चलिए आपकी खुशी को और बढ़ाते हैं आज के दिन को। आज 1 जुलाई आज का तारीख है, और आज विशेष बहुत सारे लोगों का जन्मदिन है। एक लंबी लिस्ट मेरे पास आ गई है, तो ऐसे महान लोगों का नाम जरूर लेना चाहूँगा, और आप भी ध्यान से सुनिएगा। विधान चंद्र राय, हरिप्रसाद चौरासिया, अमरकांत, चंद्रशेखर, राम नरेश यादव, अब्दुल हमीद, डॉक्टर तुलसीराम, अखिलेश यादव, वेंकैया नायडू, सुधाकर पांडे, रशीद खान, कन्हैयालाल नंदन, बेनेगल राम राव, रामा राव, श्याम शरण नेगी, तिलोकनाथ पांडे, मनोज सिन्हा, कोल्हापुरी इनोज, कृष्ण बिहारी मिश्र, लीलाधर जुगड़ी जी, सतीश रेड्डी। ये तो लिस्ट है, बाकी और लोगों का जन्मदिन होगा, लेकिन आज इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ में पुरुषोत्तम दास टंडन, विधान चंद्र राय, सी वाई चिंतामणि, वनलता दास गुप्ता, इनका पुण्य दिवस है। अब देखिए, एक जो पहला नाम मैंने लिया था विधान चंद्र राय, वो 1 जुलाई को पैदा हुए और 1 जुलाई को ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में बात करूंगा मैं आपके साथ, आपको जोड़ना चाहूंगा उनकी कहानी से। और एक आज़ादी के दीवाने, स्वतंत्रता सेनानी और खुशल राजनीतिक, इनके बारे में बात करते हैं, विधान चंद्र राय के बारे में कुछ ही पल में। लेकिन अभी आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ जोड़ना चाहूँगा। कहते हैं, विफलता के बारे में चिंता मत कर, विफलता के बारे में चिंता मत करो, आपको बस एक बार ही सही होना है, आपको बस एक बार ही सही होना है। क्योंकि बहुत बार विफल हो के आप एक बार सही हो जाते हैं तो सब सही हो जाता है ना। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है विचार, आप इसे बार बार दोहरा के अपने जीवन को बेहतर बनाइए। ऐसी शुभ आशा के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आप सभी के साथ मिलते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप ही के लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को, डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं हम लोग अब डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक वरिष्ठ चिकित्सक, विद्यावान, शिक्षाविद, निर्भीक आज़ादी के दीवाने, कुशल राजनीतिक और बहुत ही पॉपुलर समाज सेवक के साथ आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता के रूप में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। विशेषकर बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य के संदर्भ में उन्हें बंगाल का मसीहा भी कहा जाता है। तो आइए, इनका जन्म आज जी के दिन सन 1882 को बिहार राज्य के पटना जिले में बंकीपुर में हुआ। इनके पिता का नाम था श्री प्रकाश चंद्र राय और ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी माता का नाम श्रीमती कामिनी देवी था। विधान चंद्र अपने माता पिता की 5 संतानों में सबसे छोटे थे। कहा जाता है कि विपिन विधान चंद्र के पूर्वज बंगाल के राजघराने से संबंधित थे और उन्होंने मुगलों का जमकर मुकाबला किया था। यद्यपि कालांतर में राजशाही का प्रभाव जाता रहा तथा सरकारी नौकरी होते हुए भी प्रकाश चंद्र राय की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो ऐसे में इनके लिए बड़ा ये मुश्किल था कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बड़े प्यार से इन चीज़ों को हैंडल किया और उनको लगा कि ये चीज़ें कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। फिर कड़ी मेहनत करके उन्होंने पूरा ढांचा ही बदल दिया। हाँ, ये कैसे उन्होंने ढांचा बदला वो बातें अभी सुनते हैं आपके लिए खास। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और शाम का 4 बच चुके हैं। शाम के इस समय में अपने आप को जो है थोड़ा सा रिफ्रेश जरूर कर सकते हैं आप। हाँ, मैं समझ गया आप क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप चाय पीजिए और चाय पीते पीते कार्यक्रम को सुनिए। और कोई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको चाय पसंद नहीं तो वो ग्रीन टी पी सकते हैं। रोका किसने है, अगर ग्रीन टी नहीं तो सादा पानी भी पीजिए, ये भी आपके सेहत के लिए, आपने आपको रिफ़्रेश करने के लिए बहुत बड़े। हाँ, पानी पीते वक्त मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप पानी कैसे पिए, है ना। मोस्टली हम लोग जो है ग्लास से पानी पीते हैं। मैं चाहूँगा एक के बजाय 2 ग्लास अपने पास रखी है और हो सके तो कांच का ग्लास हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो जो भी ग्लास है आपके पास 2 ग्लास हैं, एक ग्लास में पानी लीजिए, एक खाली ग्लास लीजिए और पानी इधर और उधर ऊपर से ऐसे, जैसे चाय वाला जो है चाय को ऊपर से नीचे जैसे चाय बनाते वक्त करता है, अगर आपने देखा होगा तो पानी को एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पोर करते जाए, है ना, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालते जाए थोड़ा ऊपर से ऐसे, है ना। और वो पानी जब ऊपर से नीचे दूसरे ग्लास में आ रहा है, फिर भरने के बाद दूसरे ग्लास को नीचे लाइए, उसको ऊपर से पानी भर दीजिए। तो इस तरह का थोड़ा सा एक्सरसाइज 3-4 बार करके देखिए, पानी में एक नई एनर्जी आ जाएगी, ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ेगा और फिर आप पीजिए, है ना। आप सोचेंगे ये कहाँ से आइडिया, कौन सी ये चीज़ें, ये क्या करती हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप ऐसे करके पानी पीते हैं तो आपको तुरंत एक नई एनर्जी मिले, करके तो देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए, विधान चंद्र राय जी के बारे में बात कर रहा था और उनकी निर्भीकता को देखते हुए और उनकी सोच जो है किस तरह से अपने भारत की उन्नति के लिए उन्होंने काम किया। तो अध्ययन अध्ययन ये उनका पहला था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो स्कूल में उन्होंने ये सारा चीज़ करना शुरू कर दिया, काफ़ी लगन से पढ़ाई किया और फिर उनके प्रधान आचार्य कर्नल लूकिस थे उनके प्रेरणा सूत्र, और डॉक्टर राय को आगे बढ़ने से बहुत सहयोग दिया उन्होंने। और 1906 में एम LMS की परीक्षा पास करके और स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त हो गए। इस तरह से वो डॉक्टर बनके रोगियों को ठीक करने का सबसे पहला काम उन्होंने शुरू किया। अब उसके बाद कैसे आगे बढ़े वो जानेंगे थोड़ी देर में। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। हाँ, जरूर पानी पीजिए आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और बात कर रहे थे विधान चंद्र राय के बारे में। जैसे वो डॉक्टरी का काम उनका शुरू हो गया, फिर आगे आगे राजनीतिक का सफर इनका शुरू हो गया। पहले तो भारत में उन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्कूल और कार्मिकल मेडिकल कॉलेज में अध्यापन का कार्य जमकर किया और 1916 में वो कोलकाता विश्वविद्यालय के फेलोशिप चुने गए। और फिर 1922 में वो कोलकाता मेडिकल जनरल के संपादक और बोर्ड के सदस्य बने। उन्हीं दिनों वो कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति जो आशुतोष मुखर्जी थे उनके संपर्क में आ गए। फिर आशुतोष मुखर्जी तो बड़े दूरदर्शी थे और पारखी भी थे, तो उन्होंने डॉक्टर राय को समझ लिया और 1923 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और राय ने इस चुनाव को प्रत्याशी के रूप में उस समय के प्रसिद्ध नेता और अपनी विपक्षी सुरेंद्र बनर्जी को पराजित किया और इस प्रकार देश की सक्रिय राजनीति का ये पहला कदम इनका शुरू हो गया। फिर देश बंधु चित्तरंजन दास उनके बहुत ही सहयोगी बने और लंबे समय तक भारत की सेवा में लगे रहे। इस तरह से चिकित्सा के साथ साथ राजनीति का ये सफर उनका काम आया। और फिर सन 1957 में उनकी भेंट बर्मा जेल से लौटे सुभाष चंद्र बोस से हो गई। और फिर राय ने नेताजी के विचारों से सहमत हुए और उन्होंने अपने आगामी भाषण में कहा, भारतवासियों को आपसी मतभेद भूलकर देश की आज़ादी के लिए आगे आना चाहिए। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ी तो गांधी जी के साथ इनकी मुलाकात हो गई, गांधी जी के करीबी बने और फिर इस तरह से गांधी जी के सहयोग से देश बंधु जी ने चित्तरंजन सेवा सदन का निर्माण की योजना बनाई और फिर गांधी जी ने डॉक्टर राय को इस ट्रस्ट का सचिव बनाया।

और 28 में अखिल भारतीय समिति के सदस्य चुने गए और 29 में उन्होंने बंगाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। इस तरह से फिर अलग अलग नेतृत्व करते हुए 1947 में देश आजाद हुआ तो डॉक्टर राय को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार हुआ, किंतु अपने डॉक्टरी और समाज सेवा कार्य को वो प्राथमिकता देते हुए इस मंत्रिमंडल में आने से इनकार कर दिया। तब गांधी जी के कहने पर उन्होंने विशेष नाते अपने कर्तव्य को बंगाल के मुख्यमंत्री पद का दायित्व करना पड़ा और वो उसे स्वीकार किए और 23 जनवरी 1948 को राजपाल चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और डॉक्टर राय ने अपने जीवन काल में अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य किया। तो इस तरह से चित्तरंजन सेवा सदन और बहुत सारे ऐसे आरजी मेडिकल कॉलेज, चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल मुख्य रूप से उनके नाम से ये खोले गए। अपने निवास स्थान को भी अपनी माता के नाम पर अस्पताल चलाने के लिए दान दे दिया। 1957 में उन्हें भारतीय विशेष विज्ञान के अध्यक्ष चुना गया। इस तरह से भारत रत्न भी उन्हें प्राप्त हुआ 4 फरवरी 1961 को। वरिष्ठ चिकित्सक, शिक्षाविद, निर्भीक और फिर कुशल राजनीतिक और प्रसिद्ध समाज सेवक डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया और फिर 1 जुलाई को पैदा हुए थे और 1 जुलाई 1962 को 1 जुलाई 1962 को इनका मृत्यु हुआ, लेकिन 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ था, है ना, एक ही तारीख 1 जुलाई, ये इनका खास लकी नंबर है जन्म और मृत्यु का। तो ऐसा हुआ था कि 80 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ और डॉक्टर राय को उनके कार्य के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसे महान व्यक्ति को याद करते हुए महान प्रेरणाओं से भरपूर होकर हम भी अपने जीवन को बेहतर बनाएं, ऐसी शुभ आशा के साथ ढेर सारी खुशियों में अब आपके लिए एक और गीत सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ रूबरू होते हुए। और शाम का समय है और ढेर सारी खुशियां लेकर आई हैं ये शाम आपके लिए। और एक महान व्यक्ति की जीवन कहानी सुनकर मुझे लगता है कि आपके जीवन को एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी मिल रही होगी। तो आइए एक और दिग्गज के बारे में बातें करेंगे, हरि प्रसाद चौरसिया। ये नाम शायद आपने सुना होगा, सुना ही होगा, क्योंकि अगर आप रेडियो के प्रेमी हैं तो ये नाम आपके दिल में कहीं ना कहीं एक जगह ज़रूर बनाई होगी। तो हरि प्रसाद चौरसिया के बारे में बात करते हैं और आप सभी मुझे बताएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी अमरकांत जी के बारे में बात करते हैं और ये भी एक साहित्यकार है और बहुत ही सुंदर साहित्यकार है और कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के मुख्य कहानीकार की अगर नाम लेते हैं तो इनका नाम भी उसके साथ में जुड़ जाता है। प्रयाग विश्वविद्यालय से डिग्री पूरा करने के बाद अमरकांत ने निश्चय कर लिया था कि उन्हें हिंदी साहित्य की सेवा करनी है। मन में पत्रकार बनने की इच्छा थी और उन्होंने आगरा शहर से निकलने वाले दैनिक पत्र सैनिक से अपनी नौकरी शुरू की थी। अमरकांत सदैव ही संकोची व्यक्ति रहे हैं। आम जनता से जुड़ी हुई कोई भी बात उन्हें साधारण नहीं लगती थी। देश में होने वाली हर महत्वपूर्ण घटना पर उनकी बारीक नज़र रहती थी। वे खुद ये कभी भी पसंद नहीं करते थे कि वे चर्चा के केंद्र में रहें। आइए उनके बारे में बात करते हैं। आज ही के दिन 1925 को नागरा गांव तहसील रासडा बालिया जिला उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ इनका जन्म और इनके पिता का नाम सीताराम वर्मा व माता का नाम अनंती देवी था। पहले अमरकांत का नाम श्रीराम रखा गया था और इनके खानदान में लोग अपने नाम के साथ लाल लगाते थे। अंततः अमरकांत का भी नाम श्री राम लाल हो गया। बचपन से ही किसी साधु महात्मा द्वारा अमरकांत का एक और नाम अमरनाथ रखा गया था और ये नाम अधिक प्रचलित तो नहीं हुआ किंतु स्वयं श्री राम लाल को इस नाम के प्रति आसक्ति हो गई, इसलिए उन्होंने कुछ परिवर्तन करके अपना नाम अमरकांत रख लिया। है ना कमाल की बात। तो उनकी साहित्यिक कृति भी इसी नाम से प्रसिद्ध हुई और अपने नामकरण की चर्चा करते हुए स्वयं अमरकांत ने लिखा है कि मेरे खानदान के लोग अपने नाम के साथ लाल लगाते थे और मेरा नाम भी श्री राम लाल हो गया। लेकिन जब हम लोग बालिया शहर में रहने लगे तो चार पांच गांव बाद वहां अनेक कास्ट परिवार में लाल के स्थान पर वर्मा जोड़ दिया गया और मेरा नाम श्री राम वर्मा रख दिया गया। तो इस तरह से चीजें जो है बदलती गई और अमरकांत जी का जो परिवार है वो विशेष रूप से मध्य कोटि के कास्टकार थे और उनके बाबा गोपाल वर्मा मोहरी थे और पिता श्री राम वर्मा के इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई की थी और यहीं से कास्त पाठशाला से उन्होंने इंटरमीडिएट भी किया था और मुख्तारी की परीक्षा पास की और बालिया कचहरी में प्रैक्टिस करने लगे। इस तरह से वो अपना काम करते हुए शिक्षा दीक्षा और फिर व्यवसाय का काम करने के लिए वो नौकरी की तलाश कुछ समय बाद शुरू किया। नौकरी की तलाश करते करते कहीं कुछ जमा नहीं तो नौकरी करने के बदले उन्होंने पत्रकार बनने का निश्चय कर लिया और अंदर ये विश्वास बैठ गया था कि हिंदी ही देश सेवा का पर्याप्त माध्यम है। वैसे अमरकांत के मन में राजनीति के प्रति तरह तरह के निराश और भाव आ गए थे, इस कारण वो उस जगह पर नहीं गए और पत्रकारिता से जुड़े रहे। अमरकांत के जो चाचा थे उन दिनों आगरा में रहते थे और उन्हीं के प्रयास से उन्होंने दैनिक सैनिक नाम से अमरकांत की नौकरी मिल गई एक पत्रकारिता में और फिर वहीं से वो सेवा करते करते साहित्य जगत से जुड़े और साहित्य का कार्य करते करते वो अपनी आगे की कहानी, जिस तरह से अधिकांश लोगों को पत्रकारिता में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर एक बार आदमी संभल हो जाता है तो चीज़ें संभल जाती हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं की जो है उनकी कुछ लापरवाही के कारण ज़िंदगी में कई बार चिंता मुक्त नहीं हो सके, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जैसे पत्रिकाएं अलग अलग निकालने लगे ये, तो इनका जीवन फिर संघर्ष से मुक्त हो गया, वरना संघर्ष इनके जीवन के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। और फिर इन्हें एक से लेकर 10 ऐसे अलग अलग विद्यापीठों से सम्मान प्राप्त है, और 17 फरवरी 2014 को इनका देहासन हुआ, ये इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गांव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM,
1: नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और अब आइए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिनकी कहानी आपको याद भी होगी और कुछ बातें भी याद होगी। तो लीजिए

0: जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में। हाँ, सही पहचाना आपने, हरी प्रसाद चौरासिया, बांसुरी वादक पंडित हरी प्रसाद चौरासिया। जी हाँ, आइए इनकी कहानी अभी आपको सुनाते हैं। इनका जन्म, इनको सम्मान, इनकी ख्याति कैसे हुई, ये सारी बातें आपको आराम से मैं सुनाने वाला हूँ। आप बहुत ही प्यार से इस कहानी को, पंडित हरी प्रसाद जी की कहानी को सुनिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हरी प्रसाद चौरसिया। हरी प्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश की पावन नगरी प्रयाग में 1 जुलाई सन 1938 को हुआ। इनके पिता अपने समय के एक अच्छे पहलवान थे। परिवार का भरण पोषण एक छोटी सी दुकान के सहारे होता था। किसी प्रकार बालक हरी प्रसाद को थोड़ी बहुत स्कूली शिक्षा मिल सके। बचपन में ये बड़े चंचल और हसमुख स्वभाव के थे। मोहल्ले के सांगीतिक वातावरण ने इनको आकृष्ट किया। इनके घर के ऊपरी भाग में मास्टर राजाराम रहा करते थे। उनका जीविकोपार्जन संगीत था। भले घर के बालक बालिकाएं उनसे संगीत शिक्षा लेते थे। कुछ बच्चे उनके पास घर पर भी सीखने आया करते थे। उत्कंठावश बालक हरी प्रसाद मास्टर राजाराम के पास बैठ जाते थे और उनकी शिक्षा को ध्यान पूर्वक सुनते थे। इसी तरह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। मास्टर राजाराम के पास एक युवक बांसुरी सीखने आया करता था। उनको देखकर इनके मन में भी बांसुरी सीखने की इच्छा उत्पन्न हुई। सस्ती और सुलभ होने के कारण

0: शीघ्र ही एक बांसुरी लेकर पंडित राजाराम के पास उपस्थित हो गए। उन्होंने सर्वप्रथम कुछ अलंकार सिखाए और यमन की गत प्रारंभ करा दी। बालक हरि प्रसाद प्रारंभ से ही बड़े प्रतिभावान थे और उनकी बताई हुई चीजों को शीघ्र ही बांसुरी पर निकाल लेते थे। इतना ही नहीं, फिल्मी गीतों की कुछ धुने भी बांसुरी पर स्वतः निकालने लगे थे। संयोग से आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र पर वाराणसी के पंडित भोलानाथ की नियुक्ति हो गई। उनकी बांसुरी ने हरि प्रसाद को आकृष्ट किया और वे भोलानाथ से बांसुरी की शिक्षा लेने गए और उनसे बांसुरी की शिक्षा लेने लगे। 4-5 वर्षों तक लगातार उनसे बांसुरी शिक्षा लेते रहे और हर समय इसकी साधना में डूबे रहते थे। सन 1955 से आकाशवाणी कार्यक्रम भी देने लगे थे, किंतु घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना थी, किसी न किसी साधन की तलाश थी। संयोगवश आकाशवाणी के अटक केंद्र में एक बांसुरी कलाकार की आवश्यकता हुई और हरि प्रसाद को वहां कार्य मिल गया। घर के सदस्यों ने मन दबाकर किसी प्रकार कटक के लिए विदा किया। कटक से हरि प्रसाद की वास्तविक प्रगति प्रारंभ हुई। ईश्वर की कृपा से स्वेच्छा का कार्य मिल जाने के कारण घनघोर अभ्यास करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ने लगी। कुछ दिनों के बाद इनका स्थानांतरण बंबई में हो गया। प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए यह स्थान सदा से केंद्र रहा है। हरि प्रसाद को वहां पूर्ण मान्यता मिली और शास्त्रीय संगीत जगत तथा फिल्मी जगत दोनों ने इन्हें अपना लिया। व्यस्तता बढ़ने के कारण सन 1964 से आकाशवाणी से मुक्ति ले ली। सौभाग्य से श्रीमती अन्नपूर्णा देवी वहीं थी। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और संगीत का उच्च ज्ञान उनसे प्राप्त करने लगे। श्री हरि प्रसाद चौरसिया ने अपने अथक संगीत साधना से न केवल संगीत जगत को गौरवान्वित किया, बल्कि बांसुरी जैसे वाद्य को ऐसे क्षितिज पर पहुंचा दिया कि लोगों को अब यह अनुभव होने लगा है कि कृष्ण की बंसी में कितनी प्रभोत्पादकता रही होगी। श्री हरि प्रसाद गायकी अंग से बजाना शुरू करते हैं और गति बढ़ाते बढ़ाते तंत्रकारी अंग का ऐसा सुंदर समन्वय करते हैं जो युवा कलाकारों के लिए आदर्श है। अपने वादन के अंत में जो धुन बजाते हैं वह बेजोड़ रहता है। ऐसे ऐसे स्वर समूहों का प्रयोग कर जाते हैं कि श्रोता वाक रह जाते हैं। धुन के अंतिम भाग में छोटी बांसुरी बजाने लगते हैं और धुन की समाप्ति लय, ताल और स्वर की अंतिम गति पर करते हैं। हम उनके चिरायु की कामना करते हैं। उन्हें सन 1984 में संगीत नाटक अकादमी, 1992 में पद्म भूषण, 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है।
1: तो ये थी कहानी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत के साथ जोड़ता हूँ। आशा करूँगा उनके बांसुरी, उनकी बातें सुनकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो आइए, कभी कभी आप अगर थोड़ा सा तनाव में रहते हैं तो गीत से मज़ा नहीं आ रहा है तो कभी बांसुरी को लगातार सुनिए और आराम से सुनिए, देखिए आपका मन का तनाव दूर हो जाएगा और आपको अपने आप से भी खुशी महसूस होगी, है ना कमाल की बात। तो लीजिए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए एक और खूबसूरत सा गीत सुनते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। अब बात करते हैं, भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे युवा तुर्क का संबोधन उनके निष्पक्ष के कारण प्राप्त हुआ था। ये हैं चंद्रशेखर सिंह। जी हाँ, मेधा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें विविधता कई योग्यता देकर पृथ्वी पर भेजता है। चंद्रशेखर जी का शुमार भी उन्हीं व्यक्तियों में करना चाहिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर ने ही प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। आचार्य नरेंद्र देव के काफी समीप माने जाते थे और उनके व्यक्तित्व और चारित्र में इन्होंने बहुत कुछ आत्मसात किया था। और एक संसद के रूप में चंद्रशेखर का वक्त तव्य पक्ष और विपक्ष दोनों बेहद ध्यान से सुनते थे। उनके लिए प्रचलित था कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि देश की उन्नति के राजनीतिक हेतु कार्य करने में विश्वास रखते हैं। चंद्रशेखर आत्मा की आवाज पर प्रशंसा और आलोचना करते थे। तब ये नहीं देखते थे कि वह ऐसे पक्ष के प्रति कर रहे हैं या विपक्ष के प्रति, लेकिन देश को इस सुयोग व्यक्ति से अत्यधिक उम्मीदें थी जो निश्चय ही राजनीतिक व्यवस्था के कारण प्राप्त नहीं हो सकी। तो चलिए, आज इनका जन्मदिन है तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रोग्राम में, सफर कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते जाते कहूँगा, चंद्रशेखर जी को प्लाज्मा कैंसर था और 3 मई 2007 को नई दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ वो 8 जुलाई 2007 को इनका निधन हो गया। लेकिन चंद्रशेखर एक कर्मठ और ईमानदार राजनीतिक के रूप में भारतवासियों को सदैव याद रहेगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और दोस्तों हम सब आ गए हैं आपके पास लेकर एक नए विषय और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है मोनिका. और दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज उस विषय के बारे में जो एक जीवन को कुछ इस तरीके से प्रभावित करता है कि समझ लें कि वो एक नया मोड़ ही ले आता है. हम बात कर रहे हैं कि जब कुछ ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन आ जाती है, एक बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है,

0: मजबूरी होती है, कुछ चॉइस भी होती है, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस यानी हमें ये महसूसता नहीं होती कि क्या असर पड़ जाएगा। कई बार होती है मगर परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि वो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशंस में क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी जानेंगे, क्या उपाय हैं वो भी जानेंगे और बात करेंगे इस विषय में। मोनिका, आपका स्वागत है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो मोनिका, सबसे पहले तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में?
1: वैसे शिक्षा का महत्व तो आजकल सभी को पता है, और शिक्षा के मामले में आजकल सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं बनाई है। तो वैसे आजकल सारे लोग शिक्षा लेते हैं, पर ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जिन्हें इस मामले में जागरूकता नहीं है, और कोई ना कोई ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से वो स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में ही। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी में जब उन्हें लगता है कि हम क्या हम फिर से जा सकते हैं, क्या हम फिर से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो उनके लिए आज ये हमारा सेशन है, राइट?
0: ओके, तो जैसा आपने कहा कि क्या हम एक शिक्षा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये मन में आता है, पर क्या रीज़न होते हैं, मतलब क्यों आपको लगता है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्या विश प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या लगता है आपको?
1: जी, सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि किसी कोई परिवार होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल वित्तीय प्रॉब्लम्स होती हैं, पर आजकल सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्लान अमेंडमेंट किया है, राइट टू एजुकेशन जिसको बोलेंगे, 2009 में ही हमारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो पास हुई थी, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, मतलब
0: सॉल्व करने का प्रयास तो हो रहा है बिल्कुल, लेकिन हम अगर गांव-गांव में देखते हैं, आज बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, जब माता पिता दोनों काम पे जाते हैं और घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें देखने के लिए कोई नहीं होता, तो कई बार बड़े भाई बहनों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जो बच्चे हैं वो उन्हें वो माहौल नहीं मिलता कि घर पे पढ़ाई के लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो उन्हें लगता है कि शायद पढ़ाई करके क्या ही फ़ायदा है। कई बार माता पिता को भी ऐसा लगता है क्योंकि इतनी नौकरियां अब कहाँ से गांव में दिखेंगी, गांव में खेती करनी है या वही काम करना है, तो माता पिता को भी ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो अभी कमाएं क्योंकि बाद में भी यही काम करना है और अभी भी यही काम करना है, एक ये भी सिचुएशन होती है। और कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि छोटी सी बात बड़ी बुरी लग जाती है किसी टीचर की, कोई टीचर डांटेगा या फिर उनसे डर लगने लगता है या किसी और बात से डर लगने लगता है और लगता है कि छोड़ो मेरे दोस्त भी तो नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जाता हूँ, और वो एक दिन एक महीना और एक महीना एक साल और एक साल न जाने कितने साल बन जाता है और स्कूल जाना ही बंद हो जाता है। कई बार एक सब्जेक्ट पसंद नहीं आता उस चक्कर में ऐसा हो जाता है। कई बार लड़कियों के साथ ऐसा होता है दोस्तों कि रास्ते में छेड़छाड़ के मामले हो जाते हैं और वो ना घर पे बता पाती हैं ना स्कूल में किसी की मदद ले पाती हैं, और ऐसे में किसी को पता चलता है तो मुश्किल का सामना लड़कियों को ही करना पड़ता है, उनका स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद करा दिया जाता है। ये सब समस्याएं हैं लेकिन हल नहीं है। स्कूल बंद करा देना हल कभी नहीं हो सकता, सल्यूशन कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि पूरे जीवन का जो आधार है वो है शिक्षा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, कर रहे हैं, ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हम सभी के प्रयास से मिलकर हम कुछ सफलता हासिल ज़रूर कर सकते हैं। और मोनिका, और क्या लगता है, आपने इस बारे में और पढ़ भी रहे थे आप, क्या पढ़ा आपने?
1: जी, कहीं कहीं पे लड़कियों के को शिक्षित करना एक समझा जाता है कि क्या ही करेगी पढ़ के, आगे जाके शादी करनी है, और ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर वर मिलना, वो भी चीज़ें हो जाती है जो माता पिता सोचते हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची, और लड़कों के मामले में रहता है कि आगे जाके इसने हमारा ही बिजनेस संभालना है तो क्या फ़ायदा, मतलब पढ़ के
0: ऐसा भी सोच लेते हैं।
1: जी, और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कोई कोई स्कूल्स में एक साथ बहुत काफ़ी बच्चों को बिठा देते हैं और काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाते हैं, उसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट भी चला जाता है, और कहीं पे जो सिखाते हैं स्कूल में वो ऑफ टॉपिक हो जाता है, जो बच्चों को लगता है कि इसका हमारे जीवन में रिलेशन नहीं है कुछ भी, इसका कहीं कहाँ उपयोग हो सकता है, तो हम क्या ही करेंगे पढ़ के
0: क्या फ़ायदा है
1: जी। तो इसके लिए शिक्षा इसका शिक्षा इस तरह से बनाई जानी चाहिए, नॉलेज एजुकेशन इस तरह का हो कि वो बहुत एंगेजिंग हो, बच्चों का ध्यान आकर्षित करे और
0: टीचर्स कुछ नए नए तरीके इस्तेमाल
1: करें, नए तरीके होते हैं
0: जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छी बात है
1: जी। और जो लड़कियां होती हैं उन्हें वो क्यों, वो कभी कभी इस कारण से भी स्कूल नहीं जाती है कि स्कूल में शौच घर नहीं होता है, तो उस कारण से भी वो नहीं जाते हैं, क्योंकि वो आजकल काफ़ी स्कूल्स में बनाया भी जाता है
0: जी,
1: अवेलेबल किया जाता है, पर कहीं कहीं पे नहीं भी है, तो वो भी एक कारण है,
0: बहुत बड़ा कारण है बिल्कुल
1: जी।
0: तो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ऐसा लगता है कि अभी उस समय महसूस नहीं होता कि कितना बड़ा ये हमारे जीवन पर असर डालेगा, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं देखते हैं कि और उनके साथ के जो लोग हैं वो आगे निकल रहे हैं या अच्छे पदों पे नौकरी कर रहे हैं या कुछ अपना कर रहे हैं, तो महसूसता होती है और फिर गिल्ट भी होता है, बुरा भी लगता है माता पिता को भी और बच्चों को भी। हाँ ये ज़रूर है कि भाई जिनका वो समय निकल गया, वो यूथ हो गए, बड़े हो गए, वो भी पढ़ सकते हैं हालांकि, लेकिन जो बच्चे हैं अगर आप लोगों ने किसी भी कारण से स्कूल छोड़ दिया है ना दोस्तों, तो उस कारण का दूसरा निवारण ढूंढ लीजिए, क्योंकि स्कूल छोड़ना सल्यूशन नहीं है, आपके जीवन के लिए स्कूल जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस बारे में और भी बात करेंगे मोनिका, एक छोटा सा गीत हमारे दोस्तों को सुनाते हैं, लौट कर आएंगे। कार्यक्रम रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं युवा मंच, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज करा सकते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, रूम नंबर 116, एविंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, फोन नंबर 0112388647, ईमेल prabhudat.sharma@nic.in या cisell-moib@nic.in।

0: सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और हम बात कर रहे हैं आज दोस्तों स्कूल ड्रॉप आउट कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। अब लेकिन कैसे और क्यों, मुझे लगता है सबके कारण अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए शो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। हमारे साथ मोनिका जुड़ गई है स्टूडियो में। मोनिका, और क्या कारण है, आपको क्या लगता है क्यों होता है स्कूल ड्रॉप आउट?
1: जी, कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस में JEE और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जिन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनना होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तो इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। तो कुछ बच्चे इन्हें टाइम इसके लिए तैयारी करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम इसमें देते हैं और उसकी वजह से वो स्कूल के जो क्लासेस होते हैं वो मिस करते हैं और फिर वो स्कूल में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है।

0: हैं और फिर वो छोड़ देते हैं स्कूल. और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार फेल होते होते फिर उनका फिर वो छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं करते, हम ऐसे ही कोई बिजनेस कर लेंगे. ये भी कारण है. और कुछ पेरेंट कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इधर उधर वो शिफ्ट करती रहती हैं, जो बहुत सिटीज़ में जो डिफेंस फैमिलीज होती हैं और उसकी वजह से
1: भी होते हैं वो बहुत सारे जो मजदूरी करते हैं भाई बहन बंजारे भी होते हैं, वो एक जगह पे नहीं टिकते तो उनका कहीं पे बच्चों की उनकी पढ़ाई एक जगह नहीं हो पाती है
0: जी, डिस्टर्ब हो जाता है उनका और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो भी उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं. और जैसे कि हमने बुलिंग के बारे में भी बात की थी, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल और कॉलेज छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं. और इसके अलावा कुछ फैमिलीज़ में बैकग्राउंड ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पर शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं होता है और बच्चे जुआ और सट्टा ज़्यादा खेलते हैं,
1: गलत आदतों में पड़ जाते हैं
0: जी, तो वहाँ शिक्षा का महत्व नहीं होता है तो इस वजह से भी वो स्कूल छोड़ देते हैं.
1: और कई बार लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है मोनिका ना, कि लड़कियों स्कूल छोड़ने की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है और कई बार तो शुरुआत भी नहीं हो पाती, उनको स्कूल भेजा ही नहीं जाता. कई बार भेजा जाता है तो उनकी पढ़ाई को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता जितना लड़कों की पढ़ाई को समझा जाता है.
0: हाँ जी.
1: और कई बार तो छुड़वा भी दिया जाता है स्कूल.
0: जी बिल्कुल,
1: है ना.
0: हाँ, किसी के पास अगर आर्थिक समस्या है, पैसे वित्तीय समस्याएं हैं तो उनकी शादी करवाई जाती है, तो इसलिए ये भी कारण है, खास करके जो लड़कियाँ होती है.
1: बिल्कुल. और कई बार लड़कियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अगर छोटा भाई बहन है घर में तो भले वो लड़की खुद बहुत छोटी है बट उसे खुद अपने छोटे भाई बहन को देखना संभालना होता है. दोस्तों, परिस्थिति को हम समझ सकते हैं और अगर परिस्थिति इतनी बड़ी है ना कि नहीं हैंडल हो रही, तब भी मिलकर पूरा परिवार कोई ना कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिए. लेकिन अगर वो छोटी बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी गई तो उसका पूरा भविष्य दांव पर लग जाएगा और उसके पूरे भविष्य में अगर वो कल को चाहेगी कि एक अच्छे जॉब के लिए अप्लाई कर पाए, या मान लीजिए आज हम देखते हैं घरेलू हिंसा, कितने लोगों को इस घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, कितनी लड़कियों को अत्याचार सहने पड़ते हैं शादी के बाद भी. तो अगर एक लड़की आत्मनिर्भर है, अगर वो पढ़ी लिखी है, फिर उसकी शादी होती है, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने को इतना संभाल सकती है, अपनी केयर कर सकती है, बल्कि दूसरों की भी केयर कर सकती है, सिर्फ अपनी नहीं, उसको मदद मिलती है, उसको हौसला मिलता है. तो पूरे जीवन के लिए पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं चाहिए, पढ़ाई जीवन के लिए चाहिए. तो इसीलिए लड़कियों की पढ़ाई तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छुड़वानी चाहिए. आप अगर मिलके सोचेंगे, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा. लेकिन वो बच्ची अगर स्कूल के अगर रास्ते को भूल गई ना, तो कल को हो सकता है उसका भविष्य उतना अच्छा ना हो पाए जितना चाहते हैं या वो खुद चाहती है. तो बहुत दुख होता है कई बार जब बच्चियों को छोटे छोटे देखते हैं और उनको स्कूल जाने को नहीं मिलता है.
0: जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी. एक्चुअली हमारे हम भी ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे बोलते थे कि ज़्यादा पढ़ाना नहीं है और शादी करा देते हैं जल्दी, और हमें भी बोला जाता था कि क्या करोगे पढ़ के. और मतलब हमें ऐसे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे थे कि उनकी शादी करा देते थे पढ़ाई होने के बाद. फिर ऐसी सोच थी, पर आज हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से शिक्षित किया है और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है. सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए शिक्षा का महत्व खाली वहाँ तक नहीं है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व बहुत बहुत विकसित होता है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स अच्छा दिख के आता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जीवन जीने की कला हमें शिक्षा से मिलती है, शिक्षा हमें बहुत कुछ सिखाती है.
1: बिल्कुल, कितनी सही बात की. अब देखिए, आपके घर वालों ने इस बात को समझा
0: जी,
1: है ना. नहीं तो अगर समाज की अड़ोसी पड़ोसियों की या कई बार रिश्तेदारों की बातों में भी आ जाते
0: जी,
1: तो हो सकता है. अब कई बार ऐसा होता है उन लोगों की बातों में हम आ जाते जिनकी हमारे जीवन से कोई लेना देना भी नहीं है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले, ना हम उनके किसी काम आने वाले हैं भविष्य में, तो जो होना है वो होना है. लेकिन फिर भी उनकी बातों का असर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लड़की को तुमने इतना पढ़ा दिया, लड़की को तुमने इतनी छूट दे दी,
0: हाँ
1: है ना, तो इस तरह की बातें भी बहुत होती है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, आपके लिए ज़रूरी कौन है? आपके बच्चे ज़रूरी हैं या लोग ज़रूरी हैं? और लोग तो बातें करते ही रहेंगे, कभी भी वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, जो बातें सही हैं, जो समाज को समाज बनाने के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरी है, हम सब एक समाज में रहते हैं तो हम उनका पालन करें। लेकिन अगर एक बच्चे की पढ़ाई की कुर्बानी देनी पड़ रही है उन बातों को पूरा करने के लिए, अगर किसी का भविष्य खराब करना पड़ रहा है उन बातों को सही ठहराने के लिए, तो आपका निर्णय अपने बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी गलत होगा। क्योंकि हमें समाज भी ऐसा चाहिए, वो बच्चे जो कल का भविष्य है वो पढ़े लिखे चाहिए, है ना? तभी तो बदलाव होगा, तभी तो परिस्थिति बदलेगी।
0: जी
1: जो हम चाहते हैं कि बेटर हो हमारा, कल को पैसे ज़्यादा आए घर में, घर की कंडीशन बेहतर हो, सब कुछ बेहतर चाहते हैं, कोई तो नहीं चाहता और बिगड़ जाए चीज़ें, नहीं। तो वो सुधरने का बहुत बड़ा हथियार है शिक्षा,
0: जी
1: बहुत ज़रूरी है।
0: जहाँ पे लोग पूछते हैं ऐसी बातें करते कि क्या करोगे, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं आपने क्या पढ़ाई की है,
1: बिल्कुल।
0: तो उन्हें जवाब देने के लिए भी हमें पढ़ना तो ज़रूरी है।
1: कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमें बोलने का।
0: कॉन्फिडेंस, हाँ जी
1: अगर हमने पढ़ाई नहीं की है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो लोग तो बोल रहे हैं इतने अच्छे से, हम डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। उस चक्कर में हम जो टैलेंट है ना, जो हुनर है, वो भी दिखा नहीं पाते आप।
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के महत्व को समझना ही होगा। हाँ, जो हो गया सो हो गया, जो नहीं पढ़े, जिन्होंने कार्य जल्दी शुरू कर दिया, अपने घर को संभाला, उनकी बहुत बड़ा त्याग है उन्होंने किया, और वो त्याग जाया ना हो इसके लिए आप आने वाली जनरेशन को पढ़ाइए, इस जनरेशन को पढ़ाइए। इनफैक्ट जो घर में लोग हैं, अक्षर ज्ञान तो वो भी ले सकते हैं ना। मम्मी को अपने, अब बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अपनी मम्मी को आप लिखना सिखाओ, अपनी मम्मी को ABCD क क क सिखाओ, और आप उनको साइन करना सिखाओ, ताकि वो कल को बैंक में जाते हैं या बस में बस लेने जाते हैं तो वो पढ़ पाएँ। उन्हें किसी को पूछना नहीं पड़े कि वो क्या लिखा है, कहाँ साइन करना है, कैसे साइन करना है। उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाए, उनके साथ कोई गलत नहीं कर पाए। तो आप अपनी माँ को भी पढ़ाइए, आप अपने बहन को भी पढ़ाइए, आपके घर में जो लोग नहीं पढ़े हैं, भले उम्र में बड़े हैं, अक्षर ज्ञान ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी है ना मोनिका?
0: जी बिल्कुल
1: तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस मुहिम को आप सब आगे लेकर जाएंगे हमारे साथ साथ। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9914151415, यानी कि 9414151415। फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: लौट कर आ गए हम कार्यक्रम युवा मंच में. और दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्कूल को ही बीच में छोड़ देने से क्या होता है. वैसे अनुभव जो स्कूल छोड़ते हैं उनको भी है, उनके माता पिता को भी है, उनके अड़ोसी पड़ोसी और परिवार वालों को भी है. कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत ऐसी बात है कि सब कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. अब भाई किसी के दोस्त सारे अगर स्कूल छोड़ के बैठे हैं खेल रहे हैं तो बच्चे को भी लगता है कि मैं भी खेलूं, मैं क्यों जाऊं, रोज़ मुझे टीचर मारती है डांटती है, ये करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो क्यों मैं, मेरे दोस्त कितना इन्जॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी अपना मस्ती कर रहे हैं, जो कर अपने दिन में खुश हैं, तो मैं भी क्यों ना खुश रहूं, मेरे साथ ये. लेकिन अब बात यह है दोस्तों, ऐसे में उस समय वो बच्चा तो नादान है, छोटा है, लेकिन माता पिता को उन्हें बहुत बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत है कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी ही है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है. इसका ये मतलब नहीं है कि तुम टॉप ही करो, एकदम परसेंटेज 90 आ जाए 80 आ जाए, लेकिन पढ़ाई करो, समझो और आगे बढ़ो. और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा जीवन इससे अफेक्ट होता है. और मोनिका क्या लगता है आपको इस बारे में? और
1: जी बिल्कुल आपने सही कहा, जब मैं छोटी थी और ऑफकोर्स जो भी बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि पढ़ाई से छुटकारा हो जाना चाहिए, बस खेल कूद होनी चाहिए और मज़े होने चाहिए. लेकिन अभी हमें लगता है कि नहीं, पढ़ाई का, शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंस है. जब हम देखते हैं हमारी एज के कुछ बच्चे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ विदेश में जाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, तो अभी हमें शिक्षा का महत्व पता चलता है. हम छोटे रहते हैं तो नादान रहते हैं, और एज अ पेरेंट हमें तो पता है इम्पोर्टेंस, तो हमें बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए. अगर बच्चों का मोटिवेशन, बच्चे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है.
0: पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल. और दोस्तों अगर हम बात करें कि कुछ आपको अगर डेटा आपके साथ शेयर करना चाहे, तो दोस्तों एक रिसर्च हुई, एक स्टडी हुई जो कि डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने कराई. और हम बात कर रहे हैं इस वक्त 2023 की. 2023 को 9 अगस्त को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जागरण में. और दोस्तों उसमें बताया गया कि उन्होंने एक स्टडी की थी और जिसमें उन्हें ये पता चला कि जो रूरल इंडिया है, अगर हम बात करें गाँव की बात करें, कई ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को ग्रेजुएशन लेवल तक भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों के माता

0: पिता हैं 78% और लड़कों के 82 यानी 82%। यानी लड़कों के माता पिता अभी भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों के माता पिता हाँ अवेयर हैं, ग्रेजुएशन कराना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कंपैरिजन में कम है। लड़कियों की पढ़ाई को अभी भी महत्व कंपेरेटिवली लड़कों से कंपेयर किया जाए तो कम मिलता है। और ये जो स्टडी हुई यानी जो रिसर्च हुई, ये ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और संबोधी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने करवाई। और ये रिसर्च जो 6 से 16 साल तक के बच्चे होते हैं गांव में रूरल कम्युनिटीज़ में, उनके माता पिता से पूछा गया था, बात की गई थी, और करीब 20 स्टेट में ये रिसर्च कंडक्ट की गई। तो दोस्तों जब ये रिज़ल्ट आता है तो एक ये भी एहसास होता है कि हाँ पहले से हालात बहुत बदल गए हैं, लेकिन अभी भी एहसास होता है कि अभी भी लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना लड़कियों की शिक्षा को मिलता है, है ना
1: जी।
0: तो दोस्तों ज़रूरी है कि हम ये बातें जानें। और अगर हम ड्रॉप आउट की इस वक्त बात कर ही रहे हैं, टोटल जो ड्रॉप आउट है अब उसकी बात करें तो ड्रॉप आउट रेट जो है कि लड़कियों के जो छोटी बच्चियां होती है उनमें ज़्यादा है। और इसी रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, 35%, आप सोचें 35%। और आप अगर लड़कों की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल ये रेट ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों में हो ही नहीं रहा, लड़कों में नहीं हो रहा, लेकिन लड़कियों में अभी भी ज़्यादा है। यानी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लड़की सिर्फ शादी करके दूसरे घर नहीं जाएगी, बल्कि उसका जीवन भी उतना ही उम्र वो जीने वाली है, उतना ही वो ज़रूरी है, उतना ही वो समाज का हिस्सा है, उतना। और सोचिए एक लड़की, कहते हैं ना कि भाई एक लड़के को पढ़ाते हैं तो एक लड़के को पढ़ाते हैं, लेकिन एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, ये कहावत है
1: जी।
0: और आप कुछ कहना चाहोगे, आपने जो पढ़ा जो इस बारे में विषय में समझा
1: जी? वैसे आजकल लड़कियां लड़कों से आगे ही है हर क्षेत्र में। हम स्कूल में भी देखते थे कि जो टॉपर्स रहते थे, और आजकल यूनिवर्सिटी टॉपर्स मोस्टली लड़कियां रहती है, और लड़कियां किसी के मामले में कम नहीं है। कहीं कहीं पे लड़कियों ने दिखा दिया कि लड़कों से कम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आज भी ऐसे लड़कियों की शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। हम भी पढ़े लिखे हैं तो हम लड़कों वाले लड़कियों वाले दोनों काम कर लेते, तो एक अच्छा लगता है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं,
0: अपने माता पिता को भी संभाल सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत पड़े तो हम मदद कर सकते हैं, चाहे ट्रेन का टिकट करना हो, कुछ सामान खरीदना हो, कुछ भी करना हो
1: जी।
0: तो लड़कियां गाड़ियां चलाती हैं, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, तो अगर वो शिक्षित नहीं होती तो वो संभल कैसे होती
1: जी।
0: और दोस्तों जब भी बात शिक्षा की आती है तो मुझे लगता है एक प्रश्न सबके मन में आता ही है, और वो ये भी अभी भी हमें ये ज़रूर लगता है कि पढ़ा के क्या होगा। अगर मान लो काम वही करना है जो हमारे माता पिता कर रहे हैं, तो पढ़ के क्या फ़र्क पड़ जाएगा?
1: नहीं, पढ़ने से तो बहुत फ़र्क होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं। सिर्फ पढ़ाना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कमाई का साधन नहीं है, बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो पढ़ाई से बहुत फ़ायदे होते हैं।
0: अब पता है मैंने कहा एक प्रश्न ये ना, छोटे छोटे बच्चे गांव में एक प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पास के ही, और उन बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मतलब स्कूल, अगर मान लो आपको स्कूल से क्या, स्कूल जाने से क्या होगा, तो उसमें से एक छोटी सी लड़की थी, वो लड़की ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 6-7 साल की थी शायद, तो उस लड़की ने बोला कि अगर मुझे खाना भी बनाना है तो अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगी ना तो मैं कुछ नया नया और बना पाऊँगी, मुझे पता चलेगा और कहाँ कहाँ क्या बनाते हैं, कैसे मैं पढ़ पाऊँगी, कैसे कैसे बनाते हैं, तो सिर्फ जो यहाँ बनता है जो हम खाते हैं हम कुछ और भी नया नया आपको बना के खिला पाएंगे। वहाँ एक छोटा बच्चा भी था, उसने कहा कि अगर मुझे खेती करनी है, मान लो मुझे अपने माँ बाप का जो काम है उसको आगे बढ़ाना है, अच्छे से खेती करनी है, अच्छा फार्मर भी तो देश की नींव है ना
1: जी।
0: तो उसने बोला कि मैं और तरीके से खेती कर पाऊँगा और स्टाइल अपना पाऊँगा इरिगेशन के, या फिर उसने मतलब इरिगेशन शब्द का उपयोग तो नहीं किया, परंतु उसने ये ज़रूर कहा कि मैं खेती के नए तरीके ढूँढूँगा, बेहतर करूँगा खेती को। तो अब ये कितनी बड़ी बात है, वो छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि वो जो जीवन जी रहे हैं उसी को बेहतर कर सकते हैं अगर वो शिक्षा हासिल कर लें तो।
1: जी, आपको एक बात बताऊंगी, एक्चुअली मैंने तो वैसे कॉमर्स किया है, पर अचानक से मुझे ऐसे इंटरेस्ट आया कि साइंस की बुक होती है जो NCERT जो UPSC की प्रिपरेशन करता है, तो उनकी मैंने साइंस की बुक पढ़ी थोड़ी सी और मुझे इतना सारा नॉलेज मिला उसमें से कि कौन सी चीज़ों में विटामिन्स मिलते हैं, कौन सी चीज़ में एनर्जी मिलती है, और जो जैसे कि आपने कहा जो खेती करते हैं उन्हें उस क्षेत्र में भी बहुत सारा नॉलेज मिला। तो मैंने एक ही किताब पढ़ी और इतना नॉलेज अगर मिल रहा है तो पूरी की पूरी अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप कितने ज़्यादा शिक्षित हो जाओगे और वो आपको काम में आएगा। आप कैसे जीना है, अच्छे से अपने आप को कैसे रखना है, आप हम पढ़ाई क्यों करते हैं उसके पीछे कारण है ना। पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी करेंगे डिग्री मिल गई उसके लिए, हमें उसमें से सीखने को मिल रहा है। अगर वो प्रथा चलती आ रही कि पढ़ाना है तो उसमें से फ़ायदा हो रहा है, तभी हम पढ़ाई को शिक्षा को इतना महत्व दे रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखो आपने वो बुक पढ़ी इसलिए कि आपको जानकारी मिले, आपको एग्जाम नहीं देना था वहाँ पे, स्कूल की किताब नहीं थी आपकी, तो नॉलेज जहाँ से मिले आपको काम ही आएगी एक ना एक दिन, आपको वो मदद ही करेगी कभी ना कभी। खाली नहीं जाती कोई भी चीज़ अगर आपने सीखी है तो, ये कहता है हमारे बड़े बूढ़े हमें समझाते आए हैं, कहते आए हैं इस बात को। और मोनिका, क्योंकि हमारे शो भी ख़त्म होने वाला है थोड़े समय में, आपने कुछ NIOS के बारे में भी पढ़ा है और उपाय सॉल्यूशंस की भी अगर बात करें तो आप क्या सोचते हो?
1: जी जो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत साल हो गए और हमने स्कूल छोड़ दिया था, हमने 4th to 8th grade पढ़ाई की थी और हम क्या हम फिर से पढ़ सकते हैं, क्या हम फिर से स्कूल जा सकते हैं और कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए खुशखबर है कि हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हो। और उसका सॉल्यूशन ये है कि एक उसके सॉल्यूशन है कि एक NIOS जैसे कि आपने कहा कि इंस्टीट्यूट है, सरकार भारत सरकार ने जारी किया है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ओपन स्कूलिंग कहा जाता है, एक ये ऑप्शन है। उसके अलावा जिन बच्चों ने हाल ही में स्कूल छोड़ा है और अभी स्कूल जाने की एज में है वो स्कूल जा भी सकते हैं, तो वो रेगुलर स्कूल्स में जाके भी फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, और जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है वो NIOS के थ्रू जा सकते हैं। हर एक स्टेट का ओपन स्कूलिंग का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। मैंने एक्चुअली सर्च किया था ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है वो जनरल है, और
0: यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान
1: जी, और एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है
0: इग्नू जिसे कहते हैं
1: जी। और उसके अलावा काफ़ी स्टेट्स हैं जिनके अपने अपने NIOS हैं, ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बैंगलोर में भी अपने अपने ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इतनी व्यवस्था आई है, मतलब आप कभी भी पढ़ना चाहो, कभी भी वापस शिक्षा प्राप्त करना चाहो तो बहुत इजी है। आपको क्या करना है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जाके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, टीचर्स होते हैं उनसे।
0: जैसे आपने इग्नू वगैरह की बात करी या और ऐसे कॉलेजेस की बात की, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी वो होती हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएशन करते हैं, यानी आप 12th कर चुके हैं, आप उसके बाद की पढ़ाई होती है। NIOS की बात कर रहे हैं हम, वो ओपन हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉप आउट जिन्होंने स्कूल में किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो ओपन लर्निंग कर सकते हैं। मतलब आपको रोज़ स्कूल नहीं जाना है, आपको किसी पर्टिकुलर जगह एडमिशन नहीं, लेकिन हाँ आप वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं और आपके पास वो डिग्री वो आपको आ जाता है कि एक क्लास आपने पास कर ली है। तो अगर आप किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो सबसे अच्छा है स्कूल जाना, लेकिन आप बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र निकल गई है या कुछ और मुश्किलें अगर आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। ये लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है पूरी दुनिया का, आप सोचें कितना बड़ा ये कार्य चल रहा है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के अंडर आता है, और आप अगर इस बारे में जानना चाहें तो दोस्तों आप nios.ac.in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, nios.ac.in
1: जी। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, लोगों को कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत साल निकल जाएंगे पढ़ने में. लेकिन NIOS का, ओपन स्कूलिंग का एक फ़ायदा होता है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. आपकी, आपको किस क्षेत्र में पढ़ना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, वो अपने उसके हिसाब से आपका प्लान बनाते हैं. और आपका पढ़ाई भी आपकी स्पीड आपके ऊपर है, आपको कितने स्पीड से पढ़ना है. तो वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा. अगर आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए तो वो भी पॉसिबल है. इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है.
0: और दोस्तों, अगर आपको इसकी और अधिक जानकारी चाहिए तो एक टोल फ्री नंबर भी है जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वो नंबर है 1800 1800 9393. नंबर मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 1800 1800 9393. तो ये नंबर भी है जहाँ आप संपर्क कर सकते हैं. और आप पढ़ाई अपनी पूरी ज़रूर कीजिए दोस्तों. जाते जाते भी हम यही दरख्वास्त करेंगे आप सभी से, अगर आपके आसपास कोई है जो स्कूली शिक्षा अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए तो उन्हें भी मोटिवेट कीजिए. उनको जिस तरह से मदद कर सकते हैं वो मदद कीजिए. वैसे तो हम एक दूसरे के लिए कितना कुछ करते हैं ना, बर्थडे होता है तोहफा लेकर आते हैं, कुछ और उसको खुश करने के लिए करते हैं. लेकिन अगर आपने किसी को शिक्षा का उपहार दिया है दोस्तों, तो उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता. समझ लीजिए आपने उसे जीवन का नया उपहार दे दिया है. तो शिक्षा पूरी करने में किसी न किसी की मदद ज़रूर कीजिए. अगर हम एक एक की भी मदद करेंगे तो हम समझ लीजिए भारत की मदद कर रहे हैं, पूरे अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं. और ये कर्तव्य तो हमें निभाना है मिलकर. आप जाते जाते मोनिका कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी, मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए. और कोई उम्र नहीं होती है शिक्षा सीखने, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मर्यादा नहीं रहती है. आप किसी भी उम्र में आप चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो फिर से, तो आप कभी भी कर सकते हो, वापस कंटिन्यू कर सकते हो.
0: जी, तो जरूर कीजिए.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.
0: कार्यक्रम युवा मंच पे मंडे टू फ्राइडे आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं शाम 5 से 6.

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: करोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। कुछ बेहतरीन गीत के साथ लेकर आऊंगी कुछ कहानियां आज की उड़ान में। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, और मैं हूं आपकी दोस्त मोना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ये है नशे की कहानी।
2: पहला नशा, पहला खुमार,
1: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
2: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
1: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
0: घोड़ी की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए परेशान हुए रोए चिल्लाए दिल टूट गया जग छूट गया

0: गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा
1: और कह लीजिए
2: राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। यस दोस्तों, आज है नेशनल डॉक्टर्स डे। पृथ्वी पर हर मानव को भगवान कहे जाने वाले, यदि किसी को हम कह सकते हैं तो चिकित्सकों को ही कहते हैं, डॉक्टर्स को ही कहते हैं। अलग अलग देशों में ये दिवस भिन्न भिन्न तिथियों में होता है, लेकिन भारत में चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। वेल, आज है 1 जुलाई और इसीलिए सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे कहते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका विषय कारण भी यही है कि भगवान तो एक बार जीवन देता है, लेकिन डॉक्टर्स हमारे अमूल्य जीवन को बार बार बचा देते हैं। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां डॉक्टरों ने भगवान से भी बढ़कर काम किया है। बच्चे को जन्म देना या किसी वृद्ध को भी बचाना, चिकित्सक की मदद हमेशा मुसीबत से मानव को बचाती रही है। यही एक ऐसा पेशा है जहां दवा और दुआ का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इंसान को यदि भगवान भी यही बनाया जाता है, और चिकित्सकों ने तो मानव जाति के लिए बहुत समर्पण किया है। यदि भारत की बात की जाए तो देखेंगे आज चिकित्सकों, वैद्यों का विशेष आदर सत्कार किया जाता है, और इसीलिए भारतवर्ष में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए इसी से जुड़ा एक गीत आप तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे आज की उड़ान में। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: गुरुदेव नमस्कार। गुरुदेव, आज तो बहुत अच्छा मौसम है, चलिए कोई भजन करें।
1: भजन तब करेंगे बेटा जब हमारे रसोई में कुछ पकने को होगा। देखो भंडार में तो एक दाना भी नहीं बचा।
0: अरे गुरुदेव, इतना सुंदर दिन है, भूख की बात मत कीजिए। पर हाँ, अगर अनाज नहीं है तो क्या आज उपवास रख लें?
1: अढ़िया, आज नहीं पर एकादशी आने वाली है, उस दिन तो रखेंगे ही। पर बेटा, अब समय आ गया है कि हम भी कुछ परिश्रम करें। तू गांव जा और किसी किसान से पूछ कि क्या वो अपना खेत हमें खेती के लिए देगा।
0: ठीक है गुरुदेव, पर अगर खेत नहीं मिला तो मैं जंगल के पेड़ों से ही अनाज उगा दूंगा।
1: तू बड़ा बातूनी है रे, जा भाग जा, ठाकुर जी तेरे साथ हों।
2: अड़िया गांव पहुंचता है। चारों ओर हरियाली, बैलों की आवाजें और औरत खेतों में काम कर रही है।

0: आर्या सबको नमस्ते करता है और बोलता है,
1: किसान भाइयों, कौन है जो अपनी जमीन भगवान के काम में लगाएगा? गुरुदेव खेती करेंगे।
0: पहला किसान, अरे बाबा ये तो जंगल वाला ब्राह्मण है, हमारी जमीन? नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं। दूसरा किसान, हमारी फसल तो हम खुद ही उगाते हैं, तेरा क्या भरोसा? आढ़िया, अरे मैं चोरी नहीं करता, बस थोड़ा परिश्रम करने आया हूँ। सब मुंह फेर लेते हैं। आढ़िया उदास हो जाता है। आढ़िया वहां से चला जाता है। आढ़िया सोचता रहता है कि गुरुदेव को क्या बोलूंगा, किसी किसान ने अपना खेत तो दिया नहीं। कृष्ण, वो देखो, वो ब्राह्मण बालक कितना उदास बैठा है। वो कोई साधारण नहीं है राधे, वो मेरा भक्त है, नाम है आढ़िया। उसका भंडार खाली है और कोई उसे खेत नहीं दे रहा। तो फिर आप क्या करेंगे नंदलाल? तो मैं वही करूंगा जो सदा करता हूँ, अपने भक्त का साथ। चलो आज मैं भी किसान बनता हूँ। अढ़िया पेड़ के नीचे बैठे हुए खुद से बातें कर रहा था। अब क्या करूं, गुरुदेव को क्या मुंह दिखाऊं? तभी श्री कृष्ण साधारण किसान के रूप में सामने आते हैं। क्यों बेटा, खेत चाहिए?
2: अरे ओ भैया, आप कौन? हाँ चाहिए, पर कोई देता नहीं। मेरे पास एक खेत है, अगर तुम उसमें फसल करना चाहो तो कर सकते हो। बस अगर तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी ना हो तो। गुरुदेव को प्रणाम। गांव में एक किसान ने अपनी जमीन हमें खेती के लिए दे दी है।
3: ठीक है अढ़ैया, किसान जो फसल मांगे उसे दे देना। अढ़ैया तो फिर तू खेत में जाकर आलू की खेती कर,

0: आओ अढ़िया, देख लो यही जमीन है। इस बार जो तुम फसल करोगे वो मुझे नीचे की फसल चाहिए।
1: ठीक है किसान जी, इस बार मैं जो भी फसल करूंगा ऊपर की फसल मेरी होगी और नीचे की फसल आपकी।
2: अढ़िया खेत में खुदाई का काम चालू कर देता है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी बीच में, कभी किनारे पर, कभी मिट्टी उछालता, कभी फावड़ा सीधा करता, कभी खुद से बात करता। ये हिस्सा थोड़ा और गहराई से खोदना पड़ेगा। इस तरह पूरा दिन खेत में माटी से खेलते खेलते बीत जाता है। अढ़िया के खेत में कुछ ही दिनों में बहुत सारे आलू उग आते हैं, छोटे बड़े, गोल मटोल, जैसे धरती ने खुद मुस्कुराकर वरदान दे दिया हो। अढ़िया अपने खेत को देखकर बहुत खुश हो जाता है, बार बार हाथ झाड़कर कहता है, वाह इस बार तो मेरी मेहनत रंग लाई। इतने में थोड़ी देर बाद वही किसान आता है, सिर पर गमछा रखे मुस्कुराते हुए खेत की ओर बढ़ता है।
3: अरे वाह अढ़िया, इस बार तो तेरी आलू की खेती ने कमाल कर दिया, पूरे गांव में तेरे खेत जैसी फसल किसी की नहीं हुई। वो चारों तरफ नजर घुमाते हुए आगे बोलता है, देख जरा।

0: अभी तक सोने जैसी लग रही है। अब चल फसल बांट लेते हैं जैसा तय हुआ था।
1: ठीक है किसान जी, जैसा वादा था, ऊपर की फसल मेरी और नीचे की फसल आपकी। अब आप आराम से नीचे की फसल ले जाओ।
2: किसान अपना आलू लेकर खुश होकर खेत से चला जाता है, हाथ में थैला पकड़े मुस्कुराता हुआ। आज तो गुरुदेव बहुत खुश हो जाएंगे, पहली फसल तैयार हो गई है, मेरी मेहनत रंग लाई और सब कुछ सही हुआ। ऊपर की फसल मेरी, नीचे की किसान जी की, सब हिसाब बराबर। देखना गुरुदेव इसे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। चलो अब गुरुदेव को दिखाते हैं, आज का दिन सच में खास है।
3: गुरुदेव देखिए, देखिए मेरी फसल।
4: अरे अढ़ैया, ये कैसी फसल है? ये तो सिर्फ घास है। तुझे तो मैंने आलू की खेती करने को कहा था, आलू कहाँ है?
3: गुरुदेव, किसान ने तो मुझसे कहा था नीचे की फसल वो लेगा, ऊपर की मेरी होगी। अब वो अपनी जमीन की फसल ले गया।
4: अढ़ैया, किसान ने तुझे बेवकूफ बना दिया है। नीचे की फसल का मतलब था आलू, वो सारा उठा ले गया और तुझे ऊपर की सिर्फ घास छोड़ गया। ठीक है अढ़ैया, अब देख लेते हैं वो किसान कितना चालाक है। जा बेटा, इस बार खेत में गेहूं की फसल बो, देखते हैं ऊपर नीचे का खेल अब किसके हिस्से आता है।
0: अढ़ैया आओ, इस बार मैं ऊपर की फसल लूंगा और तुम नीचे की फसल लेना, ठीक है? अब सब ठीक से बांट लिया जाएगा और झगड़ा भी नहीं होगा।
3: ठीक है किसान भाई, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करेंगे।
2: अढ़ैया अपनी खेती में लग जाता है, गेहूं के बीज बोता है, मिट्टी पलटता है, पानी डालता है। कुछ ही समय में उसकी मेहनत रंग लाती है, गेहूं की फसल घनी और सुनहरी हो जाती है। अढ़ैया गर्व से खुद से कहता है, वाह इस बार तो सब सही हुआ, मेरी फसल पूरी तरह तैयार है। किसान खेत की ओर आते हुए खुश होकर, अढ़ैया कितनी अच्छी फसल हुई है, देखो ना ये फसल तो ऐसे चमक रही है जैसे सोना हो। थोड़ा गंभीर होते हुए अढ़ैया की तरफ देखते हुए, लेकिन ये बात याद रखना, जो तय हुआ था उसी के अनुसार, ऊपर की फसल इस बार मेरी है और नीचे की फसल इस बार तुम्हारी है, समझे? ठीक है किसान जी, आप अपनी ऊपर की फसल ले जाइए और मैं अपनी जमीन की फसल रख लेता हूँ। किसान खुशी खुशी ऊपर की फसल, गेहूं की सुनहरी बालियां काट कर ले जाता है। अढ़ैया मुस्कुराता हुआ उसे जाते हुए देखता है। अढ़ैया अपनी बची हुई फसल लेकर आश्रम की तरफ चला जाता है और मन ही मन सोचता है, पिछली बार तो किसान ने नीचे की फसल ली थी और मुझे ऊपर की मिली थी, लेकिन इस बार मैंने नीचे की फसल ली है और किसान ने ऊपर की। अब गुरुदेव मुझे देखकर जरूर बहुत खुश होंगे। गुरुदेव, अरे अढ़ैया आ गया तू, अच्छा दिखा तो जरा कैसी फसल उगाई है इस बार। अढ़ैया मुस्कुराते हुए, गुरुदेव ये लीजिए मेरी फसल, इस बार तो मैंने सब सोच समझकर किया है, अब की बार गलती नहीं।
5: अढ़ैया ये क्या उठा लाया है, ये गेहूं की फसल है या बस घास फूस का ढेर? अरे बेटा तू तो पूरा पागल बन गया है क्या, किसान तुझे बार बार मूर्ख बना रहा है।
3: गुरुदेव आपने कहा था कि गेहूं की फसल कर, तो मैंने गेहूं की फसल की, फिर किसान आया और बोला ऊपर की फसल मेरी और जमीन की फसल तेरी, तो वह अपनी ऊपर की फसल ले गया। गुरुदेव
5: आदिया बेटा तू फिर से पागल बन गया, किसान बहुत तेज है, पहले तूने आलू की फसल की तो किसान ने नीचे की फसल ले ली और तू ऊपर की घास पात ले आया, अब की बार तूने गेहूं बोया तो किसान ने ऊपर की फसल मांग ली और तू नीचे की जड़ें घास ही ले आया। पर अब एक काम कर, भुट्टे की फसल कर, देखते हैं इस बार किसान क्या मांगता है, ऊपर की या नीचे की। ठीक है,
3: ठीक है गुरुदेव, पता नहीं किसान कितना चालाक है, हर बार मुझे बेवकूफ बना देता है। गुरुदेव ने तो कहा था बुद्धिमान बनो, अब देखते हैं इस बार किसान क्या करेगा।
6: अढ़ैया तुम आ गए, इस बार मुझे फसल ना ऊपर की चाहिए ना नीचे की, मुझे तो बीच की फसल चाहिए, ठीक है अढ़ैया?
7: ठीक है किसान जी, जैसा आप कहें।
2: इतना बोलकर किसान खेत से चला जाता है। उधर अढ़ैया अपने काम में लग जाता है, कभी खेत खोदता, कभी बीज डालता, फिर पानी देता। देखते देखते उसकी फसल पकने की तैयारी हो जाती है। अब भुट्टे की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो गई थी। इतने में किसान आया और बोला, अरे वाह, फसल तो बहुत बढ़िया हुई है, ऐसी फसल तो पूरे गांव में अभी तक किसी की नहीं हुई। फिर किसान मुस्कुराकर बोला, याद है ना मेरा हिसाब, ऊपर की फसल तुम्हारी, नीचे की तुम्हारी, लेकिन इस बार मैं बीच की फसल लूंगा।
3: ठीक है किसान जी, जैसा आप कहें।
6: चल भाई अढ़ैया, अब तू मेरे हिस्से की फसल मुझे दे और मुझे अपने घर जाने दे, तू अपनी फसल जब चाहे ले जाना।
2: किसान इतना कहकर अपनी फसल लेकर निकल गया। अढ़ैया अपनी फसल लेकर आश्रम की तरफ निकल गया और मन ही मन सोचता रहा, गुरुदेव ने कहा था तू भुट्टे की फसल कर, इस बार देखता हूँ किसान कौन सी फसल लेगा, ऊपर की या नीचे की। इतना कहकर वो आश्रम में पहुँच गया और सोचने लगा, गुरुदेव आज तो बहुत खुश होंगे, हमारे पास ऊपर की भी फसल है और नीचे की भी। वाह गुरुदेव, आपका दिमाग कमाल का है।
3: गुरुदेव आइए, देखिए मेरी फसल।
7: अढ़ैया ये क्या है, अढ़ैया ये कोई फसल है क्या? तू पहले भी पागलपन कर चुका है, दूसरी बार भी खुद को पागल बनाया और इस बार भी वही किया, तू सच में पागल है क्या? तुझे बस खाने पीने का होश है, बाकी किसी चीज की समझ नहीं। वाह रे किसान, वो हर बार तुझे बेवकूफ बना जाता है और तू हर बार उसके झांसे में आ जाता है। अब बता इस बार एकादशी का भंडारा कैसे करेगा?
2: गुरुदेव गुस्से में अढ़ैया को डांट ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है,
6: भंडारा में करूँगा गुरुदेव।
2: गुरुदेव ये वही किसान है जिसने मुझे पागल बनाया।
6: मैं किसी को पागल नहीं बनाता, मैं तो बस एक छोटी सी परीक्षा ले रहा था।
2: इतना बोलते ही किसान अपने असली रूप में प्रकट हो गया। जगत ठाकुर को हमारा प्रणाम।
6: गुरुदेव ये रही आपकी फसल, अढ़ैया जा, तेरा कल्याण हो, आज से तू सदियों सदियों तक जाना जाए।
8: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
9: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: छोटी सी कहानी मेरे द्वारा।
1: अर्णव अंतरिक्ष से जुड़ी किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था। उसके कमरे की दीवारों पर ग्रहों, तारों और रॉकेट्स के पोस्टर लगे हुए थे। हर रात वो अपनी छोटी दूरबीन से आसमान को निहारता और सोचता कि अंतरिक्ष में रहने वाले जीव कैसे होते होंगे। एक रात वो खिड़की के पास बैठ चांद को देख रहा था, तभी बाहर से नीली हरी चमक दिखाई दी। उसने खिड़की खोली तो एक छोटी सी उड़न तश्तरी उसके सामने आकर रुक गई। उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक नन्हा सा एलियन बाहर निकला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और सिर पर दो चमकते हुए एंटेना लगे थे। हेलो, मेरा नाम है जिपजिप, एलियन बोला। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जरूर, लेकिन हुआ क्या? अर्णव ने उत्सुकता से पूछी। जिपजिप ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं आज चांद पर पिकनिक मनाने गया था, लेकिन अपना टिफिन वहीं भूल कर आया हूं। अर्णव हंस दिया। और मुझे भी हंसी आ गई। कोई टिफिन भी भूलता है क्या? वो साधारण टिफिन नहीं है, जिपजिप बोला। उसमें हमारी दुनिया की मशहूर स्टार कुकीज हैं। अगर मैं खाली हाथ घर लौटा तो मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। दोनों उड़ान तश्तरी में बैठ गए और कुछ ही मिनटों में वे चांद पर पहुंच गए। वहां चारों ओर गड्ढे, चट्टाने और धूली धूल थी। कम गुरुत्वाकर्षण के चक्कर में वे लंबी लंबी छलांगे मार रहे थे। वे टिफिन खोज रहे थे कि अचानक उन्हें हंसी की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो कुछ छोटे छोटे चांद रोबोट एक गोल डिब्बे को फुटबॉल की तरह खेल रहे थे। अरे, ये तो मेरा टिफिन है, जिपजिप चिल्लाया। रोबोट रुक गया। उसमें से एक बोला, हमें लगा कि ये कोई खिलौना है, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारा है। अर्णव ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम टिफिन लौटा दो तो हम तुम्हें पृथ्वी का एक मजेदार खेल सिखाएंगे। रोबोट तुरंत मान गए। टिफिन वापस मिल गया। फिर अर्णव ने उन्हें खो खो खेलना सिखाया। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण रोबोट इतनी उतनी छलांगे लगा रहे थे कि कोई एक छलांग में कई मीटर दूर जाकर पहुंच जाता। खेल इतना मजेदार था कि चांद की शांत सतह हंसी में गूंज उठी। खेल खत्म होने पर जिपजिप ने टिफिन खोला और सबको स्टार कुकीज खिलाई। कुकीज हल्की हल्की हल्की चमक रही थी और उसका स्वाद किसी मीठे बिस्किट और फलों के मिश्रण जैसा था। वापसी के समय जिपजिप बोला, आज मैंने सीखा कि अपनी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन अगर कोई परेशानी आ जाए तो समझदारी से उसका हल निकाला जा सकता है। अर्णव मुस्कुराया। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर में था। ओ माय गॉड, उसने सोचा, ये एक सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर पड़ी और एक छोटा सा चमकता हुआ कुकी का टुकड़ा वहीं पर रखा हुआ था। अर्णव हैरान रह गया। वो सोचने लगा, क्या वो सचमुच चांद में गया था या फिर ये कोई अंतरिक्ष का कोई अनसुलझा रहस्य था? ओ माय गॉड। चलिए दोस्तों, गीत सुन लेते हैं। मैं चांद और सितारों की तमन्ना की थी।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद नहीं ना।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में बूढ़ा कमजोर बगुला रहा करता था। बगुला इतना कमजोर हो चुका था कि अब उसे शिकार पकड़ने में भी बहुत समस्या उठानी पड़ती थी। एक दिन बगुला एक तालाब के किनारे बैठा हुआ तालाब के अंदर की मछलियों को हसरत भरी नजर से देखे जा रहा था। तभी एक मछली बगुले को देखकर बोली,
1: क्या बात है बगुला भगत, इतनी गौर से क्या देख रहे हो?
2: मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कमजोर होने के कारण मैं कोई शिकार नहीं पकड़ पा रहा।
1: इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे 3 दौर से गुजरना ही पड़ता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तुम अपने जीवन के 2 दौर देख चुके हो, अब तीसरे का भी आनंद उठाओ।
0: ये सुनकर बगुला क्रोधित होते हुए उस मछली से बोला,
2: तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब मैं जवान था तब किसी मछली की मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी।
1: लेकिन अब तुम जवान नहीं हो, अब जवान मैं हूँ।
2: तुम हंसकर मेरा मजाक उड़ा रही हो?
1: तुम इसी काबिल हो बगुले भगत, मैंने तुम्हारे चर्चे अपनी माँ और अपनी दादी से सुने हैं। जब तुम जवान थे तब तुम बहुत ही बुरे स्वभाव के थे, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाकर मैं तुमसे अपने पूर्वजों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला ले रही हूँ।
0: बस इतना बोलकर मछली बगुले का मजाक उड़ाती हुई वहाँ से चली गई। बगुला उदास होकर जाती हुई मछली को देखकर अपने आप से बोला,
2: काश मैं जवान होता तो इस स्वादिष्ट मछली को जरूर खाता।
0: मगर बगुला नहीं जानता था कि इस दृश्य को दूर से एक कबूतर बैठा हुआ देख रहा था। कबूतर तुरंत उड़ता हुआ मीनू मौसी और रानू चिड़िया के पास जा पहुंचा और उन दोनों की ओर देखकर बोला,
3: जब से मैंने बगुले का हाल देखा है तब से तो मुझे बुढ़ापे से डर लगने लगा है।
0: रानू चिड़िया चौंकती हुई बोली,
1: तुम कहना क्या चाहते हो?
3: रानू, आज मैंने तालाब के किनारे एक बूढ़े बगुले को देखा। मैंने देखा कि किस तरह से एक मछली उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ाती हुई वहाँ से चली गई। वो बेचारा बगुला 2 दिन से भूखा है।
0: कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया उदास होती हुई मीनू मौसी की ओर देखकर बोली,
1: मीनू मौसी, क्या हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो क्या हमारा भी हाल बगुले की तरह होगा?
4: नहीं रानू, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सभी अपने बुढ़ापे का इंतजाम करके चलेंगे। और रहा सवाल उस बगुले का, तो उसके बारे में सुनकर मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन कोई भी किसी का ऐसे ही मजाक नहीं उड़ाता।
0: ये सुनकर रानू चौंकती हुई बोली,
1: आप कहना क्या चाहती हैं मीनू मौसी?
4: देखो, कबूतर ने केवल उस बगुले का बुढ़ापा देखा है, क्या पता वो जवानी में कैसा हो।
1: जो भी हो मीनू मौसी, हमें उस बगुले की मदद करनी चाहिए।
4: हम उसकी मदद भला किस प्रकार से कर सकते हैं? हम तो स्वयं कमजोर पक्षी हैं, और हम सब शाम तक मेहनत करके बड़ी मुश्किल से स्वयं अपना पेट भर पाते हैं।
0: इतना बोलकर मीनू मौसी वहाँ से चली गए। मगर रानू चिड़िया के दिमाग में बार बार बेचारे उस बूढ़े बगुले का विचार आ रहा था। रानू चिड़िया ऐसी उधेड़ बुन में उड़ती हुई जंगल के दूसरे छोर पर जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक चील पर पड़ी। रानू चिड़िया ने देखा कि उस चील के इर्द गिर्द बहुत सारे पक्षी गोल घेरा बनाए हुए बैठे थे।
1: अरे, ये चील तो हमारे जंगल की नहीं लगती, और ये सारे पक्षी इस चील के सामने सम्मान पूर्वक क्यों बैठे हुए हैं? मुझे जाकर पता करना चाहिए।
0: रानू चिड़िया उड़ती हुई उस चील के पास पहुँच गयी और वहाँ बैठे हुए काले कौए से बोली,
1: काले कौए, आखिर हमारे जंगल के सारे पक्षी इस चील के सामने क्यों बैठे हुए हैं? और ये चील तो हमारे जंगल की नहीं लगती।
5: रानू, ये कोई मामूली चील नहीं है, बल्कि चमत्कारिक और विचित्र चील है, जो दूसरे जंगल से भ्रमण करती हुई यहाँ तक आई है। कुछ दिनों बाद ही यहाँ से चली भी जाएगी। जितने भी पक्षी यहाँ मौजूद हैं, उनकी कोई ना कोई समस्या है। वो सब अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए इस चील के पास बैठे हैं।
0: रानू चिड़िया हंसते हुए काले कौए से बोली,
1: मुझे तुमसे ऐसी अंधविश्वास भरी बातों की उम्मीद नहीं थी।
5: नहीं रानू, मैं स्वयं अपनी आंखों से इस चील का चमत्कार देख चुका हूँ।
0: तभी वो चील रानू चिड़िया की ओर देखकर बोली,
1: मैं कोई पाखंडी चील नहीं हूँ, मुझ में वास्तव में चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। मैं कैसे मान लूँ? तो फिर तुम मुझे बताओ, तुम क्या देखना चाहती हो कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं एक चमत्कारिक चील हूँ? हमारे जंगल में एक बगुला बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े होने की वजह से बेचारा वो शिकार नहीं कर पा रहा है, उसे कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है, और जंगल के प्राणी उस बेचारे बगुले का उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। अगर तुम वास्तव में चमत्कारिक चील हो तो फिर तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो बगुला दोबारा जवान हो जाए।
0: रानू चिड़िया की बात सुनकर चील रहस्यमय अंदाज में रानू चुड़िया से बोली,
1: हमें प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो एक बार बूढ़ा हो चुका है उसे बूढ़ा ही रहने दो। तुम प्रकृति के नियमों को समझती नहीं हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े और दोबारा मेरे पास आना पड़े। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुम एक पाखंडी चील हो और झूठ बोलकर यहाँ के पक्षियों को भ्रमित कर रही हो।
0: रानू चिड़िया की बात सुनकर चील क्रोधित होती हुई बोली,
1: ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही।
0: इतना बोलकर उस चील ने जमीन में रखा हुआ एक दाना रानू चिड़िया के पास फेंक दिया और रानू चिड़िया से बोली,
1: ये एक चमत्कारिक शक्तियों का अभिमंत्रित किया हुआ दाना है। जाओ जाकर इस दाने को उस बगुले को खिला दो। वो बगुला जवान हो जाएगा, उसके अंदर जवानी जैसी ही शक्तियाँ आ जाएंगी।
0: चील की बात सुनकर रानू चिड़िया उस दाने को उठाकर तुरंत उस तालाब के किनारे बैठी हुई बगुले के पास पहुँच गए और उसे सारी घटना बताते हुए बोली,
1: जब मुझे कबूतर ने तुम्हारे बारे में बताया तब मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चमत्कारिक दाना लाई हूँ। तुम जैसे ही इस दाने को खाओगे दोबारा जवान हो जाओगे। फिर तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा और ना ही कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा।
0: चील की बात सुनकर बगुला खुश होते हुए रानू चिड़िया से बोला, तुम तो वाकई बहुत अच्छी हो रानू, मैं इस दाने को जरूर खाऊंगा। जैसे ही बगुले ने विचित्र चमत्कारिक दाने को खाया वो दोबारा से जवान हो गया। बगुले के दोबारा जवान होते ही रानू चिड़िया खुश होती हुई वहां से चली गई। रानू चिड़िया के जाते ही बगुला अपने आप से बड़े ही घमंडी अंदाज में बोला,
2: अब तो मैं दोबारा जवान हो गया हूँ, अब मैं इस तालाब की सारी मछलियों को खा जाऊंगा।
0: तभी बगुले की नजर एक सुंदर मछली पर पड़ी। बगुले ने बड़ी ही बेदर्दी से उस सुंदर मछली को अपनी चोंच से दबोच लिया। सुंदर मछली बगुले से बोली,
6: मुझे छोड़ दो।
2: नहीं, तुम तो मेरा भोजन हो, और केवल तुम ही नहीं बल्कि तालाब में रहने वाली सभी मछलियाँ मेरा भोजन है, मैं सबको खा जाऊंगा।
0: बगुले ने उस मछली को मार दिया और उसे बड़े ही शौक से खाने लगा। शाम तक बगुले ने तालाब की आधी मछलियाँ समाप्त कर दी। जो मछलियाँ उसे स्वादिष्ट लगती वो उसे खा जाता और जिन मछलियों में उसे स्वाद नहीं लगता तालाब के किनारे उन्हें फेंक देता और वो मछलियाँ तड़प तड़प कर मर जाती। अगले दिन कबूतर अपने पुत्र जो कि एक बच्चा था उसके साथ वहाँ से गुजर रहा था। कबूतर अपने पुत्र को उड़ना सिखा रहा था, तभी उसकी नजर बगुले पर पड़ी जो कि जवान हो चुका था। कबूतर अपने बेटे के साथ तुरंत उस बगुले के नजदीक पहुँच गया।
3: तुम्हें जवान देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: तभी कबूतर की नजर वहाँ मरी हुई मछलियों पर पड़ी।
3: ये तो तालाब की मछलियाँ हैं।
0: बगुला उदासी से कबूतर से बोला,
2: पता नहीं कल रात क्या हुआ, सारी मछलियाँ तालाब से बाहर आ गईं और अपने आप तड़पते तड़पते मर गईं।
3: ये तो बहुत बुरा हुआ, वैसे भी मछलियाँ तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाती थी। अच्छा सुनो, मुझे एक बहुत जरूरी काम है और ये मेरा छोटा बेटा है, मैं इसे उड़ना सिखा रहा हूँ, क्या तुम कुछ देर के लिए इसका ख्याल रख सकते हो?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ और अपना काम समाप्त करके आना, तब तक मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा।
0: कबूतर वहाँ से चला गया। बगुला कबूतर के उस नन्हे बच्चे को गौर से देखने लगा। सच तो ये था कि उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो मन ही मन में बोला, जब मैं जवान था तब मैं कबूतरों का मांस बड़े ही शौक से खाया करता था। कबूतर का मांस मेरा पसंदीदा मांस था।
2: खैर कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा जवान हो गया हूँ, क्यों ना मैं इस कबूतर के बच्चे का मांस चख लूं।
0: तभी वो कबूतर का बच्चा बड़ी मासूमियत से बगुले से बोला,
6: क्या हुआ, आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हैं?
2: तुम्हें देखकर मेरी भूख और बढ़ती जा रही है।
0: इतना कहकर बगुले ने अपनी चोंच से उस कबूतर के बच्चे को बड़ी ही बेदर्दी से मार दिया और उसे खा गया। कुछ देर के बाद जब कबूतर वहां पर आया तो अपने बच्चे को ना पाकर वो बगुले से बोला,
3: अरे मेरा बच्चा कहाँ गया?
0: तभी तालाब से एक मछली निकलकर बाहर आ गई और कबूतर से बोली,
6: तुम्हारे बच्चे को यही बगुला भगत खा गया है।
0: ये सुनकर कबूतर अविश्वास भरी नजरों से बगुले की ओर देखने लगा। तभी बगुला अकड़ता हुआ कबूतर से बोला,
2: हाँ हाँ खाया है तो इसमें समस्या क्या है, मुझे मांस पसंद है और तुम्हारे बच्चे का मांस मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं उसे खा गया।
3: ये तो बहुत गलत बात है।
2: तो तुम क्या कर लोगे, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते।
3: समझ गया, इसका मतलब इस तालाब के अंदर रहने वाली मछलियों को भी तुम नहीं मारा है।
0: इतना बोलकर कबूतर उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास पहुंच गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला,
3: मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रानू चिड़िया, वो बगुला बूढ़ा ही सही था।
1: मुझे तुम्हारे बच्चे की मौत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लग रहा है और मुझे अपने ऊपर पछतावा भी हो रहा है। उस चीन ने बिल्कुल सही कहा था, हमें प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चलो मेरे साथ।
0: रानू चिड़िया कबूतर के साथ उस चील के पास पहुंच गई और सारी घटना बताती हुई बोली,
1: मुझे क्षमा कर दो चील, मैंने तुमसे कहा था परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
0: इतना बोलकर उस चील ने एक और दाना रानू चिड़िया के सामने फेंक दिया।
1: इस दाने को उस बगुले के ऊपर फेंक देना, वो दोबारा बूढ़ा हो जाएगा।
0: रानू चिड़िया तुरंत उस दाने को लेकर उस बगुले के पास पहुंच गए और ऊपर से उसने वो दाना बगुले के ऊपर फेंक दिया। दाना शरीर से स्पर्श होते ही बगुला फिर से बूढ़ा हो गया।
3: अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा, मैं तो फिर से बूढ़ा हो गया।
0: तभी रानू चिड़िया क्रोधित होती हुई बगुले से बोली,
1: तुम बूढ़े ही अच्छे लगते हो बगुले, जो मैंने भूल की थी उसे मैंने सुधार दिया।
0: इतना बोलकर रानू चिड़िया वहाँ से चली गई और बगुला दोबारा बुढ़ा और कमजोर हो गया।
7: तो दोस्तों
8: देखा दोस्तों, आज की कहानी कितनी सीख भरी थी। ऐसे ही उड़ान के साथ जुड़े रहोगे तो काफी कुछ अच्छी बातों को सीखते रहोगे, क्योंकि उड़ान है ऐसा कार्यक्रम जो नई नई बातों को आप तक पहुंचाता है और आपके मनोरंजन का पूरा ख्याल रखता है। आगे बढ़ते हैं, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
9: 6 बजे।
8: तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे
9: गुड बाय।
8: सुनते रहो,
9: मुस्कुराते रहो,
8: रेडियो मधुबन 107.8 FM।
10: अच्छे से देख ले बुद्धू, ये चावल अभी

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, शहर में जाते हैं, सभी वर्ग से मिलते हैं, तो आज हमें खुशी आबू राज नामकरण का साथ साथ आज पोलो ग्राउंड से आपको रिकॉर्डिंग प्रोग्राम सुनने को मिलेगा, क्योंकि 24 जून तक जो राजस्थान सरकार के तहत यहाँ का प्रशिक्षण कहे चाहे ट्रेनिंग कहे सभी पार्टिसिपेंट किए हैं, तो इसके बारे में मैं कहूँ तो कम होगा। हमारा जो कोच प्रभारी है, जो कप्तान है और भीष्म पितामह जी सभी टीम को लेकर चलते, तो उनको इंट्रोडक्शन लेंगे। पहले अपना परिचय देंगे। मैम, रेडियो मधुबन आपको स्वागत करते हैं, क्योंकि इतना टीम को लेकर आप जो शिक्षा देते हैं बच्चे उसको अंगे लिभा कर अपना आत्मसात करते हैं और जीवन में करियर बनाते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज।
1: मैं निशा राजपूत, बास्केटबॉल कोच, यहाँ राज्य सरकार की 66वीं आवासीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हम आए हैं। जैसे आवासीय प्रशिक्षण केंद्र, इसमें सभी 6 गेमों में प्रशिक्षण कार्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार की यह योजना काफ़ी टाइम से है और इसमें खिलाड़ियों को आगे निकलने का अवसर प्रदान होता है। इसमें खिलाड़ी बड़े उत्साह से भाग लेते हैं और खेल के बारीकी से सारे स्किल वर्क को इनका डेवलप किया जाता है। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन परिवार की ओर से निशा मैम को इतना सुंदर में। अब निशा मैम, ये बच्चे जो आए कैसे सिलेक्शन होकर आए?
1: सर, ये राज्य स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल की प्रतिभाओं का इनकी चयन सूची बनती है
0: जी।
1: और इन मैरिट इसी आधार पर इनका सिलेक्शन होता है, कौन बच्चा कहाँ तक खेला है, और वरीयता सूची में भी उसी के आधार पर बच्चे वेटिंग ली जाती है इनकी, कि 5-6 वेटिंग ऐसे होती है जिनका कम से कम बच्चे ये नहीं जो खेले हैं उनको भी अवसर मिलता है इसमें खेलने का।
0: मैम, और जाते जाते आप जो टीम को लेकर, तो क्या चैलेंज आता है इस फील्ड में? वैरायटी बच्चे आते हैं भिन्न भिन्न जगह से, राजस्थान का कोने कोने से आए होंगे, कोई जयपुर से आए होंगे, कोई सिरोही से आए होंगे, तो आपको इस सबको कोऑपरेट में एकता में यूनिट में रखने में क्या चैलेंज आता है?
1: सर, कहा जाए तो कि सभी बच्चे स्किल वर्क में आगे नहीं होते हैं, कुछ कम डेवलप होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। इसी स्तर पर कुछ बच्चे जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के आते हैं, कोई नेशनल लेवल के आते हैं, इसका कॉम्बिनेशन करना तो बड़ा मुश्किल होता है।
0: जी, जी, जी।
1: तो सबको थोड़ा एक साथ लेके चलते हैं हम, तो स्किल धीरे धीरे आवासीय, जैसे 21 दिन का आवासीय कैंप होता है ये, इसमें सारे बच्चे एक साथ यूनिटी में करते हैं, तो अब ऑटोमेटिकली इनमें स्किल डेवलप होता है, एक दूसरे को देखते हुए या स्किल को अपने डेवलप करते हैं।
0: क्योंकि यूनिटी में, एकता में जो है ना, संगठन में एकता जो गुण है देखने को मिलता है, और सबका संस्कार को लेकर चलना होता है। क्योंकि वैरायटी बच्चे, इनका तो दोस्त नहीं कोई होते नहीं, सब यहाँ पर आकर दोस्ती बना देते, मित्र बन जाते, ये भी एक क्वालिटी है। संस्कार मिलाना कम बात नहीं है सबका वाला, कोई रात को लाइट लगाएगा तो कोई बोला हम चलाएंगे, कोई बाहर करना, ये सब तो बीच में रहते, तो ये सब टीम का जो लीडर है उनको बहुत फेस करना पड़ता, फिर भी उनका वो करते करते अभ्यास हो जाते, तो खुशी से करते हैं, तो उनको खुशी लगता है। वैरायटी हर साल नया नया बच्चे आते हैं और नया नया प्रशिक्षण लेकर जाते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं। और करियर बनाना होगा तो बास्केटबॉल में 2-3 पॉइंट बताइए, जो जो भी बच्चे सुन रहे हमारा इस कार्यक्रम को लिसनर्स, तो क्या ध्यान देना चाहिए इस माध्यम से, आप क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को?
1: मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने खेल कौशल पर ध्यान दें, हमेशा हार्ड वर्क रखें, स्किल वर्क में पीछे नहीं करें, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जितना स्किल वर्क पे वो कंटिन्यूटी, जैसे एक आगे कोई चैंपियनशिप खेलने के लिए जाना है उनको, तो जहाँ रेगुलर वो 1 घंटा प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ उन्हें 4 या 5 घंटे का अभ्यास करना ज़रूरी होता है, तभी वो आगे प्रतियोगिता में अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं अपना।
0: क्योंकि कंपटीशन का समय है, कंपटीशन आजकल तो बहुत, क्योंकि एक ही पोस्ट के लिए कितने आते हैं जानते हैं, तो खेल कूद में भी कंपटीशन आजकल पूरा, जैसे आप मैडम ने बताया, मैडम भी अपना चैलेंज, क्योंकि नंबर बार होते हैं, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, ऐसे सभी बच्चों को लेकर, कोई नेशनल लेवल पर, कोई स्टेट लेवल पर, और कोई लोकल लेवल पर लेकर चलते हैं, तो ये भी एक चैलेंज, और सबसे गुण धारण करना है, एक एक से गुण लेना है, उनका विशेषता, इनका विशेषता, इनका लेंगे तो हम गुणग्राही बन पाएंगे और अच्छा बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वार्म अप कराने के लिए सभी बच्चों को, तो बच्चे भी अपना भाग लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। खासकर आज पोलो ग्राउंड से बच्चों का आवाज़ को सुनने के पहले वार्म अप कर दें, निशा मैम को धन्यवाद देते हैं, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम। मेरा गांव मेरा अंचल आज पोलो ग्राउंड से आपको बास्केटबॉल का पूरा जानकारी मिलेगा, क्योंकि इसका पहले हम मैम से जो कोच है निशा मैम से जानकारी लिए। खुशी लग रहा है क्योंकि एक बार मौका मिलता है बच्चों को, पहला बार मिल रहा तो उनको मीडिया में आना, पत्रकार में आकर अपना बात को रखना, ये सीखने को मिला, प्रशिक्षण है। तो हमारा साथ एक प्रशिक्षण लेने वाले एक स्टूडेंट आए हैं, तो उनका परिचय लेंगे। क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के ना, तो सामुदायिक में जो आसपास जो गतिविधि कम्युनिटी में जो हो रही है उसको हम आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक करियर बनाने के लिए फील्ड अभी चांस है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या बनेंगे क्या करेंगे वो चीज हमको रखना चाहिए। तो आपको स्वागत करते, अपना परिचय देंगे।
1: मेरा नाम अदिति ठाकुर है, मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से हूँ।
0: जी जी, और कौन सा क्लास के हैं?
1: मैं 12th क्लास में हूँ।
0: क्या 12th, आफ्टर 12th क्या बनना चाहेंगे?
1: मैं आफ्टर 12th पीटीआई बनना चाहूंगी।
0: क्यों पीटीआई क्यों?
1: मुझे उसी फील्ड में इंटरेस्ट है, इसलिए।
0: वेरी गुड, इसलिए आज पोलो ग्राउंड में जो आए हैं उस लक्ष्य को लेकर, है कि नहीं?
1: जी।
0: तो उसमें क्या क्या हेल्थ के लिए क्या करते हैं आप स्वास्थ्य रखने के लिए?
1: हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं।
0: जी आदित्य, आप इस फील्ड को चुने हैं, बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि सबको ट्रेनर एक बन जाएंगे, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
1: जी,
0: कौन सा फील्ड में ट्रेनिंग ले रहे हैं? जो पोलो ग्राउंड में
1: बास्केटबॉल।
0: बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का परिभाषा, बास्केटबॉल किसको कहते हैं? बेस कितना गेम है, तो बास्केटबॉल में क्या क्या जानकारी है?
1: बास्केटबॉल एक स्मार्टनेस का गेम है।
0: जी,
1: और इसमें एफर्ट, स्मार्टनेस, हार्डवर्क सभी इंक्लूड होता है।
0: ये चीज मैंने क्वालिफाई करने के लिए ये चीज अति आवश्यकता है।
1: जी जी,
0: इसका प्रेरणा कौन आपको बताया? ना आप खुद से निकले, ना कोई बताए बास्केटबॉल में आने के लिए, प्रेरणा कोई दिया होगा ना?
1: जी,
0: आप
1: जी,
0: खुद
1: जी।
0: कि आपका घर में कोई रिलेटिव होगा, कि आपका माता पिता स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होंगे?
1: मेरी मम्मी स्पोर्ट्स में ही है, बाकी मुझे बास्केटबॉल खेलने के लिए प्रेरणा तो मेरे कोच ने दी थी, जो मेरे स्कूल के पीटीआई हैं उन्होंने।
0: ओके, वेरी गुड। तुम्हारा पीटीआई का नाम क्या है?
1: उनका नाम महेंद्र गोदारा है।
0: आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड में दिए, तो आप
1: जी,
0: उस फील्ड में रेडियो अभी से शुरू करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे, है कि नहीं? तो उसके लिए कितने घंटा मेहनत करते हैं पीटीआई बनने के लिए? अभी से आप स्टार्ट, आफ्टर 12th के बाद अब तो बन जाएंगे।
1: हम सुबह 3 घंटे से 4 घंटे वर्कआउट करते हैं और शाम को भी 3 से 4 घंटे तक वर्कआउट करते हैं।
0: जैसे क्या क्या करते हैं उसमें?
1: उसमें हम नई नई ड्रिल स्किल्स वगैरह सीखते हैं और अपने जो गलतियां हैं, जो हमारी कमियां, उसे इम्प्रूव करते हैं।
0: कितना कोई आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं?
1: इंस्ट्रक्शन देते हैं।
0: क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं इंस्ट्रक्शन, इसके बाद आप भी इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं फ्यूचर में।
1: जी जी जी,
0: और बच्चों को जैसे स्कूल में कॉलेज में आप पीटीआई सर जब होंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे, इसलिए स्वास्थ्य को ठीक रखना जरूरी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मन भी ठीक रहेगा, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य को, धन्यवाद देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और हमारा स्टूडेंट्स वंस मोर करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद। तो कैसे लगा आदित्य आपको इंटरव्यू देने में?
1: अच्छा लगा।
0: अच्छा लगा, वेरी गुड।

0: चलिए बास्केटबॉल के बारे में हम आज बच्चों से सुन रहे हैं। बच्चे अभी सीख रहे हैं और बास्केटबॉल में उनका जो इंटरेस्ट है और उसका प्रेरणा का स्रोत कौन है और कितना घंटा मेहनत कर रहे हैं जाने थोड़ा बहुत, और जो जो बच्चे इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे हमारा जो कोच अपना बात रखे हैं सभी के लिए। तो और एक स्टूडेंट हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाएंगे। खुशी लग रहा है, बच्चों को एक मंच मिल रहा है, एक स्टेज मिल रहा है जो आवश्यकता था, क्योंकि जब बड़े होकर जाएंगे कोई भी माइक का सामने, पत्रकार का सामने, मीडिया का सामने डर नहीं लगेगा, और झिझक दूर करने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच दिया है। तो हेलो, आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम कोमल है और मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ।
0: जी, नाम कितना सुंदर है ना, श्री गंगानगर। श्री शब्द जहाँ लग गया वो नगर है।
1: जी सर।
0: श्री मतलब श्रेष्ठ, गुड, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्रीमान कहते, तो आपका नगर तो श्रीनगर है कि नहीं?
1: जी सर।
0: तो श्रीनगर में क्या विशेषता, आपका गांव के बारे में थोड़ा बताइए।
1: हमारा जो श्री गंगानगर है वो राजस्थान के सबसे टॉप पे आता है, और मतलब जो गर्मी है अगर वो होती है तो वो भी सबसे ज्यादा होती है, और अगर सर्दी भी होगी तो वो भी सबसे ज्यादा ही होती है।
0: अरे वाह,
1: ये विशेषता तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी खूबी है ये।

0: इसलिए तो श्री बोला ना श्रेष्ठ, खेल कूद में भी श्रेष्ठ सब में, तो इसलिए श्री कहा गया है ना
1: जी।
0: सब में श्रेष्ठ के बोला था मैंने, तीर लगाया तो लग गया तीर
1: जी सर।
0: तो श्री से शुरू होता है, तो श्री गंगानगर से आ पाए, हमें खुशी है क्योंकि सिरोही जिला स से ही आता है, तो और हमारा श्री गणेश भी हुआ आज इस कार्यक्रम में। और खासकर आपका करियर भाई, सभी का आशा रहता है हमारा करियर बनना, कोई फील्ड में इनकम होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का
1: जी सर,
0: कब तक हम माँ बाप का भरसा में रहेंगे, हमको खुद करना पड़ेगा कुछ इनकम, चाहे नौकरी हो, सर्विस हो, चाहे खेलकूद में एक चैंपियन।
1: तो सर मेरा लक्ष्य अभी यही है, मैं अभी इसी साल के अंदर नेशनल खेल कर आई हूँ।
0: क्या बात
1: जी सर, तो मैं मेरा लक्ष्य अभी यही है, भी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ।
0: वाह बहुत अच्छा, ऐसे उमंग उत्साह होना चाहिए, तालियों का सर आपको स्वागत करते हैं। नेशनल लेवल का एक स्टूडेंट हमें मिला तो हमें खुशी है, क्योंकि एक छोटा सा गाँव है ओरिया ग्राम पंचायत में आता है, और माउंट आबू जो आबू पर्वत आबू राज उसमें आज हम कर रहे हैं, उसके नेशनल खेल चुके हैं, खेल कर आए हैं कभी?
1: यस सर, मैं खेल कर आई हूँ, मैं अभी खेल कर आई हूँ इसी साल में,
0: इसी साल
1: 2026 में।
0: कहाँ पे था
1: ये? छत्तीसगढ़ में था, राजनांदगांव।
0: अच्छा, तो कौन कौन वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, कौन सा स्टेट आए थे?
1: सारे स्टेट आए थे लगभग, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ खुद की होम टीम थी, हमारी राजस्थान की टीम गई थी, हिमाचल, काफी स्टेट्स आए थे।
0: तो क्या सीखने को मिला वहाँ पर नेशनल लेवल पे?
1: मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, वहाँ पे मैं बड़े लेवल पे खेलने गई, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी मिली। एक स्टेट लेवल पर अपने खेलने जाते हैं और एक नेशनल लेवल पर खेलते हैं तो बहुत फर्क होता है उसका, और जो उसकी नेशनल लेवल पर मिलती है वो स्टेट लेवल पर कहीं ना कहीं नहीं मिलती, तो मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला।
0: बहन आप सिस्टर है, तो कभी चैलेंज आया खेलकूद में, जैसे बाहर जाते हैं स्टेट लेवल पर चाहे नेशनल लेवल पे, तो एक फीमेल को थोड़ा सेफ्टी का इशू होता है, क्योंकि आपका चलते और जो स्टूडेंट है, जो बहन है, जो गर्ल्स है, तो उनको भी एक उमंग शामिल है, मैंने आप कैसे उसको?
1: जी सर, बहुत बार हुआ है, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो भी हमारे साथ हुआ है, एक बार मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन इन चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ता है। अगर हम इन चीजों को लेकर बैठ जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स भी फिर हमें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, तो इन चीजों को इग्नोर करके हमें सिर्फ हमारे लक्ष्य पर ध्यान देना पड़ता है, और ये चीजें धीरे धीरे आगे जाकर खुद ही सॉल्व हो जाती है।
0: अभी जो जैसे आपने नेशनल लेवल पे खेल कर आए हैं, स्टेट लेवल पर, जैसे यहाँ पर आज राजस्थान में रिप्रेजेंट बास्केटबॉल के लिए आप आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फैमिली बैकग्राउंड
1: जी
0: किस तरह है, जो सपोर्टिंग करने में,
1: मेरा जो करने में? मेरा जो फैमिली ग्राउंड है उसमें स्पोर्ट्स में तो कोई नहीं है, लेकिन सपोर्ट के मामले में वो बहुत अच्छा है। मेरी फैमिली मुझे हर जगह सपोर्ट करती है, फिर वो स्टडी हो चाहे स्पोर्ट्स हो, हर जगह वो कहती है बस तू आगे बढ़, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तू कामयाब हो, हम तेरे साथ खड़े हैं। मेरा फैमिली सपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है।
0: वेरी गुड, बिना फैमिली सपोर्ट में कुछ नहीं कर सकती
1: जी, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है,
0: ट्रस्ट होना चाहिए जी, मेरा बेटी बा मेरा बेटा कर सकता है,
1: और एक फीमेल के लिए तो बहुत
0: जरूरी है और होना भी चाहिए, क्योंकि नारी आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं, नारी बढ़ रहे हैं और गर्ल्स हमारा आगे बढ़ रहे हैं, जितना भी स्कूल कॉलेज हम जाते हैं
1: नारी में इतना दम है भी, वो आगे बढ़ सकती,
0: क्योंकि शक्ति है ना, तो उनके पास शक्ति है और भगवान ने उसको दिया ऐसे, जो उनका एक शब्द में जैसे हम तो पुराना में मैंने ओल्ड में सुनते थे है ना, जैसे सीता हो चाहे सभी दुर्गा हो, सभी उनके पास शक्ति था खेलकूद में भी, तो बहुत अच्छा लगा। और रेडियो मधुबन में आप एक कार्यक्रम को सजाए, बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा बताइए, बास्केटबॉल जो भी बच्चे सुन रहे नेशनल लेवल तक जाने में आप जैसे मेहनत की, आपका अनुभव बताइए।
1: मैं जब मेरे को खेलते हुए 5 साल हो गया, काफी रीजंस थे जिसकी वजह से मेरा पहले नेशनल नहीं हो पाया था, मैं नेशनल ट्रायल से आउट भी हुई हूँ, तो मैंने उसके बाद में बहुत मेहनत की है, मैंने सुबह वर्कआउट किया, मैंने शाम को वर्कआउट किया, मैंने दोपहर को भी वर्कआउट किया, मैंने 3 दिन सेशन मेरे लगाए हैं, मैंने 12 बजे जाकर शूटिंग किया दोपहर को, मैंने ना तो धूप देखी है, ना मैंने रात देखी है, ना मैंने दिन देखा है, मैंने बस मेरी मेहनत पे फोकस किया है, ना मुझे इस बात से फर्क पड़ता था कि मैं थकी हुई हूँ या मैं नहीं थकी हुई हूँ, बस मुझे मेरा नेशनल चाहिए था, बस मेरे पास गोल था कि मुझे नेशनल खेलना।
0: अभी नेशनल से आगे भी तो है एक और इंटरनेशनल, तो वो भी लक्ष्य रखना है, तो जरूर खेल कर आइए, हार जीत का बड़ी बात नहीं, लेकिन एक दिन कामयाब जरूर होंगे, एक लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण दिखाई देना चाहिए, जैसे आप एक एक स्टेप जाएंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे, अभी बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, और आज इस कार्यक्रम का माध्यम से जो हमारा प्रशासन भी सुन रहे खेल को इतना इम्पोर्टेंस दे, जो हमारा भारत खेल में भी आगे बढ़ सकते, और माँ बाप को भी धन्यवाद, परिवार को भी धन्यवाद।
1: और सर मैं कहना चाहूंगी भी जो मैं अभी नेशनल खेल कर आई हूँ और जो मेरा गोल है इंडिया जाना, अगर मेरे कोच ना होते तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। मेरे
0: कोच का
1: महेंद्र गोदारा सर,
0: महेंद्र गोदारा
1: वो हमारे स्कूल के पीटीए ही है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ जी सर, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है। अगर वो ना होते तो मुझे मेरा गोल भी नहीं मिलता और आज मैं राजस्थान भी ना खेल पाती। अगर मेरी फैमिली के बाद किसी ने मेरे को सपोर्ट किया तो मेरे कोच हैं।
0: वो भी एक फैमिली मेंबर जैसे है
1: जी सर।
0: लेकिन कब तक का जो क्लास जब तक है तब तक आप पीटे आपको ट्वेल्थ तक आपको देंगे, इसके बाद फिर आपको ऐसे बनना है वो खुद कोच बन, हम कोचर जैसे हम ट्रेनिंग देने लायक बन जाए, ये लगे रखे तो कहीं कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते, खुद कमा सकते
1: जी सर।
0: नौकरी मिले चाहे नहीं मिले लेकिन बहुत स्कोप है आगे जाने के, करियर बनाने में है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो भी स्पोर्ट्समैन है उनका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, हमेशा फिट रहते हैं, हेल्थ स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बच्चे हमारे साथ पूरा लाइन में खड़े हुए, कितना मेहनत करते हैं, हम तो थक जाते हैं लेकिन बच्चे पूरा मेहनत ही है, तो इनका श्रेय तो सबको देते, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक,
1: कैसे लगा? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।

0: चलिए नेक्स्ट वंस मोर और एक स्टूडेंट आए पार्टिसिपेंट हमारा कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए। और स्पोर्ट्स खेल मतलब कितना मनोरंजन, खेल खेलते कुछ भी हो जाता तो हम खेल खेलने जाते स्कूल में, खेल का सब्जेक्ट था गेम। लास्ट पीरियड में हमें खेल खेलते थे, कबड्डी हो, खो खो हो, बहुत सारा खेल खेलते थे, इंडोर और आउटडोर, है ना। अभी आउटडोर का हम ले रहे हैं, आउटडोर में जैसे बास्केटबॉल आता है और क्या क्या आता है। आपका नाम पहले बताइए प्लीज।
1: हेलो एवरीवन, मैं अलीशा हूँ, मैं अजमेर से हूँ।
0: ओह अजमेर से, वेरी गुड। आज तो हमारा कार्यक्रम गुलदस्ता बन गया, अजमेर जयपुर। चलिए तो कौन सा क्लास में अभी?
1: मैं टेंथ हूँ।
0: टेंथ क्लास, तो अभी भी आपको इतना स्कोप मिल चुका है और तो कितना 5 साल तो है ही और ग्रेजुएशन तक आपको मिलते रहेगा, है ना, स्टूडेंट जीवन। तो खास कर आपका करियर तो बनाना पड़ेगा ना भाई, नौकरी करेंगे ना स्पोर्ट्समैन बनेंगे, दोनों कोई भी?
1: यस सर।
0: सर्विस मिलेगा तब भी करेंगे और नहीं तो स्पोर्ट्समैन तो है ही है। कौन सा खेल खेलते हैं आप?
1: मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ।
0: क्यों बास्केटबॉल को क्यों चुना है?
1: बास्केटबॉल खेलने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए और फिजिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए और मेंटली भी होना ही चाहिए।
0: बहुत अच्छा बात बताइए, ये चीज आप करते हैं?
1: यस सर।
0: कितना समय मेंटल प्रिपरेशन?
1: यस सर।
0: एक दिनचर्या होना चाहिए, है ना?
1: यस सर।
0: एडमिनिस्ट्रेशन, अनुशासन, अनुशासन में रहेंगे तब जो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि सावधान बोलते विश्राम, ये तो इंस्ट्रक्शन हुआ ना।
1: यस
0: सर। सभी में इंस्ट्रक्शन देते, तो आप भी इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं इंस्ट्रक्टर से, जो भी इंस्ट्रक्शन मिला हाँ जी क्या बोलते हैं? हाँ जी, कुछ भी बोले हाँ जी करना, बड़े जो बोलते हैं उसको हाँ जी करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। बड़ों का बात मानना चाहिए। बड़ों में कौन कौन आते हैं बहन? बड़ों में कौन कौन आते हैं? माता पिता तो है ही,
1: और कोचेस,
0: कोचेस
1: और माता पिता, भाई बहन।
0: आपको अच्छा बात बताते हैं ना?
1: Yes,
0: बहुत अच्छा। तो जैसे माता पिता जो बड़ों जो भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपका भलाई के लिए बोलते हैं ना।
1: Yes,
0: कोई कोई तो खराब नहीं बोलते, अच्छा के लिए। भले आपको उस समय जैसे आइसक्रीम खाओ बोलेगा, ठंडी का टाइम में आप आइसक्रीम मांगेंगे तो आइसक्रीम तो देंगे नहीं माता पिता, तो मानना पड़े ना मुझे आइसक्रीम ही चाहिए था, ठंडी में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। Yes. इसलिए वो माँ बाप उसको। तो खास कर आप क्या कहना चाहेंगे हमारा श्रोता मित्र को इस बास्केटबॉल बारे में?
1: बास्केटबॉल अगर मतलब खेलना है तो उसमें बहुत सी चीजें चाहिए, मतलब उसमें आपको एक पूरा मतलब टाइम देखना होता है, उसमें आपको मतलब खेलना होता है, उसमें मतलब डिसिप्लिन से खेलना होता है और फुल एफर्ट्स लगाने होते हैं। बास्केटबॉल के अलावा आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता है अदर साइड, तो वो दोनों चीजें साथ लेके चलनी होती है।
0: दोनों बहुत अच्छा बात पता है, एक नया पॉइंट, दोनों को बैलेंस रखकर चलना पड़ता है।
1: Yes,
0: संतुलन, पढ़ाई भी करना है साथ साथ, पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, पढ़ाई भी करना है और खेलकूद में
1: दोनों चीजें जरूरी।
0: बहुत अच्छा, नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक स्टूडेंट से मिलेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, खासकर पोलो ग्राउंड स्थित जो बच्चों का हुनर को उजागर करने के लिए उनको प्रैक्टिस किया जाता है। और आज बास्केटबॉल के बारे में, इसका पहला हम लिए थे वॉलीबॉल हैंडबॉल, लेकिन अभी बास्केटबॉल का हम लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी, जान है तो जहान है।
3: रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है। सभी का आवाज, आवाज ही पहचान, उनका आवाज जो सुनेंगे, उनका माता पिता सुनेंगे, अरे ये तो हमारा निशा का आवाज है, ये तो हमारा पूर्णिमा का आवाज है, ये हमारा गोरी का आवाज है, सभी का आवाज से पता चला। क्योंकि एक कम्युनिटी रेडियो होने के नाते कम्युनिटी का जो गतिविधि सब तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंच है, आज आबूराज से हम ले रहे हैं, तो हमें खुशी लग रहा है। सब बच्चे भी, उनको एक नया नया मौका मिला, सब तो प्रशिक्षण लेने के लिए भी इंटरव्यू जो दे रही है, भी उनका एक प्रशिक्षण है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या, ये भी एक प्रशिक्षण हो गया, ये भी सीखने का चीज है कि नहीं। इसलिए तो सरकार ने दिया है प्रशिक्षण करने के लिए रेडियो मधुबन को, कम्युनिटी रेडियो दिया। ऐसे तीन प्रकार रेडियो होता है, एक ऑल इंडिया रेडियो जानते होंगे, दूसरा कमर्शियल रेडियो जो कि टाउन बिजनेस में पर्पज में, और आपका रेडियो
1: जो हम सुनते हैं
0: कम्युनिटी रेडियो है।
1: हमारे घर पे अभी भी बड़े बुजुर्ग लोग, मेरे दादाजी सुनते हैं।
0: देखा प्रश्न में क्या पूछो, पहले से उत्तर पूरा मालूम है। क्या नाम बताइए, फिर परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम ममता वर्मा है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ।
0: वेरी गुड, बहुत आवाज तो बुलंद आवाज है, कुछ गीत वगैरह गाते हैं क्या?
1: नहीं सर,
0: लेकिन आवाज में बहुत दम है और होना भी चाहिए। अच्छा लगा श्री गंगानगर का जो नाम रोशन करेंगे, इसका पहले भी कुछ एक स्टूडेंट से नाम लिया था श्री गंगानगर। श्री गंगानगर नाम जब सुने, श्री मतलब श्रेष्ठ, सभी फील्ड में श्रेष्ठ है, लेकिन इसलिए आज दो बच्चे भी मिल गए। तो खासकर यहाँ पर जो पोलो ग्राउंड को सिलेक्शन हुआ है, आप आए हैं, तो पोलो ग्राउंड जो की आबूराज, माउंट आबू से आबूराज हुआ।
1: हाँ जी सर।
0: और राजस्थान का सिरमौर है, कश्मीर कहते हैं, तो पोलो ग्राउंड का बारे में बा आबूराज का बारे में जो अनुभव किए इतना दिन, 20 दिन जो रुकने को मिला, तो किसको धन्यवाद देंगे और इसका क्या फायदा लिया आपने?
1: सर सबसे पहले तो बताऊं कि हमारे राजस्थान की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक चीजें हैं वो बहुत ही प्यारी हैं। हमारे इतिहास में भी देखें, राजस्थान बहुत ही रॉयल, और इसके अंदर जो राजा महाराजाओं की जो हवेलियां वगैरह बनी हुई है वो एक लग्जरी से भी बहुत ही प्यारी वाइब देती हैं। यहाँ पे हम आए, मैं पिछली बार भी आ चुकी हूँ यही कैंप लगाने के लिए, ये 66वां केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर है मेरा। इस पोलो ग्राउंड पे मैंने पहले भी अपने कदम रखे थे, अब मैं सेकंड टाइम आई थी। पिछली बार मैं बिना नेशनल खेले हुए आई थी, वेटिंग में थी मैं। इस बार मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनकर आई।
0: ताली बजा भाई बच्चे।
1: Good. और मुझे इस ग्राउंड से बहुत बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरी सोच ये है कि शायद मैं पिछली बार वेटिंग में आई, इसी वजह से मैं नेशनल खेल पाई, क्योंकि मुझे शिविर का काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था, बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो फर्स्ट टाइम उनका बैटरी टेस्ट लिया जाता है, और फिर जब जाते हैं तब बैटरी टेस्ट लिया जाता है, चेक किया जाता है कि इतने दिनों में उन्होंने क्या डेवलप किया खुद में, अपनी कितनी कमियां दूर की, क्या क्या स्किल्स सीखी हैं। सारे कोचेस एक फैमिली की तरह बन जाते हैं, हम सारे गेम के बच्चे साथ रहेंगे, जो हमारे कोचेस होते हैं वही हमारे माता पिता होते हैं, 21 दिन तक वही हमें संभालते हैं, हमें डांटेंगे भी, हमें प्यार भी करेंगे, हमारे खाने पीने, हमारी तबीयत खराब होगी, हर एक चीज का ध्यान देंगे, छोटी से छोटी चीज का। इस बार भी मैं आई, हमारे कोचेस बहुत प्यार से रखते हैं हमें, हमें हर एक चीज सिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गेम ही नहीं, जिंदगी के अंदर हमें चलना कैसे है वो भी हमें सिखाते हैं। हमारी गलती होती है तो हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, डांट के भी।
0: हम क्या पूछो, आप तो इतना होशियार है सब चीज में, और खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हमारा श्रोता मित्र भी सुन रहे हैं, और जो भी बच्चे हम जिन्स आपका जैसे स्टूडेंट जो सुन रहे इस कार्यक्रम को, उनको भी एक उमंग उत्साह मिले। हम रेडियो मधुबन आपको जो मंच दिया, क्योंकि आपका उमंग उत्साह को देखकर सभी बच्चे इस तरह पार्टिसिपेट करें, और अपना माता पिता का जो आस है, कोच का जो आशा है, उसको पूर्ण करने में सक्षम रहे, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत।
1: जी सर, मेहनत तो बहुत जरूरी है,
0: क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ये तो सीख रहे, विद्यार्थी मतलब सीखना है। विद्यार्थी जीवन में चार चीज को आपको ध्यान रखना है, एक तो जितना घंटा मेहनत करते, पढ़ाई में कितना घंटा मेहनत करते, पढ़ाई स्कूल में 8 घंटा से 6 घंटा पढ़ाई होता है, स्कूल में कितना घंटा पढ़ाई होता है, 6 घंटा।
1: हाँ जी सर, 6 घंटे में से, हालांकि वैसे तो अपने थोड़े बहुत टाइम निकल जाता है खाने वगैरह में।
0: कितना घंटा, 24 घंटे से 6 घंटा आप स्कूल में दे दिए।
1: हाँ जी सर।
0: और कितना घंटा रहा,
1: 18 रह गए।
0: आपका हाथ में अभी।
1: हाँ जी सर। सर टाइम तो हमारा हमारे हाथ में होता है, हमें उसको कैसे,
0: ये पढ़ाई का साथ और 6 घंटा एक्स्ट्रा विद्यार्थी जीवन, जब तक विद्यार्थी कॉलेज तक, और 6 घंटा आपका पास निकालना पड़ेगा।
1: हाँ जी सर, ये तो है।
0: कैसे निकालेंगे
1: सर? वो तो देखो, टाइम से हमें उठना होगा, हमें हमारा ग्राउंड भी मैनेज करना होगा, स्टडी भी मैनेज करनी होगी,
0: देना है ना 6 घंटा निकालना।
1: साथ में ना एक चीज और जरूरी होती है कि हमें हमारी मेंटली पीस के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत नहीं करनी, खुद को इतना भी समझदार नहीं बनाना कि जिंदगी जीना भूल जाए। जिंदगी जीने के लिए इंजॉय करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, क्योंकि जब इंसान सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता रहता है, उसे इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता तो वो मेंटली थक जाता है।
0: इसलिए तो आपको पूरा मतलब सर्वांगीण उन्नति के लिए खेल खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, पढ़ाई कराते हैं, ये भी करना चाहिए, क्योंकि 5 घंटा मेहनत करना जरूरी है, 1 घंटा भी अच्छा से कर पाएंगे ना वो अच्छा, ये पढ़ना भी 24 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि 1 घंटा बस आराम से पढ़ लेंगे ना वो पूरा दिमाग में रहेगा, बस टाइम पास नहीं करना, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए नहीं, क्वालिटी चाहिए,
1: क्वालिटी इज मोर बेटर देन,
0: और क्वालिटी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर से आपको जीने में क्यों, क्या मैं कैसे, मैं किसके लिए, खुद को पूछना, खुद को पूछना, मैं आया क्यों आया, कुछ करके दिखाएंगे, इतना मेहनत की सरकार भी दिया तो पूछना, 5 प्रश्न पूछना, क्या क्यों कब कैसे, कब आराम से आप पहुंच पाएंगे आपका गोल को, ये परमात्मा कहते हैं। और जो आपने बताया बैलेंस रखना है, इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी, इनर गेम आउटर गेम जैसे होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन और बुद्धि को भी तंदुरुस्त रखना है, मन बुद्धि तंदुरुस्त तब रहेगा जब हम अच्छा कर्म करेंगे, माता पिता का बात सुनेंगे तो अच्छा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे अच्छा टॉपर बन गए और जरूर आप कामयाब होंगे, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए नेक्स्ट अगला कड़ी में इस कार्यक्रम को बास्केटबॉल का आज इंट्रोडक्शन का साथ साथ कोच का परिचय का साथ बच्चों का परिचय मिल रहा है और राजस्थान का कोने कोने से आए हमारा क्या कहेंगे प्रशिक्षण लेने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए और ट्रेनिंग का दौरान बहुत कुछ अनुभव किए। यहाँ का जो आबूराज का जो कि पवित्र जगह है देव भूमि कहते हैं और 40 देश का लोग यहाँ पर आते हैं माउंट आबू को क्योंकि ये देव भूमि है। तो आपको भी चांस मिला तो आप अपना परिचय दीजिए।
1: जी नमस्कार, मेरा नाम सोनाक्षी शेखावत है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ।
0: देखो जयपुर तो जयपुर का विशेषता तो है ही है ना राजा मन है ना। तो आप प्रशिक्षण जो ले हैं तो यहाँ पर क्या क्या सिखाते हैं बा क्या क्या आपको जो 20 दिन रोके हैं तो आपका दिनचर्या और खेल कैसे कैसे रहा वो बताइए।
1: जी खेल के लिए तो हम पे पूरा ही ध्यान दिया जाता है और साथ ही साथ हमें साथ मिलकर रहना सिखाते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है। हाँ, और हमारी हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, हमारी गेम का, हमारे हर चीज का।
0: बास्केटबॉल में आपका जो दोस्त लोग अभी यहाँ तो मित्र बना दिए, कितना बहन है साथ में, टोटल कितना है?
1: 15? ये पूरे 15 जन है।
0: 15 जन, सबका संस्कार अलग अलग, सबका अलग अलग जगह से है
1: जी
0: और सबका भावना अलग है खेलकूद में, सबका अलग, कोई सब आगे रेस। तो सबसे क्या सीखा आपने, सबसे क्या क्या का गुण सीखा है? क्योंकि संगठन अंदर सबको होता है ना, फिर भी उसको जो आवश्यकता है उसको डिलीट किए, जो आवश्यकता उसको रखे।
1: जी पहले तो हमने हमारे सीनियर से सीखा कि बड़ों से छोटों से कैसे बात करनी चाहिए, हमें हमारे गेम पे कैसे ध्यान देना चाहिए, फालतू चीजों को कैसे दिमाग से निकालनी चाहिए, और हमने काफी चीजें सीखी हमारे सीनियर से, जूनियर से।
0: कभी मारपीट?
1: नहीं नहीं, ये कभी तो नहीं हुआ,
0: कभी नहीं हुआ।
1: सीनियर्स बीच में आ जाते हैं, फ्रेंड्स बीच में आ जाते हैं,
0: कोई भोजन में कुछ किसको कम किसको ज्यादा मिल जाता है, कभी कभी होता है ऐसे डाइट में, जैसे ब्रेकफास्ट हो लंच डिनर में कभी इधर उधर होता
1: तो फिर नहीं देते हम, तो ऐसे ऑर्डर वगैरह किसी पे देते नहीं है।
0: अच्छा, जो मिलता है उसमें कुछ राज्य से खाते, लेकिन घर में तो भाई बहुत चमकाते भाई, ये क्यों सब्जी बनाए, करेला का सब्जी क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ पर करेला सब्जी बनेगा तो चमकाएंगे नहीं, सबको मिलकर खाना ही होता है। एक सबके लिए तो बनाना, परिवार बन गया। ओके, परिवार का टीम लीडर अपना कप्तान है ये कोच मैम, तो वो भी डांट लगाएंगे नहीं तो है ना, लेकिन सबको रेस्पेक्ट देना और रेस्पेक्ट लेना और रेस्पेक्ट देना, सम्मान देंगे तो सम्मान हमें मिलेगा, जैसे हम देंगे उस तरह हम पाएंगे। तो आप क्या दिए सभी को, अच्छा दिए, गुड विशेष दिए सभी को?
1: जी,
0: तो आप दो दिन के बाद हम निकलेंगे तो सब तो अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे, फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे?
1: फिर शायद ही मिल पाए आगे,
0: शायद ही मिल पाएंगे,
1: क्योंकि आगे काफी चीजें रहेंगी, सब अलग अलग हो जाएंगे,
0: हो जाएंगे। फिर भी बुद्धि में तो रखा ना सभी का चित्र,
1: हाँ,
0: रखा ना, तो जब चाहेंगे बुद्धि में उसको देखना चित्र तो आ जाएगा। मैम का भी चित्र आता है, मम्मी पापा का भी चित्र आता है कि नहीं, तो सभी बच्चे आपका दोस्त बन जाएगा, तब फिर उस समय का याद करना, तब भी ये भी एक मनोरंजन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज का कार्यक्रम को सभी ने सुंदर रूप में सजाए, जो दिए जो नहीं दिए सभी को धन्यवाद देते हैं, और इसका टीम का लीडर जो कप्तान हमारा मैम कोच को भी निशा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको कोऑपरेशन दिए। और रेडियो मधुबन कार्यक्रम में आप सब सुन पा रहे हैं बच्चों का भिन्न भिन्न आवाज को एक गुलदस्ता बन गया, और हमारा रेडियो कार्यक्रम में इस तरह बच्चों को मंच मिलने के जो आवश्यकता था जो जरूरत था आज मिला बच्चों को, सभी बच्चे राजी खुशी है?
2: यस सर।
0: जोर से बोलो
2: यस सर।
0: हाँ जी बोलो, हाँ जी
2: हाँ जी,
0: कभी मौका मिलेगा तो फिर रेडियो मधुबन में हम देंगे इंटरव्यू है ना
1: जी,
0: तो बोलो सुनते रहिए
2: रेडियो मधुबन,
0: हाँ बनते रहिए रेडियो मधुबन।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की कहो, प्रणाम, और सभी को बेहद खूबसूरत इस सुहानी शाम की गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केवल, और आप सुन रहे 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, नया महीना शुरू हो गया, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। हवाओं में अलग ही ताजगी है, और इस ढलती हुई शाम के साथ वक्त हो चला है आपके पसंदीदा सफर का, यानी खुशी के नगमे, दिल की बातों का। जी हाँ, आज 1 जुलाई 2026, यानी कि आज की शाम बेहद खास। आज दिल की बात सीधे उन लोगों के नाम होगी जो हमारे दिल की धड़कन को महफूज रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे। तो आज का ये पूरा सफ़र समर्पित है हमारे रियल लाइफ हीरोज़ के नाम। जी हाँ दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे, और सभी जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी है हमारे, जो हमारे सेहत का बड़ा ध्यान रखते हैं, उन सभी को दिल से इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे की बधाई हो। चलिए, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं गोल्डन एरा के ऐसे नगमे से जो ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाती है। सुनिए और मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति, मैं हूं मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: आज डॉक्टर्स डे के मौके पर ये लाइन सीधे दिल को छूती है, दूसरों के दर्द को अपना समझना और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, यही तो हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, डॉक्टर्स तो कहते हैं, बट चलिए सुनते हैं पहले हमारे लिसनर्स से ये क्या कहते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार भाजी।
0: नमस्कार भुरियाल जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया हूँ, एक बढ़िया गाना लेके आया हूँ आज।
0: बिल्कुल सुना दीजिए।
1: श्री अर्जुन का जन्मदिन है ना?
0: किसका?
1: श्री अर्जुन, अर्जुन जी का जन्मदिन है, श्री अर्जुन।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, बताइए।
1: पांच बेटे वो महक जाओगे।
0: मैं समझ,
1: पांच बेटे ठीक है सर। हाँ, पांच बेटे लेते तबियत महक जाएगी।
0: हाँ
1: हाँ, मौत आएगी वो भी चल जाएगी।
0: मौत आएगी वो भी चली जाएगी,
1: ये एक गाना सर।
0: चले ठीक है, कोशिश करते हैं ये गाने।
1: तबियत बैठ जाएगी और मौत आएगी वो भी चल जाएगी, ये गाना सर। ये है जो क्या बात करो, अर्जुन जी का गाना है, उन्होंने संतोषी माता के बहुत सारे गाने गाए हैं उनके जीवन में, तो उनकी ये परिभाषा है।
0: कौन सी मूवी से ये गाना, कौन सी मूवी का ये गाना है?
1: प्यार करा नमस्कार।
0: प्रियला जी, कौन सी मूवी का ये गाना है?
1: मूवी का मेरे याद नहीं है, लेकिन ये परिचय लिखा हुआ है।
0: हाँ,
1: आज मैं बैठे बैठे दूसरे तबियत बहुत जाएगी,
0: मुझे
1: बहुत जाएगी।
0: ठीक है,
1: ठीक
0: है, चलिए कोशिश करते हैं, बिकॉज मुझे ये गाना अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ये ढूंढने के लिए और आपके लिए प्ले करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे भुरीलाल जी, इन्होंने एक गाना तो हमें फरमाइश की है, बट पांच बेटे मुझे समझ में नहीं, ये पांच बेटे वाली कौन सी गाने की फरमाइश है। भुरीलाल जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो फिर से एक बार मुझे कॉल करके ज़रूर से इस गाने के बारे में कुछ अच्छी और जानकारी दीजिए, जिससे मैं ये गाना आपके लिए प्ले कर सकूं। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही थी कि हमारे डॉक्टर्स के लिए कहा जाता था कि इस गाने के बारे में बात करते हैं, कहा जाता था कि राज कपूर साहब का सिर्फ शरीर पर्दे पर होता था, लेकिन आत्मा मुकेश जी की आवाज़ में होती थी। इस गाने में मुकेश जी ने जो सादगी और संजीदगी से पिरोई है, वो सीधे रूह में उतर जाती है। इसके जो गीतकार थे शैलेंद्र साहब की खासियत थी कि वे बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे कि जैसे इसमें गाना है, इसी का नाम जिंदगी है। जो ये गाना था, हमने जब भी गाना सुना, इतनी सरल बातें लेकिन गहराई इतनी कि इंसान ज़िंदगी भर इस एक लाइन को अपना आदर्श बना ले। शायद भुरीलाल जी का फिर से कॉल है मुझे उस गाने की डिटेल्स को बताने के लिए, चले सुनते सबसे पहले उनके गाने के बोल। हेलो,
2: हेलो, भुराराम बोल रहा हूँ। और से
0: जी भुराराम जी, कैसे हैं आप?
2: बस आपके इतिहास से बैठा है और आपके प्रोग्राम सुन रहा था। मैं बोला अभी टाइम हो गया तो मैं बोला मैं वो याद कर लेता हूँ आपको।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
2: और सब राम राम है। और मेरा एक गाना आज
0: जी,
2: ये जब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, बादल चल रहे हैं ऊपर
0: जी,
2: और थोड़ा दिन को तो धूप था, अभी थोड़ी हवा चल रही है, तो आपको एक गाना याद आया मेरे को।
0: जी सुना दीजिए।
2: तो जब चली ठंडी हवा तब उठी काली जटा, मुस्कुराए जाने बापा तुम याद आए। ये गाना है।
0: बिल्कुल, चलिए कोशिश करेंगे आपका ये गाना आपको सुनाए आज, और थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारा गाना ये एक्चुअली सजेस्ट किया है।
2: आज मौसम के हिसाब से आपको मेरे को याद है
0: जी।
2: ओके सर, और सुरेश भाई को ना सबको मेरा राम राम।
0: चलो सब जो भी सुन रहे हैं उन सभी की तरफ से आपको भी राम राम, और आपको भी सभी सुन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच भुराराम जी आपका कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच।
2: ओके धन्यवाद।
0: जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे भुराराम जी ओर से, और सभी को उन्होंने धन्यवाद, सभी को राम राम, और हमारी तरफ से भी उनको राम राम। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो गीतकार थे शैलेंद्र साहब की खासियत थी कि वो बहुत ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे कि इस गाने के एक बोल थे, इसमें जो बोल है, जीना इसी का नाम है, इतनी सरल बातें लेकिन गहराई इतनी कि इंसान जिंदगी भर इस एक लाइन को अपना आदर्श बना ले। और ऋषिकेश मुखर्जी इसके डायरेक्टर थे, फिल्म के निर्देशक किया था और उन्होंने इस फिल्म में उस साल धूम मचा दी थी। इस गाने और फिल्म के लिए मुकेश जी को उनके कैरियर का पहला फिल्म फेयर और यानी कि बेस्ट प्ले मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था और शंकर जयकिशन को बेस्ट म्यूजिशियन म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। जी हाँ दोस्तों, तो ये उस जमाने की उस वक्त की बहुत ही हिट मूवी हो गई थी। दोस्तों कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और इस काया को इस सेहत को बनाए रखने में जो इंसान भगवान का रूप बनकर हमारे सामने आते हैं वो है हमारे डॉक्टर्स। जब भी हम बीमार होते हैं परेशान होते हैं तो एक डॉक्टर की सिर्फ एक बात, घबराइए मत सब ठीक हो जाएगा। हमारी अपनी हमारी आधी बीमारी वही ख़त्म कर देते हैं। वो सिर्फ सफ़ेद कोट नहीं पहनते, वो अपने कंधों पर उम्मीदों और उम्मीद की मुस्कान का एक बहुत बड़ा जिम्मा लेकर चलते हैं। आज इस मंच से रेडियो मधुबन के पूरे परिवार की तरफ से दुनिया के हर एक उस डॉक्टर को, हर मेडिकल स्टाफ को दिल से सलाम, जो दिन रात अपनी परवाह किए बिना हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत और सेहतमंद बनाते हैं। चलिए दोस्तों, बात पर सिनेमा के उस दौर में चलते हैं जहाँ ज़िंदगी को एक खूबसूरत पहेली कहा गया था। फिल्म आनंद का ये गाना जो हर डॉक्टर और हर मरीज के रिश्ते का एक नई गहराई देता है। सुनते हैं ये नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं कमलेश माउंट टाबू पुणे गांव की रहने वाली भूषा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।

0: वेलकम बैक दोस्तों। अभी आपने बहुत ही प्यारा अभी हमने गाना सुना और गाने के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े, चलिए सुनते हैं उनसे पहले। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, बाबा की कृपा है, आप आरजे भाइयों की दुआ है। और मैं दयाराम बोल रहा हूँ, राजस्थान रामपुरा से।
0: जी दयाराम जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही अच्छा हूँ। आप भाई जी, आपका शुभ नाम?
0: केवल।
1: केवल जी?
0: जी
1: केवल भाई जी, आपका रेडियो मधुबन स्टूडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है, आपका अभिनंदन है, वेलकम है। और मैं वैसे तो नियमित सोता हूँ, लेकिन अभी समय से इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पा रहा, आज मैं सुन रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई
0: जी।
1: और मेरे सभी मेरे प्यारे मित्र जो सुरेश भाई है और बुराराम और से है और पूरी लाल जी है मानपुर से, सभी जुड़ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कॉल कर लूँ आज, आज के दिन की अपनी भी अपनी बात से दिल की बात भी बता लूँ और सभी दोस्तों को मेरी आवाज भी सुनने को मिले कि दयाराम भी अब भी जुड़ा हुआ है, कभी आते है तो अपनी।
0: बिल्कुल, बीच में भी शायद आपने एक आध बार कॉल किया था ना दयाराम जी?
1: जी जी सर, मैंने किया था एक बार, तो पहले एक बार तो आपसे बात मेरी हो चुकी है।
0: हाँ यस, बिल्कुल हो चुकी है हमारी।
1: जी जी जी, और आज के दिन की सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज डॉक्टर दिन है तो सभी डॉक्टरों को बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। वो डॉक्टर तो हमारे आधे भगवान ही है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, आधे भगवान ही है। जो हमारे कोई भी शरीर में ऐसा कोई अंग खराब हो जाता है तो वो निकाल के उसका प्रत्यारोपण करके दूसरा भी डाल देती है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें एक नई जिंदगी दे देती है, हमें जीवन दान देती है।
0: बिल्कुल,
1: और वैसे ही हमारे जो देश की जो सबसे पहले डॉक्टर बनी थी आनंदी बेन पटेल थी
0: जी।
1: और गाना मैं सुनना चाहूंगा, लेकिन वो गाना राजस्थानी आवाज में है, मैं दो लाइनें उनकी गाता हूँ। तो अभी हम बरसात का प्रतीक्षा कर रहे, इंतजार कर रहे, बरसात काफी दिनों से हो नहीं रही, हम बाजरे की बुआई करना चाहते हैं, बरसात का प्रतीक्षा कर रहे, कब इंद्र राजा खुश हो जाए हमारे पास।
0: बिल्कुल,
1: मैं दो लाइनें गाता हूँ
0: जी।
1: बरस बरस मरा इंद्र राजा, बरस बरस मरा इंद्र राजा, हाँ बरसे मारो मन हर से। ऐसा गीत आपको मिल जाएगा।

0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सभी सुनने वाले मेरे प्यारे मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, और आप सभी आरबी भाई जो स्टूडियो में अभी बैठी है, जो प्रोग्राम कर रही है, दूसरे रूम पे वहां से गाना भी सुना रही है, वो भी अपना योगदान दे रहे, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। ओम शांति।
0: ओम शांति। थैंक यू सो मच आपका हमें कॉल करने के लिए दयाराम जी, और आशा करते हैं कि आप हमें इसी तरह से कॉल करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्यारी प्यारी फरमाइशें हम तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच आपका हमें कॉल करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपका ये जो गाना है बरस बरस मारा में इंद्रदेव का जो आपने गाना हमें सजेस्ट किया, हम कोशिश करेंगे जरूर से आपको सुनाएं। और जी हाँ दोस्तों, अभी एक्चुअली जो बात चल रही थी, हम बात कर रहे थे इस गाने के बारे में जो अभी हमने गाना सुना, लेकिन उससे पहले जैसे हम डॉक्टर्स की बात कर रहे थे, तो हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने बैठे तो उलझ जाती है, और जीने बैठे तो हर पल एक नया तोहफा बन जाती है। और जा बात जब फिल्म आनंद की हो, तो डॉक्टर और मरीज़ का वो खूबसूरत रिश्ता आंखों के सामने तैर जाता है, जहां बाबू मोशाय जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज को बचाने की जद्दोजहद में खुद ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपने आनंद मूवी अगर देखी होगी, जिसमें राजेश खन्ना जी, अमिताभ बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन जिन्होंने डॉक्टर का किरदार निभाया है, किस तरह से आनंद यानी कि जो हमारे राजेश खन्ना है, उनके साथ उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद में होते हैं, और अपने ज़िंदगी का एक पार्ट, असीन पार्ट, कि कैसी भी ज़िंदगी हो मुस्कुराना हमेशा है, ज़िंदगी को जीना हमेशा है। तो चलिए बात करते हैं, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे, उनसे पहले हम बात करते हैं। हेलो
2: नमस्ते।
0: नमस्कार सुरेश जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, अच्छे से हमारे और मित्र हमारे जो दयाराम जी जुड़े थे
0: जी, बिल्कुल
2: रामपुरा राजस्थान में, वो भी हमारे प्रिय मित्र हैं।
0: हम्म।
2: वो सभी हमारे, सर बताऊं तो हमारे सभी रेडियो के ही मित्र हैं सब।
0: बिल्कुल।
2: तो ये भी हमारे एक सुपरस्टार मित्र है, हमारा खास मित्र है। तो चलो आज दयाराम जी ने भी इसकी आदरी दर्ज करा दी, तो हमको
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: क्योंकि हमारे खुद के नगमे में और मित्र हमारे एक जुड़ गए हैं।
0: हाँ बिल्कुल, तो मैंने भी उनका आज यही सोचा कि एक और हमारे मित्र जुड़े हैं, और आशा करते कि वो हमें डेली कॉल करें और हमारे साथ बातें करें।
2: हाँ, और हमारे नए नए मित्र भी साथ जुड़ते रहेंगे, हमारे गुराराम जी, बुरियाल जी, हमारे मदन लाल जी, और सभी मित्र से जुड़ गए, तो खुशी होती है सर
0: जी।
2: तो चलो आज डॉक्टर दिन है सर, डॉक्टर को भी, सभी डॉक्टरों को भी हमने तो रूबरू जाके आज डॉक्टर को बधाई दी है।
0: क्या बात है,
2: आज हमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा था हमारे मेहखाना में।
0: अच्छा।
2: क्योंकि हमारे बेटे, हाँ हमारे बेटे की बहू के थोड़ी कान की तकलीफ थी, तो हम डॉक्टर के पास गए, और पहले तो हम डॉक्टर को बधाई दी थी कि डॉक्टर साहब आज तो आपके दिन की बहुत बड़ी शुभकामना है, तो डॉक्टर भी बहुत खुश हुए।
0: वाह क्या बात है।
2: डॉक्टर को हमने बताया भी कि डॉक्टर आज हम जो हमारे तो आता नहीं, हमारे पूरे भगवान है हमारे डॉक्टर, हमारे गुजरात में कहते हैं सर की जो भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर ही है।
0: बिल्कुल।
2: उनको भी दर्द होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको ठीक हो जाते हैं, तो एक नया योगदान भी डॉक्टर हमारे देते हैं। और कितने देखो, आज इसको कई सारी परेशानियां डॉक्टर को भी होती है
0: जी।
2: फिर भी सभी काम छोड़ के, उसको कई जरूरी काम भी होता है, फिर भी सब कुछ छोड़ के हमारे मरीज को इलाज करते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो एक कहते हैं ना कि ये हमारे लिए बहुत खास दिन होता है, खास बातें होती है सर
0: जी।
2: उसको भी कुछ न कुछ काम तो होता रहता है, फिर भी उसका सभी काम छोड़ के हमारे डॉक्टर हमारे मरीज की इलाज करते हैं। देखो, घर भी नहीं जाते, कई काम होते फिर भी घर नहीं जाते, और डॉक्टर मरीज को ठीक करके ही कर जाते हैं
0: जी। तो बिल्कुल,
2: बहुत एक खुशी की बात होती है सर। तो डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, डॉक्टर बस ऐसे ही हमारे डॉक्टर साहब हमारे मरीजों को अच्छी अच्छी सेवा करते रहे, ऐसी भी शुभकामना हम देते हैं डॉक्टर साहब को भी।
0: बिल्कुल।
2: और आपको भी कि आज हम आपके पास ही बात कर रहे हैं, तो हमको भी खुशी रहती है सर, आप भी आते हैं तो हमको भी एक मौका मिल जाता है।
0: बिल्कुल। हाँ थैंक यू सो मच। चलो यही हमारी कोशिश भी है कि हमारे जितने भी लिसनर्स हमसे जुड़ते हैं, हमारा जो ये परिवार है, हाँ हमारा ये जो परिवार है बढ़ता रहे।
2: जैसे डॉक्टर है ऐसे आप भी जो हमारे श्रोताओं को खुश कर देते हैं, ये भी एक खुशी की बात है सर।
0: थैंक यू सो मच।
2: जो हमारे जो लिसनर है, जो थोड़ा सा माइंड थोड़ा
0: एक चीज और आपसे शेयर करता हूँ, हमारे जो ओर से हमारे जो बुराराम जी है, देखिए उनकी भी तबीयत अभी कुछ दिनों समय से, लेकिन वो डेली
2: तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी देखो आपसे बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सभी को याद करते हैं दोस्तों को, हाँ इसी बहाने
2: याद करते हैं जी। तो बिल्कुल सही बताया सर की डॉक्टर के साथ साथ आप भी अच्छी जो बातें बता रहे हैं तो सब खुश भी हो जाते
0: जी,
2: हैं
0: जी, थैंक यू सो मच।
2: चलो अच्छा भी गाना भी मैं दे दूँ इसकी
0: जी।
2: फिल्म नाम को मुझे पता नहीं मैं, लेकिन मैं दो लाइन आपको जरूर सुनाता हूँ सर।
0: बिल्कुल।

0: बिन से ना काम हो, मैं चला। बहुत अच्छा गाना है,
1: क्या बात है। चलिए कोशिश करते हैं आपका ये
0: हमारे साथ के मित्र को आपको आपके दिल की वर्ष पांच शुभकामनाएं। नमस्ते सर।
1: नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू सो मच। और चलिए कोशिश करते हैं आपका ये हम प्यारा सा नगमा जो आपने फरमाइश दी है सुरेश जी, वो हम आपके लिए ज़रूर से प्ले करेंगे। जी हाँ, चलिए तो बात हो रही थी गाने के बारे में। अभी जो हमने बहुत ही प्यारा नगमा सुना, जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कोई तो बताए कोई तो रुलाए, है ना। इस गाने के बारे में हम बात कर रहे थे, उससे पहले हमने डॉक्टर्स के बारे में बताया कि कैसे इस मूवी में डॉक्टर ने आनंद जी का, जो हम राजेश खन्ना जी की बात कर रहे थे, तो चलिए डॉक्टर्स डे के इस खास मौके पर इस लाजवाब नगमे की डायरी खोलते हैं और इसके पीछे छुपे कुछ ऐसे किस्से जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। जी हाँ, फिल्म जैसे कि आपको पता है आनंद मूवी से ये गाना था, मन्ना डे जी इसके जो गाना जो गाया था, और गीतकार थे योगेश, संगीतकार इसके जो थे सलील चौधरी थे, और पर्दे पर आप सभी को पता है राजेश खन्ना जी थे। दोस्तों जब निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म आनंद बना रहे थे तो इस गाने के साथ एक बड़ी ही दिलचस्प वाक्य हुआ था। शीर्षक गीत से आइकॉनिक सीन तक, यानी कि संगीतकार सलील चौधरी और गीतकार योगेश साहब ने यह गाना सिर्फ फिल्म की शुरुआत, यानी कि जो टाइटल होती है ना, इसके दौरान बैकग्राउंड में बजाने के लिए बनाया था। फिर इस राजेश खन्ना पर फिल्माया नहीं जाना था, और जब सुपरस्टार राजेश खन्ना यानी हमारे काका ने इस गाने की डमी रिकॉर्डिंग सुनी तो वे इसके दीवाने हो गए। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से ज़िद की कि ऋषि, इतना बेहतरीन गाना बैकग्राउंड में बर्बाद नहीं हो सकता, इसे मुझे फिल्माया जाना चाहिए, इसे मुझ पर फिल्माया जाना चाहिए। और एक और इसमें था जो गुब्बारे वाला सीन था, जो काका की बात मान ली गई और मुंबई के जू बीच पर सनसेट के वक्त रंग बिरंगी गुब्बारों के साथ इस गाने का शूट किया गया। आज जब भी इस गाने का नाम आता है तो हमारे चेहरे पर वो गुब्बारे और राजेश खन्ना की वो जादुई मुस्कान सबसे पहले आती है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिंदगी कैसी है जी, ये गाना भी बजता है तो पीछे जो जू बीच है, सनसेट है, तो लोग जब भी सनसेट पे भी जाते हैं तो भी ये गाना बजता है। हम ये मतलब ऐसा आइकॉनिक गाना बन चुका है सभी के लिए। तो दोस्तों आनंद फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और हमारे डॉक्टर्स भी तो यही कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हर पल्स सेहतमंद हो और बड़ा बना हो। तो दोस्तों पुराने दौर की फिल्मों में अपने अक्सर देखा होगा जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर साहब घर आते थे, नब्ज पकड़ते थे और बड़े प्यार से डॉक्टर कहते थे दवा की ज़रूरत नहीं है, उन्हें खुशी रखिए। सच कहूँ तो खुशी तो बड़ी कोई दवा नहीं है और अपनों की बात से बड़ी कोई दुआ नहीं है। तो आज के इस व्यस्त दौर में भी हमारे डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि वो हमारे चेहरे पर वो खुशी वापस ला सके। क्यों ना आज हम भी एक छोटा सा काम करें, अगर आपके परिवार में कोई डॉक्टर है या आपके कोई ऐसे डॉक्टर दोस्त है जिनसे कभी आपकी बड़ी मदद की हो तो आज उन्हें एक थैंक यू का मैसेज ज़रूर भेजिए। यकीन मानिए उनके चेहरे की मुस्कुराहट, मुस्कान भी किसी टॉनिक से कम नहीं होगी। जैसे कि सुरेश जी ने कहा, सुरेश जी खुद गए थे अस्पताल और जिस भी कारण से जाना हुआ था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर को डॉक्टर डे की बधाई दी और जैसे उनके चेहरे पे खुशी उन्होंने बताई झलकी, तो आशा करते अभी भी जिन्होंने नहीं किया हो अपने डॉक्टर भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को, आप ज़रूर से आज के दिन की बधाई दें और उनके चेहरे पे भी खुशी के नगमे, खुशी की बात लाए। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। जो अगला नगमा था हमारी बहुत ही प्यारा, हमारे ओर से बुराराम जी ने हमें सजेस्ट किया था, जब चली ठंडी हवा, ये उनको हम सुनाते हैं। और अगर भूरीलाल जी हमें सुन रहे हैं तो भूरीलाल जी आपसे निवेदन है कि आज आप कोई और फरमाइश हमें दे, बिकॉज आपने जो गाना हमें फरमाइश के रूप में दिया है वो हमारे पास प्लेलिस्ट में नहीं है और हम प्ले नहीं कर पा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप अगर अपना कोई और फरमाइश हमें दे तो हम वो ज़रूर से प्ले करें। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार भूरीलाल जी।
1: दूसरे गाँव जा रहा हूँ
0: जी, बताइए।
1: कितने वाले काम में हुआ, चुप चुप करके दिन में जला,
0: छिपने वाले सामने। चलिए जरूर से कोशिश करते हैं। ये आपके यहाँ ठीक है, ठीक है, तुमसा नहीं देखा। चलिए कोशिश करते हैं आपके लिए प्ले करें। हाँ, वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने बहुत ही प्यारा एक गाना सुना, जब चली ठंडी हवा। जी हाँ, कई जगहों पर आज सुनाई दिया है। कईयों ने हमें जब कॉल किया था, मैं बताया जैसे महसाना की तरफ में और की तरफ में भी आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और कुछ तेज़ हवाएं भी चल रही है। तो आज सभी को ये हवाओं के ऊपर गाने बड़े पसंद और मुझे अच्छा भी लगता है जब कोई रेडियो सुन रहा है और अपनी शाम को वहाँ पे जो भी हाल, जो भी मौसम है, उस मौसम को रिलेट अपने गाने को चूज़ करके हमें फरमाइश देते, तो बड़ी अच्छा लगता है कि चलिए शो का ये जो अंदाज़ है हमारा वो सफल हुआ, सभी को पसंद आ रहा है और उसी हिसाब से हमें फरमाइशें भी आ रही है। अभी जो हमने गाना सुना, दो बदन मूवी का ये गाना, इसे इसके जो गीतकार थे शकील बदायूनी जी, इसको गाया था आशा भोसले जी ने और इसके संगीतकार थे रवि जी। और ये गाना बहुत ही प्यारा था उस समय का, 1966 में ये गाना आया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और नगमे की ओर। अगला जो नगमा है हमारे सुरेश जी ने हमें सजेस्ट किया था, मैं शायर बदनाम। सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही प्यारा भी हमने नगमा सुना। जब दिल में अपनों से मिला कोई गहरा दर्द हो और उसे शब्दों में पिरोना हो, तो आनंद बख्शी साहब के लिखे इन बोलों को बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस गाने में जो टूटे हुए दिल की कसक है, वो सीधे सुनने वालों के दिल पर उतर जाती है। दोस्तों, नमक हराम फिल्म का ये जो गाना अभी हमने सुना, 1973 में आई, सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। या इस फिल्म में और इस गाने से जुड़ी कुछ बातें हैं। इसमें जो दो महानायकों है, जैसे कि हमारे आनंद, जो फिल्म अभी हमने देखी सुनी गाना, उसमें राजेश खन्ना जी थे और एक सुपरस्टार हमारे अमिताभ बच्चन जी। फिल्म आनंद के बाद ये दूसरी ऐसी आखिरी बार था जब सुपरस्टार राजेश खन्ना और उभरते हुए हमारे एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का एक साथ पर्दे पर स्क्रीन शेयर करते देखे गए थे। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और दोस्ती के टकराव ने थिएटर्स में तहलका मचा दिया था। पंचमदा जी, हमारे जैसे हम कहते हैं आर डी बर्मन को, उनके तेज तर्रार और वेस्टर्न म्यूजिक के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गाने में उन्होंने शुद्ध भारतीय साजे और तन्हाई के एहसास को ऐसा तालमेल बिठाया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। किशोर कुमार साहब ने जिस दर्द और मध्यम सुरों में इसे गाया है, उसे साबित कर दिया कि वो हर मूड को बेताज बादशाह है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। अगला जो नगमा है हमारे राजस्थानी गीत हमारे दयाराम जी की तरफ से है। सुनते हैं उनका ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल। सीता और गीता मूवी का ये गाना अभी हमने सुना, और आप सभी को पता है कि इसमें हेमा मालिनी जी का डबल रोल था। जी हाँ, सीता जो कि एक बहुत ही डरी सी, सहमी सी, बड़े से घर की अंदर रहने वाली एक लड़की, और गीता जो कि गांव में पली बड़ी, बिल्कुल बिंदास तरीके से जीने वाली गीता। और जब ये अलग अलग हो जाते हैं, और फिर स्वैप हो करके गीता जब बड़े से उस महल में जा कर के रहती है और पता चलता है उसे अपनी बहन के बारे में, तो ये मूवी बड़ी प्यारी थी। 1957 में, सॉरी नॉट 1957 लेकिन जी हाँ, ये मूवी थी। सीता गीता के बारे में हम बात कर रहे हैं, और 1972 में आई। राहुल देव बर्मन जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे। आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी ने इसे गाया था, लिखा था आनंद बख्शी जी ने। चलिए दोस्तों, वक्त है आगे बढ़ने का। एक और जो हमारी प्यारी सी फरमाइश रह गई थी हमारे भूरी लाल जी की तरफ से। जी हाँ, सुबह सबसे पहला, शाम को सबसे पहला कॉल भूरी लाल जी का था, और उन्होंने हमें बहुत ही प्यारी एक फरमाइश दी थी, लेकिन हमारे पास वो प्लेलिस्ट में नहीं थी। और फिर भूरी लाल जी का एक और कॉल आया, जहाँ पर उन्होंने हमें बहुत ही प्यारा दूसरा एक फरमाइश हमें दिए, छुपने वाले। जी हाँ भूरी लाल जी, ये सॉन्ग आपके लिए है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। और दोस्तों, वक्त हो चला है, जी हाँ सॉरी, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, और फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते सीधे मंडे को। तब तक आप सभी बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए तब तक आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, और सभी को डॉक्टर दिवस की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को सहज बनाने की कोशिश रेडियो मधुबन की ये मुहिम है कि हम सभी अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। आखिर व्यक्ति स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है, और परिवार स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है। जब हम पूरे राष्ट्र के भी स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो उसकी शुरुआत भी एक एक व्यक्ति से होती है, और यही कदम हम सबको उठाने हैं कि हम स्वयं तो स्वस्थ रहें ही और दूसरों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। स्वास्थ्य की इसी जागृति को लेकर यह कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य हम सबको स्वस्थ रहने के सही तरीकों के बारे में समझाने देता है। आज की बातचीत में हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रखते हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझ में आती है कि हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके अपने हाथ में है। आप प्राय ये चीज कहते हैं कि मैं जिम जाऊंगा तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, मैं योगासन करूंगा तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, मैं खाने पीने पे ध्यान रखूंगा तो बेहतर स्वास्थ्य मुझे देगा, कोई और मेहनत करे और वो मेरे स्वास्थ्य पे असर डाले, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति को अपने इंडिविजुअल स्वास्थ्य के बारे में सजग होने की, जागरूक होने की आवश्यकता है। या लोग ये समझते हैं कि भाई बीमार पड़ जाएंगे तो डॉक्टर तो है ही, ये समझ लेना सही।
1: मैं सबको एक बात और बोलता हूं कि आप अपने भोजन को अपनी दवा बनाइए। मेक व्हाट यू ईट एज फूड, मेक इट एज मेडिसिन। और अगर आप अपने भोजन को अपनी दवा नहीं बनाएंगे तो थोड़े दिनों में जो दवा है वो आपका भोजन बन जाएगी। तो आपको किसी भी रूप में ये कोशिश करनी है कि जो भोजन आप करें वो अच्छा हो, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। मैं स्वाद लाभ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वास्थ्य लाभ की बात कर रहा हूं। 5 दिन प्लीज स्वास्थ्य लाभ लीजिए और 2 दिन स्वाद लाभ लीजिए, आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मुझे हिपोक्रेटिस की वो बात याद आती है जहां पर ये बात कही जाती है कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन, यानी भोजन ही आपके लिए औषध का काम करे। आजकल तो हम देखते हैं कि लोग इतनी इतनी दवाइयां खाते हैं, मुट्ठी भर भर के दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या हम सही मायनों में दवाइयां खाकर स्वस्थ होना चाहते हैं, या स्वास्थ्य का डेफिनेशन ये नहीं है कि हम दवाओं से मुक्त रहें तो वो सही स्वास्थ्य हो। और जैसे आपने ये बात कही कि आज इस बात के बारे में अगर जागरूकता है कि हम स्वास्थ्य के लिए खाएं, और स्वाद के लिए एक आध दिन हफ्ते में खा लेना ठीक है, मगर हफ्ते के 5 दिन तो हम स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाएं, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भोजन करें, ये आवश्यक है। भोजन की जब बात की जाती है डॉक्टर साहब, तो हम पिछले दिनों ये बातचीत कर रहे थे कि भोजन में एक संतुलित आहार आवश्यक है, एक बैलेंस डाइट जरूरी है, और उसमें हम फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की बात कर रहे थे और हम विटामिन्स के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। अब विटामिन्स में आपने ये बताया था कि 2 अलग अलग कैटेगरी के विटामिन्स हैं, एक फैट सॉल्यूबल है जो वसा में घुल जाते हैं और वाटर सॉल्यूबल। तो ये फैट में जो घुलने वाले विटामिन्स हैं इनके बारे में कुछ और चीजें समझे, कुछ और विटामिन्स के बारे में भी हम जानकारी हासिल करें।
1: हम लोग ने विटामिन ए के बारे में बात की जो हमारी आंखों के लिए और कैरेट में, विटामिन डी के बारे में बात की जो सूर्य के प्रकाश की वजह से, और आज हम महिलाओं का सबसे चहेता विटामिन जिसको विटामिन ई कहते हैं उसके बारे में बात करें।
0: जी,
1: इस विटामिन को डॉक्टर से ज्यादा महिलाएं, फूड इन्फ्लुएंसर्स, डाइटिशियंस और न जाने कौन कौन इसके बारे में परिचर्चा इसकी करता रहता है, और जो सबसे ज्यादा परिचर्चा इसकी होती है वो सिर्फ त्वचा के लिए होती है और त्वचा के साथ बाल, इसीलिए ये महिलाओं का सबसे फेवरेट विटामिन ई है। और मैं सबको बोलता हूं, प्लीज नेचुरल सोर्स से इस विटामिन को लेने की कोशिश करिए। ब्रह्म कुमारी की एक लेक्चर मुझे दीदी का याद है, जिन्होंने उससे बोला था कि हम बाहर से नहा धो के सुंदर हो सकते हैं, पर जब तक हम अंदर से सुंदर नहीं होंगे, हमारी बाहरी सुंदरता का कोई भी लाभ नहीं है। तो जो लोग जितना विटामिन ई का कैप्सूल गोली चेहरे पे लगा रहे हैं, इसमें किसी क्रीम में डाल रहे हैं, मैं उनको सबको बोलता हूं कि प्लीज इसको खा भी लीजिए और इसको नेचुरल सोर्स से खाने की कोशिश करिए। ये आपके सारे नट्स में मिलता है और व्हीट जर्म ऑयल में मिलता है, आपके आलमंड में मिलता है, पिस्ताशियों में मिलता है, पालक में मिलता है। इसको प्लीज सिर्फ चेहरे पे लगाकर, अपने बाल में लगाकर प्रयोग कम करें, अंदर भी अपने शरीर के इसको डालें। क्योंकि अगर आप अपने शरीर के अंदर इसको नहीं डालेंगे तो आप पूरा फायदा इसका नहीं ले पाएंगे।
0: यानी जहां तक मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ, विटामिन ई के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाजार में बिक रहे हैं जिसमें लिखा होता है कि इसमें विटामिन ई है, तो लोग उसे लगा ले रहे हैं ऊपर से मेकअप की तरह, मतलब क्रीम के रूप में हाथों पे, चमड़ी पे लेप तो कर ले रहे हैं, मगर वो शरीर के अंदर जा रहा है इस बात का ध्यान नहीं है, सिर्फ बाहर वो लेप तक ही सीमित रह रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सही फायदा अगर उसको अंदर ले आया जाएगा तो वो विटामिन काम करेगी ज्यादा।
1: चेहरे पे 5% 10%, त्वचा पे अंदर ले लेंगे तो 95%, तो दोनों में मतलब 5% एंड 95%, और जब दोनों जुड़ जाएंगे तो यू विल गेट 100% बेनिफिट।
0: मैं ये दोनों चीजें समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब। पहले तो जैसे आपने कहा कि विटामिन ई किन की चीजों में होता है, आप बता रहे थे, मैंने बीच में आपसे ये सवाल कर लिया, जो लोग लगाते हैं वो स्रोत कहाँ से है, वो वहां पर विटामिन ई कहाँ से आ रहा है, और जो चीज अंदर लेने वाली चीजें हैं उनमें विटामिन ई कहाँ से आता है, ये दोनों भी चीजें समझने की जरूरत है।
1: जो लोग लगा रहे हैं वो एक दवा की कंपनी के द्वारा बनाया हुआ कैप्सूल, उसको काट लेते हैं या उसमें उसको पंचर कर लेते हैं, छेद कर लेते हैं, और जो लिक्विड उसको निकलता है उसको किसी क्रीम या तेल में मिलाकर, या कुछ लोग जो बहुत जल्दी गोरा होना चाहते हैं या बहुत जल्दी अपने रिंकल को खत्म करना है, वो डायरेक्ट लगाने लगते हैं इसको। और अगर हम इसको हम भोजन में लेते हैं, एक और बहुत बड़ी भ्रांति है कि ये सिर्फ हमारी त्वचा के लिए अच्छा है। ये हमारे शरीर में, हमारे हार्ट, हमारी लिवर, हमारे लंग, इन तीनों के लिए बहुत अच्छा है। कहना नहीं चाहिए, हमारी माताएं बहने और अब तो बहुत सारे पुरुष भी सिर्फ सुंदर दिखना चाहते हैं, वो सिर्फ इसकी त्वचा की जो इसकी खूबियां हैं उसी के पीछे भागे चले जा रहे हैं। वो ये शरीर को जो ये अच्छा बना पाता है उस पे ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं अपने सभी श्रोतागण को ये सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आपको ठीक लगे तो इसका सेवन भी करिए, और गोली के रूप में सेवन करने से ज्यादा अच्छा है कि इसको भोजन के रूप में इसका सेवन करें। बोलना चाहूंगा किसमें मिलता है, व्हीट जर्म ऑयल में, सनफ्लावर सीड, कोई भी सनफ्लावर, आलमंड, पीनट, मतलब मूंगफली, आपका बादाम, आपका पिस्ता, कोई भी भुना हुआ जो ये नट है, मतलब बीज है, उसमें आपको मिलेगा। पालक में, ब्रोकली में, हमको जो फल है कीवी, उसमें बहुत अच्छा है, आम में बहुत अच्छा है, तो टमाटर में बहुत अच्छा है, तो प्लीज इसका सेवन करिए। जो लगाना चाहता है मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं, बट प्लीज इसका सेवन करिए।
0: कभी कभार ये बड़ी मजेदार सी बात लगती है कि हम बाहरी आवरण पर इतना ध्यान देते हैं, ये भूल जाते हैं कि जो बाहर दिख रहा है वो अंदर का ही रिफ्लेक्शन है, कि वो अंदर का ही प्रतिबिंब है जो बाहर हो रहा है। प्रायः चिकित्सक चेहरे देख के ही पहचान लेते हैं कि भाई इसकी तबीयत में गड़बड़ है, स्किन का टोन देख के, आंखें देख के बोलते हैं कि भाई इसको ये है, जल्दी इसको ले आओ। ये अक्सर प्राय अस्पतालों में हम सुनते और देखते आए हैं, मगर लोग इस सिंपल सी बात को नहीं समझ पाते।
1: भैया वही बात है ना कि ये आपको बाहर से सुंदर बनाता है और इसको एंटी एजिंग बोला जाता है। तो प्रकृति का नियम है कि जो चीज आई है वो जरूर जाएगी। रोज हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम रोज कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो अगर हम सीखते जाएंगे तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, ये जो चेहरे पे ये मेरी झुर्रियां नहीं है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो बट सबको यंग दिखना है, सबको कहते नहीं, सबको वही 18 साल या 21 साल में अपनी उम्र को फ्रीज कर लेना, ये पॉसिबल नहीं है। सो सबको मैं बोलता हूं कि, और इसके प्रचार भी बड़े कभी कभी भ्रम पैदा करते हैं कि ये उम्र कम करने की ये चाबी है, हमेशा आपको जवान बना के रखती है, आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है, और पता नहीं क्या क्या लोग इसके बारे में बोलते हैं। फिर बोलूंगा, लगाने से ज्यादा बेटर है इसका खाना।
0: अक्सर ये चीज सुनने को मिलता है कि लोग बाहर से तो जवान होते हैं मगर अंदर उसके शरीर के अंग अंग जो है वो बूढ़े हो गए होते हैं, क्योंकि हमने बाहर पे फोकस कर लिया है और अंदर गाड़ी जो है वो एकदम खटारा हो चुकी है।
1: भैया, आपकी दादी, उनकी स्किन आपसे बेटर अभी भी होगी। नेचुरल खाया है, उस जमाने में विटामिन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, खूब टमाटर खाया, खूब सारे नट खाए, उन्होंने ताजा भोजन खाया, वीट ग्रास, वीट जर्म ऑयल सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया। आज देखिए उनकी त्वचा। और ये एंटी एजिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि एंटी स्ट्रेस हार्मोन, एंटी स्ट्रेस का काम, और ये मतलब ऑक्सीजनेशन को प्रिवेंट करता है, जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस ऑक्सीजनेशन उसको बंद करता है। आजकल नया तीन चीजें हम लोग को बहुत नुकसान दे रही हैं, वो है पॉल्यूशन नंबर वन, दूसरा पैक्ड एंड एडल्टरेटेड फूड, तीसरे नंबर पे स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये तीन चीजें हमारे शरीर को अंदर से और बाहर से दोनों से खराब कर रही हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर आप विटामिन ई को ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो आप इन तीनों चीज के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें एक साइंस का टर्म है, फ्री रेडिकल पैदा करती, जो निकलता है और वो जितने भी कोशिकाएं हैं उनको मारना शुरू करता है। तो विटामिन ई सबसे पहले हमारे शरीर में जितनी भी जो ये स्ट्रेस है उसको, ऑक्सीजनेटेड स्ट्रेस को कम करता है। तो ये हमारी त्वचा या पूरे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनको ये ठीक रखता है और जीवित रखता है लंबे समय में। इसीलिए हमारा जो शरीर है और जो त्वचा है सुंदर लगती है।
0: ये बात समझ में आती है कि विटामिन ई सिर्फ बाहरी सौंदर्य को ही नहीं बढ़ा रहा मगर साथ साथ शरीर के अंदर की जो उम्र है, यानी शरीर के अंदर के अंग अंगों की उम्र है, उनको भी वो ठीक रखता है, उसे जल्दी एज होने नहीं देता, उसका भी मेंटेनेंस का कार्य ये विटामिन ई करता है। ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे आपने ये बात कही कि विटामिन ई का ये महत्व है, शरीर के अंदर के अंगों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो विटामिन ई के क्या क्या काम है, ये बात समझ में आता है कि वो ये मेंटेनेंस का काम करता है, फ्री रेडिकल्स को जो है उसे फाइट करता है, साथ साथ जो पोल्यूशन और जो बाहर के ये अलग अलग प्रभाव हैं, पैक्ड फूड जो हम खाते हैं, पैकेट बंद भोजन और जो मिलावट वाला भोजन खाने से जो शरीर पर नकारात्मक असर होता है उससे लड़ने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा विटामिन है। तो अब प्रश्न उठता है कि इस विटामिन को कितना खाया जाए, हर दिन में इसकी क्या मात्रा हो, कैसे इसको हम अपने भोजन का, जीवन का एक हिस्सा बनाएं।
1: हम सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि ये त्वचा के साथ साथ और किन चीजों में फायदा देता है। एक वयस्क व्यक्ति को करीब 15 मिलीग्राम पर डे की हम लोग बात करते हैं। ये विभिन्न अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट्स में इसके बारे में लिखा जाएगा, मगर पहले बात करते हैं कि किस किस चीज में इसका फायदा होता है। सबसे पहले हम लोग ने जो बात की कि ये त्वचा को सुंदर रखता है, जवान रखता है, क्योंकि ये जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं उनको ये कम करता है, तो एंटी एजिंग हो जाता है। दूसरे नंबर पर ये हमारे हृदय को ताकत देता है। और ये कहा जाता है जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, जिनको हृदय संबंधी रोगों की समस्या हो सकती है, उसमें उनको विटामिन डी बहुत मदद करता है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ओवरऑल जो हार्ट हेल्थ मतलब हृदय का स्वास्थ्य है उसको ये बेटर करता है। पहले ये माना जाता था कि जो अल्कोहल या शराब पीते हैं उनकी ही लिवर खराब होती है, और अब किसी की भी लिवर खराब हो सकती है।

0: एक चीज और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा कि जिनको भी भूलने की बीमारी है या वो चीजें याद नहीं रख पा रहे हैं, अगर वो राइट हैंड से लिखते हैं तो प्लीज लेफ्ट हैंड से भी कोई काम करना शुरू करिए। मेडिकली ये कहा जाता है कि अगर आप अपना दोनों हाथ ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो आपका दोनों ब्रेन काम करेगा। और विटामिन ई की खासियत कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, और इम्यून सिस्टम जब बेटर करता है तो ज्यादा हम स्वस्थ रह पाते हैं। कुछ ये इसके प्रयोग से जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को ये कम करता है तो कुछ कैंसर्स के प्रिवेंशन में भी इसका रोल है। और ये हमारे जो अस्थमा है, हमारे कोविड में या लंग्स फेफड़ों से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसमें ये बहुत अच्छा इसका रोल है। महिलाओं में पीरियड्स के समय जो दर्द होता है उसमें भी विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है। और कहते हैं कि इसको खाने से या इसका प्रयोग करने से माहवारी के समय जो महिलाओं को दर्द होता है उसमें इसके प्रयोग से उस दर्द में कमी आती है। और हमने जैसे बात की कि ये एंटी एजिंग है, ऑक्सीजन स्ट्रेस कम करता है, पोल्यूशन में कम करता है, तो महिलाएं और पुरुष जिनमें इनफर्टिलिटी की समस्याएं हैं उसमें विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है। मेरी पत्नी एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, तो वो अपने मरीजों को विटामिन ई जरूर देती हैं जिनको इनफर्टिलिटी की परेशानी है। तो इसमें हमने देखा कि त्वचा के साथ साथ ये हमारे हृदय की, हमारे लिवर की, महिलाओं में दर्द की, इनफर्टिलिटी की, इन सब चीजों में इसका बहुत अच्छा रोल है। विटामिन ई एक जोड़ों के दर्द में भी अब थोड़ा बहुत इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि ये जब त्वचा में कोलेजन बनाता है तो ये माना जाता है कि अगर कोलेजन अच्छा होगा तो हमारे जो जोड़ है वो भी अच्छे होंगे। तो अब ये जॉइंट हेल्थ के लिए भी विटामिन ई का इस्तेमाल हो रहा है।
1: यानी ये बात समझ में आ रही है कि ये सिर्फ त्वचा से संबंधित चीज नहीं है, त्वचा, बाल, शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए भी, लीवर, फेफड़ों के लिए ये कितना काम करता है, यहां तक भी हमारे घुटने और शरीर के अलग अलग जो जोड़ हैं उन सब के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, ये बात समझ में आती है। दोस्तों, बातों बातों में वक्त कहता है कि यहां अलविदा कहना होगा, मगर आज विटामिन ई के बारे में जो जानकारी मिली है उसे एक सौंदर्य प्रसाधन वाला विटामिन न समझकर उसकी वास्तविक आवश्यकता क्या है और शरीर के लिए वो कितना फायदेमंद है उसकी उपयोगिता को समझकर उसको जीवन में महत्व देकर उसका सेवन करना शुरू करना है, इस पर भी ध्यान रखना है। तो आज की बातचीत में मैं समझता हूँ कि आज हम सब ने ये बात समझी है कि जो भी हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जो नट्स खाते हैं, बादाम, पिस्ता, मूंगफली या फिर सूरजमुखी के जो बीज हैं, उन सबको हम सब लोग रोस्ट करके खाने की आदत तो बहुत पहले से लोगों में रही है। आजकल अगर हम उन चीज़ों को ध्यान न देकर सिर्फ बाहरी लेप लगाने पर सौंदर्य के हिसाब से इस विटामिन को सोचेंगे तो शायद इतना फायदा नहीं होगा जितना इन सब चीज़ों के प्राकृतिक स्रोत से इस विटामिन ई का सेवन किया जाए। तो आज की बातचीत में बस इतना ही। आज हमारे प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार। ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की बातचीत में विटामिन्स के बारे में हमने चर्चा की और ये समझा कि विटामिन ई की प्रामुख्यता क्या है, इसका उपयोग कितना है, और हम अपने शरीर के अंदर के जो अंग हैं जो दिखाई नहीं देते, जो बाहर दिखाई देने वाला चर्म है, जो स्किन है, उसके केयर के लिए तो ये काम आता ही है, मगर इसके साथ साथ शरीर के अंदरूनी अंगों को भी उसकी उम्र को बढ़ने से रोकता है और ये रोग निरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और अनेक चीज़ों में फ़ायदा देता है। ये आज हमने डॉक्टर साहब से सुना। तो इस विटामिन का सही इस्तेमाल करें, इसको भोजन में शामिल करना शुरू करें। आज की चर्चा में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बच्चों, सपनों की सैर कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आ गए हैं परी और मनी दीदी आपके साथ बातें करने के लिए।
1: हाँ, और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें और बच्चों के छोटे छोटे प्रश्न सुनकर तो लगता है कि हम बच्चों को कैसे हम समझाएं, ऐसी छोटी छोटी बातों को कैसे हम टिप्स दें उन्हें कि उनके प्रश्न खत्म हो जाए।
0: हाँ बच्चों, तो देखो आज भी एक सवाल आया है और ये भेजा है रोशनी ने, और उसने, मुझे लगता है मनी दीदी ये सवाल शायद पहले भी आया था, तो चलो रिवाइज हो जाएगा। रोशनी पूछती है कि मुझे मंच पर बोलने से डर लगता है।
1: हाँ परी, वैसे बच्चों की तो ये समस्या रहती है क्योंकि उनको कई बार स्कूल में कुछ भाषण देना होता है, कुछ स्पीच देनी होती है, तो कई बार वो जाते हैं और स्टेज पे भूल जाते हैं, डर के मारे पैर कांपने लगते हैं और भूलने लगते हैं, तो इसीलिए ये बच्चों की समस्या कॉमन हो गई है लगता है।
0: हाँ मनी दीदी, तो बच्चों आपको याद है ना, हमने पहले भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताई थी, और याद है हमने क्या कहा था, बच्चों मंच पर डर लगे तो आईने के सामने पहले बोलने का अभ्यास करो।
1: हाँ, पहले छोटी छोटी चीजें बोलने की प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी पोयम या छोटे छोटे पैराग्राफ्स बोलो, और फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो कला भी आती जाएगी।
0: देखो बच्चों, कोई भी वक्ता जब बनता है तो पहले पहले तो नया नया ही शुरू करता है ना।
1: हाँ, और शुरू शुरू में जैसे बताया आपको, आईने के सामने प्रैक्टिस करो, फिर अपने घर में मम्मी पापा के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो, फिर फैमिली में और लोगों को जमा करके बोलने की प्रैक्टिस करो, तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते करते आपका डर भी खत्म हो जाएगा।
0: तो रोशनी, मुझे लगता है आपको आपका जवाब मिल ही गया होगा। ऐसे बच्चों, आपके और कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर भेजिएगा 9414151415 पर।
1: हाँ, वॉइस नोट या मैसेज भेज सकते हैं। और अब बच्चों लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक।
0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रही है और परी बैठ गई है आपको कहानी सुनाने के लिए इस ब्रेक के बाद। और बुढ़िया और उसके नौकर की कहानी आज हम सुनने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। एक बुढ़िया थी, उसके यहाँ दो नौकर थे। बुढ़िया रोज सुबह मुर्गे के बाग देते ही उड़ जाती थी, फिर वह नौकरों को जगाती और उन्हें काम पर लगा देती। नौकरों को सुबह इतनी जल्दी उठना पसंद नहीं था। वे दोनों हमेशा यही सोचा करते कि ऐसा कोई उपाय करना चाहिए ताकि हम आराम से सो सके। तो बच्चों, एक दिन पता है एक नौकर ने कहा, क्यों ना हम सभी मुर्गों को मार डाले, ना रहेगा बास ना रहेगी बांसुरी। यदि मालकिन सुबह मुर्गे की बाग ही नहीं सुनेगी तो जल्दी उठेगी कैसे। नौकर ने सोचा, यदि वो सुबह जल्दी जागेगी ही नहीं तो हमें नींद से जगाएगा कौन, फिर हम चैन की नींद सो सकेंगे। तो बच्चों, दूसरे नौकर को तो ये बात पसंद आ गई। दूसरे दिन दोनों नौकरों ने मिलकर क्या किया बताया, मुर्गे को मार डाला। जब मुर्गा ही नहीं रहा तो बड़े सवेरे बाग कौन देता। अब बुढ़िया को सुबह उठने का समय ही नहीं पता चलता था, इसलिए वो पहले की उपेक्षा और जल्दी उठ जाती थी। देखा बच्चों, एक बार वो जग जाती तो नौकरों को भी सोने नहीं देती। मुर्गा तो मर गया, पर नौकरों को परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई। अब तो उन्हें और भी जल्दी उठना पड़ता था। देखा बच्चों, मजा आया ना कहानी सुनकर। लेकिन ये तो बताओ कि कहानी हमें क्या सिखाती है। बिना विचार जो करे सो पीछे पछताए, है ना। तो इसीलिए कोई भी काम सोचे समझे बिना नहीं करना चाहिए। पहले उसको सोचो, फिर उसको समझो, फिर ध्यान से उस काम को करो, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो चलो, मनी दीदी की बारी शुरू होने वाली है, इसलिए पहले हम सुनते हैं ये छोटा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

बच्चों आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, मनी दीदी आ गई है तेनालीरामा की किताब लेकर। और हम पढ़ रहे हैं मित्र की पहचान, एक नई कहानी हमने इस किताब से शुरू की है जिसमें महाराज के दो बाल सखा नव वर्ष मनाने के लिए और समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और महाराज अपने मित्रों के साथ, उनके साथ कभी वो चौसर खेलते कभी घुड़सवारी करते, तो इतने व्यस्त हो गए कि होने वाले मुख्य आयोजन का उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और तब सभी सभासद महाराज के पास पहुंचे जिनमें तेनालीराम भी था। तो चलो अब आगे क्या हुआ मैं वो आपको पढ़कर सुनाती हूँ। महाराज को सभी सभासदों ने समारोह की तैयारियों के विषय में जानकारियां दी और उन्हें समारोह स्थल पर चलने को कहा। अभी महाराज अपने सभासदों की बातों का कोई उत्तर भी नहीं दे पाए थे कि महाराज के भवन में आतिथ्य प्राप्त कर रहे उनके मित्र प्रसन्नजीत ने कक्ष में प्रवेश किया। एक ऐसे कक्ष में जहां कोई राजा अपने विशिष्ट सभासदों के साथ विचार विमर्श या मंत्रणा कर रहा हो, वहां इस प्रकार बिना सूचना दिए प्रवेश कर जाना अशिष्टता समझी जाती थी। सभासद चौंक पड़े और प्रश्न सूचक दृष्टि से प्रसन्नजीत की ओर देखने लगे। महाराज ने भांप लिया कि कक्ष में इस तरह प्रसन्नजीत का आना सभासदों को पसंद नहीं आया। इसे उनके राज्य में स्वयं उनके महल में अशिष्टता माना जाता है, लेकिन प्रसन्नजीत को वे कुछ कह भी नहीं सकते थे। बात बिगड़े नहीं इसलिए उन्होंने आगे होते हुए कहा, आओ भाई प्रसन्नजीत अपना आसन संभालो, ये लोग मेरे विशिष्ट सलाहकार हैं और आज नव वर्ष समारोह के कार्यक्रम तय करने पधारे हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद महाराज ने अपने सभासदों से कहा, और ये हैं प्रसन्नजीत कलिंग के महाराजा, मेरे गुरु भाई और बाल सखा। तेनाली राम ने देखा कि प्रसन्नजीत की चाल में एक दर्प है। अब सभासद तो नाराज हो गए और उन्हें प्रसन्नजीत को अशिष्ट माना, और महाराज ने भी प्रसन्नजीत को बुरा न लगे या सभासदों को बुरा न लगे इसलिए वे उनका परिचय देने लगे। तो अब आगे क्या हुआ होगा वो तो फिर रह जाएगा सस्पेंस, और अगली कड़ी में हम सुनेंगे कि आगे क्या हुआ। तो चलो बच्चों अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। चलो परी, पिछली कड़ी में बच्चों को जो आपने अफर्मेशंस रिकॉर्ड करके भेजने को कहा था, तो देखो सभी बच्चों ने कितने सारे इतनी प्यारी प्यारी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजा है।
1: बिल्कुल मनी दीदी, तो चलो सुनते हैं इनकी आवाज में।
2: मैं हूँ खास, मैं हूँ महान, मेरे सपनों का है आसमान, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, अपने दिल पर भरोसा रखता हूँ। मैं हूँ खास, मैं हूँ महान, मेरे सपनों का है आसमान, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, अपने दिल पर भरोसा रखता हूँ।
0: बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया।
1: हाँ बच्चों, आपने अफर्मेशंस तो बहुत बढ़िया भेजे। तो बच्चों नोट कर लो आज की पहेली, लोहे का शरीर पटरियों पर दौड़ू, गांव शहरों को सबको जोड़ू, सबको मंजिल पर पहुंचाऊं।
0: अच्छा तो बच्चों आप तो समझ गए होंगे क्या है, तो आपको तो हिंट देने की कोई जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि इतना इजी सवाल पूछा है परी ने। तो चलो चलो जल्दी से उठा लो फोन, और नंबर तो अब आपको याद हो ही गया होगा, 94 14 15 और 14 15। इसमें वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
1: बिल्कुल बच्चों, तो चलो अब करते हैं हम गुड नाइट,
0: स्लीप टाइट,
1: गुड बाय। सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए,
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM पर
1: सपनों की
0: सैर को।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

समय बनता है सुबह का जब खास, उषा आती है अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे, जरा सोचिए। और जी हाँ, तुलसी स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदा करती है, आप भी सोचिए। उपाय तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा आप भी सोचिए। अगर आपको भी आंसर मिलता है तो आप भी उपाय बता सकते हो। और आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ आइसक्रीम। कल आपने खाई कुल्फी, आज बनाएंगे आइसक्रीम, परंतु कौन सी वाली, वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो प्रश्न भी पूछने वाली हूँ बहुत ही सरल और सुंदर। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

बहुत ही सुंदर गीत सुना आप सभी ने, उसके बाद पुनः आप सभी का आशियाना में स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करे। लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूँगी कि एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और भी अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, उनके अच्छी सेवा की, आदर सत्कार किया। सेवा से प्रसन्न होकर के नगर से प्रस्थान करने के पहले संत ने उस लोभी व्यक्ति को चार दीपक दिए। चारों दीपक दे करके संत ने उसे बताया, पुत्र जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर के पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वहां दिया बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में घड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी नहीं हो सकती है तो तीसरा दीपक भी जला करके दक्षिण दिशा में चले जाना। वहां पर दिया बुझेगा तो वहां पर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और है, एक दीपक है किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कह करके संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ और वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लूं, फिर यहाँ का धन भी ले जाऊंगा। वह कलश वही झाड़ियों में छिपा करके दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर दूसरा दीपक भी बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में रख दिया और सोचा कि बाद में ले जाऊंगा, इसलिए वही छोड़ करके तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जला करके उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने सख्त मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी ज्यादा धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता हो। मुझे तत्काल वहां जाकर उसे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, उसके बाद सारा जीवन में ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक भी जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वे एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला जिन्हें देख करके उसकी आंखें चौंधिया गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख करके उसका लालच और भी बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई दी, वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुंचे बाबा? क्या थोड़ी देर में तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला। वृद्ध व्यक्ति बोला,
लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो भाई? ये कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तो इसमें दब करके मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यही चक्की चला रहा हूं, मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कह करके वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा, लोभी व्यक्ति जोर से चिल्लाया पीछे से। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर के यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। देखा ना आपने लालची व्यक्ति के क्या हानि हुई, क्या इसके साथ घटित हुआ। इसलिए लोभ लालच बिल्कुल नहीं करना है। यही आज का सुंदर सा विचार है, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुरा।

चा ओ झुक जा सांवरिया लूल जाए तुल छा ओ झुक जा सांवरिया लूल जाए तुल छा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में जैसे कि ये गीत की चंद पंक्तियां मैंने गुनगुनाई है इससे आप समझ गए होंगे कि आज मैं नुस्खे कौन से देने वाली हूँ। वैसे तो परिचय में आप सभी सुन चुके हो फिर भी आइए आज आपको नुस्खे देते तुलसी के ऊपर कि तुलसी के गीत तो बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं, भजन बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में जैसा नाम है वैसा तुलसी का काम भी है, बहुत ही फायदा करती है तुलसी। और तुलसी का पौधा तो लगभग हम अपने घरों में लगाते ही हैं, है ना, कोई घर में रखते कोई घर के बाहर रखते, लेकिन हर एक के घर में लगभग तुलसी का पौधा तो होता ही है। तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है तुलसी। तुलसी देखिए इसको एक दिव्य पौधा माना जाता है क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को भी प्यारी है, तो बहुत सारे भजन बन गए हैं, है ना, और बीमारियों को भी ठीक करती है, इसलिए इसको दिव्य पौधा के रूप में माना जाता है। इसकी पूजा भी होती है और बहुत सारी बीमारियों को ये नाश करती है। तो जैसे कि कैंसर वाले लोगों के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि कैंसर में कैसे फ़ायदा करती है तुलसी। कैंसर जैसे गंभीर रोगों में 25 से 100 पत्तियाँ बड़ों के लिए, ठीक है ना, तुलसी के पत्ते कितने लेने हैं, 25 से 100 पत्तियाँ और 5 से 25 पत्तियाँ बच्चों के लिए ले सकते हैं आप। फिर भी शुरुआत में आप 21 से 35 पत्तियों से शुरू करिएगा, ठीक है, ये पर्याप्त है, फिर आपको संख्या बढ़ानी है। तो अधिकतर रोगों में सामान्यतः 7 से लेकर 11 पत्तियां लेनी है। कैंसर की बीमारी में मैंने आपको बताया है कि शुरुआत में 21 से 35 तक शुरुआत करनी है और बाकी 25 से 100 तक पत्तियां लेनी है, धीरे धीरे संख्या बढ़ानी है, लेकिन ज़्यादा ही तकलीफ है तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरी अन्य कोई बीमारी हो तो आप 7 से लेकर के 11 पत्तियां, ठीक है, और बच्चों के लिए 6 से लेकर के 5 पत्तियां जरूर इनको खिलाइएगा, ठीक है। जैसे कोड जैसे 7 साल पुराना चर्म रोग केवल 3 पत्तियां बारीक घोट करके आप दीजिएगा, तो कोड जैसी बीमारियों में भी फायदा पहुंचा सकते हैं तुलसी के पत्तियां। बस आपको जरूरी है थोड़ा सा लगातार इसका सेवन करना, ठीक है, और जलन या फिर कोई और छोटी मोटी तकलीफ है तो आप खाली पत्तियां भी दे सकते हैं, सुबह खाली पेट देना है, ठीक है। तुलसी की पत्ती खा करके आप सामान्य जो जल है उसको पी लीजिएगा, ठीक है, नहीं चबाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे उतार करके पानी पी लीजिए, चबा करके भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि 7 से 21 ताजे हरी तुलसी की पत्तियां लेकर के आप स्वच्छ खरल या सिल बट्टे पर जिस पर मसाला नहीं पीसा जाता है, ठीक है, और मसाला पीस रहे हो तो उसको अच्छी तरह धुलाई करो, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछो, उसके बाद ही आपको तुलसी की पत्तियां घोटनी है, नहीं तो फिर आप लोगे तो छाती में जलन करेंगे, फिर कहेंगे कि अरे ये तुलसी जल रही है, लेकिन तुलसी की जलन नहीं है, आपके मसाले की जलन है। इसलिए अगर सिलबट्टे पर पीस रहे हैं आप और मसाले वाला है तो उसका अच्छी तरह धुलाई करिए, बाकी जिसमें आप मसाला नहीं पीसते हो वो सिलबट्टा भी आप ले सकते हो और चटनी की तरह इसको, मतलब चटनी बना देनी है इसकी 7 से 21 ताज़ा हरी पत्तियां लेकर के, फिर इसको 50 या फिर 125 ग्राम दही में मिला करके रोज खाली पेट 2-3 महीना तक लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, यदि दही खट्टा है माफिक नहीं आ रहा है तो आप 1-2 चम्मच शहद मिला सकते हैं इस चटनी में, ठीक है, तुलसी की चटनी में, और इसको लीजिए, तो इससे कफ और श्वसन संस्थान के रोगों तथा छोटे बच्चों को बारीक पीसी हुई तुलसी की पत्तियां शहद में मिलाकर दीजिए तो ये श्वसन और कफ में काफ़ी फायदा करेगा। बच्चों के आप खुराक की मात्रा घटा दीजिए, बड़ों के लिए मात्रा जो मैंने आपको बताया है वो लीजिएगा, इससे कफ है, श्वास की समस्या है, इन सब में राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 महीने तक लगातार लेना है, सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तियों के पेस्ट करके इसको या तो दही में घोलिए, दही अगर खट्टा है तो शहद में भी आप मिला सकते हैं और इसको चाटिए, ठीक है, तो श्वास की समस्या ठीक होगी, कफ की समस्या ठीक होगी। और आप दूध में
तुलसी को मत डालिएगा, चाय में डालिएगा। चाय में जैसे आप अदरक डाल रहे हो, अन्य मसाला डाल रहे हो, उसके साथ आप तुलसी की पत्तियां डाल करके भी चाय बना सकते हो। और इसको पीने से भी कफ में, सर्दी में, सब में राहत मिलेगी और बहुत सारे दर्द जो शरीर में होते होंगे ना, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अंदरूनी दर्द थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, तो इस तरह अगर आप तुलसी लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये दर्द आपका छोटा मोटा ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहो तो आजमा सकते हो। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है। प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आइए सुनेंगे बहुत ही सुंदर एक गीत और उसके बाद हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

कुछ ना आता नजर, सुखा सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी

की पर चले और बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्मों

बड़ उठी प्यारी का हर कदम और मिटे गिर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले ताकि

0: पर चले और बैदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम।
1: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
2: हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। हेलो।
3: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहे हैं।
2: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
3: आज बहन जी प्रश्न कौन सा है, मेरे पास रेडियो है नहीं अभी।
2: हाँ जी, आज का प्रश्न है प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए।
3: अच्छा, तो ये पृथ्वी
2: जी,
3: जी और जल, अग्नि और ये हवा वायु।
2: अच्छा ठीक है, तो आभार आपका फिरोज भाई।
3: आप अभी सभी रेडियो मधुबन परिवार को सलाम
2: जी, आपको भी। चलिए आप सुनते रहिए आशियाना, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है
3: जी, जी जी जी।
2: तो आप सभी आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज जैसा कि मैंने आपको परिचय में कहा था कि आइसक्रीम सिखाएंगे, परंतु कौन सी वाली? जी हाँ, ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम। ठीक है, सादी सिंपल आइसक्रीम बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी पसंद करते हैं। तो ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम के लिए आप पेन और डायरी जरूर ले लीजिएगा, और सामग्री में लिखवा रही हूँ वो लिखिएगा। आप लीजिएगा 1 लीटर दूध, ठीक है, फिर आपको लेना है 2 ब्रेड की स्लाइस, फिर आप लीजिए 250 ग्राम चीनी, छोटी इलायची ले लीजिएगा 4, 10 ग्राम आप खरबूजे के बीज लीजिएगा, 10 ग्राम ही आपको चिरौंजी लेनी है, और थोड़े काजू, बादाम, पिस्ता आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, थोड़े कटे हुए। ठीक है, तो फिर से मैं दोहरा रही हूँ सामग्री, आप एक नज़र डालिएगा अपनी डायरी में, कहीं छूट गया हो तो लिख लीजिएगा। 1 लीटर दूध, फिर आप लीजिएगा ब्रेड की स्लाइस 2, 250 ग्राम आपको लेनी है चीनी, और 4 ले लीजिएगा छोटी इलायची, खरबूजे के बीज ले सकते हैं आप 10 ग्राम और चिरौंजी भी 10 ग्राम, और काजू, बादाम और पिस्ता ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा। ठीक है, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि दूध को आप गर्म करिए, गर्म करके आप उसको तो गर्म करते रहिए, बीच बीच में हिलाते रहिए, चिपके नहीं, नीचे चिपकेगा लगेगा तो आप समझ सकते हो कि उससे स्मेल आएगी, इसलिए आप हिलाते रहिए और दूध गर्म करिए। फिर जो ब्रेड की स्लाइस ली है इसका आप चूरा कर दीजिए, और लगातार हिलाते हुए दूध को आप थोड़ा गाढ़ा होने दीजिए। ठीक है, और पकाते रहिए, और इसमें ही ये जो चूरा है ये भी डाल दीजिए दूध में। ठीक है, और हिलाते रहिए, दूध गाढ़ा हो जाए तो फिर आप चीनी मिलाइए, फिर 5-10 मिनट और इसको पकाना है, फिर आप गैस बंद कर दीजिए या फिर गैस से नीचे उतार दीजिए, फिर पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा और कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स करके आप किसी भी बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, और जब ये जम जाए कम से कम 8-10 घंटे लगेंगे, 8-10 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हो कि आइसक्रीम आपकी जम चुकी है, फिर जब चाहे आप खा सकते हो। तो इस तरह ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम बनाई जाती है। फिर से विधि दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह सुनकर के बनाइएगा कि दूध को आप गर्म करिए, हिलाते रहिए और गर्म करते रहिए, फिर जो हमने ब्रेड की स्लाइस ली है उसका चूरा कर दीजिए, और इस चूरे को भी आप दूध में डालिए और अच्छी तरह हिलाइए, दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो शक्कर डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर से हिलाइए, उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए, और गैस बंद करने के बाद आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाल दीजिएगा, और अच्छी तरह हिलाकर जब ये ठंडा हो जाए तो आप आइसक्रीम के बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, 8-10 घंटे आपको फ्रीजर में रखना है। उसके बाद आप देखिएगा आपकी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम तैयार है। तो बस आइसक्रीम आपने सीखी है, और भी मैं आपको अन्य प्रकार के आइसक्रीम सिखाने वाली हूँ, लेकिन कौन सी वो आपकी सुनने के बाद ही जान पाएंगे। तो आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151514 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब सुनेंगे गीत, उसके बाद हम पुनः आपसे मिलेंगे, आशाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम। आइए अब आपको कोकोनट वाली आइसक्रीम सिखा देते हैं। ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जब भी चाहो बना सकते हो आइसक्रीम कुल्फी और घर पर ही बना करके इसका आनंद ले सकते हो। पेन और डायरी तो तैयार है ना, तो लिखिएगा कोकोनट आइसक्रीम के लिए आप लीजिएगा वनीला आइसक्रीम 4 कप, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कप, सादी क्रीम लेनी है 1/2 कप और कैस्टर शुगर लेना है 1/2 कप। बस इसमें सामग्री ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, 4 कप ले लीजिएगा वनीला आइसक्रीम, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 4 कप लेना है वनीला आइसक्रीम, 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लेना है, सादी क्रीम भी आप 1 कप ले लीजिएगा या फिर थोड़ी कम होगी तो भी चलेगा, और कैस्टर शुगर लेना है आपको 1/2 कप। अब देखिए इसमें आपको मैं वनीला आइसक्रीम रेडी मतलब दिलवा रही हूँ आपको, लेकिन आप चाहो तो जैसे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम आपको सिखाई है ना, तो बस आप उसमें ड्राई फ्रूट्स मत डालिएगा तो सादी आइसक्रीम हो जाएगी। तो इस तरह अगर आप पूरी ही तरह से बनाना चाहते हैं आइसक्रीम तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कोकोनट आइसक्रीम के लिए फिर इसमें आपको खाली नारियल ऐड करना है, और वो वाली आइसक्रीम जिसमें ड्राई फ्रूट लिया है, वैसे ड्राई फ्रूट हर एक में आप डाल सकते हो, मात्रा को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, और नहीं भी डालोगे तो चलेगा, इस आइसक्रीम में लिया नहीं है वैसे ड्राई फ्रूट। तो आप अब क्या करेंगे, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, फिर क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके आप फेंट लीजिए। ठीक है, और नारियल के पेस्ट को इसमें मिला दीजिए। वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिला देना है, फिर इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकाल करके कांटे की मदद से फेंटिए, फिर से फेंटना है और वापस कंटेनर में भर करके ढक्कन लगा करके फ्रीजर में जमने के लिए रख दीजिए। तो बस 8-10 घंटे आपको फिर से रखना है फ्रीजर में, और उसके बाद आप निकालिए, जब चाहो तब आप खा सकते हो। ये बन गई हमारे नारियल वाली आइसक्रीम। थोड़ा सा स्वाद में चेंज आ गया है, लेकिन बहुत सारे फ्लेवर की बनती है आइसक्रीम, जिसमें थोड़े थोड़े से चीज़ें हम अलग तरीके से ऐड करते जाते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा चेंज होता जाता है, और हर कोई चाहता है कि टेस्ट चेंज होता रहे, चाहे कुल्फी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे भोजन हो, टेस्ट सभी चाहते हैं कि हमेशा थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का मिलता रहे, है ना। तो बहुत ही सरल तरीका है इस आइसक्रीम का भी, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके अच्छी तरह फेंटिएगा, और इसमें फिर फेंटने के बाद नारियल की पेस्ट को भी मिला दीजिएगा। अब आप वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिक्स करिए और इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में आप भर के रख दीजिए, किसी भी आप बर्तन में जो आइसक्रीम जमाने का है उसमें भर के रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकालिए और निकाल करके इसको फिर से फेंटिए, फेंट करके फिर से इस कंटेनर में इस पात्र में भरना है और ढक्कन लगा करके अच्छी तरह आप फ्रीजर में रख दीजिए। 8-10 घंटा इसको जमने दीजिए, उसके बाद बस आप जब चाहे आइसक्रीम का आनंद ले सकते हो। तो चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी उषा बहन जी।
2: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: बहुत ही अच्छा हूँ, और सभी मित्रों की कृपा है, बाबा की कृपा है और आपकी दुआ है, और कार्यक्रम भी बहुत सुंदर चल रहा है, और अभी अभी जो ऑन किया तो कार्यक्रम चल रहा
2: जी,
3: तो सोचा फोन कर लूं और बात कर लूं और जवाब क्या है वो प्रश्न भी।
2: अच्छा, प्रश्न नहीं सुना आपने?
3: जी मैं तो अभी ऑन किया था।
2: जी जी, तो आज का प्रश्न है प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइएगा।
3: जी जी जी बहन, प्रकृति अपने में जो समेत के 5 तत्व रखे है
2: जी,
3: तो उसका नाम मैं बताता हूँ बहना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब प्रकृति के नियम है। हम ये सब सृष्टि के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: ठीक है दयाराम जी, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। ठीक है
3: जी बहना
2: जी, आभार आपका जी, नमस्कार। तो देखिए दोनों ही प्रकार के आइसक्रीम तैयार है, चाहे हम आइसक्रीम बनाएं, कुल्फी बनाएं, चिवड़ा बनाएं या भोजन बनाएं, भोग तो लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप भोग लगाइएगा, परमात्मा की याद में भोग लगाइएगा, और कभी कभी क्या है प्रकृति को भी धन्यवाद दे दीजिएगा, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है और प्रकृति के द्वारा ही हम वस्तुओं को, चीज़ों को बनाते हैं। तो कभी क्या है, जो भी बना रहे हैं हम, चाहे भोजन हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कुल्फी हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, साथ ही साथ आप प्रकृति को धन्यवाद भी देते जाइएगा कि प्रकृति हमारा कितना साथ निभाती है। ये प्रकृति नहीं होती तो हमारा क्या होता। इसलिए है प्रकृति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा साथ हमारा निभाती हो। तो इस तरह कभी प्रकृति के 5 तत्व में से 1 तत्व को भी आप धन्यवाद दे सकते हो, कभी 5 को ही धन्यवाद दीजिए, और प्रभु की याद में आप भोग लगा करके आइसक्रीम को स्वीकार कीजिए। ठीक है, आइए फिर से आज का प्रश्न दोहरा रही हूँ कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15, और अब एक गीत सुनने के बाद पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। आग लगती है तो ये नहीं पूछते कैसे लगी, सिर्फ आग बुझाने में लग जाते हैं। बात छोटी हो या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कारण नहीं ढूंढना, निवारण ढूंढना है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, अब आप इसको स्पष्ट करने में मदद करेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम क्या है। तो दोनों में ही प्रश्न का भी आप जवाब दे सकते हो, और खुशनुमा जीवन में भी आप जुड़ सकते हो। नंबर है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आप खुशनुमा जीवन की बातें भी कर सकते हो कि कैसे आग लगती है तो पूछना नहीं है कैसे लगी। उस समय पूछते कैसे लगी, कैसे लगी, कैसे हम फटफट उसको पानी ला करके बुझाने की कोशिश करते हैं। तो बस ठीक इसी तरह बातें छोटी हो या बड़ी हो, समस्या छोटी हो या बड़ी हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं करना है, समस्या का समाधान करना है। क्या कहेंगे आप, हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा रेडियो मधुबन से और अपने विचार को जरूर रखिएगा। तो बहुत ही सुंदर विषय है खुशनुमा जीवन का कि जैसे आग लगती है, ये आपको बता चुकी हूँ कि मैं आग लगती है तो हम इंतजार नहीं करते, ठीक इसी तरह किसी के भी जीवन में समस्या आती है तो उसका क्या क्यों में मत घेरिए। हेलो, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
4: बस बिल्कुल अच्छे हैं, और बहुत अच्छा विषय भी दिया है दीदी। आजकल जो आपने बात बताई ऐसा ही हो रहा है
2: जी।
4: आज कोई भी बात है तो बात का बदंतर कर देते हैं और बात को छोटी करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज देखो कोई भी बात हो तो जैसे आपने बताया कि आग लगती है तो कहीं ना कहीं कितनी ही बातें हो सकती है, ऐसे करो बोले करता नहीं, करता नहीं, बात ही करता है
2: बिल्कुल।
4: और सब सुचन देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन खुद उसको खुद अच्छी करने की कोशिश नहीं करते
2: जी।
4: तो आज कई सारी बिजली बातें ऐसी है कि हमारे भी जो देखो आज परिवार में कोई बात हो जाती है तो बहुत बात बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है
2: जी,
4: लेकिन शॉर्टकट में बात पूरी नहीं होती है
2: जी।
4: कितने ही सवाल उठते हैं, शायद देखो आज मैं बताऊँ तो एक सैंपल बताऊँ तो ठीक है, हमारे घर में कोई भी झगड़ा हो गया शायद, ऐसा एक नमूना मैं देता हूँ
2: जी।
4: और झगड़े में बात झगड़े की और होती है और बात कहाँ कहाँ से चली जाती है,
2: पाया ही चेंज हो जाता है
4: शायद, अच्छा विषय चेंज हो जाता है
2: जी।
4: तो आज ऐसा है तो इसलिए आज ये बात बहुत बड़ी हो जाती है, शायद पहले कुछ साल भर में कोई आदमी कुछ हुआ तो ये बात भी आ जाती है
2: जी।
4: और बात का वचन का करते हैं, लेकिन बात छोटी करने की कोशिश नहीं करते कि चलो भाई ये बात भी तो ये बात बस ये कर दो पूरा हो जाए, ऐसी बात नहीं आती
2: जी।
4: इसलिए तो आज देखो कई सारे झगड़े हो रहे हैं, कई सारे रिश्ते में दरार हो रही है
2: जी।
4: तो आज शादियाँ होती है किसी की, तो देखो कई परिवार ऐसे है कि आगे की बात लेके बैठ जाता है और हमको ऐसा हुआ था, आपने ऐसा किया था, ऐसा किया था, इसलिए आज रिश्ते टूट रहे हैं। इसका कारण ये है कि बात छोटी हो तो छोटी ही रहने, तो बड़ी नहीं करना, बस बड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं सब रिश्ता टूट जाएगा।
2: बिल्कुल, बहुत सुंदर।
4: तो यही कहूंगा आपकी दीदी से, बस कोई भी बात हो तो शॉर्ट में इसको पूरी कर दो तो सही है।
2: जी जी जी,
4: परिणाम तो अच्छा नहीं आता है।
2: जी जी, आभार आपका, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, बहुत ही अच्छी बात बताई है सुरेश भाई ने कि देखिए सभी फैलाने की कोशिश करते लेकिन समेटते कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? हमारे और भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
5: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज।
2: हाँ जी नमस्कार, नमस्कार फिरोज भाई।
5: विषय बहुत बढ़िया है
2: जी, थैंक यू।
5: के पहले तो एक शेर बोल देता हूँ कि दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, और जरा सा मील का झोंका आया तो कयामत तक सुला दूंगी।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर।
5: अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक में, और हमारे जैसे ड्राइवरों की जिंदगी स्टेयरिंग और ब्रेक में।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
5: दूसरा क्या है, दूसरा क्या, दो गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ
2: जी।
5: तो सबसे पहले एक्सीडेंट के अंदर कितने अंदर बैठे हैं, किसको क्या इजा हुई है, क्या हुआ है, उससे सबसे पहले तो इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है
2: जी।
5: और फिर बाद में ये जो गाड़ी बीच में रोड के बीच में है तो उसको साइड में करवाना है
2: जी।
5: और
2: बिल्कुल
5: इसके, और ये कई लोग तो क्या वो देखेंगे, वो भले मरता तो मरने दो या तो कुछ भी होने दो
2: जी,
5: वो
2: जी,
5: पहले
2: जी।
5: तो सेल्फी लेंगे और टेलीफोन लगाए और फिर इसका वो पूरी जगह पे उसको अनाउंस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने,
5: हाँ ये बात है
2: जी, बहुत अच्छी बात बताई फिरोज भाई, बहुत बहुत आभार आपका। स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में काफी कुछ आपने समझा दिया कि कैसे लोग जब एक्सीडेंट होते तो सेल्फी लेना शुरू कर देते, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो पेशेंट पड़ा हुआ है उसकी मदद नहीं करते। और भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं रेडियो मधुबन से। हेलो,
6: हेलो नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से बोल रहा हूँ दीदी।
2: हाँ जी सुरेश भाई नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
6: बस अच्छे है, काम कर रहे, तो अभी भी 58 पर मैंने रेडियो शुरू किया तो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, चलो मैं भी कॉल करके बात करता हूँ।
2: जी जी स्वागत आपका। तो आज के प्रश्न भी मैं दोहरा रही हूँ, हाँ। प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइएगा।
6: हाँ वो तो जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी।
2: अच्छा ठीक है
6: जी। और दीदी हमारे मित्र भी जैसा उनका चरित्र है वैसी बात कर रहे हैं, तो हम भी बस ऐसे ही बात करेंगे, कहीं भी कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है ना तो हमें बुलाते हैं और हम समाधान करते हैं। तो जैसे जो आपने बात की ना, इस पर ही मैं बात कर रहा हूँ। तो घर में दो पति पत्नी को झगड़ा हुआ, और पत्नी किस तरह वजह से झगड़ा कर रही थी कि पति का जो किसी गैर औरत के साथ ये ऐसा चरित्र खराब है, तो ऐसा करके झगड़ा कर रहे थे। और लोग जो कुछ अच्छे लोग वो समझाते कि चलो भाई ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा आदमी है, और ऐसे भी लोग है जो चढ़ावा देते हैं, हमारे गुजराती में बोलते हैं, तो कह के अरे तुम तो ये है। फिर आदमी को, उस इंसान को भी पत्नी के बारे में तुम्हारी वाइफ इतनी ये है खराब है
2: जी,
6: तो
2: जी।
6: आग फैलाते हैं मतलब, और कुछ ऐसे भी है तो आग बुझाते हैं
2: जी।
6: तो
2: जी,
6: फिर
2: जी।
6: जैसे भी जैसे ही हम लोगों को बुलाया तो पहले तो दोनों की बात सुनी, चलो के पति तो निर्दोष साबित होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और पत्नी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी
2: जी।
6: तो अब करे क्या, तो बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ रहे। तो फिर आखिर में एक बात कही कि चलो अब जो भी हुआ, चलो तुम्हारे पति ने ये किया, चलो कर दिया, हम भी मानते हैं और आप सही है, लेकिन अब से नहीं करेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, और आप भी अगर पति का चरित्र जो भी खराब हो ना तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे, ये वादा करो, कसम खाओ, मतलब ऐसा कुछ समझाया। अब तक लगभग 3 साल हुए हैं ना उनके घर में झगड़ा या ना कोई ऐसी बात हो रही है, तो ये बात है आग बुझाने की।
2: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ऐसे सॉल्यूशन मिले तो ही सही मायने में कुछ लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है और किसी के जीवन में खुशियां आई है।
6: जी जी, सही बात है दीदी
2: जी। बहुत सुंदर आपने बातें बताई है सुरेश भाई, और बहुत अच्छी आपने मदद की है, बहुत बहुत आभार आपका।
6: थैंक यू
2: जी। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह पड़ोसी में झगड़ा हुआ और इन्होंने जा करके झगड़े को सुलझाया, और आज 3 साल होने को आए लेकिन उनके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कारण सारा आपने बताया है। तो इस तरह मदद करना अच्छी बात है, लेकिन वो कहते ना आग में घी का काम करना बहुत बुरा है, इसलिए आग को फैलाना नहीं है, आग को बुझाना है। ऐसे ही समस्याओं को भी बढ़ाना नहीं है, समस्या आ गई है तो उसको सुलझाना है। ठीक है, और भी आपसे बातचीत करेंगे, आप तैयार रहिएगा। एक गीत सुनने के बाद पुनः इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए गीत सुन लेते हैं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।
7: अरे थारी कंचन सी का यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है और कारण नहीं ढूंढना, निवारण को ढूंढना है। क्या, क्यों, कैसे, इन सभी में जाएंगे तो परिस्थितियां बढ़ेगी और बड़ी होगी, घटेगी नहीं, ठीक है ना। जैसे आग लगती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम उसका निवारण ढूंढते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, पानी वाले को बुलाते हैं और पानी डलवाते हैं। हम स्वयं भी कोशिश करते हैं कि मिट्टी डाले, पानी डाले, कैसे भी करके आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें आती है। एक बात आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे सुरेश भाई ने भी बताया था कि छोटी छोटी बातों से भी कभी कभी इतनी बड़ी बातें फैल जाती है कि जो मेन बात होती है वो तो कहीं की कहीं रह जाती है और पूरा ही विषय चेंज हो जाता है। ऐसा ही होता है घर परिवार में, आजकल ऐसा ही हो रहा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और घर टूटते जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, एक परिवार में बहुत दूध गर्म कर रही थी, दूध उबल गया, आधा दूध बाहर निकल गया। उसको पता चला अरे ये दूध उबल रहा है, तो तुरंत ही उसने गैस बंद किया, लेकिन तब तक आधा दूध बाहर बह चुका था। इधर सास बोली कि इसका वैसे काम में ध्यान कहाँ है, ये कहाँ सही काम करती है, जब भी करती है ऐसा ही करती है, घर में नुकसान ही करती है। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे जरूर ये टीवी देख रही होगी, टीवी में इसका ध्यान होगा इसलिए दूध उबल गया। तीसरे व्यक्ति बोला कि अरे ये तो वैसे ही विचारों में खोई रहती है, कहाँ ये घर में रहती है, रहती यहाँ पर है हमारे सामने, लेकिन विचार कहीं के कहीं चले जाते हैं, इसके विचारों में खोई हुई होगी ना, इसलिए दूध उबल गया। और किसी ने कहा कि वैसे ही ये मन से काम का करती है, ये तो ऊपरी मन से करती है। मतलब कितनी सारी बातें सुनने को मिली, जबकि कारण कुछ था ही नहीं, एक ही कारण था कि भाई दूध उबल गया। अब उबल गया सो उबल गया ना, समेटने वाला होता तो कह सकता था कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, हो जाता है तो वो जरूर ध्यान रखती। लेकिन जब इतनी सारी बातें सुना दी तो आप ही सोचिएगा कि कौन सुनेगा इतनी सारी बातें, वो भी तो शुरू हो गई, फिर तूतू में शुरू हो गई। अब बात जो थी दूध उबलने की वो तो रह गई एक तरफ, और दूसरी दूसरी बातें, अरे इसने पहले ऐसा किया था, अरे वो चार दिन पहले इसने मेरे को ऐसा सुनाया था, अरे आठ दिन पहले तो इसने ऐसा ही किया। अब आप सोचिए बात कितनी सी थी, दूध उबल गया। लेकिन इतनी तूतू मैं हुई, इतनी तूतू मैं हुई कि लोग इकट्ठे हो गए मोहल्ले में, और मेन बात तो दब गई और दूसरी दूसरी बातें सामने आई, वो उनकी उछाले। क्या फायदा मिला? घर परिवार ऐसे नहीं चलता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। बहुत सारी बातों को समानी होती है, बहुत सारी बातों को सहन करना होता है, बहुत सारी बातों को लेट गो करना पड़ता है, तभी घर परिवार टिकता है। अगर हम फट फट कुछ भी बोल लेते हैं तो वो घर नहीं टिकेगा, क्योंकि सहन शक्ति सभी में खत्म होती जा रही है। अब बहू को आप चार सुनाओगे तो एक तो वो जरूर सुनाएगी, चार सुनाया उसका हमें दुख नहीं, लेकिन एक उसने जवाब दे दिया वो हमें दुख बैठ गया, फिर हमने चार सुनाई, आठ सुनाई, फिर इधर उधर बात की, फिर उसने भी हमारी जो रही सही इज्जत थी वो भी उतार दी, फलाने दिन ऐसे किया, ढिकड़े दिन ऐसे किया। अब क्या फायदा मिला? भाई दूध उबल गया कोई बात नहीं, दूसरी बार ध्यान रखना, हो जाता है, हमसे भी कभी उबला है, तुमसे भी गलती हो गई। अगर ये कह करके हम उस बात को शांत कर दे तो वो बात बढ़ेगी नहीं और खत्म हो जाएगी। अब एक तो दूध उबला उसका नुकसान हुआ, ऊपर से झगड़ा हुआ तो सभी का खून जला, क्या फायदा हुआ, और लोगों के सामने तमाशा हुआ, लोग इकट्ठे हुए और हंस हंस के गए अरे देखो देखो छोटी छोटी बातों में इनके झगड़ा होता है। फिर कभी बड़ी बात पर भी झगड़ा होता है ना तो लोग हंसेंगे कि अरे इनके घर में चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं ये लोग, तो हमारी इमेज तो वहीं पर खत्म हो गई। वो कहते हैं ना प्यारे श्रोता बंधु कि इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन इज्जत का कचरा होने में एक सेकंड लगता है। इसलिए घर परिवार में बहुत ही सोच समझ करके रहिए, बहुत ही आप अगर दूसरों को कुछ सुना रहे हो तो बहुत ही सोच समझ करके बोलिएगा कि मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी है कि उसका पलट कर मुझे जवाब मिले। कुछ हमारे सामने हो रही होती है बातें, उनको समाना सीखिए। परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है, लेकिन परिस्थितियों को समेटने की ताकत हमारे में होनी चाहिए।
तभी वो परिस्थितियाँ बड़ी नहीं, वो छोटी दिखाई देगी और धीरे धीरे उस परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए विस्तार में नहीं जाना है, सार में रहना है, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम आपने सुना है, बहुत ही सुंदर विचार आपके समक्ष रखा है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे थे, तो रेसिपी भी आपको आइसक्रीम बनाना सिखाई है, दोनों ही प्रकार की, ड्राई फ्रूट्स वाली और नारियल वाली, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। प्रकृति के 5 तत्व, उनके नाम बताना है, और आप सभी ने सही जवाब दिया है। पहले तो मैं आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां बजवाना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी का पहली बार ऐसा हुआ है कि सही जवाब मिला है। तो अब मैं आपको नाम सुना रही हूँ, प्रकृति के 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल सही है, आप सभी ने सही जवाब दिया है। आज का मीठा मोती आपको सुनाना चाहूंगी, जो बहुत ही सुंदर है, कि जैसे हमारी रचना अगरबत्ती इतना सुगंध फैलाती है, तो हम रचिता जहां हो वहां का वातावरण कितना सुगंधित कर सकते हैं। अब मैं आपको हनुमान जी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खम्मा सा, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रोम रोम में हनुमत के बसे हुए श्री राम, लांग गए सागर को पल में लेके राम का नाम। झूठा बंधन झूठी माया झूठा ये संसार है, सच्चा है एक राम नाम का

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे उषा। आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हम सब की जिंदगी में गहरे असर छोड़ सकता है, जेंडर आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा। ये एक विशेष महिला और पुरुषों के बीच हो रही आपसी असमानता, जिसमें विशेषकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में है, जिसे खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। आज ये विषय क्यों हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए सुनते हैं एक रेडियो नाटक जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास हो रही घटनाओं पर आधारित है।

0: घड़ी घड़ी चार पड़ोसन खड़ी खड़ी बाता बनावे घड़ी घड़ी।
1: अरे देख देख कांता, लक्ष्मी का मिजाज, चार चार बेटियां पर घमंड तो एड़ो करे, जाने बेटिया कोनी बेटाएं।
2: सही कह रही तू, मोट की छोरी ने तो अतरी बिगाड़ रखी कि आखा गांव में फटफटो लेन दौड़ती परे, और छोरे की नैन पेंट शूट पेरे हैं।
3: छोरा की नैन बॉय कट रखे, आदमी का सारा काम छोरी में करावे, पंचायत में जानो वे के राशन पानी लाड़ो वे, दवा खाने जानो वे कि भले छोटी बेनिया के स्कूल को काम वे तो भी।
4: अरे एकदम देखने नाम कड़ाई माँ बाप रो जदी था पड़ी।
5: अरे चुप चुप, वह देख लक्ष्मी आ रही है।
6: अरे कई बात है, आज तुम्हारी सारी सहेलियां एक साथ में।
3: लक्ष्मी आओ मारी सातन आओ, आज तो तू घनी खुश लाग रही है, अनी खुशी को राज।
6: खुशी की तो बात है।

0: आज तो
1: दीपक आपकी सैलरी रहेगी 35,000 और कविता आपकी सैलरी रहेगी 25,000। इज इट ओके?
2: सर ये अंतर क्यों है जब हम दोनों का काम एक ही है, पढ़ाई भी एक है, इंटरव्यू भी एक ही रहा, फिर सैलरी में अंतर क्यों?
1: क्योंकि दीपक लड़का है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अक्सर पुरुष लोग छुट्टियां कम रखते हैं, महिलाएं ज्यादा छुट्टियां रखती हैं। जैसे कुछ दिनों बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह, कभी क्या कभी क्या, लेकिन पुरुष लोग ऐसा नहीं करते हैं इसीलिए।
2: पर सर मैं भी तो उतना ही काम करती हूँ, लॉजिकल टेस्ट में तो मुझे उनसे अधिक मार्क्स मिले हैं। रही बात शादी की, सर क्या गारंटी है कि मेरी शादी इसी साल होगी? अगर होगी भी तो हो सकता है मैं इसी शहर में शादी कर लूं। सर जेंडर आधारित रूढ़िवादिता से आपका ये भेदभाव सही नहीं है सर।
1: कविता तुम सही कह रही हो, मुझे जेंडर के आधार पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेहनत और काबिलियत के अनुसार ही सैलरी देनी चाहिए। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करता हूँ।
2: थैंक यू सर।
3: स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा और आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नौ में, जहां पर हम लिंग आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के बारे में जानने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ नया भी सीखा होगा। दोस्तों, लक्ष्मी जैसे लोग हमारे जीवन के हर मोड़ पर मिलते हैं। अगर थोड़ा और गौर करेंगे तो हो सकता है हमारा घर, परिवार और दफ्तर के आसपास ही होंगे। इन लोगों को हमारी तरफ से एक हौसला की आवश्यकता है, क्योंकि वो कुछ अच्छा और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस विषय को बेहतर समझने के लिए स्वागत करते हैं हमारी एक्सपर्ट का और समझेंगे इनके द्वारा लिंग आधारित और घरेलू हिंसा में अंतर क्या है।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंसा के नो इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नए मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जिस विषय पे बातचीत करने वाले हैं वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा। दोस्तों, हमें मदद करने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सुलेखा जी। आप 1998 से फेमिनिस्ट लीडर के तौर पे महिला समाख्या, इंसाफ एंड एक्शन इंडिया ऐसी संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। वर्तमान में आप कैंपेन कोऑर्डिनेटर हैं बेटी जिंदाबाद कैंपेन का एक्शन इंडिया के संस्था में। तो स्वागत करते हैं सुलेखा जी को। नमस्ते मैम।
5: नमस्ते। लिंग आधारित हिंसा गर्भ में से ही महिलाओं के साथ शुरू हो जाता है। जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो सबसे पहले परिवार और समाज की उम्मीद उसके बेटा होने की चाहत को रखने लगता है और वहीं से हिंसा शुरू हो जाती है। देखा जाए तो गर्भ से ही कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव शुरू हो जाता है, लड़का की चाहत, लड़के की चाहत। उसके बाद जन्म के समय खुशी, फिर परवरिश में देखा जाता है, उसके दूध पिलाने से लेकर के और उसके देखभाल तक की गैप्स को हम देखते हैं। हर पल लड़की और लड़का में भेदभाव होता है, चाहे उसके खान पान को लेकर हो, चाहे उसकी परवरिश को लेकर के हो, चाहे उसके खिलौने को लेकर हो। फिर आगे जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक बढ़ती है तो उसके पढ़ाई लिखाई पर भी, वो कौन सा साइड में पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगी और साइंस पढ़ेगी या कॉमर्स पढ़ेगी, ये परिवार तय करता है। जबकि लड़का लड़की को खुद तय करना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। वही जब वो किशोरावस्था से ऊपर जाती है 16-17 साल से, वहां लड़की के प्रति शादी की चिंता परिवार वालों को सताने लगती है, और जबकि लड़के के प्रति उसके रोजगार को लेकर के। तो इस तरीके से हर जगह जन्म से लेकर के और मरते दम तक जेंडर बेस्ड वायलेंस होता रहता है। एक महिला की जिंदगी बचपन जवानी और बुढ़ापा तीन पापे टिकी है, पिता पति पुत्र। एक इंसान होने के नाते, एक महिला होने के नाते उसे हर जगह एक मर्द के अनुसार चलना पड़ता है, और कितने बच्चे पैदा करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो एक औरत के हाथ में नहीं होता है, उसके शरीर पर खुद का हक नहीं होता है। इस तरीके से एक औरत की जिंदगी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक तीन पापे गुजरती है, और ये बहुत बड़ा वायलेंस है। कहीं ना कहीं एक औरत वहीं पर खत्म हो जाती है एक दूसरे के हाथ में, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, श्रम विभाजन में भी होता है। कृषि में महिलाएं 80% काम करती, महिलाएं किसान कौन है आपके नजर में भी, अगर हम किसान सब कहेंगे तो एक किसान पुरुष ही नजर आएगा। तो काम हर जगह महिलाओं से लिया जाता है और उसका दाम नहीं तय होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर जगह महिला पुरुष को डिवाइड किया गया है, और ऊंचा पद पैसा सम्मान वाली जगह पर पुरुष हावी हैं, और जहां पर उनका काम की वैल्यू का दाम कम से कम, और कहीं तो मान्यता ही नहीं, जैसे महिला किसान मानते ही नहीं महिला किसान। तो ये बहुत बड़ा, खुद के काम की वैल्यू एक महिला ही नहीं समझ पाती क्योंकि समाज ने उसे स्थापित नहीं किया, पर बदलेगा। हम महिलाओं ने उस पर बोलना और समझना, अपने काम को गिनना, अपने काम को महत्व समझना शुरू किया है, परिवर्तन आएगा, एकदम धीरे धीरे आएगा। उसी तरीके से घरेलू हिंसा देखा जाए तो घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है
4: जी।
5: जेंडर भेदभाव, जेंडर आधारित हिंसा गर्भ में शुरू होता है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, और घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है कि तुमने बेटा जन्म नहीं दिया, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल देखने से सुबह खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या नाम है, शादी का, दूसरी शादी का वो देना कि तू तो बेटा दे ही नहीं सकती, घर से निकाल देना, खर्चा ना देना, बच्ची होने पर उसको छोड़ देना, इस तरीके की चीजें। और साथ साथ घरेलू हिंसा कई तरीके का होता है। घरेलू हिंसा घर एक छत के नीचे रहने वाले, चाहे वो पति हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो प्रेमी हो, लिव इन में भी लोग रहते हैं। अगर एक प्रेमी भी घरेलू हिंसा करता है, एक तो मानसिक हिंसा, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां औरत ने लगातार बच्चे हुए, उसकी हालत बहुत खराब हुई, हम लोगों ने उसे कहा कि आप कोई फैमिली प्लानिंग टेक्निक अपनाओ, तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद हो रही। आशा वर्कर ने उसे दिया और उसने अपनाया, उसके पति को कहीं पता चल गया, इतनी बुरी तरीके से पीटा, मतलब 6 महीने हॉस्पिटल में थी। फैमिली प्लानिंग में सारी विधियां सरकार ने औरतों के लिए बनाई है, एक विधि केवल पुरुष के लिए बनाई है, और उसको भी अपनाने के लिए सरकार पुरुषों को तैयार नहीं करा पा रही है, बात करने की हिम्मत नहीं है हेल्थ वर्करों का। एक पुरुष से जाएगा और बोले कि आप अपनी क्या नाम है फैमिली प्लानिंग के लिए ये सुविधा को अपना सकते हैं, इतना जबरदस्त कंट्रोल है सत्ता की।
3: तो सुना दोस्तों हमारी एक्सपर्ट को लिंग आधारित और घरेलू हिंसा पर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का हमारा ये मकसद था कि आप सभी को जागरूक कर सके और इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यदि आप या आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो इस समस्या का शिकार हो रहा है तो कृपया उनकी मदद करने का प्रयास जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम महत्वपूर्ण हो सकता है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हमारा लक्ष्य है समाज में जेंडर समानता की दिशा में कदम बढ़ाना और हर किसी को सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने का अधिकार दिलाना। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर, आप सुनिए ये गीत और मैं आरजे उषा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सपनों पूरों

बडूली।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, शहर में जाते हैं, सभी वर्ग से मिलते हैं, तो आज हमें खुशी आबू राज नामकरण का साथ साथ आज पोलो ग्राउंड से आपको रिकॉर्डिंग प्रोग्राम सुनने को मिलेगा, क्योंकि 4 जून से 24 जून तक जो राजस्थान सरकार के तहत यहाँ का प्रशिक्षण कहे चाहे ट्रेनिंग कहे सभी पार्टिसिपेंट किए हैं, तो इसके बारे में मैं कहूँ तो कम होगा। हमारा यह जो कोच प्रभारी है, जो कप्तान है और भीष्म पितामह जी सभी टीम को लेकर चलते, तो उनको इंट्रोडक्शन लेंगे। पहले अपना परिचय देंगे। मैम, रेडियो मधुबन आपको स्वागत करते हैं, क्योंकि इतना टीम को लेकर आप जो शिक्षा देते हैं बच्चे उसको आगे लिभा कर अपना आत्मसात करते हैं और जीवन में करियर बनाते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज।
1: मैं निशा राजपूत बास्केटबॉल कोच, यहाँ राज्य सरकार की 66वीं आवासीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हम आए हैं। जैसे आवासीय प्रशिक्षण केंद्र, इसमें सभी 6 गेमों में प्रशिक्षण कार्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार की यह योजना काफ़ी टाइम से है और इसमें खिलाड़ियों को आगे निकलने का अवसर प्रदान होता है। इसमें खिलाड़ी बड़े उत्साह से भाग लेते हैं और खेल के बारीकी से सारे स्किल वर्क को इनका डेवलप किया जाता है। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन परिवार की ओर से निशा मैम को इतना सुंदर में। अब निशा मैम, ये बच्चे जो आए कैसे सिलेक्शन होकर आए?
1: सर, ये राज्य स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल की प्रतिभाओं का इनकी चयन सूची बनती है
0: जी।
1: और इन मैरिट इसी आधार पर इनका सिलेक्शन होता है, कौन बच्चा कहाँ तक खेला है, और वरीयता सूची में भी उसी के आधार पर बच्चे वेटिंग ली जाती है इनकी, कि 5-6 वेटिंग ऐसे होती है जिनका कम से कम बच्चे ये नहीं जो खेले हैं उनको भी अवसर मिलता है इसमें खेलने का।
0: मैम, और जाते जाते आप जो टीम को लेकर, तो क्या चैलेंज आता है इस फील्ड में? वैरायटी बच्चे आते हैं भिन्न भिन्न जगह से, राजस्थान का कोने कोने से आए होंगे, कोई जयपुर से आए होंगे, कोई सिरोही से आए होंगे, तो आपको इस सबको कोऑपरेट में, एकता में, यूनिट में रखने में क्या चैलेंज आता है?
1: सर, कहा जाए तो कि सभी बच्चे स्किल वर्क में आगे नहीं होते हैं, कुछ कम डेवलप होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। इसी स्तर पर कुछ बच्चे जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के आते हैं, कोई नेशनल लेवल के आते हैं, इसका कॉम्बिनेशन करना तो बड़ा मुश्किल होता है।
0: जी, जी, जी।
1: तो सबको थोड़ा एक साथ लेके चलते हैं हम, तो स्किल धीरे धीरे आवासीय, जैसे 21 दिन का आवासीय कैंप होता है ये, इसमें सारे बच्चे एक साथ यूनिटी में करते हैं, तो अब ऑटोमेटिकली इनमें स्किल डेवलप होता है, एक दूसरे को देखते हुए या स्किल को अपने डेवलप करते हैं,
0: क्योंकि यूनिटी में, एकता में जो है ना, संगठन में एकता जो गुण है देखने को मिलता है, और सबका संस्कार को लेकर चलना होता है, क्योंकि वैरायटी बच्चे, इनका तो दोस्त नहीं कोई होते नहीं, सभी यहाँ पर आकर दोस्ती बना देते, मित्र बन जाते हैं, ये भी एक क्वालिटी है, संस्कार मिलाना कम बात नहीं है सबका वाला। कोई रात को लाइट लगाएगा तो कोई बोला हम चलाएंगे, कोई बाहर करना, ये सब तो बीच में रहते, तो ये सब टीम का जो लीडर है उनको बहुत फेस करना पड़ता, फिर भी उनका वो करते करते अभ्यास हो जाते हैं, तो खुशी से करते हैं, तो उनको खुशी लगता है। वैरायटी हर साल नया नया बच्चे आते हैं और नया नया प्रशिक्षण लेकर जाते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं। और करियर बनाना होगा तो बास्केटबॉल में 2-3 पॉइंट बताइए, जो जो भी बच्चे सुन रहे हैं हमारा इस कार्यक्रम को लिसनर्स, तो क्या ध्यान देना चाहिए इस माध्यम से, आप क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को?
1: मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने खेल कौशल पर ध्यान दें, हमेशा हार्ड वर्क रखें, स्किल वर्क में पीछे नहीं करें, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जितना स्किल वर्क पे वो कंटिन्यूटी, जैसे एक आगे कोई चैंपियनशिप खेलने के लिए जाना है उनको, तो जहाँ रेगुलर वो 1 घंटा प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ उन्हें 4 या 5 घंटे का अभ्यास करना ज़रूरी होता है, तभी वो आगे प्रतियोगिता में अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं अपना।
0: क्योंकि कंपटीशन का समय है, कंपटीशन आजकल तो बहुत, क्योंकि एक ही पोस्ट के लिए कितने आते हैं जानते हैं, तो खेलकूद में भी कंपटीशन आजकल पूरा, जैसे आप मैडम ने बताया, मैडम भी अपना चैलेंज, क्योंकि नंबर बार होते हैं, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, ऐसे सभी बच्चों को लेकर, कोई नेशनल लेवल पर, कोई स्टेट लेवल पर, और कोई लोकल लेवल पर लेकर चलते हैं, तो ये भी एक चैलेंज, और सबसे गुण धारण करना है, एक एक से गुण लेना है, उनका विशेषता, इनका विशेषता, इनका लेंगे तो हम गुणग्राही बन पाएंगे और अच्छा बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वार्म अप कराने के लिए सभी बच्चों को, तो बच्चे भी अपना भाग लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। खासकर आज पोलो ग्राउंड से बच्चों का आवाज़ को सुनने के पहले वार्म अप कर दें, निशा मैम को धन्यवाद देते हैं, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम। मेरा गांव मेरा अंचल आज पोलो ग्राउंड से आपको बास्केटबॉल का पूरा जानकारी मिलेगा, क्योंकि इसका पहले हम मैम से जो कोच है निशा मैम से जानकारी लिए, खुशी लग रहा है क्योंकि एक बार मौका मिलता है बच्चों को, पहला बार मिल रहा तो उनको मीडिया में आना, पत्रकार में आकर अपना बात को रखना, ये सीखने को मिला प्रशिक्षण है। तो हमारा साथ एक प्रशिक्षण लेने वाले एक स्टूडेंट आए हैं, तो उनका परिचय लेंगे क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के ना, तो सामुदायिक में जो आसपास जो गतिविधि कम्युनिटी में जो हो रही है उसको हम आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक करियर बनाने के लिए फील्ड अभी चांस है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या बनेंगे क्या करेंगे वो चीज हमको रखना चाहिए। तो आपको स्वागत करते, अपना परिचय देंगे।
1: मेरा नाम अदिति ठाकुर है, मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से हूँ।
0: जी जी, और कौन सा क्लास के?
1: मैं ट्वेल्थ क्लास में हूँ।
0: क्या ट्वेल्थ, आफ्टर ट्वेल्थ क्या बनना चाहेंगे?
1: मैं आफ्टर ट्वेल्थ पीटीआई बनना चाहूंगी।
0: क्यों पीटीआई? क्यों?
1: मुझे उसी फील्ड में इंटरेस्ट है इसलिए।
0: वेरी गुड, इसलिए आज पोलो ग्राउंड में जो आए हैं उस लक्ष्य को लेकर, है कि नहीं?
1: जी।
0: तो उसमें क्या क्या हेल्थ के लिए क्या करते हैं आप स्वास्थ्य रखने के लिए?
1: हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं।
0: जी आदित्य, आप इस फील्ड को चुने हैं, बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि सबको ट्रेनर एक बन जाएंगे, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
1: जी,
0: कौन सा फील्ड में ट्रेनिंग ले रहे हैं? जो पोलो ग्राउंड में
1: बास्केटबॉल।
0: बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का परिभाषा, बास्केटबॉल किसको कहते हैं, बेस कितना गेम है, तो बास्केटबॉल में क्या क्या जानकारियां है?
1: बास्केटबॉल एक स्मार्टनेस का गेम है।
0: जी,
1: और इसमें एफर्ट, स्मार्टनेस, हार्डवर्क सभी इंक्लूड
0: होता है। ये चीज मैंने क्वालिफाई करने के लिए ये चीज अति आवश्यकता है।
1: जी जी,
0: इसका प्रेरणा कौन आपको बताया ना, आप खुद से निकले ना कोई बताए बास्केटबॉल में आने के लिए, प्रेरणा कोई दिया होगा ना?
1: जी,
0: आप
1: जी,
0: खुद
1: जी।
0: कि आपका घर में कोई रिलेटिव होगा, कि आपका माता पिता स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होंगे?
1: मेरी मम्मी स्पोर्ट्स में ही है, बाकी मुझे बास्केटबॉल खेलने के लिए प्रेरणा तो मेरे कोच ने दी थी, जो मेरे स्कूल की पीटीआई है उन्होंने।
0: ओके, वेरी गुड। तुम्हारे पीटीआई का नाम क्या? जो
1: उनका नाम महेंद्र गोदार है।
0: आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड में दिए, तो आप
1: जी,
0: उस फील्ड में रेडियो अभी से शुरू करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे, है कि नहीं? तो उसके लिए कितने घंटा मेहनत करते हैं पीटीआई बनने के लिए? अभी से आप स्टार्ट, आफ्टर 12 के बाद अब तो बन जाएंगे।
1: हम सुबह 3 घंटे से 4 घंटे वर्कआउट करते हैं और शाम को भी 3 से 4 घंटे तक वर्कआउट करते हैं।
0: जैसे क्या क्या करते हैं उसमें?
1: उसमें हम नई नई ड्रिल स्किल्स वगैरह सीखते हैं और अपने जो गलतियां हैं, जो हमारी कमियां हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं।
0: कितना कोई आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं?
1: इंस्ट्रक्शन देते
0: हैं, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं, इसके बाद आप भी इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं फ्यूचर में।
1: जी जी जी,
0: और बच्चों को जैसे स्कूल में कॉलेज में आप पीटीआई सर जब होंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे, इसलिए स्वास्थ्य को ठीक रखना जरूरी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मन भी ठीक रहेगा, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य को, धन्यवाद देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और हमारा स्टूडेंट्स वंस मोर करेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद। तो कैसे लगा आदित्य आपको इंटरव्यू देने में?
1: अच्छा लगा।
0: अच्छा लगा, वेरी गुड।

0: चलिए बास्केटबॉल के बारे में हम आज बच्चों से सुन रहे हैं। बच्चे अभी सीख रहे हैं और बास्केटबॉल में उनका जो इंटरेस्ट है और उसका प्रेरणा का स्रोत कौन है और कितना घंटा मेहनत कर रहे हैं जाने थोड़ा बहुत, और जो जो बच्चे इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे हमारा जो कोच अपना बात रखे हैं सभी के लिए। तो और एक स्टूडेंट हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाएंगे। खुशी लग रहा है, बच्चों को एक मंच मिल रहा है, एक स्टेज मिल रहा है जो आवश्यकता था, क्योंकि जब बड़े होकर जाएंगे कोई भी माइक का सामने, पत्रकार का सामने, मीडिया का सामने डर नहीं लगेगा। और झिझक दूर करने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच दिया है। तो हेलो, आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम कोमल है और मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ।
0: जी, नाम कितना सुंदर है ना, श्री गंगानगर। श्री शब्द जहाँ लग गया वो नगर है।
1: जी सर।
0: श्री मतलब श्रेष्ठ, गुड, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्रीमान कहते, तो आपका नगर तो श्रीनगर है कि नहीं?
1: जी सर।
0: तो श्रीनगर में क्या विशेषता, आपका गांव के बारे में थोड़ा बताइए।
1: हमारा जो श्री गंगानगर है वो राजस्थान के सबसे टॉप पे आता है, और मतलब जो गर्मी है अगर वो होती है तो वो भी सबसे ज्यादा होती है, और अगर सर्दी भी होगी तो वो भी सबसे ज्यादा ही होती है।
0: अरे वाह,
1: ये विशेषता तो नहीं कह सकते लेकिन उसकी खूबी है, ये
0: इसलिए तो श्री बोला ना, सबसे श्रेष्ठ, खेल कूद में भी श्रेष्ठ सब में, तो इसलिए श्री कहा गया है ना।
1: जी।
0: सब में श्रेष्ठ के बोला था मैंने, तीर लगाया तो लग गया तीर।
1: जी सर।
0: तो श्री से शुरू होता है, तो श्री गंगानगर साहब है, हमें खुशी है क्योंकि सिरोही जिला स से ही आता है। तो और हमारा श्री गणेश भी हुआ आज इस कार्यक्रम में, और खासकर आपका करियर भाई सभी का आशा रहता है, हमारा करियर बनना कोई फील्ड में इनकम होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का,
1: जी सर,
0: कब तक हम माँ बाप का भरोसा में रहेंगे, हमको खुद करना पड़ेगा कुछ इनकम, चाहे नौकरी हो, सर्विस हो, चाहे खेलकूद में एक चैंपियन।
1: तो सर मेरा लक्ष्य अभी यही है, मैं अभी इसी साल के अंदर नेशनल खेल कर आई हूँ।
0: क्या बात।
1: जी सर। तो मैं, मेरा लक्ष्य अभी यही है, अभी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ।
0: वाह, बहुत अच्छा, ऐसे उमंग उत्साह होना चाहिए। तालियों का सर आपको स्वागत करते हैं। नेशनल लेवल का एक स्टूडेंट हमें मिला तो हमें खुशी है, क्योंकि एक छोटा सा गाँव है, ओरिया ग्राम पंचायत में आता है, और माउंट आबू जो आबू पर्वत आबू राज उसमें आज हम कर रहे हैं, नेशनल खेल चुके हैं। खेल कर आए कभी?
1: यस सर, मैं खेल कर आई हूँ, मैं अभी खेल कर आई हूँ इसी साल में,
0: इसी साल
1: 2026 में।
0: कहाँ पे था
1: ये? छत्तीसगढ़ में था, राजनांदगांव।
0: अच्छा, तो कौन कौन वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, कौन सा स्टेट आए थे?
1: सारे स्टेट आए थे लगभग, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ खुद की होम टीम थी, हमारी राजस्थान की टीम गई थी, हिमाचल, काफी स्टेट्स आए थे।
0: तो क्या सीखने को मिला वहाँ पर नेशनल लेवल पे?
1: मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, वहाँ पे मैं बड़े लेवल पे खेलने गई, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी मिली। एक स्टेट लेवल पर अपने खेलने जाते हैं और एक नेशनल लेवल पर खेलते हैं तो बहुत फर्क होता है उसका, और जो उसकी नेशनल लेवल पर मिलती है वो स्टेट लेवल पर कहीं ना कहीं नहीं मिलती, तो मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला।
0: बहन आप, सिस्टर है, तो कभी चैलेंज आया खेलकूद में, जैसे बाहर जाते हैं स्टेट लेवल पर चाहे नेशनल लेवल पे, तो एक फीमेल को थोड़ा सेफ्टी का इशू होता है, क्योंकि आपका चलते और जो स्टूडेंट है, जो बहन है, जो गर्ल्स है, तो उनको भी एक उमंग शामिल है, मैंने आप कैसे उसको?
1: जी सर, बहुत बार हुआ है, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो भी हमारे साथ हुआ है, एक बार मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन इन चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ता है। अगर हम इन चीजों को लेकर बैठ जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स भी फिर हमें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, तो इन चीजों को इग्नोर करके हमें सिर्फ हमारे लक्ष्य पर ध्यान देना पड़ता है, और ये चीजें धीरे धीरे आगे जाकर खुद ही सॉल्व हो जाती है।
0: अभी जो जैसे आपने नेशनल लेवल पे खेल कर आए हैं, स्टेट लेवल पर, जैसे यहाँ पर आज राजस्थान में रिप्रेजेंट बास्केटबॉल के लिए आप आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फैमिली बैकग्राउंड
1: जी
0: किस तरह है, जो सपोर्टिंग करने में,
1: मेरा जो करने में? मेरा जो फैमिली ग्राउंड है उसमें स्पोर्ट्स में तो कोई नहीं है, लेकिन सपोर्ट के मामले में वो बहुत अच्छा है। मेरी फैमिली मुझे हर जगह सपोर्ट करती है, फिर वो स्टडी हो चाहे स्पोर्ट्स हो, हर जगह वो कहती है बस तू आगे बढ़, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तू कामयाब हो, हम तेरे साथ खड़े हैं। मेरा फैमिली सपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है।
0: वेरी गुड। बिना फैमिली सपोर्ट में कुछ नहीं कर सकते।
1: जी, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है,
0: ट्रस्ट होना चाहिए, मेरा बेटी बा मेरा बेटा कर सकता है,
1: और एक फीमेल के लिए तो बहुत
0: जरूरी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि नारी आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ रहे हैं, नारी बढ़ रहे हैं, और गर्ल्स हमारे आगे बढ़ रहे हैं।

0: जितना भी स्कूल कॉलेज हम जाते हैं
1: नारी में इतना दम है भी वो आगे बढ़ सकती
0: क्योंकि शक्ति है ना, तो उनके पास शक्तियां हैं और भगवान ने उसको दिया ऐसे, जो उनका एक शब्द में जैसे हम तो पुराना में मैंने ओल्ड में सुनते थे है ना, जैसे सीता हो चाहे सभी दुर्गा हो सभी उनके पास शक्ति था खेलकूद में भी। तो बहुत अच्छा लगा और रेडियो मधुबन में आप एक कार्यक्रम को सजाए बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा बताइए, बास्केटबॉल जो भी बच्चे सुन रहे नेशनल लेवल तक जाने में आप जैसे मेहनत की आपका अनुभव बताइए।
1: मैं जब मेरे को खेलते हुए 5 साल हो गया, काफी रीजंस थे जिसकी वजह से मेरा पहले नेशनल नहीं हो पाया था, मैं नेशनल ट्रायल से आउट भी हुई हूँ। तो मैंने उसके बाद में बहुत मेहनत की है, मैंने सुबह वर्कआउट किया है, मैंने शाम को वर्कआउट किया, मैंने दोपहर को भी वर्कआउट किया, मैंने 3 दिन सेशन मेरे लगाए हैं, मैंने 12 बजे जाकर शूटिंग किया दोपहर को, मैंने ना तो धूप देखी है, ना मैंने रात देखी है, ना मैंने दिन देखा है, मैंने बस मेरी मेहनत पे फोकस किया है, ना मुझे इस बात से फर्क पड़ता था कि मैं थकी हुई हूँ या मैं नहीं थकी हुई हूँ, बस मुझे मेरा नेशनल चाहिए था, बस मेरे पास गोल था कि मुझे नेशनल खेलना।
0: अभी नेशनल से आगे भी तो है एक और इंटरनेशनल, तो वो भी लक्ष्य रखना है, तो जरूर खेल कर आइए, हार जीत का बड़ी बात नहीं लेकिन एक दिन कामयाब जरूर होंगे। लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण दिखाई देना चाहिए, जैसे आप एक एक स्टेप जाएंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे, अभी बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और आज इस कार्यक्रम का माध्यम से जो हमारा प्रशासन भी सुन रहे खेल को इतना इम्पोर्टेंस दे जो हमारा भारत खेल में भी आगे बढ़ सकते, और माँ बाप को भी धन्यवाद, परिवार को भी धन्यवाद।
1: और सर मैं कहना चाहूंगी भी जो मैं अभी नेशनल खेल कर आई हूँ और जो मेरा गोल है इंडिया जाना, अगर मेरे कोच ना होते तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता।
0: कोच का
1: महेंद्र गोदारा सर,
0: महेंद्र गोदारा
1: वो हमारे स्कूल के पीटीए ही है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ जी सर, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है, अगर वो ना होते तो मुझे मेरा गोल भी नहीं मिलता और आज मैं राजस्थान भी ना खेल पाती। अगर मेरी फैमिली के बाद किसी ने मेरे को सपोर्ट किया तो मेरे कोच हैं,
0: वो भी एक फैमिली मेंबर जैसे है
1: जी सर।
0: लेकिन कब तक का जो क्लास जब तक है तब तक आप पीटे आपको 12th तक आपको देंगे, इसके बाद फिर आपको ऐसे बनना है खुद कोच बन, हम कोचर जैसे हम ट्रेनिंग देने लायक बन जाए, ये लक्ष्य रखे तो कहीं कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते, खुद कमा सकते
1: जी सर,
0: नौकरी मिले चाहे नहीं मिले लेकिन बहुत स्कोप है आगे जाने के, करियर बनाने में है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो भी स्पोर्ट्समैन है उनका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, हमेशा फिट रहते हैं, हेल्थ स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ बच्चे हमारे साथ पूरा लाइन में खड़े हुए कितना मेहनत करते हैं, हम तो थक जाते हैं लेकिन बच्चे पूरा मेहनत ही है, तो इनका श्रेय तो सबको देते, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक,
1: कैसे लगा? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।

0: चलिए नेक्स्ट वंस मोर और एक स्टूडेंट आए पार्टिसिपेंट हमारा कार्यक्रम को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए। और स्पोर्ट्स खेल मतलब कितना मनोरंजन, खेल खेलते कुछ भी हो जाता तो हम खेल खेलने जाते स्कूल में, खेल का सब्जेक्ट था गेम। लास्ट पीरियड में हमें खेल खेलते थे, कबड्डी हो खो खो हो बहुत सारा खेल खेलते थे, इंडोर और आउटडोर है ना। अभी आउटडोर का हम ले रहे हैं, आउटडोर में जैसे बास्केटबॉल आता है और क्या क्या आता है। आपका नाम पहले बताइए प्लीज।
1: हेलो एवरीवन, मैं लीशा हूँ, मैं अजमेर से हूँ।
0: ओह अजमेर से, वेरी गुड। आज हमारा कार्यक्रम गुलदस्ता बन गया अजमेर जयपुर। चलिए तो कौन सा क्लास में अभी?
1: मैं टेंथ हूँ।
0: टेंथ क्लास, तो अभी भी आपको इतना स्कोप मिल चुका है और तो कितना 5 साल तो है ही और ग्रेजुएशन तक आपको मिलते रहेगा है ना स्टूडेंट जीवन। तो खास कर आपका करियर, करियर तो बनाना पड़ेगा ना भाई, नौकरी करेंगे ना स्पोर्ट्समैन बनेंगे, दोनों कोई भी?
1: यस सर।
0: सर्विस मिलेगा तब भी करेंगे और नहीं तो स्पोर्ट्समैन तो है ही है। कौन सा खेल खेलते हैं आप?
1: मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ।
0: क्यों बास्केटबॉल को क्यों चुना?
1: बास्केटबॉल खेलने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए और फिजिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए और मेंटली भी होना ही चाहिए।
0: बहुत अच्छा बात बताइए, ये चीज आप करते हैं?
1: यस सर।
0: कितना समय मेंटल प्रिपरेशन?
1: यस सर।
0: एक दिनचर्या होना चाहिए है ना?
1: यस सर।
0: एडमिनिस्ट्रेशन, अनुशासन, अनुशासन में रहेंगे तब जो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि सावधान बोलते विश्राम, ये तो इंस्ट्रक्शन हुआ ना।
1: यस
0: सर। सभी में इंस्ट्रक्शन देते, तो आप भी इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं इंस्ट्रक्टर से, जो भी इंस्ट्रक्शन मिला हाँ जी क्या बोलते हैं? हाँ जी, कुछ भी बोले हाँ जी करना, बड़ो जो बोलते हैं उसको हाँ जी करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। बड़ों का बात मानना चाहिए। बड़ों में कौन कौन आते हैं बहन? बड़ों में कौन कौन आते हैं? माता पिता तो है ही, और
1: कोचेस,
0: कोचेस
1: और माता पिता, भाई बहन।
0: आपको अच्छा बात बताते हैं ना? बहुत अच्छा। तो जैसे माता पिता जो बड़ों जो भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपका भलाई के लिए बोलते हैं ना, कोई तो खराब नहीं बोलते, अच्छा के लिए। भले आपको उस समय जैसे आइसक्रीम खाओ बोलेगा, ठंडी का टाइम में आप आइसक्रीम मांगेंगे तो आइसक्रीम तो देंगे नहीं माता पिता, तो मानना पड़ेगा ना मुझे आइसक्रीम ही चाहिए था, ठंडी में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इसलिए वो माँ बाप उसको। तो खास कर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोता मित्रों को इस बास्केटबॉल बारे में?
1: बास्केटबॉल अगर मतलब खेलना है तो उसमें बहुत सी चीजें चाहिए, मतलब उसमें आपको एक पूरा मतलब टाइम देखना होता है, उसमें आपको मतलब खेलना होता है, उसमें मतलब डिसिप्लिन से खेलना होता है और फुल एफर्ट्स लगाने होते हैं। बास्केटबॉल के अलावा आपको अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता है अदर साइड, तो वो दोनों चीजें साथ लेके चलनी होती है।
0: दोनों बहुत अच्छा बात बताए, एक नया पॉइंट, दोनों को बैलेंस रखकर चलना पड़ता है।
1: yes,
0: संतुलन, पढ़ाई भी करना है साथ साथ, पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, पढ़ाई भी करना है और खेलकूद में
1: दोनों चीजें जरूरी।
0: बहुत अच्छा, नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक स्टूडेंट से मिलेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर पोलो ग्राउंड स्थित जो बच्चों का हुनर को उजागर करने के लिए उनको प्रैक्टिस किया जाता है। और आज बास्केटबॉल का बारे में, इसका पहला हम लिए थे वॉलीबॉल हैंडबॉल, लेकिन अभी बास्केटबॉल का हम लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
3: रेडियो मधुबन।

0: बच्चे भी उनको एक नया नया मौका मिला, सब तो प्रशिक्षण लेने के लिए भी इंटरव्यू जो दे रही है भी उनका एक प्रशिक्षण है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या, ये भी एक प्रशिक्षण हो गया, ये भी सीखने का चीज है कि नहीं। इसलिए तो सरकार ने दिया है प्रशिक्षण करने के लिए रेडियो मधुबन को कम्युनिटी रेडियो दिया। ऐसे तीन प्रकार रेडियो होता है, एक ऑल इंडिया रेडियो जानते होंगे, दूसरा कमर्शियल रेडियो जो कि टाउन बिजनेस में पर्पज में, और आपका रेडियो
1: जो हम सुनते हैं
0: कम्युनिटी रेडियो है।
1: हमारे घर पे अभी भी बड़े बुजुर्ग लोग मेरे दादाजी सुनते हैं।
0: देखा प्रश्न में क्या पूछो, पहले से उत्तर पूरा मालूम है। क्या नाम बताइए फिर परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम ममता वर्मा, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ।
0: वेरी गुड, बहुत आवाज तो बुलंद आवाज है, कुछ गीत वगैरह गाते हैं क्या?
1: नहीं,
0: आवाज में बहुत दम है और होना भी चाहिए। अच्छा लगा श्री गंगानगर का जो नाम रोशन करेंगे, इसका पहले भी एक स्टूडेंट से नाम लिया था श्री गंगानगर। श्री गंगानगर नाम जब सुने, श्री मतलब श्रेष्ठ, सभी फील्ड में श्रेष्ठ है, इसलिए आज दो बच्चे भी मिल गए। तो खासकर यहाँ पर जो पोलो ग्राउंड को सिलेक्शन हुआ है, आप आए हैं तो पोलो ग्राउंड जो कि आबूराज, माउंट आबू से आबूराज हुआ।
1: हाँ जी सर।
0: और राजस्थान का सिरमौर है, कश्मीर कहते हैं, तो पोलो ग्राउंड का बारे में बा आबूराज का बारे में जो अनुभव किए इतना दिन, 20 दिन जो रुकने को मिला, तो किसको धन्यवाद देंगे और इसका क्या फायदा लिया आपने?
1: सर सबसे पहले तो बताऊं कि हमारे राजस्थान की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक चीजें हैं वो बहुत ही प्यारी हैं। हमारे इतिहास में भी देखें, राजस्थान बहुत ही रॉयल, और इसके अंदर जो राजा महाराजाओं की जो हवेलियां वगैरह बनी हुई है वो एक लग्जरी से भी बहुत ही प्यारी वाइब देती हैं। यहाँ पे हम आए, मैं पिछली बार भी आ चुकी हूँ यही कैंप लगाने के लिए, ये 66वां केंद्र, ये प्रशिक्षण शिविर है मेरा। इस पोलो ग्राउंड पे मैंने पहले भी अपने कदम रखे थे, अब मैं सेकंड टाइम आई थी। पिछली बार मैं बिना नेशनल खेले हुए आई थी, वेटिंग में थी मैं। इस बार मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बनकर आई।
0: ताली बजा भाई बच्चे।
1: और मुझे इस ग्राउंड से बहुत बहुत ज्यादा प्यार है क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरी सोच ये है कि शायद मैं पिछली बार वेटिंग में आई इसी वजह से मैं नेशनल खेल पाई, क्योंकि मुझे शिविर का काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था, बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो फर्स्ट टाइम उनका बैटरी टेस्ट लिया जाता है, और फिर जब जाते हैं तब बैटरी टेस्ट लिया जाता है, चेक किया जाता है कि इतने दिनों में उन्होंने क्या डेवलप किया खुद में, अपनी कितनी कमियां दूर की, क्या क्या स्किल्स सीखी हैं। सारे कोचेस एक फैमिली की तरह बन जाते हैं, सारे गेम के बच्चे साथ रहेंगे, जो हमारे कोचेस होते हैं वही हमारे माता पिता होते हैं, 21 दिन तक वही हमें संभालते हैं, हमें डांटेंगे भी, हमें प्यार भी करेंगे, हमारे खाने पीने, हमारी तबीयत खराब होगी, हर एक चीज का ध्यान देंगे, छोटी से छोटी चीज का। इस बार भी मैं आई, हमारे कोचेस बहुत प्यार से रखते हैं हमें, हमें हर एक चीज सिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गेम ही नहीं, जिंदगी के अंदर हमें चलना कैसे है वो भी हमें सिखाते हैं। हमारी गलती होती है तो हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, डांट के भी।
0: हम क्या पूछो, आप तो इतना होशियार है सब चीज में और खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हमारा श्रोता मित्र भी सुन रहे हैं, और जो भी बच्चे हम जिन्स आपका जैसे स्टूडेंट जो सुन रहे इस कार्यक्रम को, उनको भी एक उमंग उत्साह मिले। हम रेडियो मधुबन आपको जो मंच दिया, क्योंकि आपका उमंग उत्साह को देखकर सभी बच्चे इस तरह पार्टिसिपेट करें और अपना माता पिता का जो आस है, कोच का जो आशा है, उसको पूर्ण करने में सक्षम रहे, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत।
1: जी सर, मेहनत तो बहुत जरूरी है,
0: क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ये तो सीख रहे, विद्यार्थी मतलब सीखना है। विद्यार्थी जीवन में चार चीज को आपको ध्यान रखना है, एक तो जितना घंटा मेहनत करते, पढ़ाई में कितना घंटा मेहनत करते, पढ़ाई स्कूल में 8 घंटा से 6 घंटा पढ़ाई होता है, स्कूल में कितना घंटा पढ़ाई होता है, 6 घंटा।
1: हाँ जी सर, 6 घंटे में से हालांकि वैसे तो अपने थोड़े बहुत टाइम निकल जाता है खाने वगैरह में,
0: कितना घंटा, 24 घंटे से 6 घंटा आप स्कूल में दे दिए।
1: हाँ जी सर।
0: और कितना घंटा रहा,
1: 24 से 6 घंटे,
0: आपका हाथ में अभी।
1: हाँ जी सर, सर टाइम तो हमारा हमारे हाथ में होता है, हमें उसको कैसे,
0: ये पढ़ाई का साथ और 6 घंटा एक्स्ट्रा विद्यार्थी जीवन, जब तक विद्यार्थी कॉलेज तक, और 6 घंटा आपका पास निकालना पड़ेगा।
1: हाँ जी सर, ये तो है।
0: कैसे निकालेंगे
1: सर? वो तो देखो टाइम से हमें उठना होगा, हमें हमारा ग्राउंड भी मैनेज करना होगा, स्टडी भी मैनेज करनी
0: देना है ना, 6 घंटा निकालना।
1: साथ में ना एक चीज और जरूरी होती है कि हमें हमारी मेंटली पीस के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत नहीं करनी, खुद को इतना भी समझदार नहीं बनाना कि जिंदगी जीना भूल जाए। जिंदगी जीने के लिए इंजॉय करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, क्योंकि जब इंसान सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता रहता है, उसे इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता तो वो मेंटली थक जाता है।
0: इसलिए तो आपको पूरा मतलब सर्वांगीण उन्नति के लिए खेल खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, पढ़ाई कराते हैं, ये भी करना जरूरी, क्योंकि 5 घंटा मेहनत करना जरूरी है, 1 घंटा भी अच्छा से कर पाएंगे ना वो।
1: हाँ जी,
0: अच्छा
1: सर।
0: ये पढ़ना भी 24 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं,
1: हाँ जी,
0: क्योंकि 1 घंटा बस आराम से पढ़ लेंगे ना वो पूरा दिमाग में रहेगा।
1: हाँ जी सर।
0: टाइम पास नहीं करना, क्वालिटी चाहिए।

0: नहीं चाहिए,
1: हाँ जी सर,
0: क्वांटिटी चाहिए नहीं, क्वालिटी चाहिए।
1: क्वालिटी इज मोर बेटर देन।
0: और क्वालिटी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर से आपको जिक्र में क्यों,
1: yes, सर,
0: क्या, मैं कैसे, मैं किसके लिए, खुद yes, को पूछना, खुद
1: हाँ
0: को पूछना, मैं आया क्यों आया, कुछ करके दिखाएंगे, इतना yes, मेहनत की सरकार भी दिया, तो पूछना, पांच प्रश्न पूछना, क्या, क्यों, कब, कैसे,
1: कब
0: आराम से आप पहुंच पाएंगे आपका गोल को, ये परमात्मा कहते हैं। और जो आपने बताया बैलेंस रखना है, इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी, इनर गेम आउटर गेम जैसे होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन और बुद्धि को भी तंदुरुस्त रखना है। मन बुद्धि तंदुरुस्त तब रहेगा जब हम अच्छा कर्म करेंगे, माता पिता का बात सुनेंगे तो अच्छा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे अच्छा टॉपर बन गए और जरूर आप कामयाब होंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए नेक्स्ट अगला कड़ी में इस कार्यक्रम को बास्केटबॉल का आज इंट्रोडक्शन का साथ साथ कोच का परिचय के साथ बच्चों का परिचय मिल रहा है और राजस्थान का कोने कोने से आए हमारा क्या कहेंगे प्रशिक्षण लेने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए और ट्रेनिंग का दौरान बहुत कुछ अनुभव किए। यहाँ का जो आबूराज का जो कि पवित्र जगह है देव भूमि कहते हैं और उससे 40 देश का लोग यहाँ पर आते हैं माउंट आबू को क्योंकि ये देव भूमि है। तो आपको भी चांस मिला तो आप अपना परिचय दीजिए।
1: जी नमस्कार, मेरा नाम सोनाक्षी शेखावत है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ।
0: देखो जयपुर तो जयपुर का विशेषता तो है ही है ना राजा मन है ना। तो आप प्रशिक्षण जो ले हैं तो यहाँ पर क्या क्या सिखाते हैं बा क्या क्या आपको जो 20 दिन रोके हैं तो आपका दिनचर्या और खेल कैसे कैसे रहा वो बताइए।
1: जी खेल के लिए तो हम पे पूरा ही ध्यान दिया जाता है और साथ ही साथ हमें साथ मिलकर रहना सिखाते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है। हाँ, और हमारी हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, हमारी गेम का, हमारे हर चीज का।
0: बास्केटबॉल में आपका जो दोस्त लोग अभी यहाँ तो मित्र बना दिए, कितना बहन है साथ में, टोटल कितना है?
1: 15? ये पूरे 15 जन है।
0: 15 जन, सबका संस्कार अलग अलग, सबका अलग अलग जगह से है
1: जी,
0: और सबका भावना अलग है खेलकूद में, सबका अलग, कोई सब आगे रेस। तो सबसे क्या सीखा आपने, सबसे क्या क्या का गुण सीखा है? क्योंकि संगठन अंदर सबको होता है ना, फिर भी उसको जो आवश्यकता है उसको डिलीट किए, जो आवश्यकता उसको रखे।
1: जी पहले तो हमने हमारे सीनियर से सीखा कि बड़ों से छोटों से कैसे बात करनी चाहिए, हमें हमारे गेम पे कैसे ध्यान देना चाहिए, फालतू चीजों को कैसे दिमाग से निकालनी चाहिए, और हमने काफी चीजें सीखी हमारे सीनियर से जूनियर से।
0: कभी मारपीट
1: नहीं हुआ। सीनियर्स बीच में आ जाते हैं, फ्रेंड्स बीच में आ जाते हैं,
0: कोई भोजन में कुछ किसको कम किसको ज्यादा मिल जाता है, कभी कभी होता है ऐसे डाइट में, जैसे ब्रेकफास्ट हो लंच डिनर में कभी इधर उधर होता
1: तो फिर नहीं देते हम तो ऐसे ऑर्डर वगैरह किसी पे देते नहीं है।
0: अच्छा, जो मिलता है उसमें कुछ राज्य से खाते, लेकिन घर में तो भाई बहुत चमकाते भाई, ये क्यों सब्जी बनाए, करेला का सब्जी क्यों बना दिया, यहाँ पर करेला सब्जी बनाएगा तो चमकाएंगे नहीं, सबको मिलकर खाना ही होता है। एक सबके लिए तो बना है ना, परिवार बन गया। ओके, परिवार का टीम लीडर अपना कप्तान है ये कोच मैम, तो वो भी डांट लगाएंगे नहीं तो है ना, लेकिन सबको रेस्पेक्ट देना और रेस्पेक्ट लेना और रेस्पेक्ट देना, सम्मान देंगे तो सम्मान हमें मिलेगा, जैसे हम देंगे उस तरह हम पाएंगे। तो आप क्या दिए सभी को, अच्छा दिए, गुड विशेष दिए सभी को?
1: जी,
0: तो आप दो दिन के बाद हम निकलेंगे तो सब तो अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे, फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे?
1: फिर शायद ही मिल पाए आगे,
0: शायद ही मिल पाएंगे
1: क्योंकि आगे काफी चीजें रहेंगी, सब अलग अलग हो जाएंगे।
0: फिर भी बुद्धि में तो रखा ना सभी का चित्र, रखा ना, तो जब चाहेंगे बुद्धि में उसको देखना चित्र तो आ जाएगा। मैम का भी चित्र आता है, मम्मी पापा का भी चित्र आता है कि नहीं, तो सभी बच्चे आपका दोस्त बन जाएंगे, तब फिर उस समय का याद करना, तब भी ये भी एक मनोरंजन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज का कार्यक्रम को सभी ने सुंदर रूप में सजाए, जो दिए जो नहीं दिए सभी को धन्यवाद देते हैं, और इसका टीम का लीडर जो कप्तान हमारा मैम कोच को भी निशा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको कोऑपरेशन दिए, और रेडियो मधुबन कार्यक्रम में आप सब सुन पा रहे हैं बच्चों का भिन्न भिन्न आवाज को एक गुलदस्ता बन गया, और हमारा रेडियो कार्यक्रम में इस तरह बच्चों को मंच मिलने के जो आवश्यकता था, जो जरूरत था, आज मिला बच्चों को। सभी बच्चे राजी खुशी है?
2: यस सर।
0: जोर से बोलो
2: यस सर।
0: हाँ जी बोलो, हाँ जी
2: हाँ जी।
0: अभी मौका मिलेगा तो फिर रेडियो मधुबन में हम देंगे इंटरव्यू, है ना
1: जी?
0: तो बोलो सुनते रहिए
2: रेडियो मधुबन,
0: हाँ बनते रहिए रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी यानी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, आज एक बार फिर हाजिर हूं आप सबका जाना पहचाना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब आप सबके कॉल्स मिलते हैं हमको कि ये कार्यक्रम हमेशा चालू रहना चाहिए, ये कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप सब भी अपना अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? एक तो ये कि आप स्वयं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो उसके लिए आपका स्वागत है। और इसके अलावा अगर आप आपके किसी परिचित को सुनना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। बस शर्त केवल और केवल एक है कि जो भी हमारे मेहमान हों वो विवाहित हों और उनकी अपनी एक अच्छी सी प्रेरणादायक कहानी हो। तो चलिए आज भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के, और आज के कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि हमारे जो मेहमान है आज के, देखिए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वयं इसमें अपना योगदान दिया। उन्होंने स्वयं हमें ये कहा कि वे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। मूल रूप से इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम कोशिश करते हैं कि दिव्यांग साथियों का जो संघर्ष है उसको आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, और खासकर विवाह के मामले में कि उनको जीवन साथी उनका मिला, कैसे मिला, कितनी आसानी से मिला, समाज परिवार और लोगों का उसमें किस तरह का योगदान रहा अथवा नहीं रहा, और हमारे मेहमानों ने किस तरह से अपने हमराही को पाया। बस आज भी यही कोशिश करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं श्रीमान कमल किशोर जी और ममता जी का, जो कि आज देश की राजधानी दिल वालों की दिल्ली से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। तो कमल भाई और ममता जी, आपका हार्दिक स्वागत है।
2: जी नमस्कार सभी सुनने वाले श्रोताओं को, मेरा यानी कमल किशोर और मेरी मैडम ममता जी का की ओर से आप सबको नमस्कार।
1: जी ममता जी।
3: जी सर नमस्ते।
1: जी तो श्रोताओं, ममता जी की आवाज कुछ धीरे आ रही है, लेकिन कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मुझे उम्मीद है कि उनकी आवाज आप तक बहुत ही जोश और उत्साह के साथ पहुंचेगी। तो कमल भाई, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में कुछ बताएं।
2: जी सर, जैसा कि आपने अभी बताया श्रोताओं को कि मेरा नाम है कमल किशोर कुमार, मुझे लोग केके के नाम से जानते हैं। केके के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं यानी कि केके जब छोटा था, जब वो छोटे स्कूल में पढ़ता था, तो उसने केके के नाम पे एक छोटी सी कविता बनाई थी, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी के स्टूडेंट है। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि कविता ये बनाई थी कि स्कूल इज माय टेंपल, व्हिच मींस गुरु स्कूल इज माय टेंपल एंड टीचर इज माय गॉड, यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग एज अ टीचर, सो वी डू लाइक वी लाइक टू डू अप्रिशिएट द टीचर्स। तो स्कूल इज माय टेंपल एंड टीचर इज माय गॉड, स्टडिंग इज माय एम एंड केके इज माय नेम, दैट्स ऑल। तो मुझे केके के नाम से भी जाने जाते थे सर, और मैं बेसिकली हूँ झारखंड गिरिडीह जिला का, और बहुत ही बैकवर्ड एरिया गिरिडीह जिला से झारखंड खटपो गांव का हूँ मैं। और मैं जी और मैं फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ। हमारे मेरी श्रीमती ममता जी और मेरी दो बच्चियां हैं। जी
1: कमल भाई, थोड़ा सा अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, कहाँ कहाँ शिक्षा अर्जित की, और आपको जो दिव्यांगता है हमारे सुनने वालों को उसके बारे में भी बताएं।
2: जी दिव्यांगता जो है, जो मैं ब्लाइंड 100% हूँ और मैं बाय बर्थ हूँ जी। और रही बात मेरी शिक्षा दीक्षा की, तो चूंकि जैसा कि साथियों मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं झारखंड जिला का एक उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ आज भी लोग शिक्षित नहीं है, आज भी लोग जॉब में नहीं है। तो उस एरिया से, चूंकि मेरे पापा को मुझे ब्लाइंड स्कूल के बारे में पता नहीं था, और सच तो यह कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ब्लाइंड हूँ। तो गांव में लोग बोलते थे कि तुम अंधरा हो, अंधरा अंधरा मोटो बोटी, जो अंधरा क्या है, मैं तो अंग्रेजी पहले जानता नहीं था भाई। तो चूंकि हमारे पापा थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, हम लोग मोदी बनिए हैं तो पढ़े लिखे थे, तो हम लोगों ने जो है फिर किसी की मदद से पटना ब्लाइंड स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ 1 जुलाई 1992 को। पटना ब्लाइंड स्कूल के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा सुनने वाले श्रोताओं को भी और संदीप सर आपको भी, और जो अगर जी अगर और भी कोई पटना ब्लाइंड स्कूल यानी पटना कदम कुआं ब्लाइंड स्कूल के श्रोता हमें सुन रहे हो तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि पटना ब्लाइंड स्कूल 1922 को खुला था और 2022 को जो है पूरे 100 साल होने जा रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग जी और पटना ब्लाइंड स्कूल 2022 सेंचुरी सेलिब्रेशन जो है बड़े भव्य तरीके से मनाए जा रहे हैं और कई लाख रुपए से भी ज्यादा लागत से मनाए जाने वाले ये प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम का आप लोग भी हिस्सा बने।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी सूचना दी आपने कमल भाई। हम भी जरूर प्रयास करेंगे कि अगर हमें भी इस कार्यक्रम में अवसर मिलता है या मौका मिलता है।
2: एब्सोल्युटली
1: जी जी जी।
2: तो उसके बाद पटना में मेरी एडमिशन हुई, मैं पहली क्लास में पटना ब्लाइंड स्कूल में आया और जो टीचरों ने जो मुझे देखा तो उनको लगा कि मुझे प्रमोट करना चाहिए। फिर मैं कक्षा 1 से 3 में चला गया और इस तरह से जो है मेरे प्रमोटेड होते चले गए और पटना का कुछ माहौल मुझे सूट नहीं किया और मुझे लगा कि आई शुड लीव पटना एंड आई वांटेड टू बी अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश। और सो पटना के चुकी बनारस के कुछ टीचर्स थे जो हमारे पटना में जो टीचर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया था कि कमल किशोर आपको बनारस में होना चाहिए। तो मैं 1992 को दुर्गा कुंड बनारस जो हनुमान प्रसाद पोद्दारानंद विद्यालय।
1: और देखिए कमल भाई, एक विद्यालय जहाँ से आपकी शुरुआत हुई उसका आप शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं और उसके बाद जिस विद्यालय में आप गए हैं संभवतः आप और हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो विद्यालय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और करीब करीब वो बंद हो ही चुका है।
2: निश्चित रूप से सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली यू नो वाराणसी इन इंसिडेंट पीरियड वाराणसी इज वाज कॉल्ड वेडसी एंड नाउडेज आल्सो इन इंग्लिश वी से वेडसी एंड वाराणसी इज द सेंटर ऑफ म्यूजिक कल्चर एंड एजुकेशन। बनारस एक बड़ा ही शिक्षा संस्कृति म्यूजिक इनके जो है सेंटर संगीत शिक्षा और संस्कृति के केंद्र है और बनारस में BHU और बनारस में काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद जैसे 3-3 यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। तो उस एरिया में जब मैं बनारस गया 1999 में नाइन्थ क्लास में एडमिशन लिया था सर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे मुझे इतनी अच्छी इतनी प्रेरणा मिली कि मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे BHU से सब जितने लेडीज जेंट्स गर्ल्स बॉयज सभी लोग हम लोग फ्री सेवा देने आते थे रीडर के रूप में राइटर के रूप में, तो उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। और उसके बाद फिर मैं बनारस में 12th पास करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया MA किया। अनफॉर्चुनेटली MA कम्प्लीट नहीं हो पाया, लास्ट सेमेस्टर का पेपर मैं दे नहीं पाया, मेरी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद फिर मैं मुझे लगा कि मेरे घर में पढ़े लिखे नहीं है तो मैं क्या करूंगा, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, आई वाज इन अ फिक्स। तो फिर हुआ कि नहीं, मैं दिल्ली आ गया भक्ते और दिल्ली में मैं बीमार पड़ गया संस्थाओं में रह के। फिर मेरी बहन रहती है डेरा सच्चा सौदा हरियाणा में, आप लोग जानते होंगे डेरा सच्चा सौदा हरियाणा, संदीप सर आप जानते होंगे
1: बिल्कुल सिरसा
2: उम्मीद राम में
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: सिरसा में
1: जी।
2: तो बचपन से मैं वही रहा हूँ, गर्मी छुट्टियों में मैं वही रहा हूँ, इसलिए मुझे हरियाणवी बोलना पसंद भी है जी। तो उसके बाद मैं 12वीं पास करने के बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आया और वहां से मैंने BBA में जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद BRA से मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग की और फिर मुझे वहीं से रास्ता मिल गया, रास्ते मिलते चले गए, मैं NIBH देहरादून चला गया और वहां से मैंने शॉर्ट हैंड के लिए एडमिशन ली थी पर मैंने उसको अधूरे छोड़कर मैंने BEd में आ गया, स्पेशल BEd करा MEd करा और आज 2013 से तकरीबन आज तक जो है मैं दिल्ली मतलब गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए TGT इंग्लिश के रूप में वर्क कर रहा हूँ।
1: काफी घटनाओं से भरा आपका जो है वो समय रहा है कहीं पे कुछ पूरा किया और कहीं पे कुछ अधूरा छोड़ दिया। खैर
2: बड़ी कहानियां है सर, आप पूछेंगे तो जरूर इनके जवाब भी मिल जाएंगे।
1: नहीं नहीं वो ठीक है, जिंदगी भी इसी का नाम है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ममता जी भी हमारे सुनने वालों को विस्तार से
2: ममता
1: जी।
3: सर मेरी नाम ममता कुमारी है और मेरा घर छपरा जिला बड़ा तेलपा ग्राम में है मेरा घर
1: जी,
3: और इनसे और शादी हो गया। मैं बीए क्लास तक पढ़ी हूँ।
1: अच्छा, आपको कुछ दिखाई देता है ममता जी?
3: लाइट प्रोजेक्शन है।
1: अच्छा, लाइट ओके ओके,
3: हाँ, एक आंख से दिखता है थोड़ा थोड़ा लाइट।
1: आपकी सारी शिक्षा बिहार में ही हुई है?
3: हाँ सर।
1: अच्छा ओके, तो बहुत अच्छी बात है ममता जी। और ये आपको जो आंखों की समस्या है वो कब से है?
3: मैं 5 साल के जब हो गई थी तब हो गया। मेरी मम्मी बताती है कि जब 5 साल की हो गई तब तुम्हारा आँख खराब हो गया।
1: अच्छा ममता जी, कुछ बताएं घर परिवार में कौन कौन है आपके?
3: मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, और मेरे 4 भाई हैं, और भाभी है, और सिस्टर है।
1: अच्छा,
3: हम लोग दो बहन हैं।
1: तो ममता जी, हम जानना चाहेंगे कि कमल भाई से मिलना कैसे हुआ आपका?
3: इनसे मिलना हुआ जैसे मैरिज, जैसे हम लोग पढ़ाई खत्म हो गया, मतलब बीए पढ़ाई खत्म हो गया, उसके बाद जैसे घर का लोग सब लोग शादी का बात चलाते हैं, वैसे मेरी मम्मी पापा स्कूल, मतलब हम 8वीं क्लास तक पढ़े हैं ब्लाइंड स्कूल में
1: जी,
3: वो छपरा जिला में ही है मेरे घर के पास में
1: जी,
3: तो वहीं पर 8वीं क्लास तक पढ़े, उसके बाद मतलब छपरे में ही है वहीं पर कॉलेज, उसके बाद हाई स्कूल में पढ़े, उसके बाद कॉलेज में पढ़े, उसके बाद मतलब मेरे मम्मी पापा मैरिज के बाद चलाने लगे, उसके वो स्कूल का ही सर हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो उन्हीं से बात चलाने लगे लोग, तो इन्हीं मतलब बोले लोग कि एक कोई लड़का हो तो बताएं, तो यही मतलब अखिलेश सर हैं तो वही बताए, तो मतलब हम लोग का फोन नंबर से बात हुआ।
1: अच्छा अच्छा,
3: तो फोन पर ही सारे बात हुआ।
1: तो पहली बार में ही पसंद आ गए थे आपको कमल भाई?
3: हाँ सर, मतलब बात किए, वो जो अंग्रेजी बोलते हैं
1: जी,
3: तो अंग्रेजी बोले, तो उसके बाद हम भी बोले, हमसे भी मतलब जो सारे पूछे कि तुम कितने पढ़ाई की है, क्या कैसे करती है, तुम कैसे काम कर लेती है, तो हम भी बताए, वो भी अपना बताए, तो हम बोले ठीक है, तो हम बोले कि ठीक है तो शादी कर लेंगे, आप ये भी बोले कि ठीक है हम कर लेंगे
1: जी। चलिए अच्छा है, बाद में और आपसे हम कोशिश करेंगे जानने का, लेकिन इस बीच में कमल भाई
2: जी सर,
1: आप जरा बताएं कि कब से आपने विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया था?
2: Absolutely.
1: और किस प्रकार जो है वो ममता जी तक पहुंचे आप?
2: Absolutely. सर, आपको मैं जैसा कि बताया हूँ कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने माँ बाप के 11 भाई बहन है, यानी कि क्रिकेट की पूरी टीम मौजूद है, और ये 11 भाई बहन में हमारी 8 बहनें और हम 3 भाई हैं, तो चूंकि ब्लाइंडनेस जो है वो गाँव में आज भी कष्ट समझा जाता है और कष्ट समझा भी जाता है, और देखा जाए तो परिस्थितियों के हिसाब से ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्ट भी मुझे भी लगता है, क्योंकि तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, आजकल जो जिस तरह से एग्जाम सरकार ले रही है, जिस तरह से पेपर बनाओ तो इसकी कॉपी करो, तो उसको कॉपी वोपी करना तो ईजी है, फिर भी डायरी बनाओ, फिर बच्चों को टेस्ट दो, फिर उसको चेक करो, फिर चेक करके उसके अकॉर्डिंगली नंबर दो, तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप कितने भी सारे ऐप्स डेवलप हो गए हैं, पर आप ऐसी कोई ऐप नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं बनाई गई है आज तक जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड उसको लिख सके ब्लैक बोर्ड पे या फिर कागज पे। इस बात को मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग सहमत होंगे इस बात से जी। तो ये बात, फिर पढ़ाई जहां तक रही बात मुझे ममता सब मैम से मिलने की बात, तो मैं आपको बताऊं कि मैं 2013 से जॉब कर रहा था डिफेंस कॉलोनी में, उसमें गेस्ट टीचरों की जो सैलरी थी वो पर डे के हिसाब से 700 रुपए थी
1: जी,
2: उसमें मेरा सीटेट क्वालिफाइड में नहीं था
1: जी,
2: तो मैंने बीच में अप्लाई करना छोड़ दिया, फिर 2015 में मेरा सीटेट हुआ, उसके बाद मैं दोबारा अप्लाई किया, उसके बाद हो गया, और 2015 में ही जॉब लगने से पहले ही ये अखिलेश सर, जैसा कि मैडम ने आपको बताया कि अखिलेश जी ये दिल्ली सरोजनी नगर में जो एज ए म्यूजिक टीचर है,
1: वो भी ब्लाइंड
2: तो, है। ही इज ऑल्सो ब्लाइंड, तो सर ऐसा हुआ कि

0: उनसे मेरी मुलाकात हुआ करती थी, मदनगिरी में छुट्टियों में हम लोग आते थे
1: जी।
0: तो वो मुझसे बोलते थे कमल किशोर शादी करोगे? ओके। तो मैंने कहा कि शादी करोगे? तो मैंने कहा जरूर जी शादी कराओ सर, जो कहोगे वो कराऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, शादी तो शादी है। फिर किसी तरह से उनसे मतलब पट पट आ गए, उनसे नंबर मैंने ले लिया।
1: अच्छा।
0: हाँ, और नंबर लेने के बाद मैंने पहले उनको सुना वो क्या क्या बोलते हैं।
1: नंबर आपने क्या कह करके लिया, मतलब कि सीधा मतलब बात बात करूंगा या? हाँ,
0: मैंने बोला मैंने नहीं सर देखो, मैंने उनके सामने बात की, पहले मैंने उन्हीं के फोन पे बात की, उन्हीं के फोन पे बात की, मैंने बोला कि जी मेरा नाम है कमल किशोर कुमार और आपके यहाँ एक लड़की है ममता करके, और मैं उसके लिए बात करना चाहता हूँ और मैं खुद बात कर रहा हूँ। तो फिर ममता बोली कि मेरा ही नाम ममता है। हम बोले ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर लेते हैं।
1: तो आपने क्या समझा था उस समय इनको?
0: नहीं, उस समय मैं सोचा कि उनकी सिस्टर होगी या कोई।
1: अच्छा,
0: और
1: अच्छा, अच्छा, जी जी जी, चलिए फिर आगे।
0: तो फिर हुआ कि नहीं, फिर उनका नंबर लिया और फिर हम लोगों ने जो है आपस में बातें, उन्होंने अपनी बातें रखी जो ब्लाइंडनेस की जो कॉन्सेप्ट है आजकल या पहले भी थे, और जो गाँव में जो ब्लाइंड के प्रति जो परिस्थितियां हैं उसके अगेंस्ट में उन्होंने जो कुछ भी बताया वो मेरे से मैच खाता दिखाई दिया। मुझे लगा कि हाँ, एक चीज मैच नहीं खाता है जो सही बात है कि मेरे फादर जो है वो गांव में मतलब एज ए डॉक्टर, सिंपल डॉक्टर है, वो MBBS नहीं है, वो गांव में डॉक्टर रहे हैं, पर इनके जो फादर है वो गांव में हेडमास्टर रिटायर्ड है जी। तो हमने इनसे बातचीत की और हमें लगा कि चलो कोई नहीं, हम लोग जीवन जी लेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि कंप्रोमाइजिंग में क्या क्या कर लेती है, खाना बना लेती है, कपड़ा प्रेस कर लेती है, कपड़े धो लेती है, सारे काम कर लेती है। तो मुझे भी लगा कि यार ये सारे काम ये कर ही रही है, मैं स्कूल में पढ़ाई रहा हूँ, पर जब लगे शादी कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने शादी कर ली और शादी भी करी तो बिल्कुल मतलब ऐसे कि उनके पेरेंट्स का कोई मतलब नहीं था, उनकी समर्थ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी शादी कहीं और हो। और वो मैं भी शादी से पहले एक बार मिला भी था
1: कहीं और, मतलब मैडम से मैंने। कहीं और मतलब कहाँ हो?
0: कहीं और नहीं, हम मतलब उनके घर गए थे शादी से पहले एक बार गए।
1: मतलब वो साइटेड से करवाना चाहते थे क्या?
0: जी, उनके पेरेंट्स चाहते थे हमें देखना, कि ये तो वही बताएंगे कि वो किसे करवाना चाहते थे, चूंकि पर उनको लगता था कि मैं बेरोजगार हूँ और चूंकि उनका जो है भरण पोषण कैसे करूंगा। तो मैंने उनको बताया कि मैं एज ए गेस्ट टीचर जॉब करता हूँ, तो उनको यकीन नहीं हुआ। फिर भी ममता की मर्जी से शादी हो गई और शादी एक मंदिर में हुई। शादी के बाद हम लोग दिल्ली आ गए और ममता पहली बार दिल्ली आई, और इससे पहले वो दिल वालों की दुनिया में नहीं थी। तो फिर हमने दिल्ली लाया, और दिल्ली में जब आने के बाद तो मेरे जो ससुराल वाले हैं वो आज भी कहते थे कि ये चंदा काटता होगा खाता होगा, पर मुझे चंदा काटना आया नहीं आज तक मैंने। तो फिर हुआ कि जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था 2017 में, तो पहली गुड़िया जब हुई तो वो मैके में हुई। तो मैके में जब ये हुई तो मैं पैसे भेजना शुरू कर दिया एक बार, वैसे 10,000 रुपया महीना। जब बच्चा होने लगा तो 40,000 रुपया ऐसे भेजने लग गया। तो गांव उनको लगा कि इसके पास पैसा है नहीं, ये भेज कैसे रहा है इतने इतने पैसे ना। उसके बाद है ना, उसके बाद फिर हुआ कि वो मेरी मिसेज को और बच्चे को छोड़ने आए, वो मेरे छोटे वाले साले हैं, वो आते हैं, वो बात करते हैं हमसे, और एक उनसे बड़े जो साले हैं उनकी मिसेज आई थी छोड़ने, वो लोग भी रहे।
1: कमल जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ।
0: जी जी,
1: मतलब आपने क्या ये तय कर रखा था कि भाई आपको बिना जॉब करती हुई और ब्लाइंड लड़की से ही शादी करनी है?
0: जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आ रही है। जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में गई, जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड कर रहा था
1: जी,
0: उस समय डॉक्टर आर के सर थे, डॉक्टर आर के चौहान थे डॉक्टर साहब, तो वो हमें पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि कमल किशोर, मुझे तो नहीं लगता कि तुम एक देहाती।
1: आर के चौहान, आर एस चौहान,
0: या एब्सोल्युटली आर एस चौहान,
1: आर एस चौहान जी,
0: और हमारे फेवरेट गुरु हैं, अभी भी हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कमल किशोर तुम ब्लाइंड से शादी करोगे या सेटेड से? मैंने कहा मैं ब्लाइंड से नहीं करूंगा शादी। तो फिर ये हुआ कि भाई बीएड करा, एमएड करा, उनमें भी लड़कियां थी, काफी अच्छी अच्छी लड़कियां थी, सब लोगों से हमारी दोस्ती प्यार सब कुछ होता रहा। पर मुझे लगा कि जब सब अलग थलग पड़ गए, जब हम बेरोजगार हो गए, तो मुझे लगा कि यार फिर कोई नौकरी करनी है, शादी करनी है, शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यार, फिर घर कैसे बसेगा, परिवार को क्या होगा। फिर यही बात मेरी मिसेज के मन में भी गूंज रहे थे, तो हमने कहा कि चलो यार फिर पहले शादी करते हैं, लेकिन नौकरी हमारी लग जाएगी क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है, सब कुछ जमा हो चुका है, बस जॉब ज्वाइनिंग की बात हो रही है। तो शादी करा मैंने 28 नवंबर को और 9 दिसंबर को ज्वाइनिंग हो गई।
1: क्या बात है, एक तरह से मतलब सब कुछ कार्रवाई हो ही गई थी जॉब की, फिर भी ममता जी के आने के बाद जो है आपकी नौकरी भी लग गई,
0: ज्वाइनिंग हो गई जी।
1: बहुत बड़ी
0: सर ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद आज तक वो ज्वाइनिंग चल रही है।
1: लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए कि आपने वास्तव में चाहा क्या था, कि कोई भी मिल जाए करनी है, या फिर आप कहीं ना कहीं ये चाहते थे?
0: नहीं सर, कोई भी मिल जाए कर ले वाली बात तो ये नहीं थी, पर हमारे भी कुछ अभिलाषाएं थी कि हम शादी करें, अगर या तो ब्लाइंड, चूंकि मैं ब्लाइंड हूं तो ब्लाइंड से शादी कर लेनी चाहिए भाई दवे, उस समय मुझे इतने अनुभव नहीं थे, लेकिन आज के अनुभव से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को सुने हैं और बहुत सारे लोगों से बातें भी हुई है मेरी, जिसमें कि उन्होंने जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और जो ऑर्थोपेडिक हैं और इनके भी मैंने देखे हैं, इनकी जिंदगी की भी कहानियां मैंने सुनी है, जो विजुअली इम्पेयर्ड साइटेड हैं उनकी भी कहानियां सुनी है, जाना है। पर मैं जो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है मैं उनके बारे में आपको बताऊं कि जो हमारी फीलिंग है वो लगभग सेम होती है, जो हाँ इस चीज को आप माने या ना माने, पर आप करीब से कभी आप देखिएगा सर, आपके काफी लोगों को आप हैंडल करते हैं जिनको करीब से फील करिएगा कि जैसे एक अनुभव के तौर पे ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग सामान्य यूनिवर्सिटी में या सामान्य कॉलेज में या सामान्य स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं और उसमें सामान्य टीचर है, मेल एंड फीमेल सारे हैं, तो आप देखेंगे कि आपसे कितनी लड़कियां बात करती हैं मजाक मजाक में, है ना, और जो तमाम सेटेड लोग हैं उनसे वो लोग एक दूसरे से किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं और कितने करीब पाते हैं वो लोग एक दूसरे को।
1: जी, जी, जी
0: और जी, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने आपको सेग्रीगेशन दिखाई देगा, और यही आप किसी ब्लाइंड प्रोग्राम में जाइए जो स्पेशली ब्लाइंडों के लिए होता है, चाहे उसमें सेटेड लोग ही क्यों ना हो, पर उसमें जो है ब्लाइंड का पार्टिसिपेशन मस्ट होता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि हम लोगों की फीलिंग सेम है और शादी कर लेनी चाहिए, और ये बात सही भी है कि जो ब्लाइंड है वो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, किसी एक दूसरे को कुछ भी दुख पीड़ा दर्द सुख दुख में साथ हो सकते हैं, पर सेटेड में चाहे कहीं भी हो, मैं चाहे वो प्रोग्राम को ले लूं या कुछ भी ले लूं, मैंने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फीलिंग जरूर डिफरेंट देखी है, प्लस जो अदर डिसेबिलिटीज है जो ऑर्थोपेडिक है वो कहीं कहीं तो मैंने उनमें भी इस तरह की चीजें देखी है, और कहीं कहीं सेटेडों में मैंने बहुत अच्छी देखी है।
1: बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को समझाया कमल भाई, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि आपकी फैमिली ने क्या सोचा आपके विवाह के बारे में, या उन्होंने बस बिल्कुल ही छोड़ दिया कि भाई तुम जाने और तुम्हारा काम जाने,
0: तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। बिल्कुल, बात यह है कि जो एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो उनको लगता था कि जो सूरदास होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, तो सूरदास कहा जाता है गाँव में, तो हमारे पापा कहते थे कि सूरदास है, इसको क्या करेंगे, कुछ गाना भजन वगैरह सिखा देंगे, एक तो है गाएगा बजाएगा, तो हमको लगा कि हमें उस समय मुझे पता ही नहीं था कि मैं सूरदास क्यों कहता है, मुझे मेरा नाम कमल किशोर है और मुझे जो लोग सूरदास कहते थे तो मैं उसको भी कहता था हाँ सूरदास जी, तो हाँ सूरदास जी, जी सूरदास जी बताइए आप मुझे सूरदास क्यों कह रहे हैं, तो मैं कहता आप मुझे क्यों कह रहे हैं तो आपके पास आंख नहीं है, मेरे काम आपके पास आंख है, कहाँ कहाँ है आप दिखाइए, तो ये वाली बात होती थी। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि सूरदास जो है वो एक कवि थे और उनके नाम पे जो है ब्लाइंड को जॉन मिल्टन ना करके सूरदास कहते हैं क्योंकि इंडिया है ये, तो फिर मेरे पापा ने सोचा कि ये पढ़ाई लिखाई अपने आप करेंगे और हो सकता है अगर इसकी किस्मत में होगी तो शादी वादी करेगा, और मेरे भाई वाई नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो क्योंकि उनको लगता था कि ये शादी पढ़ लिख जाएगा, नौकरी वोकरी करेगा, तो इसकी जो है हम लोग शादी वादी करेंगे, इनको रखेंगे और इन्हीं के पैसे से हम लोग भी राज करेंगे, तो उनका मन में ये था, तो हमने जी
1: आमतौर से गांव में जो एक सोच होती है वही सब आपके साथ भी हुआ।
0: ये बिल्कुल सेम सेम सेम थॉट, सेम फिलोसॉफी, सेम साइकोलॉजी लागू होता है। और सर ये जो ब्लाइंड के बारे में मैं उन लोगों को भी एक हिदायत दूं जो ब्लाइंड से मैरिज करना चाहते हैं, जो कपल ब्लाइंड में बीवी है उनके लिए भी मैं एक बात बोलूंगा कि आप लोग चाहे कितना भी आप एक किसी ऐसे घर को देखिए, किसी आप ऐसे मित्र को तलाशिए जो जो ब्लैंड हो, जिनकी बीवी सेटेड हो, और उनके यहाँ कभी कभार मौका मिले तो घूमने जाइए, नहीं भी जा पाए तो उनसे बातें करते रहिए, कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन मिलेगी सर। लेकिन अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो अगर जो आपके साथ होना है, जैसे मान लो आज स्कूल में हरासमेंट हो रहा है, तो यार पेपर चेक करना है तो पेपर चेक कैसे करें, हमारे स्कूल में टीचर कोऑपरेटिव नहीं है, फिर कैसे होगा, बच्चों को पकड़ेंगे, बच्चे तो छुट्टी पे हैं, अब क्या होगा। और सेटेड बीवी रहेगी तो उसको लगेगा कि अब ये तो आपकी सरदर्दी है, चाहे वो मदद भी कर देगी। लेकिन एक ब्लाइंड है तो उनको लगता है कि यार जो प्रॉब्लम है जो इनके साथ है वो मेरे साथ भी है, जो कुछ भी हो रहा है वो इनके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कवर कर जाती है बात। और ये जो सेटेड होती है उनके मन में और भी भावनाएं आ जाएगी, यार मैं मुझको जब यही करना था तो ये ब्लाइंड सही क्यों करा, तो फिर ये भी हो सकता है कि मैं कुछ और कर लेती, मैं भी जॉब में होती, तो बहुत तरह की बातें होती है। जी सर,
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमल भाई। तो कुल मिलाकर के मतलब बहुत ज्यादा इसमें आपने परेशान होने की बजाय और इधर उधर मतलब भटकने की बजाय आपको लगा कि जो दिल को पसंद आ जाए बस वहीं पर अपना घर बसा लिया जाए, क्यों?
0: नहीं सर, नहीं, मैं NIBH में जब था तो NIBH में बहुत सारी लड़कियां थी, तो मैंने NIBH में देखा कि हॉस्टल में जो लड़कियां हैं तो उनमें से मैंने बहुतों के बारे में कुछ सोचा भी, और चूंकि सेटेड भी थी, सेटेड में थी, मेरे साथ अनिता नेगी थी और लोग भी थे, तो लेकिन फिर जब हम अपने घर में आ गए, जब इंस्टीट्यूट से अलग हो गए, जब हम इधर उधर रहने लगे, फिर जॉब की तलाश में दिल्ली में आ गए, तो फिर हमें लगा कि हमें एक पार्टनर चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक पार्टनर जो है वो समझ सकता है कि एक व्यक्ति को कैसे अस्थायित्व कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने ममता से ऐसे शादी नहीं की है, इनसे मैंने 6 महीने तक पहले बात की है, बहुत कुछ इनके बारे में जाना है, सुना है और बहुत कुछ समझा भी है। और हमको और आज भी ये बात सही है कि किसी सेटेड लड़की से कम काम करने में नहीं है, वो हर काम करती है, खाना बना देगी कि आप भी खाओगे तब सोचते रह जाओगे कि कैसे खाना बनाइए, तो सारा काम बहुत अच्छा कर लेती है। और हमारे इनके घर वाले भी आते हैं, सब लोग आते जाते रहते हैं, हमारा भी अभी भी मेरे साले साहब का लड़का आया हुआ है, मेरी शालिम साहिबा आ रही है होली में और मेरे साले साहब आ रहे हैं, तो इन लोग आते जाते रहते हैं और मुझे इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है फिलहाल। और आप पहला और दूसरा सवाल आप करोगे कि आप साला साले की बड़ाई तो खूब कर रहे हो, अपने घर के बारे में नहीं बता रहे हो। निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेरे फादर का एक्सपायर हो जाने के बाद फिर मेरे घर में इस तरह कोई इंटरेस्टेड लोग नहीं दिखे कि हमारे साथ कोई रहे। मैंने मम्मी को भी कुछ दिन के लिए बुलाया था, तो मेरी मम्मी वैसे भी ब्लाइंडनेस को निगलेक्ट करती रही है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो जब दोनों दो दो ब्लाइंड उनके सामने आ गए तो उनको थोड़ा ज्यादा ही मुसीबत झेलनी पड़ी, उनको लगा कि हम दोनों ब्लाइंड के बीच में नहीं रहना चाहिए। फिर वो वापस चली गई मम्मी, फिर हम लोग रह रहे हैं ससुराल वालों की सपोर्ट से रह रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ समझदारी है, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो ये समझते हैं, ये लोग आते जाते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है कमल भाई, आपने जो कुछ जानने का प्रयास किया और किस तरह से आखिरकार आप सहमत हुए वो सब हम जानेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से में, लेकिन यहाँ पर ममता जी से थोड़ा बात करना चाहूंगा मैं।
0: जी ममता जी।
1: जी
2: जी सर।
1: जी ममता जी, तो ममता जी आपको क्या पहली नजर में ही ये सब अच्छा लगा था कि भाई कमल जी जो है उन्हीं से करनी है, या आपके लिए भी कहीं घर वाले और कहीं भी ढूंढ रहे थे?
2: नहीं सर, पहले नजर में तो नहीं थे, लेकिन मतलब मेरा नजर तो था पहले जो स्कूल का मतलब लड़का था लोग उन लोग पर, मतलब हम चाहते थे कि वो लोग नौकरी वाला था, जॉब वाले थे
1: जी,
2: तो मतलब हम तो पसंद पहले ही, मतलब ये लोग से बात नहीं हुआ था तब
1: जी,
2: मुझे
1: जी,
2: मतलब मैं पसंद कर लिए थे लड़का, तो माँ बाप मम्मी पापा को भी मतलब मम्मी को पसंद थे वो लड़का, इसलिए कि मतलब सामने सामने लोग दिखता था नौकरी करते हुए
1: जी,
2: तो वो लोग को पसंद था। फिर अखिलेश सर बताए लड़का को, तो ये नंबर से बात किए फोन से, तो मतलब ये कुछ अजीब अजीब से बात की है बहुत, मतलब लगे कि मतलब मेरे प्यार को मेरे लव को समझ पाएंगे, मेरे दुख को समझ पाएंगे, तो हम भी उन पर हो गए और फिर ये भी हो गए
1: जी। नहीं अभी ममता जी, अभी इन्होंने कहा कमल जी ने कि आपके घर परिवार में थोड़ा विरोध था, तो
2: हाँ,
1: वो बताए किस तरह का विरोध था?
2: विरोध था, मतलब जैसे पहले पहले फोन से बात हुआ, उसके बाद मतलब ये बोले कि हाँ शादी के बाद चलने लगा, फिर हम बोले कि हमारे घर वाले बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले लड़का को देखेंगे बुलाओ। तो मतलब तो फोटो मतलब ये फोटो भेजे, नहीं फोटो नहीं भेजे, हम पटना एग्जाम देने गए थे केबीएस का
1: जी,
2: तो वहीं पर इनको बुलाए,
1: ठीक है
2: दिल्ली से बुलाए, बोले कि मतलब मेरा एग्जाम है, हाँ आप आइए, यहीं पर हम लोग मिल भी लेंगे
1: जी,
2: और अपने मम्मी पापा से मिला भी देंगे
1: जी।
2: तो वहीं पर मेरी भाभी का भाई रहता है पटना में
1: जी,
2: तो हम उनको वहीं पर रखवा दिए, एक दिन पहले आ गए, रात भर वहीं पर रुक गए भाई के पास
1: जी,
2: और हम सुबह सुबह गए एग्जाम दिए, उसके बाद फिर आ गए इनके पास
1: जी,
2: और हम और हमारी सिस्टर और मेरे भाई छोटे वाला भाई गए थे लोग, तो लेकर इनको आ गए घर, तो घर आ गए तो फिर मतलब ये रात भर वहीं पर रह गए घर पे। तो मतलब मान लीजिए कोई घर पे रह जाएगा लड़का बिना शादी किए हुए, चाहे इसीलिए मेरे घर वाले विरोध किए कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे शादी ऐसा लड़का से नहीं होगा, ये सब मतलब अपना जो जितना सामान था रजिस्टर मतलब क्या बोलते हैं अपना सर्टिफिकेट भी सब लिए लिए गए थे, कपड़ा वपड़ा सब लिए कर गए थे। तो मेरी मामा बोली, भाभी बोली लोग कि जब अपना सामान लिए आया है तो फिर इसका घर द्वार है नहीं, कहाँ रह रहा है, जब सामान लेकर आया है तो फिर इसके साथ शादी कैसे होगा, जहाँ रह रहा है वहीं सामान लेकर जा रहा है आ रहा है, तो फिर इसके साथ शादी कैसे होगा, नहीं होगा शादी, सब लोग विरोध करने लगे। तो फिर ऐसे करते करते करते करते 5 दिन फिर घर पर रह गए हमारे, मतलब हम इनको सब करते थे, खाना पीना सब खिलाते थे, लेकिन मेरी मम्मी गुस्सा हो गई थी
1: जी
2: कि नहीं ये इसको घर पर क्यों रख रखी है, बोलो जाओ।
1: अच्छा,
2: तो हमको भी शर्म लगता था कि हम कैसे बोले इनको।
1: सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी।
2: तो हम बोले कि कैसे, मतलब अपने मन में करते थे कि अरे हम कैसे बोले जब ये अपने से नहीं जा रहा है लड़का तो
1: जी।
2: तो फिर मतलब मेरे स्कूल का एक सर हैं, तो वो आए इनको समझाए कि आप अपने घर को चले जाइए, तो फिर ये जाने लगे तो हम रोने लगे, अब 5 दिन रह जाएगा कोई।
1: सही बात है।
2: तो रह गए तो मतलब ये अपने घर चले गए, तो फिर हम रोने लगे, तो फिर मतलब मोबाइल से कॉन्टेक्ट होते रहा, हम बोले मोबाइल नंबर मत बदलिएगा, फिर इधर उधर भड़काने लगा लोग, सब स्कूल का टीचर लोग, मेरी मम्मी पापा को सबको बोलने लगा कि नहीं ऐसा लड़का है वैसा लड़का है शादी मत करो। तो मेरी मम्मी कुछ भी नहीं, एकदम ना के हाँ नहीं करती थी, कभी नहीं,
1: कभी हाँ नहीं करती। अच्छा,
2: नहीं कभी हाँ नहीं करती थी, बोलती थी नहीं शादी होगा ही नहीं।
1: अच्छा,
2: तो वो मतलब रोते रहते थे, खाना पीना नहीं खाते थे, छोड़ दिए थे।
1: हाँ।
2: तो फिर बोले मतलब वही सर से अर्जुन सर है, तो वही बोले अखिलेश सर का दोस्त है, तो बोले कि सर मेरी मम्मी से बात होती है उनको।
1: हाँ।
2: तो ब्लाइंड का ब्लाइंड दुख समझ सकता है।
1: सही बात है।
2: तो उन्हीं से हम बोले कि सर आप कहिएगा तभी होगा, उनको कैसे कैसे करके पटाए, रोए बहुत बार, अकेले में बोले सर अपने भतीजी को लेकर गए और बोले सर प्लीज शादी करा दीजिए, हमको यही पसंद है, और वो भी बोले कि हमको यही लड़की पसंद है, तब जाके बोले। तो फिर नहीं नहीं नहीं नहीं हुआ, फिर हम बोले कि कुछ नहीं होगा तो भाई हम दुनिया में रहेंगे ही नहीं, बस हम दूसरे से।
1: यहाँ तक बात हो गई थी मतलब।
2: हाँ सर।
1: आज कैसा लग रहा है आपको ममता जी, आप सब ठीक है ना?
2: सब सही है सर।
1: खुश हैं आप?
2: जी सर।
1: और बेटियां बेटियां कैसी हैं आपकी?
2: सब सही है, दोनों
1: दोनों अच्छे हैं?
2: ठीक जी सर।
1: क्या बात है। तो बच्चों को मतलब पालने में कोई दिक्कत होती है आपको कि नहीं?
2: नहीं, बड़ी वाली तो मेरी मायके में ही हुई थी, तो 4 महीना के हो गई तो लेकर आ गए यहाँ पर।
1: हाँ जी।
2: तो फिर उसके बाद मतलब दवा हुआ पिलाने में, मतलब हमको तो पता नहीं था कि पहले अपने भतीजा और भतीजी को हम पाले हुए थे छोटे।
1: अच्छा,
2: थे
1: अच्छा,
2: हम अपने घर में लड़की में बड़े में, हाँ, तो ये सब करने में सब हमको मतलब सब कर लेते
1: सब,
2: अपने
1: सब अनुभव था, अनुभव था
2: हाँ, हाँ सब छोट। मेरी मम्मी का हरदम तबीयत खराब रहता है
1: जी,
2: तो मेरी भाभी लोग को शादी नहीं हुआ था, भैया को, तो पहले मतलब घर में हम ही काम करते थे, पढ़ाई भी करते थे काम भी करते थे
1: जी,
2: तो सारे खाना पीना सब चीज काम कर लेते थे। तो फिर वो भतीजा भतीजी को सब संभाले हुए थे, तो हम अपने बच्चे को भी संभाली, बस सिर्फ दवा पिलाने में दिक्कत होता था, फिर वो भी आ गया दवा पिला, धीरे धीरे आ गया वो भी।
1: तो ममता जी एक बात बताइए, जैसे कमल जी ने आपसे बहुत सारी बातें पूछी, 6 महीने तक उन्होंने बातचीत रखी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने भी कभी पूछा था कमल जी को कि भाई आप क्या कर सकते हैं, या अपना एक तरह से आपने इरादा पक्का करने के लिए कोई बात पूछी हो कमल जी से?
2: नहीं सर, मैं तो बस यही पूछे कि आप नौकरी करते हैं कि नहीं, फिर ये बात तो बोले कि हमारा नौकरी हो जाएगा, हो गया है हो गया है, फिर लास्ट में ये बोलने लगे कि तुम किसी और से शादी कर लो, हमारा नौकरी नहीं हुआ है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
2: फिर बोले कि नहीं, हम बोले कोई बात नहीं, जब सब कुछ हो गया, मतलब मेरे घर पर गए थे तो पहले जो शादी के बाद मतलब होता है वो भी सब कुछ कर लिए थे, तो फिर हम क्या करते कहाँ जाते, उससे बोले कोई बात नहीं, नौकरी होगा बाद में होगा, शादी कर लिया जाए, तो फिर शादी हो गया, फिर नौकरी हो गया
1: जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कमल भाई आपने कौन कौन से प्रश्न पूछे 6 महीने के दौरान ममता जी को?
0: ये सारे प्रश्न तो याद नहीं है सर।
1: हाँ नहीं, फिर भी जो एक आपने अपने अपना मन बनाने के लिए कोई ऐसी बात
0: जी। लेट मी कंक्लूड माय वर्ड शॉर्टली। ये सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो मैं ये बताऊंगा, क्योंकि हम हॉस्टल में रखे पढ़े हैं, हमने सारी पढ़ाई यहाँ तक कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई की है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब हॉस्टल में, जिसको बोलते हैं एनडी हॉस्टल इंटरनेट, वहाँ पे रह के पढ़े हैं, तो हमने जो भी पढ़ाई की है लगभग हॉस्टल में रह के की है। छुट्टियों में मैं हरियाणा जाया करता था, जैसा मैं आपको बताया
1: जैसा
0: हरियाणा, तो वहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में भी मैंने कुछ दिनों तक जॉब भी की है गुरमीत राम रहीम के यहाँ जी। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि मुझे परिवार में रहने का ज्यादा अनुभव था नहीं, और चूंकि मेरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे तो मैं अपने घर पे छोड़ा नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं इमरजेंसी जरूरत पड़े, और उसमें हमारे पास ईमेल आईडी भी उतने वो नहीं थे, तो हमें लगा कि यार किसी भी डॉक्यूमेंट की कभी जरूरत पड़ जाए तो हम कहाँ जाएंगे घर लाने, झारखंड। तो इस प्रकार हम अपने साथ लिए फिर, और वो डॉक्यूमेंट्स मैं उनको अपने ससुराल गया, तो चूंकि उनको लगता था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ भी या नहीं, तो उस तरह से मैं उस क्रम में डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ले गया था मैं, और चूंकि जब मैं कपड़े वपड़े सब कुछ ले गया था तो मैं 1-2 दिन 4 दिन ऐसे कुछ करके रहा, मुझे किसी तरह की फील, चूंकि एक आंख वाला होता है तो उसको आंखों में दिखाई देता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, अगर कुछ वरना ब्लाइंड को तभी पता चलेगा, या तो ये जुबान से कुछ कहे या हाव भाव कहीं शो हो, तो इस तरह की चीजें मुझे फील नहीं हुई।
1: जैसे ये बात जब मैं सुन रहा था कमल भाई आपके 5 दिन तक रुकने वाली और फिर आप जा भी नहीं रहे थे, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था जो मैं आप पूछ लेता हूँ आपसे, कि आपको कभी डर नहीं लगा यार कि अनजान जगह है, अनजान लोग हैं, और पता नहीं कल को कुछ हो जाए मेरे साथ, तो मतलब कभी डर नहीं लगा?
0: मैं आपको बताऊं सर, देखो सच्चाई तो ये था कि हमने शादी पहले निश्चित कर लिया था
1: जी।
0: हमें लगा उनको जो उन्होंने जो बात जिस तरह से बातें की थी उनके हिसाब से मुझे लगा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम यहीं से शादी करके चल चलेंगे
1: जी।
0: तो इस वजह से मैं जो है डर हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर लड़की मेरे साथ है, ये लड़की राजी है शादी करने को, और सब हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ जीवन जीने को रेडी है, एक दूसरे को समझते हैं, तो फिर तो कोर्ट भी हमारे साथ, कोर्ट भी जाएंगे तो हमारी जीत होगी, जब हम शादी कर रहे थे कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो फिर इस वजह से फिर मुझे लगा कि एक ब्लाइंड जितना ब्लाइंड के बारे में, चूंकि जैसा कि इन्होंने आपको बताया कि ये ब्लाइंड स्कूल करके बिहार छपरा में कोई इंस्टीट्यूट है ब्लाइंड वाली, गवर्नमेंट एडेड या कुछ भी है, तो बॉयज स्कूल है वहाँ पे, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये पढ़ी और जो कुछ भी बताया इन्होंने, तो हमें लगा कि वहाँ पे और भी ब्लाइंड हैं, वो जानते हैं, इनके मम्मी पापा भी ब्लाइंड को जानते हैं, अभी भी ब्लाइंड की एक्टिविटी से अवेयर हैं वो लोग, तो उस बात से मुझे मैं तुल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं डरने वरने की जो बात की, मैं यही सोचता था कि मुझे शादी करनी है, चूंकि मेरी साली से जब मेरी बात हुई थी शादी से पहले ही, तो मेरी साली ने मुझे बोला जीजाजी नमस्ते, तो मैंने कहा शादी हुई नहीं तो जीजाजी बन गए, तो हाँ तो जब जीजाजी बन ही गए तो फिर इनसे भी शादी की बात करी थी मैंने, तो हमें लगा कि हम शादी कर रहे हैं, शादी करेंगे ही, ये निश्चित है कि शादी होना हम दोनों का तय है। तो जी, तो सर देखो मैं

0: मन में किसी तरह की कोई वो नहीं थी, और जो कुछ भी होता है वो सबके कहीं ना कहीं सब तरफ की मर्जी होती है। तो हमें लगा कि जब हम शादी करना है, जिंदगी जीना है साथ में, तो इस वजह से जो है हमने, अब मैं भी एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, मुझे कहीं रख दोगे तो मैं रह जाऊंगा, मुझे क्या पता कि आप कहाँ हो, आपके इसमें कितने कमरे हैं, कौन कौन कमरे कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कहीं ना कहीं मतलब ब्लाइंड को कुछ बताया जाएगा जब ही तो आएगा। तो हमने इनसे शादी जी, तो हमने इनसे शादी करनी थी, और इस वजह से मैं, मुझे डर नहीं लगा।
1: बहुत बढ़िया जी। तो कमल भाई, जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप लोग रहते हैं
0: जी,
1: काफी भागदौड़ भरा शहर है,
0: बहुत ज्यादा,
1: तो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, सामान लाना, ये वो छोटी छोटी चीजें, घर की आवश्यकताएं, और हर बार कोई पास में हो ये जरूरी नहीं है, और आप दोनों दृष्टिबाधित हैं, तो इन चुनौतियों का सामना आप लोग कैसे करते हैं, क्या उसके लिए क्या व्यवस्था स्पेशल आपने कर रखी है?
0: पहले कभी इस बारे में सोचा करता था, मुझे लगता था कि कभी जब ये कमरे में आए तो यार कहाँ पे राशन दुकान कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, चूंकि अब रहते हुए 5 साल 5.5 साल हो गए, तो मुझे सब जगह का अनुभव भी हो गया, और वैसे भी मैं जैसे सब्जी वब्जी खरीदना हो गया तो मैं सब्जी बाजार से, मैं खुद भी स्कूल से आता हूँ तो बाजार से चला जाता हूँ, या अब कभी मेरी मिसेज जो है किसी लेडीज के साथ सब्जी मंडी से जाकर सब्जी ले आई, राशन की दुकान पास में ही है, उनके वो दुकान वाले से मेरी हमारी बनती रहती है, जैसे मान लो सामान आता गया महीने दो महीने में, जब भी सैलरी आई उनको पैसा दिया गया, कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है, कोई भी सामान चाहिए, किसी भी तरह का सामान अगर इमरजेंसी है तो रात में भी मिल जाएगी, ऐसे कोई बात नहीं है। और भाग दौड़ वाली समस्या तो समस्या ही है, जो कोरोना का दौर चल रहा था दिल्ली में, उस समय भी हम दिल्ली में ही थे और उस समय भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: गुड, वेरी नाइस, मतलब
0: क्योंकि हमारा स्कूल भी पास में, घर भी पास में, और दूसरी चीज ये कि सारे मार्केट वर्केट भी लगभग पास में ही है, और मार्केट जब कभी जाने के लिए निकलते हैं तो हमारे जानने वाले तमाम सारे बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं, सर जी नमस्ते, सर जी कहाँ चले हो, सर जी कहाँ चलोगे, ये तो बहुत सारे बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप चले जाते हैं, चलो सर जी मैं चलता हूँ आपके साथ, ये तो वो, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है जी, सब कोई दिक्कत नहीं है जी।
1: बहुत बढ़िया कमल भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय निकल करके आया आपकी बातचीत में
0: जी।
1: आपने डेरा सच्चा सौदा का जिक्र किया
0: जी।
1: और आपने ये भी बताया कि वहाँ आपने जॉब की, तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका?
0: सर मैं आपको बताऊँ, जो 92 से जब मैं पटना में पढ़ना शुरू किया था, तो 95 में मैं पहली बार जो है मुझे सिरसा जाना हुआ, जहाँ मेरी दीदी रहती है, दो दो बहने
1: जी।
0: सिरसा में मेरी बहन, चूंकि मेरी बहन का मानना था कि मैं गाँव ना जाऊँ, गांव ना जा करके सिरसा में ही मन लगाऊं, ताकि वो अच्छा शहर है, वहाँ पे थोड़ा कुछ सीखने को मिल जाएगा। मेरी बहन का ये भी मानना था कि वो, मैं उनके साथ रहूं और उनसे कुछ सीखूं, घूमना फिरना, और जब जब छुट्टियां हो तो मैं उनके पास जाऊं और उनके बच्चों से खेलूं कूदूं, वो लोग हमें घुमाएंगे पार्क वार्क में और सब जगह, डॉक्टर को दिखाएंगे या और जो कुछ भी करना होगा वो लोग करेंगे, वो ऐसा मान के मुझे अपने पास रखती थी। तो वो लोग थोड़ा गांव के वो हैं, हम लोग जैसा कि हम लोग हिंदू हैं तो बनिया हैं तो धर्म को ज्यादा मानते हैं, तो वो डेरा सच्चा सौदा वाले जो हैं गुरमीत राम रहीम किस सेवेदार हमारी दीदी हुआ करती, वो जो है जाती थी उस सेवा करने, कभी जब भी टाइम मिलता, तो उनका मानना था कि मेरी आंखें बन जाएगी, और मैं भी 9th क्लास तक ऐसा सोचता रहा कि मैं बहुत पूजा पाठ करूंगा तो कभी ना कभी मेरी आंख बन जाएगी। और इस क्रम में मैं डेरा सच्चा सौदा में उसके जो साप्ताहिक सत्संग हुआ करता था उनमें मैं भाग लिया करता था, और मैं उनको सुनता था और मुझे अच्छा लगता था, और उन्होंने कुछ मंत्र भी दिए थे उनको भी हम फॉलो करने का प्रयास करते रहे थे। तो ये सब मुझे ढकोसला लगा कि जब मैं पढ़ लिख करके वो काफी वो हो गया, तो डेरा सच्चा सौदा वाले ने मुझे अपने जॉब पे रख लिया, और वो लोग डेरा सच्चा सौदा की, क्योंकि अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं, तो वहाँ भी अच्छे बुरे लोग थे और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे उनमें
1: वहाँ पे, लेकिन एक अलग तरह का माहौल होता था जब भी वो चलता था तब। तो आपने जब जॉब किया तो मतलब एक आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि आप दृष्टि बाधित हैं और आपके साथ अलग तरह का व्यवहार हो रहा है?
0: बिल्कुल, बहुत ज्यादा होता था सर, क्योंकि वहाँ पे उस समय हमारी सैलरी इतनी कम हुआ करती थी कि 7,000 रुपए मिलते थे, अब सोचो कि 7,000 रुपए मिलते थे, वो भी छुट्टियों में पैसे कट जाते थे। तो मैं अकेला था, शादीशुदा भी नहीं था, और मैं अपनी बहन के यहाँ से जाता था वहाँ पढ़ाने, तो वहाँ पे लोग कहते थे कि जो है वहाँ पे जो उनके गुरु जो बाबा थे गुरमीत राम रहीम, उनसे बात करना और बड़े मिनिस्टर से मिलना एक बराबर हुआ करता था। तो वो इतने पहुंच वाले थे, और आपको भी पता होना चाहिए कि वो राजस्थान को मैं विजिट किया हूँ, आई हैव बीन राजस्थान फॉर सेवरल टाइम्स। तो राजस्थान में भी बहुत सारे प्रेमी हैं वहाँ पे, और उनके भी आश्रम भी वहाँ भी खुले हुए हैं। तो हम वहाँ पे जाते थे उनके यहाँ जॉब करने के लिए, क्योंकि जब हम जॉब पर्पज से जाते थे तो हमारा प्रोफेशनलिज्म हुआ करता था, हमारा कोई मतलब नहीं था डेरा सत्संग से, प्रेमी प्रेमी इन चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। हम लोग अपना जॉब करने जाते थे, जॉब पर क्या,
1: वेरी नाइस, जी।
0: लेकिन इस जॉब के दौरान क्या होता था कि जो हमारे पार्टनर जो काम करने वाले होते थे, तो वो गुरमीत राम रहीम ने जो है मुझे टीचर के पोस्ट पे रखने के लिए बोला, और इन्होंने मुझे जो है टेलीफोन एक्सचेंज में रख दिया, और टेलीफोन एक्सचेंज में रख दिया मैं वहाँ पे जॉब करने लगा। और जो हमारे साथ काम करने वाले बंदे थे वो मुझसे बहुत जलते थे, तो मैं बाथरूम में जाता था, गाना वाना गुनगुनाता था कि बात पड़ गई। तो उन्होंने बोला कि कमल किशोर जी आप जो है जॉब करना चाहते हो या नहीं। हम बोले मैं जॉब करना चाहता तो हूँ, पर मैं जॉब किसी के दबाव में नहीं करना चाहता हूँ। बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई कोई जॉब है ये 7,000 रुपए की, और मेरी डिग्री है बीएड और एमएड, ये 7,000 में तो मेरा पानी भी गर्म नहीं होता भाई, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल बोला मिस्टर केकी then you will leave this institute. हमने कहा कि I will leave this institute. You have not purchased me, okay? For 7,000. It's not sufficient for me. तो मैं वहाँ से भगाया और जॉब छोड़ दिया। अब जॉब छोड़ने के बाद क्या हुआ कि मैं अपने मिसे अपनी बहन को कैसे बताऊं कि मैं जॉब छोड़ दिया हूँ, मैं नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ लिख भी गया हूँ। और एक मेरा दोस्त था अभिनव मिश्रा, वो वहीं पे जॉब करता था, वो गेस्ट टीचर का ही सिरसा में ही। तो क्या हुआ कि मेरी बहन ने जब मुझे डांटा तो मैं वहां से भाग गया, अपने बहन के यहाँ से भाग गया, और भाग के जो है चौकटा में एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट हुआ करता था, मैंने कभी सुना था किसी के मुंह से, तो भटक के मैं वहीं चला गया। इंस्टीट्यूट में जब मैं चला गया तो मेरे घर वाले सब घबरा गए। मेरी बहन बोली कि मैं इनको डांट के भगा दिया, ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया। अभिनव मेरा दोस्त फोन किया गया, अभिनव तुम्हारे पास तो नहीं गया था? नहीं। अब मेरे मम्मी पापा सब लोग मेरी बहन से लड़ने लगे, मेरा जो है मेरा बेटा को घर से भगा दिए, वो कहाँ भाग गया, मेरा सोना जैसा बेटा है, ब्लाइंड है तो क्या हुआ, तुमको नहीं रखना था तो मेरे पास भेज देती, तुम भगा क्यों दी, ये वो दुनिया भर की बात है। तो फिर जो है अभिनव किसी तरह से पता किया, अब वो इंस्टीट्यूट में जाकर मेरे को ढूंढ, और ढूंढने के बाद मेरे को बोला कि दोस्त चलो जो है दिल्ली तुम्हारा इंतजार कर रही है नौकरी की। मैंने कहा कैसी नौकरी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और साले ने उसने जो क्या किया कि मेरे फॉर्म वॉर्म सब भर रखे थे उसने, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास थे, फोटोकॉपी वगैरह। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो मुझे दिल्ली ले आया, और तब से मैं दिल्ली रहने लग गया, जॉब करने लग गया, और फिर दोबारा मुड़के जी, फिर मुड़के मैं कहीं नहीं गया जी सर।
1: क्या बात है। तो कमल भाई आप सुनते हैं ये कार्यक्रम हमराही, आपने जैसा कि बताया
0: सर मैं आपके प्रोग्राम हमराही बहुत सुनते हैं, पर इधर कुछ दिनों से कुछ व्यस्तताएं बढ़ चुकी हैं। आपको शायद जो गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से जुड़े होंगे उनसे पता करिएगा,
1: जी जी
0: दिनों इतना काम बहुत लोड बढ़ गया है, तो सुनना तो बहुत दूर की बात है, बात भी नहीं कर पाते हम।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं
0: जी, लेकिन फिर भी समय निकाल के हम सुनते हैं, और जब भी मुझे टाइम मिलता है स्कूल में भी या घर में भी तो हम सुनते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब
0: जी।
1: तो अपनी जिंदगी के अनुभव से कमल भाई क्या कहना चाहते हैं अब आज के हमारे श्रोताओं के लिए?
0: सर देखो अनुभव मेरे इतने हैं कि अगर उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश करो, समराइज करने की कोशिश करो, तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाई हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चूंकि सर मैं आपको बताऊं मैंने बीए में ग्रेजुएशन में मेरी फिलोसॉफी थी, ग्रेजुएशन में इंग्लिश हिंदी फिलोसॉफी, और चूंकि बीएड और एमएड में मेरी साइकोलॉजी रही है, और साइकोलॉजी और फिलोसॉफी जब ये दोनों मिल जाते हैं तो और भी तगड़े हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो पौराणिक काल में जो पढ़े हैं कि कलयुग में द्वापर युग त्रेता युग सतयुग, इन बातों को अगर थोड़ा सा विचार के अपनी जिंदगी से जोड़ के चले, तो चूंकि मुझे याद है और आपने भी सब सुना होगा कि त्रेता युग जो होता है उस युग में धर्म के केवल 3 पद रह जाते हैं, और एक पद जो है और वो पाप के होते हैं। और उन्हीं पद त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था, उस समय रावण जो बैरी था, जो दानव राक्षस था, उनको स्वयं दानव होते हुए भी शिव भक्त था, और उन्हीं के घर में विभीषण जैसा राम का भक्त हुआ करता था। तो वो युग था जब कृष्ण भगवान ने जो है वो समझाया, अपने उपदेश में बताया भीष्म पितामह को कि भाई देखो द्वापर युग में जो है त्रेता युग में तो ये था कि तीन पैर थे धर्म के, एक पैर थे पाप के, तो इसकी वजह से रावण भी शिव भक्त बना, लेकिन जब द्वापर आया तो उससे

0: अगर आप वाकई ईमानदारी से काम करते हैं 100% तो निश्चित रूप से 75% आपको माइनस में जाना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम जब जिंदगी जिए तो नेगेटिविटी को अवॉइड करें, प्लस हम उनको स्टडी जरूर करें कि हम उनसे बचे कैसे, और पॉजिटिविटी जितना हो सके, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बताया, पामेस्ट्री ने बताया, फिलोसॉफी ने बताया, और हमारी जो साइंस कहता है उनके अकॉर्डिंगली जो आप निष्कर्ष निकल पाते हैं उनके अकॉर्डिंगली आप जिंदगी जिए।
1: बहुत खूब, बहुत बढ़िया कमल भाई, काफी मजा आया आपसे बात करके। तो ममता जी हैं?
0: जी
1: ममता जी, तो आप कार्यक्रम के लगभग बिल्कुल अंत में हैं, हम हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे ममता जी? जी, कोई संदेश देना चाहेंगे आप
2: सुनने वाले को? यही बोलेंगे श्रोता को कि मतलब ब्लाइंड को ब्लाइंड से शादी करना चाहिए, आंख वाला को भी, किसी किसी का होता है कि हाँ भाई आंख वाले से शादी करेंगे, और किसी किसी का होता है कि ब्लाइंड से करेंगे, लेकिन ब्लाइंड ब्लाइंड को दुख समझता है, इसलिए ब्लाइंड को दुख ब्लाइंड से शादी करना चाहिए।
1: जी जी जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद। तो कमल भाई और ममता जी, आप लोग हमारे आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, समय दिया, तो उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सर, धन्यवाद। मैं सुनने वाले श्रोताओं से ये भी आग्रह करूंगा कि हमारे बातचीत के दौरान अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम दोनों ही क्षमा प्रार्थी हैं कि ह्यूमन इज द एरर ऑफ सोसाइटी। थैंक यू।
1: जी जी जी, तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का हमराही कार्यक्रम। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें हमेशा की तरह, और रेडियो मधुबन को सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, और कॉल करते रहें 94-14-15-14-15 पर। वहां पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बता सकते हैं, और भी रेडियो मधुबन के किसी भी कार्यक्रम पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। और आप यदि चाहते हैं, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना, या किसी को भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, और आप सबका स्वागत है। देखिए, आप सबके योगदान से ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और नहीं तो जो आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम है, जिसको आप सब अपना समझ करके इतना प्यार देते हैं, सुनते हैं, हो सकता है आने वाले समय में फिर बहुत लंबे समय तक शायद हम जारी ना रख पाए इस कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, रेडियो मधुबन का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा रेडियो मधुबन के ही नाम से। आप ईमेल भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। इंतजार रहेगा आप सबकी प्रतिक्रियाओं का, मैसेजेस का, आज के इस कार्यक्रम में। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 2 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा विराट रूप या कल्प वृक्ष का पूरा वर्णन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, वृक्षपति बाप आया है तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी दशा मानी जाती है और इसीलिए बाबा कहते स्वर्ग में सब पर बृहस्पति की ही दशा है। तो जैसे त्रेता युग आता है तो शुक्र की दशा होती है, 2 कला कम हुए। फिर जब द्वापर कलयुग आता है तो शनि की दशा बैठती है और इस समय कलयुग के अंत में सब पर राहु की दशा है। तो बाप आते हैं, जो बच्चे कामचित्ता पर बैठकर जल मरे थे उनको पुनः जागृत करने। इसीलिए शास्त्रों में भी गायन है कि सागर के बच्चे जल मरे थे और फिर सागर ने उनको सुरजित किया। सुरजित करने के लिए और पुनः बृहस्पति की दशा बैठे उसके लिए कहा जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु की दशा होने के कारण इस समय सब पर ग्रहण लगा हुआ है। आम भारत पर और विश्व पर भी राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अब ये ग्रहण उतरेगा तब जब दान देंगे। तो दे दान और छूटे ग्रहण यही कहा जाता है। तो बाप आकर विकारों का दान लेते हैं बच्चों से और फिर उनके ऊपर से आहिस्ते आहिस्ते ये ग्रहण निकलता जाता है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर सारे कल्प वृक्ष की कहानी सुनाई है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। आज की मुरली से प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। स्मृति दिलाते हैं बाबा, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे कामचित्ता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? गीत में आगे शिव बाबा की महिमा है तो बाबा पूछते, किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंच से ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सबने कहेंगे, बच्चे जानते हैं, सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंच से ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी है। ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा, उनका असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं, असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं, मैं बीज रूप चैतन्य हूं। सत चित कहते हैं, फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है।
भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवताएं रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवताएं थे। इस समय पतित पत्थर बुद्धि रहते हैं। भारत में ही सतयुग के समय पारस बुद्धि देवताएं थे और इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। यह बाप आकर बताते हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे, ये तुम्हारी महिमा है। वहां विकार होते नहीं। द्वापर से रावण पांच विकारों का राज्य शुरू हुआ है। तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है। बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा, तो दो कला कम हो गई। उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया। सीढ़ी उतरते आए शनिचर की दशा हुई। द्वापर कलयुग में शनि की दशा हुई। इस समय सब पर राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं बेदान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह है शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी है परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे। संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। बाबा कहते ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर सर्व का पति पावन नहीं कह सकते हैं। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूं, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी है गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल। सबके ऊपर रहम करते हैं क्योंकि सब सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे, अब कामचिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं।

वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूं। तुम यहां आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवेड बाप हुआ, सब आशिकों का माशुक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं। हर धर्म में भी बाबा कह लिंग या लाइट का प्रतीक जरूर रखते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। बाबा कहते शिव के मंदिर भारत में बहुत है, जिसको शिवालय कहते हैं, वही बाबा का रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, ये पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठी है, वो भी 21 जन्मों के लिए। बृहस्पति की दशा बैठी है, लेकिन वो भी 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर पति पावन, जिसको सब पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं, तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। बाबा स्मृति दिलाते, तुम सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म वाले थे, अभी क्या बन गए हैं, नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। भारत का ये क्या हाल हो गया है, जो देवता धर्म के हैं, वो विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाप कहते अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान वाच, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूं। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम है। बाप कहते तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना यह भी गाया हुआ है, प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, प्रजापिता है तो उनके बहुत बच्चे भी होंगे, वह तो जरूर यहाँ होने चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है, महाभारत की लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है, क्यों? इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलने हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, वह विष्णुपुरी में चलने,
तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। सोने कला संपूर्ण कहा जाता है तो दो कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। त्रेता युग में दो कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए हो तो द्वापर के बाद धीरे धीरे मंगल की, शनि की और राहु की दशा भी होती है। तो द्वापर में मंगल की दशा, कलयुग में शनि की दशा और अभी अंत में राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पति पावन। तो बेहद की दशाओं के विषय में सुनाते हैं। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बाकी सब है झूठे। किसकी सदगति कर नहीं सकते, इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी है, लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए, एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाए। ये वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब आप कहते हैं, क्या कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मन मना भाव। हाँ, देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए, इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भाव। ये कौन से बाप ने कहा? स्वयं बाबा ने। वह तो है निराकार, ये निराकार तो तुम भी हो। बाबा कहते निराकार तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो। फर्क कितना है कि वो पुनर्जन्म में नहीं आते, हम पुनर्जन्म में आते हैं। तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूं। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सारी दुनिया को पतित बनना ही है। सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है, गाया जाता है घट ही में सूर्य, घट ही में चंद्रमा, घट ही में बहुत सारे सितारे। सतयुग में 9 लाख होंगे, घट ही में 9 लाख तारे। तो बाबा कहते हैं घट ही में है सूर्य, घट ही में चंद्रमा, घट ही में 9 लाख तारे। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है, सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है। फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है, रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं, इतना क्रोध है। बंदर से भी बत्तर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, क्या कहते बाबा? मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है। अब बेदान तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी अब यहां बनना है। फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है,

स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पति समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। पारसनाथ शिव बाबा आकर के हमारी बुद्धि को क्या कर रहे हैं? पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाप को इतना प्यार से याद करना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि पारस बन जाए। तो ऐसे पारसनाथ को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे यानी विकार है उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़ी प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषताएं देखी। साकार बाबा में बोलने चलने सभी बातों में विशेषताएं देखी। तो ये कला हुई, उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। आज का स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला करते हैं। पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला करते हैं। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकेंगी। पवित्रता की यह शक्ति महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से ये सब पिछड़ा भस्म हो जाएगा। अंत में जब संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से ये सब पिछड़ा भस्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।